101.9 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। आज है सोमवार, शक सोमवत 1948 के ज्येष्ठ मास की चौथी तिथि, ईस्वी सन 2026 दिनांक 25 मई। सुबह के 5:58 हो चुके हैं। हमारा आज का प्रसारण अब आरंभ होता है इस मंगल धुन के साथ।

0: 101.9 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को है। अब से कुछ पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण हैं। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर है। कल नई दिल्ली में अमेरिका से 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में भावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमरीका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है।

0: की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम में गृहमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से किसी भी जनजातीय अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजातीय कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है।
2: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मन से इस जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूँ। कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फलता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर देबांशु पांडा को बधाई दी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा है कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह फैसला किया गया है। आज उत्तर पुस्तिका की आखिरी स्कैन प्रति उपलब्ध करा दिए जाने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित हो जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस महीने की 28 तारीख को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा है कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल अजहा बकरीद की तिथि में बदलाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। आईपीएल क्रिकेट में अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं मुंबई से प्रसारित विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

आज का चिंतन गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा है, हम महानता के करीब तब पहुंचते हैं जब हम विनम्रता में महान होते हैं। आइए सुने भक्ति संगीत।

श्रोताओ, अब से थोड़ी देर में यानी ठीक 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस का भाग 199। सुबह 6:45 और संध्या 6:45 पर संगीत सरिता में सुनिएगा श्रृंखला कर्नाटक संगीत पद्धति के राग। कलाकार हैं शकुंतला नरसिंहन, प्रस्तुति रूपाली रूपक की। आज आप सुनेंगे इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी। सात बजे सुनवाए जाएंगे भूले बिसरे गीत। 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हम है राही प्यार के। 8:15 पर होगा कार्यक्रम त्रिवेणी और 8:30 पर आप सुनेंगे चित्रलोक। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है सुप्रसिद्ध संगीतकार लक्ष्मीकांत पर। इसी कार्यक्रम को आप फिर से सुन सकेंगे रात्रि 9:30 पर। 10 बजे पिटारा में सुनिएगा उजाले उनकी यादों के। निर्देशक रमेश तलवार से यूनुस खान की बातचीत का 5वां भाग आप सुन सकेंगे, प्रस्तुतकर्ता जुबेर खान। 11:00 होगा कार्यक्रम।

दिन में 1 बजे सुनिए कार्यक्रम सुरीला सफर, 2 बजे आप सुनेंगे त्रिवेणी, 2:30 पर होगा कार्यक्रम सदाबहार नगमे, 3 बजे सुनिएगा कार्यक्रम सखी सहेली।

शाम 4 बजे सेहत नामा कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। आज डॉक्टर लीजा बैनर्जी से राजेंद्र त्रिपाठी की बातचीत आप सुनेंगे। विषय है थायराइड की बीमारी और उपचार। शाम 5 बजे सुनिएगा छाया गीत। 5:30 पर होगा कार्यक्रम तराने नए पुराने। शाम 6:35 पर आप सुनेंगे संध्या रंजन।

सात बजे सुनिएगा कार्यक्रम जयमाला। 7:45 पर आप सुनेंगे स्मृतियों के स्वर, अधिशासी लवलेश कुमार परमार से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा भाग आज आपको सुनवाएंगे। रात 8 बजे हवा महल कार्यक्रम में आप सुनेंगे नाटक यादों की परछाइयां, लेखक सुरेंद्र गुलाटी, निर्देशक दीनानाथ। आज इस नाटक का पहला भाग आप सुन सकेंगे। रात 8:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम चित्रलोक और 9 बजे होगा कार्यक्रम आपके लिए। रात 9:30 पर आज के फनकार, 10 बजे आप सुनेंगे छाया गीत। रात 10:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम ढलती जाए रात। श्रोताओ, झरोखा में अभी आप सुन रहे थे हमारे आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। आइए सुने श्री रामचरित मानस का भाग 199।

दल बल समेत भरत प्रयाग पहुंचने को हैं। गंतव्य का बड़ा भाग पार किया जा चुका है, किंतु उनकी व्याकुलता बढ़ती जा रही है। उन कष्टों की कल्पना से उनकी ग्लानी और क्षोभ बढ़ता जाता है जो श्री राम, लक्ष्मण और सीता ना जाने किस वन में भुगत रहे होंगे। प्रयाग पहुंचकर सबने विधि पूर्वक त्रिवेणी में स्नान किया और तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम कर भरत ने अपनी मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना की।

श्रोताओं, आप सबको मेरा नमस्कार। आज इस श्रृंखला की कड़ी में जो कर्नाटक रागों के बारे में कुछ रोचक विषयों पर आधारित है, मैं ऐसे दो रागों के बारे में कुछ बातें बताना चाहूंगी जो मंगलम गाने में प्रायः उपयुक्त होते हैं। ये दो राग हैं सौराष्ट्रम और राग मध्यमावती। मंगलम एक ऐसा बंदिश या कॉम्पोजिशन है जिसे हर महफिल या बैठक के अंत में पेश किया जाता है। शास्त्रानुसार मंगलम गाए या बजाए बिना प्रोग्राम का समापन करना बहुत ही बुरा माना जाता है। मंगलम में प्रायः प्रार्थना होती है कि सब सुखी रहें, सबका कल्याण हो, और इस मंगलम को पेश करने की विधि ज्यादातर दो होते हैं। एक तो हुआ राग सौराष्ट्रम में त्यागराजा द्वारा रचित मंगलम कीर्तना गाने का, जिसके शब्द हैं पवमान सुतुडु बट्टु पादार विंद मुलकु नी नाम रूप मुलकु नित्य जय मंगलम। और दूसरी प्रथा है राग मध्यमावती का छोटा सा नमूना गाकर या बजाकर समाप्त करने का। कभी कभी तो दोनों ही करते हैं, अर्थात सौराष्ट्रम में पवमान सुतुडु बट्टु गाकर उसी के साथ अंत में एक छोटा सा टुकड़ा राग मध्यमावती में भी जोड़ देते हैं। अब आप सवाल करेंगे, ऐसा क्यों? राग सौराष्ट्रम और मध्यमावती को अंत में क्यों गाया जाता है और उन्हें मंगल राग क्यों माना जाता है? कारण जी ऐसा दिया जाता है कि सौराष्ट्रम और मध्यमावती में स्वर जो लगते हैं, स्वर समूह इस तरह के हैं जिनसे मंगलमय माहौल उत्पन्न होता है और शांति होती है। अगर महफिल के दौरान कुछ ऐसे राग पेश किए गए हैं जिन्हें विवादी राग कहते हैं, यानी कि जिनके स्वर समूह अलग प्रकार के हों, तो उन रागों से उत्पन्न होने वाले चंचल और कम शांति वाले रस या सेंटिमेंट्स को मिटाकर शांति के साथ प्रोग्राम समापन करने के लिए मंगलम गाते हैं, ताकि श्रोतागण अपने कानों में इस मंगल रागों की गूंज के साथ घर लौटें। राग सौराष्ट्रम को कभी कभी प्रोग्राम के पहले आइटम में भी पेश करते हैं, लेकिन पवमान इस कीर्तन को शुरू में कभी भी नहीं गाया बजाया जाता है। पवमान के बाद उठ जाना चाहिए, और अगर पवमान गाने के लिए समय न हो तो कम से कम दो चार टुकड़े राग मध्यमावती में पेश कर दें और फिर खत्म कर लेते हैं। आज राग सौराष्ट्रम में पवमान सुतुडु मंगलम सुनाने से पहले मैं यह बता दूं कि राग सौराष्ट्रम 17वां मेलकर्ता सूर्यकांतम का जन्य राग है और हिंदुस्तानी पद्धति के आनंद भैरव से थोड़ा कुछ मिलता जुलता है। स्वर जो लगते हैं वे हैं कोमल ऋषभ, शुद्ध गांधार, शुद्ध मध्यम, शुद्ध धैवत और शुद्ध निषाद, अर्थात पूर्वांग में भैरव और उत्तरांग में बिलावल के स्वर लगते हैं। चलन इस प्रकार है, सुनाती हूँ।

श्रोताओ, संगीत सरिता कार्यक्रम में आजकल आप सुन रहे हैं कर्नाटक संगीत पद्धति के अंतर्गत आने वाले कुछ राग और उनसे जुड़ी मान्यताएं। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही हैं शकुंतला नरसिम्हन।

ये हुआ राग सौराष्ट्रम, जिसमें ज्यादातर मंगलम गाते हैं। राग मध्यमावती औडव राग है, जिसे हिंदुस्तानी पद्धति में मध्माद सारंग कहते हैं। इसमें लगने वाले स्वर इस प्रकार हैं: शुद्ध ऋषभ, शुद्ध मध्यम और कोमल निषाद, यानी कि गांधार और धैवत वर्ज्य हैं, जैसे कि मध्माद सारंग में भी वर्ज्य हैं। मध्यमावती का चलन इस प्रकार है, सुनिए।

ये था कर्नाटक शैली में राग मध्यमाती। श्रोताओं, अब इस कड़ी के साथ कर्नाटक रागों के बारे में एक श्रृंखला का समापन करते हुए कल से पेश करूंगी महाराजा स्वाति तिरुनाल के कुछ हिंदी भाषाओं में रचनाएं। तो अब सुनिए MS सुब्बलक्ष्मी के स्वर में मंगलम पवमान सुतुरु बट्टू, जिसके अंत में कुछ क्षणों के लिए राग मध्यमावती का भी झलक है। कल मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।

ये था एम एस सुब्बलक्ष्मी के स्वर में राग मध्यमावती। आइए अब सुनते हैं डॉक्टर एम रमणी का बजाया बांसुरी पर राग मध्यमावती।

0: अभी आप सुन रहे थे एम रमणी का बजाया बांसुरी पर राग मध्यमावती। श्रोताओं, आप सुन रहे थे कर्नाटक संगीत पद्धति के ऐसे रागों की चर्चा जिनसे जुड़ी हैं कुछ पुरानी मान्यताएं। आप तो जानते ही हैं, इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही थी शकुंतला नरसिम्हन। कार्यक्रम को जारी रखते हुए शकुंतला नरसिम्हन कर्नाटक संगीत पद्धति में स्वाति तिरुनाल की हिंदी कृतियों की चर्चा करेंगी कल से।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपा

0: यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: ये विविध भारती है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

फिल्म सती सावित्री का ये गीत आपने सुना, लता मंगेशकर मन्ना डे के युगल स्वरों में। भरत व्यास का लिखा ये गीत था, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था।

चित्रगुप्त के संगीत निर्देशन में से गाया लता मंगेशकर ने। राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत आप सुन रहे थे। फिल्म थी मैं चुप रहूंगी। विविध भारती से श्रोताओ, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम के कुछ और गीत आपको सुनवाएंगे बस एक छोटे से अंतराल के बाद।

101.9 FM पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। सुबह के 7:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम, आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण। श्रोताओं, सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे हमारे स्टूडियो से भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश। सुबह 8:15 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम सुर संगम और प्रणाम अयोध्या प्रसारित होगा सुबह 8:30 से, जिसमें आज आप सुनेंगे विश्व फुटबॉल दिवस पर आज की बात। साथ ही इसी के अंतर्गत आप सुनेंगे वार्ता जिसका विषय होगा महिलाओं में स्वास्थ्य और पोषक आज की आवश्यकता। जानकारी देंगी प्रिया मिश्रा। इसके अलावा सुबह 9 से आप सुनेंगे व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत और 9:30 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। फोन नंबर होगा 7376804090।

दोपहर 12:30 पर आप सुन सकेंगे फरमाइशी अवधि लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग। इसके बाद फेसबुक फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा आप सुनेंगे दोपहर 1:00 से। साथ ही 2:00 से गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा गीतांजलि, और बहने सुनेंगी अपना कार्यक्रम अंगना दोपहर 2:30 से, जिसमें आज चर्चा का विषय होगा विश्व फुटबॉल दिवस, गंगा दशहरा और रास बिहारी बोस जयंती। साथ ही इसी के अंतर्गत बहने सुनेंगी काव्य पाठ, कवित्री होंगी पूनम सिंह। शाम 5:00 से आप सुनेंगे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार 2025 के वितरण का सजीव प्रसारण, जिसे हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। लोक संगीत का आनंद आप ले सकेंगे शाम 5:30 से, और शाम 6:10 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी। इसके अलावा लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के आप सुनेंगे शाम 6:30 पर, और शाम 6:45 पर किसान भाई बहन सुनेंगे अपना कार्यक्रम कृषि जगत, जिसमें आज हमारी चर्चा का विषय होगा तालाबों का रखरखाव। भेंटवार्ता के अंतर्गत आप सुनेंगे एक प्रगतिशील महिला कृषक शबीना खातून से मंजू मौर्य के द्वारा की गई बातचीत। 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गीत गुंजन, और रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे महफिले गजल। इसके बाद रात्रि 9:30 पर श्रोता सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। इसके अलावा समाचारों का अनुप्रसारण आप सुन सकेंगे अपने निर्धारित समय पर। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं, सुबह के 7:18 होने को हैं। अब से कुछ ही पलों में 7:20 पर आप सुनेंगे गोरखपुर से प्रसारित प्रादेशिक समाचार।

0: आनंद है। मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
0: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़ी वादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
0: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकेत अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की। प्रत्येक विकास खंड स्तर पर साप्ताहिक चौपाल आयोजित करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने भीषण गर्मी और बढ़ती बिजली की मांग के बीच प्रदेश में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। कहा, हर उपभोक्ता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर की चर्चा। ताजमहल देखने आज आगरा जाएंगे अमेरिकी विदेश मंत्री। और प्रदेश में अभी और बढ़ेगा गर्मी का प्रकोप, पूर्वी जिलों के लिए भीषण लू का रेड अलर्ट जारी।

0: और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने प्रत्येक विकास खंड स्तर पर साप्ताहिक चौपाल आयोजित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन चौपालों में राजस्ववाद, घरेलू हिंसा, अवैध वसूली और स्थानीय स्तर की शिकायतों का मौके पर समाधान सुनिश्चित किया जाए। श्री योगी ने IGRS और CM हेल्पलाइन से मिली शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण तथा संतुष्टिपरक निस्तारण पर बल देते हुए कहा कि शिकायतों में किसी भी स्तर की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को गंगा दशहरा और बकरीद को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीषण गर्मी और बढ़ती बिजली मांग के बीच प्रदेश में सुचारू और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनता, किसानों, व्यापारियों और उद्योगों सहित प्रदेश के हर उपभोक्ता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कल लखनऊ में ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा और राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत सहित ऊर्जा विभाग, पावर कॉरपोरेशन और डिस्कॉम के अधिकारियों के साथ विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
1: प्रदेश में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बढ़ती विद्युत मांग को देखते हुए उत्पादन इकाइयों की अधिकतम क्षमता का उपयोग किया जाए और सभी संयंत्रों में तकनीकी दक्षता तथा रख रखाव व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री ने ट्रांसमिशन नेटवर्क को और अधिक मजबूत, आधुनिक एवं भरोसेमंद बनाने पर जोर देने के साथ ही फीडर वाइज मॉनिटरिंग करके जवाबदेही तय करने और शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने आंधी तूफान के बावजूद विद्युत व्यवस्था बहाल रखने के लिए त्वरित रिस्पॉन्स सिस्टम सक्रिय रखने को भी कहा। दीपाली सिंह, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में प्रदेश की पुलिस व्यवस्था को और अधिक आधुनिक, सुरक्षित और तकनीक आधारित बनाने के लिए पुलिस रेडियो यूनिट को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पुलिस की लोकेशन, मूवमेंट और संचार गतिविधियों की गोपनीयता सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं कल शाम को ही आयुष विभाग की एक समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने आयुष हेल्थ एंड वेलनेस नीति 2026 को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों तथा तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। ये निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों IIT के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जांच करेंगे। इस बीच शिक्षा मंत्री ने कल वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और CBSE परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान ये तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, केनरा बैंक और इंडियन बैंक CBSE की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। श्री प्रधान ने CBSE को अपनी भुगतान प्रणाली में पूरी तरह बदलाव लाने के निर्देश दिए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने 28 मई को प्रस्तावित कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET UG 2026 स्थगित कर दिया है। NTA के अनुसार बकरीद की छुट्टी की तारीख में बदलाव को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR News_ उपलब्ध है। भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज आगरा में ताजमहल देखने जाएंगे। वो विशेष वायुयान से आगरा पहुंचेंगे। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिकी विदेश मंत्री का काफिला खेरिया एयरपोर्ट से शिल्पग्राम पहुंचेगा। शिल्पग्राम से बैटरी चलित गोल्फ कार्ट में बैठकर वह ताजमहल के पूर्वी गेट पहुंचेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री के आगरा भ्रमण के मद्देनजर केंद्रीय एवं प्रांतीय खुफिया एजेंसी सतर्क हैं। ताजमहल के आसपास के होटलों में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री के ताजमहल भ्रमण के दौरान आम पर्यटकों के लिए ताजमहल खुला रहेगा। सज्जन सागर, आकाशवाणी समाचार, आगरा।
0: इस बीच भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल

0: नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। इस अवसर पर अमेरिका के विदेश मंत्री ने महिलाओं के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कल लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पर सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों, कोऑर्डिनेटर और जिला अध्यक्षों के साथ वर्ष 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की। इस दौरान बसपा प्रमुख ने उन्हें जीत का मंत्र देते हुए कहा कि प्रदेश में बसपा की एक बार फिर से सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ता अभी से जुट जाएं। उन्होंने कहा कि देश में चुनाव जिस प्रकार की नई नई चुनौतियों के बीच हो रहे हैं, उसको देखते हुए पार्टी को तैयारियों के हर स्तर पर और भी चुस्त दुरुस्त तथा मुस्तैद बनाने की जरूरत है। हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़ मुक्तेश्वर में आज से गंगा दशहरा पर्व का आयोजन हो रहा है। इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने कल डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर से मेला क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया। वहीं अमरोहा में भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर कल से ही रूट डायवर्जन लागू कर दिया गया। एक रिपोर्ट।
1: ज्येष्ठ गंगा दशहरा पर्व पर गंगा स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट पहुंच रहे हैं। उनकी सुविधा और सुरक्षा के लिए घाटों पर पीएससी फ्लड पीएससी फायर टेंडर्स के साथ एम्बुलेंस और डॉक्टरों की टीम तैनात की गई है। इसके साथ ही यातायात को सुचारू रखने के लिए रूट डायवर्जन लागू किया गया है। नदी में बैरिकेडिंग कराने के साथ गोताखोर और नाविक भी तैनात रहेंगे। मेला क्षेत्र की सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। 3 दिनों तक चलने वाले गंगा दशहरा मेले में श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह ठंडे पानी की आपूर्ति के लिए वाटर कैंपर और वाटर टैंकर की व्यवस्था की गई है। रविंद्र कुमार, समाचार, हापुड़।
0: मौसम विभाग ने प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का असर जारी रहने की चेतावनी दी है। लखनऊ स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि प्रदेश में गर्मी का प्रकोप बढ़ने की संभावना है।
2: जैसा कि

0: होने की संभावना है।
1: मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिन के समय कुछ स्थानों पर कल तक के लिए भीषण लू का रेड अलर्ट भी जारी किया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की। प्रत्येक विकास खंड स्तर पर साप्ताहिक चौपाल आयोजित करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने भीषण गर्मी और बढ़ती बिजली की मांग के बीच प्रदेश में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। कहा, हर उपभोक्ता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर की चर्चा। ताजमहल देखने आज आगरा जाएंगे अमेरिकी विदेश मंत्री। और प्रदेश में अभी और बढ़ेगा गर्मी का प्रकोप, पूर्वी जिलों के लिए भीषण लू का रेड अलर्ट जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए, वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान, सड़क पार करवाएं, करें बुजुर्गों की मदद, अंदर से अच्छा लगेगा भले ही लगे थोड़ा वक्त। यातायात नियमों का करें पालन, कभी ना करें उनका उल्लंघन। यातायात सुरक्षा है अति आवश्यक, यही बने आपकी रक्षक।

0: जब भी आप चलाएं कोई वाहन ध्यान रखें, करें नियमों का पालन।
1: और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:31 हो चुके हैं। आप आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश।
2: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
3: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा आपका सच्चा हम सफर।
6: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
5: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है, घर घर जन जन तक।
6: आकाशवाणी अयोध्या FM जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
5: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुँचाए आपका ब्रांड।
6: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
5: चले आएं आकाशवाणी अयोध्या, बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग,
6: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
5: ayodhyaakashwani@gmail.com।
7: शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
1: अमृत कलश में आइए सुनते हैं ये पहला भजन अनुराधा पोटवाल की आवाज में।

0: ये है आपकी अपनी आकाशवाणी। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, जन जन की सेवा में शिक्षा और मनोरंजन के लिए सनसनी नहीं तथ्य के लिए, लोकप्रियता और सत्य के लिए प्रसारण के गौरवपूर्ण इतिहास के 90 वर्ष में प्रवेश कर चुकी है आकाशवाणी।
1: ये तपती धूप सिर्फ हमें ही नहीं सताती, जरा सोचिए उन बेजुबान पंछियों के बारे में जिनका गला सूख रहा है लेकिन वो पानी मांग नहीं सकते।
2: और वो सड़क पर रहने वाले जानवर जो छांव और एक घूंट पानी की तलाश में मीलों भटकते हैं।
1: इस भीषण गर्मी में इंसानियत का धर्म निभाएं, अपनी छत, बालकनी या घर के बाहर एक मिट्टी के बर्तन में साफ पानी जरूर रखें।
2: पंछियों के लिए पानी के साथ थोड़ा दाना भी रखें और हो सके किसी छायादार जगह पर पानी की व्यवस्था करें।
1: ध्यान रहे, मिट्टी का बर्तन सबसे अच्छा है क्योंकि इसमें पानी ठंडा रहता है, बस रोज पानी बदलना ना भूलें।
2: आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की जान बचा सकता है।
1: इस गर्मी प्यास को हराएं, इंसानियत का फर्ज निभाएं।
3: आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अमृत कलश, और अब आइए सुनते हैं अगला भजन शंकर महादेवन की आवाज में।

0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। सुबह के 8 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, जिसे हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली CEUT स्नातक परीक्षा 2026 से स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से लड़ने के लिए तत्पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत उन पर विश्वास कर सकता है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े प्रशंसक हैं। IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। दो पद्म विभूषण

0: छह पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 86 अलंकरण आज दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे।
1: इस वर्ष भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं, जिसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, जन सेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आकाशवाणी से पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। कार्यक्रम सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में कल जनजातीय सांस्कृतिक समागम में कही।
2: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, UCC की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। UCC से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
0: गृह मंत्री ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने संदेश दिया था कि वन भूमि पर जनजातीय समुदाय का स्वामित्व होना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति कल्याण के लिए बजट बढ़ाने का काम किया है।
2: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1,00,000 से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर देवांशु पांडा को बधाई दी है। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में ये पिछले 2 सप्ताह में चौथी वृद्धि है। अब दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। NTA ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के

0: अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा।
2: इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स,
3: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त ना करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को ईरान के साथ किसी समझौते में जल्दबाजी नहीं करने को कहा है। 3 महीने से जारी संघर्ष में अमेरिकी प्रशासन ने फिलहाल किसी बड़े समझौते की संभावना से इनकार किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन के अंतर्गत ईरान के साथ किसी भी संभावित समझौते में कोई वित्तीय छूट नहीं दी जाएगी।
3: मीडिया के अनुसार विचाराधीन समझौते में 60 दिन के लिए युद्ध विराम बढ़ाना, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आगे की बातचीत शामिल है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर रिपब्लिकन पार्टी में भी मतभेद हैं। कुछ का कहना है कि प्रस्ताव ईरान के प्रति बहुत नरम रुख अपनाता है। सीनेटर ट्रेड क्रूज ने इसे एक बड़ी गलती बताया है, जबकि सीनेट सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष रोजर विकर ने कहा कि 60 दिन का युद्ध विराम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की उपलब्धियों को निरर्थक कर देगा। विदेश मामलों की समिति के प्रतिनिधि माइक लॉलर ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन ईरान को बातचीत करने के लिए विवश करने में सफल रहा है। अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर व्यापक हमले शुरू किए थे। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: 5 दिन की वार्षिक हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत सहित पूरे विश्व से मुस्लिम समुदाय के 10,60,000 से अधिक लोग मक्का से हज यात्रा शुरू करेंगे और सऊदी अरब के मीना में एकत्र होंगे। इस वर्ष हज में भारत से लगभग 1,75,000 जायरीन भाग ले रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कई भागों के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में भी भीषण गर्मी का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के गांगी क्षेत्र में गर्मी और उमस रहेगी। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में गरज के साथ आंधी और वर्षा का अनुमान है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कोलकाता में कल दिल्ली कैपिटल्स के 204 रन के लक्ष्य के जवाब में कोलकाता की टीम 163 रन पर सिमट गई। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। एक अन्य मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। पहले क्वालिफायर मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद मुकेश। भारत और अमेरिका

0: की विदेश मंत्रियों की बैठक पर हिंदुस्तान की सुर्खी है, हुर्मुज सबके लिए खुला रहे। विदेश मंत्री जयशंकर और मार्को रूबियो ने बैठक के बाद जताई सहमति। पत्र के अनुसार ईरान बोला, नियंत्रण हमारा ही रहेगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार कड़े वीजा नियम पर यूएस ने कहा, भारत टारगेट नहीं। जनसत्ता लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौता को जल्द अंतिम रूप मिलेगा। पंजाब केसरी ने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से दिया है, 60 दिन के सीज फायर पर लगभग सहमति। हुर्मुज जल डमरू मध्य खोला जाएगा। ईरान यूरेनियम प्रोग्राम छोड़ने को तैयार। फिजिशियन बोले, हम परमाणु हथियार नहीं चाहते। नवभारत टाइम्स ने सबसे बड़ी राहत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, अमेरिका और ईरान के बीच हुर्मुज खोलने के लिए सैद्धांतिक सहमति बनना पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी राहत है। हालांकि ईरान के पास मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम समेत कुछ संवेदनशील मुद्दों पर अभी सहमति नहीं पाई है। फिर भी संकेत बताते हैं कि दोनों पक्ष इस बार मामले को सुलझाने के लिए गंभीर हैं। लोकसत्ता ने ऐतिहासिक जीत शीर्षक से लिखा है, पश्चिम बंगाल में ममता का आखिरी किला ढहा, पालता में भाजपा की 1,00,000 वोटों से विजय। दैनिक जागरण ने घुसपैठियों की वापसी शीर्षक से लिखा है, ये अच्छा है कि पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार पहले दिन से ही राज्य के हालात सुधारने वाले ठोस फैसले लगातार ले रही है। ऐसे समय की मांग भी है, क्योंकि ममता बनर्जी ने 15 साल के शासन में राज्य को पटरी से उतारने का काम किया था। देशबंधु की सुर्खी है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन विस्फोट, 30 की मौत, 100 से अधिक घायल। प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन BLA ने ली हमले की जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने विडंबना शीर्षक से लिखा है, फीस से ज्यादा स्कूल आने जाने और किताब यूनिफॉर्म का खर्च, कई राज्यों में स्कूल ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा बोझ। आंकड़े बता रहे हैं कहां है सुधार की जरूरत। दैनिक भास्कर ने CBSE द्वारा री एवल्यूशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 मई करने की खबर मुख्य पृष्ठ पर दी है। पत्र के अनुसार स्कैन कॉपी आने के बाद 2 दिन और मिलेंगे। अमर उजाला की सुर्खी है, नौतपा आज से शुरू, कई राज्यों में पारा 46 डिग्री के पार, शुक्रवार तक राहत नहीं। उत्तर प्रदेश में लू और आंधी की दोहरी मार, 46.8 डिग्री के साथ बांदा सबसे गर्म।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली CUET स्नातक परीक्षा 2026 स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से मुकाबले के लिए तत्पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े प्रशंसक हैं और भारत उन पर पूरी तरह विश्वास कर सकता है। और IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM और न्यूज ऑन IR ऐप पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम।
3: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
4: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
5: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
4: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
2: सुर संगम में आइए सुनते हैं ये पहली गजल लता मंगेशकर की आवाज में।

की आग है, प्रेम की अग्नि, लव एट फर्स्ट साइट, उसके बाद

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 एफएम और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। सुबह के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या।
1: प्रणाम अयोध्या। अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: आपके संदेश
3: संदेश से आते हैं,
2: आपके गीत
3: मैं ये गीत सुनाता हूँ।
2: आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम में अपनी पसंद के फिल्मी गाने आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 9 बजे से। फरमाइश भेजते समय सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए ASAG लिखें, फिर स्पेस देकर फिल्म का नाम, गीत के बोल, प्लेबैक सिंगर्स के नाम, अपने नाम और जिले का नाम लिखकर भेज दें आकाशवाणी अयोध्या के व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर।
4: क्या आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद, सेवाएं या संदेश पहुंचे अयोध्या के हर घर तक? तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह

0: जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या धारा रोड बेगमगंज गढ़ैया अयोध्या सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 के बीच। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com
1: कार्यक्रम मंगनामा होए वाला है का खास।
2: अरे हाँ हाँ सखी बिल्कुल सुनत है। अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
1: हाँ जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ कह सकत हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
2: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
3: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
4: स्वागत करते हैं अपने सभी श्रोताओं का आपके अपने कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या में और आज आपके साथ है आपकी दोस्त प्रियंका और आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद रेडियो स्टेशन आकाशवाणी अयोध्या। भाई आज का दिन बहुत बहुत स्पेशल है खासकर उन लोगों के लिए जिनकी सुबह की शुरुआत और रात का अंत सिर्फ एक ही शब्द से होता है और वो है फुटबॉल। जी हाँ आज यानी 25 मई को पूरी दुनिया मना रही है विश्व फुटबॉल दिवस। आपको जानकर हैरानी होगी कि फुटबॉल के दीवाने तो सदियों से हैं लेकिन आधिकारिक तौर पर इस दिन को मनाने की शुरुआत 2024 में संयुक्त राष्ट्र यानी UN ने की थी और इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट है। दरअसल 1924 में पेरिस में हुए ओलंपिक खेलों के दौरान इतिहास में पहली बार सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। इसलिए उसी ऐतिहासिक पल की 100वीं वर्षगांठ यानी सेंचुरी को याद करते हुए UN ने 25 मई को ये खास दिन घोषित किया। वैसे दोस्तों फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं है, ये तो एक इमोशन है, एक ग्लोबल लैंग्वेज है जिसे समझने के लिए किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती, चाहे वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तूफानी स्पीड हो, लियोनेल मेसी की जादुई ड्रिबल हो या फिर हमारे अपने सुनील छेत्री का मैदान पर वो कमाल का जज्बा। दोस्तों ये खेल सरहदों को मिटाकर लोगों को आपस में जोड़ता है। इस खेल की खूबसूरती यही है कि इसके लिए आपको कोई महंगे साजो सामान की जरूरत नहीं होती, बस एक गेंद, थोड़े से दोस्त और एक खुला मैदान और आपकी अपनी दुनिया का फीफा वर्ल्ड कप शुरू। तो भाई देर किस बात की है, आज विश्व फुटबॉल दिवस के इस खास मौके पर अपने बचपन के दिनों को याद करिए, उस पुरानी फुटबॉल की धूल झाड़िए और अपने दोस्तों के साथ निकल जाइए मैदान में एक गोल दागने के लिए। दोस्तों एक मजेदार बात यह है कि हम अक्सर सोचते हैं कि फुटबॉल का क्रेज सिर्फ यूरोप और लैटिन अमेरिका में है, लेकिन सच तो यह है कि हमारी इंडिया भी इस दीवानगी में किसी से भी पीछे नहीं है। कोलकाता का कोलकाता डर्बी मैच हो, केरल की गलियों में सजे कतर ब्राजील के बड़े बड़े कटआउट्स हो या फिर नेहरू कप के वो सुनहरे दिन, भारत के रग रग में फुटबॉल दौड़ता है। दोस्तों खेलों के वैश्विक स्तर पर शांति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी इसका अहम योगदान रहा है। फुटबॉल एक प्रमुख वैश्विक खेल होने के नाते एक अद्वितीय स्थान रखता है। महज मनोरंजन से परे ये एक सार्वभौमिक भाषा है जिसे सभी उम्र के लोग बोलते हैं, जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक सीमाओं से परे है। ये साझा जुनून समुदाय और राष्ट्रीय गौरव की भावना को बढ़ावा देता है। दोस्तों फुटबॉल की व्यापक लोकप्रियता और सुलभता इसे स्वास्थ्य और खुशहाली को बढ़ावा देने का एक शक्तिशाली साधन बनाती है। साथ ही मैदान पर और मैदान के बाहर लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में भी काम करता है। इसके अलावा फुटबॉल सामाजिक समावेश के लिए उत्प्रेरक का काम करता है, एकता को

बढ़ावा देता है और विभिन्न समुदायों के बीच बाधाओं को दूर करता है। ये एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोग आपसी समझ, सहिष्णुता, सम्मान और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए एकत्रित होते हैं। दोस्तों, फुटबॉल खेलने से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है बल्कि टीम भावना, नेतृत्व और अनुशासन जैसे गुण भी विकसित होते हैं। दोस्तों, आज का दिन सिर्फ मेसी, रोनाल्डो या एम्बॉम्पे की तारीफ करने का नहीं है बल्कि हमारे देश के उन लाखों बच्चों और लोकल हीरोज को सलाम करने का है जो हर शाम फटे जूते पहनकर भी मैदान पर जी जान से पसीना बहाते हैं, क्योंकि फुटबॉल हमें सिखाता है कि चाहे जिंदगी में कितने भी फाउल क्यों ना हो जाएं, अगर टीम वर्क और हौसला साथ हो तो आखिरी सेकंड्स में भी गोल किया जा सकता है। तो दोस्तों, उठिए, खेल के जज्बे को जिए और कहिए हैप्पी वर्ल्ड फुटबॉल डे।

0: श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं प्रिया मिश्रा की वार्ता, जिसका विषय है महिलाओं में स्वास्थ्य और पोषक आज की आवश्यकता।
1: आज के समय में महिलाओं का स्वास्थ्य और उचित पोषण केवल व्यक्तिगत विषय नहीं बल्कि परिवार और समाज की प्रगति का आधार है। बदलती जीवन शैली, काम का बढ़ता तनाव, अनियमित खानपान और शारीरिक गतिविधि की कमी के कारण महिलाओं में कई स्वास्थ्य समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। इसलिए महिलाओं के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक हो गया है। महिलाएं परिवार की देखभाल के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक जिम्मेदारियां भी निभाती हैं। यदि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आने वाली पीढ़ियां भी स्वस्थ होंगी। महिलाओं के स्वास्थ्य का संबंध सीधे मात्र स्वास्थ्य बच्चों के विकास और परिवार की खुशहाली से जुड़ा होता है। महिलाओं में प्रमुख स्वास्थ्य समस्याएं जैसे एनीमिया, खून की कमी, कैल्शियम की कमी और हड्डियों की कमजोरी, मोटापा और मधुमेह, हार्मोनल असंतुलन, तनाव और अवसाद, गर्भावस्था से जुड़ी समस्याएं। महिलाओं में एनीमिया एक आम समस्या है, जिससे निपटने के लिए आयरन युक्त आहार, हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें बहुत जरूरी हैं। हड्डियों का स्वास्थ्य रजोनिवृत्त के बाद महिलाओं में हड्डियों का कमजोर होने का खतरा बढ़ जाता है, जिसके लिए कैल्शियम और विटामिन डी अत्यंत आवश्यक है। हृदय और चयापचय स्वास्थ्य सही पोषण हृदय रोगों, मधुमेह, कैंसर जैसी गैर संक्रामक बीमारियों के जोखिम को कम करता है। मानसिक और भावनात्मक कल्याण तनाव और भावनात्मक खानपान से बचने के लिए पौष्टिक भोजन, योग और जीवन शैली में बदलाव जरूरी है। संतुलित आहार के प्रमुख तत्व आयरन, पालक, गुड़, चने, मेथी आदि। संतुलित पोषण और स्वस्थ आहार शरीर को कई तरह से लाभ पहुंचाता है। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए फिटनेस और पोषण बेहद जरूरी है, लेकिन व्यस्त जीवन शैली के कारण कई महिलाएं अक्सर इन्हें नज़रअंदाज कर देती हैं। अगर आपको अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए सहायता की ज़रूरत है तो डॉक्टर आपको फिटनेस और पोषण संबंधी सलाह दे सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पोषण और स्वस्थ जीवन शैली की ओर बढ़ने के लिए आसान कदम उठाए जा सकते हैं और अपनी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। महिलाओं को स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से विटामिन बी, विटामिन बी 12, विटामिन डी, कैल्शियम, लोहा को संतुलित आहार से आवश्यक पोषण तत्व प्राप्त करने चाहिए और अपने आहार में फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दूध और कम वसा वाले प्रोटीन का मिश्रण शामिल करने का प्रयास करना चाहिए। इन पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी भी सप्लीमेंट का सेवन करने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। शरीर के सही कामकाज के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है। यह महिलाओं के स्वास्थ्य को बनाए रखने में अहम भूमिका है। CDC प्रति सप्ताह 150 मिनट की मध्यम तीव्रता वाली शारीरिक गतिविधियों की सलाह देता है। यह प्रतिदिन 20 मिनट से थोड़ा अधिक होता है। चूंकि महिलाएं बहुत व्यस्त जीवन जीती हैं, इसलिए उन्हें ऐसी गतिविधियां ढूंढने का प्रयास करना चाहिए जिनका वे आनंद ले सकें और उन्हें वे आसानी से अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकें। किसी महिला के लिए व्यायाम की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वह व्यायाम

0: मनोरंजक हो और तनाव कम करे। किसी भी महिला को अपने दैनिक कार्य करने, बीमारियों की रोकथाम तथा सुरक्षित व स्वस्थ प्रसव के लिए अच्छे भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी पूरे संसार में किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या की तुलना में महिलाओं को कुपोषण का सबसे अधिक सामना करना पड़ता है। इसके कारण थकावट, कमजोरी और बुरा स्वास्थ्य हो सकता है। विश्व के अधिकांश भागों की तरह भारत में भी अधिकतर लोग लगभग हर भोजन में कोई सस्ता मुख्य खाद्य पदार्थ खाते हैं। क्षेत्र पर निर्भर करते हुए या गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा या आलू हो सकता है। यह मुख्य खाद्य पदार्थ ही शरीर की अधिकतर दैनिक आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, लेकिन केवल यह मुख्य खाद्य पदार्थ अकेले ही व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। अन्य सहायक खाद्य पदार्थों की जैसे प्रोटीन, विटामिन व खनिज तत्व तथा वसा और चीनी आदि की ऊर्जा प्राप्ति के लिए भी आवश्यकता पड़ती है। एक महिला को स्वस्थ रहने के लिए सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, फलियां व मटर, अंडे, मांस, मुर्गे की मीट, रागी, बाजरा व लौह तत्व, फोलिक एसिड, कैल्शियम, आयोडीन तथा विटामिन ए है। उत्तम स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए महिलाओं को अपने जीवन में विभिन्न चरणों में अपनी अनूठी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को समझना और पूरा करना चाहिए। आवश्यक पोषण तत्वों से भरपूर संतुलित आहार शारीरिक स्वास्थ्य का समर्थन करता है और मानसिक तंदुरुस्ती को बढ़ाता है। महिलाओं को व्यक्तिगत आहार संबंधी सलाह के लिए नियमित रूप से पोषण और आहार विज्ञान से परामर्श करना भी उचित है। व्यायाम करना या योग या पिलाटिस जैसी क्लास लेना फिटनेस में सामाजिक पहलू जोड़ सकता है। विभिन्न प्रकार के व्यायाम जरूर करें, क्योंकि गतिविधि में विविधता से प्रभावशीलता बढ़ती है और बोरियत व चोट का खतरा कम होता है। नींद सेहत का एक अहम हिस्सा है, जिसे कई लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। महिला स्वास्थ्य कार्यालय के अनुसार वयस्कों को रात में कम से कम 7 से 9 घंटे की नींद जरूरी होती है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं महिलाओं को अच्छे स्वास्थ्य और पोषण की आवश्यकता अत्यधिक होती है। उनको घर से लेकर बाहर तक कई प्रकार की जिम्मेदारियों को संभालना होता है, इसलिए उनका शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ही आवश्यक है। जो विशिष्ट स्वास्थ्य चिंताओं को दूर करने और स्वस्थ जीवन शैली को बनाए रखने में महत्वपूर्ण हो सकता है।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे महिलाओं में स्वास्थ्य और पोषण आज की आवश्यकता के बारे में, और इस विषय पर हमें जानकारी दे रही थी प्रिया मिश्रा।
2: अब आपके शहर में भरोसेमंद इलाज,
3: कैंसर, हृदय, डायलिसिस, हड्डी और ENT का इलाज आयुष्मान कार्ड द्वारा मुफ्त,
2: फ्री एम्बुलेंस की सुविधा,
3: झुनझुनवाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायबरेली रोड, अयोध्या। कॉल करें 9044-20-70-70।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
5: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
4: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक, हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

पत्रों से। मिशन ग्रीन अयोध्या फाउंडेशन के तत्वाधान में रविवार को गुप्तार घाट चक्रहरि तीर्थ हरि मंदिर से घाटों के किनारे लगभग 2 किलोमीटर तक व्यापक सरयू स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान का उद्देश्य मां सरयू की स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण एवं जन जागरूकता को बढ़ावा देना है। अयोध्या में किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज में 169 लाख रुपए की लागत से एक मॉडल फ्लोरिकल्चर यूनिट स्थापित की जा रही है, जिससे किसानों को फूलों के बीज कटिंग और प्रशिक्षण मिलेंगे। अयोध्या में महापौर की स्वच्छता पदयात्रा घर घर जाकर किया जागरूक, बोले आधा घंटा सफाई से टॉप 10 में बनेगा शहर। गंगा दशहरा पर राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा उत्सव, राम परिवार का होगा दिव्य अभिषेक, साध्वी रितंबरा करेंगी ध्वजारोहण। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में राम परिवार पर कोटे के 6 मंदिरों और शेषावतार के में स्थापित विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ को लेकर भव्य आयोजन की तैयारियां तेज हो गई है। मुख्यमंत्री आरोग्य मेले में 106 मरीजों की जांच, गर्भवती महिलाओं को मिला विशेष परामर्श और उपचार। उत्तर प्रदेश दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग ने राज्य स्तरीय पुरस्कारों के लिए आवेदन मांगे। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जून है। नाका और सिविल लाइन में 12 घंटे तक बिजली गुल, रुदौली में रात में कई घंटे की कटौती। अयोध्या में 17.72 करोड़ रुपए की लागत से लवकुश पार्क का निर्माण किया जाएगा, जो कचरे से कला थीम पर आधारित होगा। ये पार्क स्कैप धातु की मूर्तियों और इंटरैक्टिव इंस्टॉलटोन के माध्यम से रामायण की पौराणिक कथाओं को जीवंत करेगा, जिससे पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा मिलेगा। अयोध्या में 43.5 डिग्री पहुंचा तापमान, 26 मई तक भीषण गर्मी से नहीं मिलेगी राहत। अयोध्या में तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सीजन का उच्चतम स्तर है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है। रेलवे ने बंद किया वर्षों पुराना रास्ता, 30,000 की आबादी परेशान, 10 किलोमीटर घूमकर जाने को विवश हैं किसान, स्कूल जाने वाले बच्चे भी हैं परेशान।

0: प्रणाम अयोध्या। श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या 101.9 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजे हैं। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत।
1: हरियाई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
2: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
1: हरियाई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
2: फोन नंबर 91-61-877-347।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर

0: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर
1: आकाशवाणी अयोध्या।
2: घर घर जन जन तक दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन।
3: जग घूमे थारे जैसा ना कोई।
0: यह है आपका अपना FM रेडियो चैनल 101.9
1: आकाशवाणी अयोध्या,
0: जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
2: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं या हमें ईमेल करें अयोध्या आकाशवाणी @

0: @gmail.com पर
1: AYODHYAKASHVANI@gmail.com। शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
2: स्वागत करते हैं अपने सभी श्रोताओं का व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत के कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत में, जिसे लेकर आज आपके साथ है आपकी रेडियो दोस्त प्रियंका। और ये पहली व्हाट्सएप फरमाइश हमारे पास आई है मुजफ्फरपुर बिहार से, राजू कुमार, बिट्टू कुमार, मुन्नी कुमारी, चांदनी कुमारी और नंदनी कुमारी की। आप सभी ने फरमाइश की है जीने की राह फिल्म से गीत सुनने की, जिसमें आवाज दी है मोहम्मद रफी ने और आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से पिरोया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नाहवकर, निर्मला नाहवकर, विशाल नाहवकर की, और मलकापुर से फरमाइश की है नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे और आशीष मोहरकर ने। आप सभी सुनना चाहते हैं मुकेश की आवाज में तीसरी कसम फिल्म का गीत। शैलेंद्र के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने। तो आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर ये प्यारा सा गीत।

0: है तार टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: हेलो
2: हेलो सुनो टेलीफोन नंबर।
3: माय नंबर इज
4: 7376804090। लाइव हेलो अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और

0: दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090।
1: आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइशी कार्यक्रम, आपके संदेश आपके गीत। अगली व्हाट्सएप फरमाइश हम तक पहुंची है कृष्ण पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा और सीटी दीवाना की। साथ ही पंखा रोड जनकपुरी से ये फरमाइश हमें लिख भेजी है पिंटू दीवाना रजिंदर सिंह ओबराय ने। आप सभी सुनना चाहते हैं मोहरा फिल्म का गीत पंकज उदास और साधना सरगम की आवाज में। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से सजाया है विजू शाह ने। तो आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर मोहरा फिल्म का ये गीत।

दोस्तों अगली व्हाट्सएप फरमाइश हमारे पास आई है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से। रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरु कीरत और गुरशब्द सिंह राहुल की। आप सभी सुनना चाहते हैं दीवाना फिल्म का गीत, जिसे आवाज दी है कुमार सानू ने। संगीत गीत के बोल हैं समीर के और संगीत से पिरोया है नदीम श्रवण ने।

0: वर्क फ्रॉम होम हाई सैलरी बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों अगली व्हाट्सएप फरमाइश हमें लिख भेजिए है फाजिल का पंजाब से। भूषण खेड़ा, विजू खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाडी शालनी, टिवांशी वाणी, आरबी खेड़ा, जीवन सिंह बुक और आपका समस्त खेड़ा परिवार। आप सभी सुनना चाहते हैं रंग फिल्म का गीत जिसमें आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की। समीर के लिखे गीत को संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने।

0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। सुबह के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या।
1: वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
3: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
4: आकाशवाणी अयोध्या लाया है आपके लिए एक सुनहरा मौका।
5: भेजिए फेसबुक पेज पर अपने सुविचार, शायरी, कोट्स
4: या वो लाइंस जो हो आपको पसंद,
5: और साथ में अपना नाम, पता
4: और वो गीत जो आप सुनना चाहते हैं।
5: फेसबुक पेज पर कार्यक्रम कुछ तुमने कहा के कमेंट बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए अपनी पसंद का गीत, अपने विचार।
2: तो प्रोग्राम कुछ तुमने कहा सोमवार से शुक्रवार तक सुनिए दिन में 1 से 2 तक, और शनिवार रविवार को दिन में 1:30 से 2 के बीच।

आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोकगीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन

0: 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
1: हेलो अयोध्या में हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत है और देखते हैं पहले कॉलर कौन है जो लाइन पर बन चुके हैं। हेलो
2: हेलो हाँ मैम नमस्ते।
1: नमस्ते, क्या नाम है, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
2: मैम मेरा रितु राजपूत,
1: ऋतुराज जी बात कर रही हैं अयोध्या से। ऋतु, कौन सा गाना आप सुनेंगी?
2: हम
1: चलिए हम आपको गाना सुनवा देंगे। ये बताइए कि इस समय गर्मी बहुत पड़ रही है तो क्या कैसे ख्याल रखती हैं अपना?
2: मैम इतनी गर्मी पड़ रही है मतलब कि घर पर ही रहें, अगर बहुत ज़्यादा काम बहुत ज़रूरी काम हो जाए नहीं तो फिर घर पर ही रहें, छांव में रहें और पानी को पिएं, गर्मी का यही ख्याल है।
1: बहुत अच्छी बात है कि आप दूसरों को भी बता रही हैं और खुद भी अपना ख्याल रखती हैं। तो ऋतु हम आपकी पसंद का गाना आपको सुनवा दें जल्दी से। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते।

0: आइए देखते हैं हमारे कौन से कॉलर हैं जो लाइन पर आ चुके हैं। हेलो।
1: हेलो मैडम, नमस्ते।
0: नमस्ते, क्या नाम है, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: हम किसी बाइक वाले हरिपुर जलालाबाद से बोली का है।
0: अच्छा, नाम क्या है आपका?
1: वही अमान नाम है, वही है किसी।
0: अच्छा अच्छा, कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे सबसे पहले ये बता दीजिए।
1: कुली नंबर वन का।
0: कुली नंबर वन का कौन सा गाना?
1: जेट की तुम्हारी काम के लिए।
0: अच्छा अच्छा, और ये बताइए कि इस समय क्या कर रहे हैं आप?
1: इस समय तो हम बैठे हैं, पंखा हवा ले रहे हैं।
0: पंखे की हवा मिल रही है? और जब लाइट,
1: अरे मिल रही है लेकिन बहुत गर्म हवा चल रही है।
0: जब लाइट चली जाती है तो कितना बुरा लगता है ना?
1: नहीं, हमारे बगल नहारा है, नहारा कूद जाए।
0: ये तो बहुत अच्छा है कि जब भी गर्मी लगे और नदी में नहाने का मजा ही अलग है, ठंडे ठंडे पानी में।
1: नदी नहीं, नहरा है।
0: वही नदी और
1: नदी का बच्चा।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपसे जानने को मिला नदी का बच्चा। आपकी फिल्म जो है मैंने निकाल ली है गाना, तो मैं प्ले कर दूं? चलिए, पंखे की हवा लेते लेते अपनी पसंद का ये गाना सुनिए, जेठ की दोपहरिया।

0: भाई देखते हैं हमारे कोई श्रोता है जो लाइन पर आ चुके हैं। हेलो
1: जी मैम।
0: जी कहाँ से बात कर
1: हेलो
0: रही हैं, क्या नाम है आपका?
1: मैम मेरा नाम दिव्या है, मैं शहादतगंज अयोध्या से बोल रही हूँ।
0: दिव्या शहादतगंज से बात कर रही हैं, कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगी आप?
1: मैम धुरंधर
0: धुरंधर धुरंधर टू का गाना सुनेंगी। दिव्या क्या करती हैं आप?
1: मैम पढ़ाई कंप्लीट हो गई, घर में ही रहते हैं इस समय।
0: अच्छा, कुछ और नहीं करती आप? क्या कुछ सोचा नहीं है, कुछ करने का मन नहीं करता है?
1: नहीं मैम, सोचा था आईटीआई किया था, कुछ सीटीआई करने को सोचा था, गए भी थे सर, मम्मी बोली कहीं वापस आ जा, बहुत दूर है इंदौर।
0: अच्छा, तो अपने पास के शहर में ही कोई चीज़ देख लीजिए आप जो आपके फ्यूचर के लिए बेटर हो, क्योंकि जो है घर में बैठे रहना तो बहुत अच्छी बात नहीं है।
1: जी मैम,
0: घर के काम के साथ साथ हमें बाहर के काम भी आने चाहिए।
1: जी
0: ठीक है दिव्या, हम आपकी पसंद का आपको गीत सुनवा दे रहे हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
1: वैसे मैम आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा।
0: मुझे भी
1: बात हो रही है।
0: मुझे भी बात करके बहुत अच्छा लगा दिव्या। चलिए अपनी पसंद का ये गीत सुनिए।
1: थैंक यू मैम।
0: वेलकम।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की।
4: नहीं अछूता हो जिस
3: महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। मन की बात। आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
5: आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो अयोध्या, और नंबर जल्दी से मिलाइए 7376804090 और जुड़ जाइए इस कार्यक्रम में। हेलो
6: हेलो, नमस्ते।
5: नमस्ते, क्या नाम है आपका?
6: खुशबू।
5: खुशबू नाम है। खुशबू कहाँ से बात कर रही हैं आप?
6: अयोध्या।
5: अयोध्या से। सबसे पहले बता दीजिए कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगी आप?
6: जिसका घर जैसा बड़ी।
5: अच्छा, जिनका घर हो है अयोध्या जैसा। खुशबू क्या करती हैं आप?
6: पढ़ाई करती हूं।
5: किस क्लास में पढ़ती हैं?
6: 10th
5: क्लास में। तो फिर आपको बहुत मेहनत करनी होगी, तो समय कैसे निकालती हैं आप पढ़ने के लिए? हमारे प्रोग्राम सुनती हैं?
6: हाँ।
5: और प्रोग्राम सुनते सुनते पढ़ाई का समय कैसे निकालती हैं आप?
6: रात में सुनते हैं प्रोग्राम।
5: अच्छा, और पढ़ाई किस समय करती हैं?
6: 7 बजे से 8-9 बजे तक।
5: चलिए, ये अच्छी बात है कि प्रोग्राम सुनने के साथ साथ आप पढ़ाई भी करती हैं, क्योंकि पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। तो खुशबू, हम आपकी आपने जो गाना पसंद किया है हम उसे प्ले कर देते हैं, और सुनिए अपनी पसंद का गाना। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
6: थैंक यू।

0: भाई दोस्तों, इस गीत को सुन के मन बहुत खुश हो जाता है कि हम अयोध्या वासी हैं। देखते हैं हमारे अयोध्या वासी कौन है जो जुड़ चुके हैं। हेलो
1: हेलो, राधे राधे।
0: राधे राधे सर, क्या नाम है, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: हम दयाराम श्री कोटसराय से बोल रहे हैं।
0: दयाराम जी कोटसराय से बात कर रहे हैं आप, कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे आप?
1: कुली का।
0: कुली का कौन सा गाना आपको सुनवा दें?
1: कोई भी गाना सुना दे।
0: कोई भी सुनवा दे। दया जी क्या करते हैं आप?
1: मिस्त्री है, राजवीर मिस्त्री है।
0: अच्छा, तो ये बताइए कि अभी क्या मौसम इतना, मतलब बहुत तेज धूप है, तो उसमें आपको काम करना पड़ता है, तो कैसे अपने आपको रख रखाव अपना कर पाते, ध्यान रख पाते हैं?
1: पानी वाली बराबर पिया करते हैं, नींबू उगार के सलाद में खीरा उरा खाते हैं, और मोड़े में मंगोछा बांध दिया तो मजबूरी ना, महात्मा गांधी है।
0: चलिए, बहुत अच्छी
1: है ना,
0: आकाशवाणी अयोध्या के प्रोग्राम भी सुनते हैं।
1: हाँ हाँ,
0: चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप अपना काम भी करते रहिए, और हाँ, हमारे जो अपनी पसंद का आपने गाना बताया है उसे भी सुनते रहिए। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: भाई हमारे एक श्रोता हैं जो और लाइन पर बन चुके हैं। हेलो।
1: हाँ नमस्ते मैडम, मैं अवधेश यादव मुंबई से बात कर रहा हूँ।
0: अवधेश जी आप मुंबई से बात करते हैं कर रहे हैं, और ये बताइए कि आप मुंबई के ही रहने वाले हैं या फिर यहाँ के निवासी हैं?
1: नहीं मैं निवासी हूँ।
0: अच्छा मिल्कीपुर में आप रहते हैं, अयोध्या के निवासी हैं। वहाँ पर क्या करते हैं? वहाँ पर जॉब करते हैं। और बताइए आपका घर कब आना होता है? बहुत दिन बाद समय मिलता है या कम कम दिनों पे आना हो जाता है?
1: नहीं नहीं मैडम, 4 महीने 5 महीने पे आता रहता हूँ। अभी फिलहाल मैं 10-12 दिन हुआ मुंबई आए
0: हुए। चलिए बहुत अच्छी बात है कि 3-4 महीने के बाद आप अपने घर आते रहते हैं। कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे आज आप?
1: पिक्चर का नाम है मैडम ये रात फिर ना आएगी, और गाने के बोल है मेरा प्यार वो है जो मरकर भी तुमको जुदा अपने गाँव से होने लगे।
0: क्या बात है। चलिए हम आपकी पसंद का गाना आपको जल्दी से सुनवा दें। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू।

0: हकीकत हमें।
1: भाई हमारे पास समय बहुत कम है, एक श्रोता है जो लाइन पर बने हुए हैं। हेलो।
2: हाँ मैडम नमस्ते।
1: नमस्ते सर, ज्यादा बात नहीं करेंगे, कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे, क्या नाम है आपका?
2: अर्जुन कुमार सोनकर, मोहल्ला छोटा रमना, देवकाली व्रत, अयोध्या।
1: अच्छा, कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे? ओके, चलिए हम आपको आपकी फिल्म का गाना सुनवा दे रहे हैं। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
2: धन्यवाद।

दोस्तों हेलो अयोध्या कार्यक्रम को आप तक सुचारू रूप से पहुंचाने में हमें कंट्रोल रूम से तकनीकी सहयोग दे रहे थे अश्वनी शुक्ला और राजकुमार वर्मा जी। श्रोताओं इसी गीत के साथ हेलो अयोध्या कार्यक्रम से दीजिए अनुमति अपनी दोस्त प्रियंका को। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। आकाशवाणी अयोध्या के कार्यक्रमों को 101.9 FM और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर सुनते रहिए। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों में।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या 101.9 FM पैंट और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT से आज की कड़ी।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार।
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल, गुरु शब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
0: जीवन में सवाल करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले मुश्किल से मिलते हैं। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नजरिए का इलाज आसान नहीं है।
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले और श्रोताओं के नाम हैं।
0: खैरागढ़ राज लालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे जी ने लिखा है,
2: आपका उमंग कार्यक्रम मुझे बेहद उपयोगी, ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद लगता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से नई नई जानकारी मिलती है, जो काफी लाभदायक सिद्ध हो रही है। साथ ही साथ गीत संगीत से कार्यक्रम की रोचकता बनी रहती है। आप सभी की अथक मेहनत, लगनशीलता और अनुपम प्रस्तुति को हम दिल से नमन करते हैं। इस कार्यक्रम का प्रसारण यूं ही बरकरार रहे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। गांव गणेश धाम परसूली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धर्मंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने लिखा है। सप्रेम अजीत साहेब और विमलेश मैडम जी, वंदगी जी। आगे लिखते हैं,
2: अजीत साहेब जी का कार्यक्रम आप दोनों के साथ शुरुआत होता है और बहुत शानदार रहता है। इस सप्ताह विमलेश मैडम कोई भी कार्यक्रम में नहीं आया। आप दोनों का वाणी विचार इस कार्यक्रम को और खूबसूरत बनाता है। आप दोनों का स्नेह श्रोताओं को मिलता रहे। 30 अप्रैल 2026 को एक टोकरी मिट्टी कहानी सुनने को मिला, बहुत प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद लगा। दिल से धन्यवाद।
0: आपको भी दिल से धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास जी का।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से साहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
0: और साथ ही साथ खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का संदेश हमें मिला है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, संदेश लगातार भेजने के लिए। आपसे निवेदन है, इसी प्रकार से जुड़े रहे।

0: ये हमारे और आपके उमंग कार्यक्रम से आइए अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है?
1: इसका उत्तर है, पीसा की मीनार इटली में स्थित है। इसकी नींव नरम और दलदली मिट्टी पर बनी हुई थी। इसकी मिट्टी कम गहरी है, जब इसे और ऊंचा बनाया गया तो ये धीरे धीरे तिरछी होनी शुरू हो गई।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। अधिकांश वर्षा वन भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में गर्मी बहुत पड़ने की वजह से वर्षा भी खूब होती है।
0: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था, अमेजन वर्षा वन के क्षेत्र में अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं?
1: अमेजन क्षेत्र में भारी वर्षा होने के कारण अक्सर अमेजन नदी अपना तटबंध बदलती रहती है, इसलिए निश्चित करना बहुत कठिन हो जाता है कि पुल कहां से कहां तक बनाया जाए।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, मातृवृक्ष किसे कहते हैं?
1: इसका उत्तर है साथियों, मातृवृक्ष उन पेड़ों को कहा जाता है जो बहुत पुराने और बड़े होते हैं। उनकी जड़ें जमीन पर दूर दूर तक फैली हुई होती हैं। वे छोटे पेड़ पौधों को अपनी जड़ों से पोषण देते हैं।
0: और श्रोताओं, आप सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों?
1: इसका उत्तर भी बड़ा अनोखा है साथियों। मैंग्रोव वनों के पेड़ों की पत्तियां खारे पानी के नमक को छान कर निकाल देती हैं और उन्हें मीठे पानी में बदल देती हैं, जिसके कारण वहां के पेड़ खारे पानी में भी जीवित रहते हैं। ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है।
0: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। जरूर बताइएगा कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है। तो आप सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है,
1: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
0: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें, इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: और श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है, शेर और चूहे की दोस्ती।
2: शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था, अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी।

0: जंगल के राजा हैं, मुझे छोड़ दीजिए। देखना एक दिन मैं आपके काम जरूर आऊंगा। हाँ छोड़ दीजिए।
1: मेरे काम आओगे? ये छोटा सा चूहा ये भला मेरे क्या काम आएगा? ठीक है ठीक है, जाओ तुम्हें आजाद किया, जाओ।
0: धन्यवाद महाराज, पर एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। हाँ मदद करूंगा।
2: शेर ने अपना पैर हटाया, चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया।

एक दिन शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। उस जाल में शेर फंस गया। वो जोर जोर से दहाड़ने लगा।

जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु

0: पक्षियों ने दहाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया।
1: ये कहां फंस गया मैं? अरे कोई तो मेरी मदद करो, मैं जाल में फंस गया हूं, निकालो मुझे यहां से।
0: हाँ, चूहा जरूर भागा भागा वहां आया।
2: अरे अरे महाराज, आप यहाँ? लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपको अभी इस जाल से आजाद कर देता हूँ।
0: वो अपने पहने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा। कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया।
1: धन्यवाद धन्यवाद मेरे नन्हे दोस्त, धन्यवाद
2: महाराज।
3: तो साथियों, सुना आपने, हम जिनसे आशा भी नहीं करते वे भी हमारे बहुत बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं, है ना? तो इसलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार बाबला कोचर, मुइनुल हसन नियाजी और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती।

0: शिक्षा, शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है
2: अर्देशीर बुड़जोड़जी तारापुर। ये कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता भारतीय सेना के जांबाज कर्नल अर्देशीर

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला वीर गाथा। इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर।
1: भारत भूमि की जितनी वंदना की जाए कम है। कुछ तो ऐसा जरूर है इसकी माटी में जो अनगिनत प्रतिभाओं, वीरांगनाओं, वीरों, कलाकारों, मेधावियों और योद्धाओं को पैदा करती है।
2: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत माता के सपूत और पराक्रमी सैन्य योद्धा अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर के बारे में, जिन्होंने सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने असीम शौर्य का परिचय दिया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में निर्णायक रूप से मोड़ दिया। अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर का जन्म 18 अगस्त 1923 को बंबई में हुआ था, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। अर्धशीर महान योद्धा रतनजीबा की वंश परंपरा में पैदा हुए थे। रतनजीबा महान राजा छत्रपति शिवाजी की सेना में सेना नायक थे।
1: उनके अतुल्य पराक्रम, शौर्य और श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन के सम्मान में स्वयं राजा शिवाजी द्वारा 100 गांवों की मनसबदारी दी गई थी। इन 100 गांवों में से एक था तारापोर, जहां रतनजीबा बस गए थे। इसी तारापोर गांव का नाम आगे चलकर उनके खानदान का उपनाम बन गया।
2: काल क्रम में तारापोर परिवार हैदराबाद में जा बसा। अर्धशीर यहीं बड़े हुए। सन 1940 में मैट्रिक पास करने के बाद वो हैदराबाद स्टेट आर्मी में शामिल हो गए। उन्हें प्यार से आदि पुकारा जाता था।
1: सेना में आते ही आदि ने अपूर्व साहस और निष्ठा का परिचय दिया। अपने सौम्य, मित्रवत और हंसमुख स्वभाव के कारण आदि समय के साथ साथ जवानों में बेहद लोकप्रिय थे। एक बार की बात है, उनकी यूनिट में हथगोला फेंकने का प्रशिक्षण चल रहा था।
3: जवानों,
4: जी सर,
3: हथगोला फेंकने के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। जितना अधिक अभ्यास आप करेंगे, उतना ही सटीक आपका निशाना होगा।
4: जी सर, हमने सुना है कि यदि हथगोले को ठीक से नहीं फेंका गया तो।
3: तुमने ठीक सुना है, यदि इसे ठीक से नहीं फेंका गया तो यह जानलेवा हो सकता है। अच्छा चलो, अब अभ्यास शुरू करते हैं।
5: जी सर।
3: ध्यान रहे, जब आप गोला फेंकते समय अपने हाथ को घुमाते हैं तो गोले को सही समय पर फेंकिए। चलो राम सिंह, तुमसे शुरू करते हैं।
5: जी जनाब।
3: हाथ गोला हाथ में लो।
5: ले लिया जनाब।
3: अब पिन रिलीज करो।
6: फेंको।
5: फेंको जनाब।
2: साथियों, हुआ ये था कि वो सैनिक ग्रेनेड ठीक से नहीं फेंक सका और ग्रेनेड वापस अभ्यास स्थल पर ही आ गिरा।
1: कि तभी आदि तत्काल उठे, बिजली किसी गति से उस ग्रेनेड के पास पहुंचे।
5: ये आदि क्या कर रहा है?
1: और उसे उठाकर सुरक्षित

0: दूरी पर फेंक दिया। हालांकि इसमें वो थोड़े घायल भी हुए।
1: वाह आदि, तुमने तो कमाल कर दिया।
2: तुमने साहस ना दिखाया होता तो शायद बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती आदि।
3: सही में
2: बहादुर सैनिक हो तुम।
4: घटना स्थल पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज भी उपस्थित थे। वो आदि की सजगता, बहादुरी और निर्णय कुशलता से बहुत प्रभावित हुए। अभ्यास सत्र के समाप्त होने पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज ने आदि को अपने कार्यालय में बुलवाया।
5: May I come in, sir?
1: Yes, come in.
5: Sir,
1: जवान, मैं तुम्हारी बहादुरी पर तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूँ। तुम एक सच्चे सिपाही हो।
5: सर,
1: वेल डन एडी, तुम बहुत आगे जाओगे। ट्रेनिंग में खूब मन लगा।
5: थैंक यू सर। सर, क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ?
1: हाँ हाँ, कहो।
5: मुझे लगता है कि किसी आर्मर्ड रेजिमेंट में मैं और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा।
1: ओके ओके, तुम हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स ज्वाइन करने की तैयारी करो। शाम तक तुम्हें ऑर्डर्स मिल जाएंगे।
5: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
1: गो अहेड यंग मैन।
5: सर,
4: दूसरे ही दिन आदि का तबादला हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स में हो गया। ये उनके लिए ऐसा था मानो कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया हो। अपनी कर्मठता, अनुशासन प्रियता और विनम्रता के कारण वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंच गए। रेजिमेंट में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नाम से जाना जाता था।
0: भारत आजाद हो गया और हैदराबाद राज्य का भारतीय संघ में विलय हो गया। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर की पोस्टिंग पूना हॉर्स रेजिमेंट में हो गई। पूना हॉर्स रेजिमेंट को उसके रण कौशल और बहादुरी के लिए बड़े सम्मान से जाना जाता है।
4: और फिर आया सन 1965। भारत की पश्चिमी सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे। 27 अगस्त 1965 को भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। पूना हॉर्स रेजिमेंट को फौरन भारत पाकिस्तान सीमा की ओर कूच करने का आदेश दिया गया।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर को निर्देश दिया गया कि वो पंजाब के सियालकोट सेक्टर के चौविंडा इलाके पर नियंत्रण करें। 13 सितंबर 1965 को भीषण युद्ध शुरू हुआ।
6: साथियों, ये खास तौर पर ध्यान रखा जाए कि इस युद्ध में हमारी ओर से जन सामान्य को किसी तरह की हानि न पहुंचे। ये युद्ध दो सेनाओं के बीच में है।
7: जी सर, हम पूरा ध्यान रखेंगे।
6: हमें अचानक हमला करना है ताकि दुश्मन को तैयार होने का भी मौका न मिले। आज रात होते ही हमारे सारे टैंक बिना कहीं रुके उनकी सीमा के अंदर घुसेंगे। और इस बीच याद रहे, इस बीच वायरलेस पर कोई मैसेज नहीं जाएगा।
8: जी हां
1: सर, सुबह होने को है, जल्द ही उजाला हो जाएगा। हमारे सारे टैंक उन घने पेड़ों के पीछे पहुंच चुके हैं।
9: अब समय आ गया है हमला करने का। हमारे टैंक तीन दिशाओं से दुश्मन की ओर बढ़ेंगे ताकि उनका ध्यान बट जाए, और मैं खुद अपने टैंक पर रहूंगा।
7: जी सर, हम आपके टैंक को खबर देंगे। सर वो देखिए, सामने से दुश्मन के टैंक आ रहे हैं।
9: लगता है उन्होंने हमें देख लिया है। टैंक को आगे बढ़ाओ प्रेमलाल, और जस्ट द गन, निशाना लगाओ उस तीसरे टैंक पर।
7: यस सर, वो टैंक निशाने पर आ गए हैं सर।
9: फायर।
7: खा! खा! खा! खा!

0: बड़ा
1: गुड। तो अब निशाना लगा उस टैंक पर, बहुत स्पीड में है, जल्दी करो प्रेमलाल, फायर, समय मत गवाओ, फायर।
0: सर ये टैंक तो गया।
1: गुड, शाबाश शाबाश प्रेमलाल, अब हमें बिना रुके उन दो टैंकों पर फायर करना है।
2: गो एंड सेंड देम टू हेल, फायर।
0: यस सर।
3: उस दिन टैंकों का भीषण युद्ध हुआ, जिसमें दुश्मन के 13 टैंक ध्वस्त कर दिए गए, जिसके कारण पाकिस्तानी सेना की आक्रमण करने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई और वो चौबिंडा छोड़कर चली गई।
4: इस तरह चौबिंडा क्षेत्र पर भारत का अधिकार हो गया। अब लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नेतृत्व में सेना बुटूर और डोगरांडी की ओर आगे बढ़ी और अब समय आ गया था लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के शौर्य के चरम उत्कर्ष का। बुटूर और डोगरांडी के अलावा उन्हें वजीराली और जसोरन क्षेत्र पर भी कब्जा करना था, ताकि पाकिस्तानी सेना को निर्णयात्मक रूप से पराजय दी जा सके।
3: सितंबर 1965 का दिन, उधर पाकिस्तानी सेना भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी, जीवन मरण की स्थिति सामने थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर ने अपनी रेजिमेंट के साथ पूरी शक्ति से हमला किया और बहुत बहादुरी से लड़े। उस दिन उन्होंने दुश्मन के 60 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर दिया, भारत के भी 9 टैंक ध्वस्त हुए।

0: युद्ध अब पूरी तरह से भारत के पक्ष में आ चुका था।
1: कुछ देर युद्ध स्थल पर मानो शांति सी छा गई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर अपने प्रिय टैंक खुशाब पर खड़े होकर चाय का घूंट ले रहे थे कि तभी
0: पेड़ों की झुरमुट में छिपे पाकिस्तानी सैनिकों ने उनके टैंक पर तोप से आक्रमण किया। इस टैंक पर पाकिस्तानी सेना की विशेष नजर थी। गोला लगते ही उनका टैंक खुशाब आग की लपटों से घिर गया। तारापोर को आग की लपटें निकल गईं और वो सदा के लिए चिर निद्रा में सो गए।
1: आंसुओं के साथ सैनिकों ने अपने नायक को विदाई दी।
0: मरणोपरांत उन्हें प्रदान किए गए प्रशस्ति पत्र में उनकी शौर्य गाथा के कुछ अंश इस प्रकार हैं।
1: युद्ध में आहत होने पर भी उन्होंने पीछे ले जाए जाने से इनकार कर दिया। घातक रूप से आहत होने पर भी उन्होंने अपनी चोटों की चिंता नहीं की। उनके टैंक पर अनेक वार हुए किंतु वो डटे रहे और केवल 9 टैंक खोकर दुश्मन के 60 टैंक ध्वस्त कर दिए। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर द्वारा प्रदर्शित शौर्य भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप था।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च युद्ध शौर्य पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कृतज्ञ राष्ट्र का उन्हें शत शत नमन।
2: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर। अकादमिक समन्वय डॉक्टर राजेंद्र पाल। तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो। कलाकार बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, किशोर साहिजानी और असर नवाज उस्मानी। ध्वनि अंकन मयंक कुमार। आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो। निर्देशन विमलेश चौधरी। निर्माण कुसुमलता। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT से आज की कड़ी। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर। आइए सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों को।

फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब हुआ, अब जिया जी को भी पसंद आ गया थिएटर करना, वो प्ले सुपर डुपर हिट हुआ और इन लोगों को फीस जो उन्होंने मांगी वो मिली थी। उसके बाद दूसरा प्ले आया, वो मैंने इनको डॉक्टर मुक्ता प्ले सुनाया, उसमें भी वो मेन रोल था लेकिन सीरियस प्ले था। तो उसमें उन्होंने कहा कि आप ये रोल करिए जो हस्बैंड का रोल है। अगेन मेरा रोल बीच में ही है लेकिन लाफ्टर लाफ्टर आते हैं मेरे आने पर, ऑल्दो मैं कॉमेडियन नहीं हूँ लेकिन वो रोल ऐसा होता है कि मुझे लाफ्टर तो मिलते हैं। वो रोल भी, वो प्ले, फिर हम दोनों प्ले साथ लेके फिर अमेरिका टूर पे गए। अमेरिका से फिर गल्फ कंट्रीज भी गए, पहले लंदन गए, लंदन से गल्फ कंट्रीज भी गए। इस तरह हमारा 40 दिन का टूर हुआ, बहुत अच्छा रहा और सबको फीस अच्छी मिली। क्योंकि बाहर प्ले में आपको मुंह का दाम, जब आप स्टार प्ले करते हैं तो जो प्राइस स्टार बोलेगा उस हिसाब से पैसे मिल जाते हैं, फिर डायरेक्टर को भी उस तरह मिल जाते हैं। इस तरह से हमको, जब ये प्ले चल रहे थे तो एक दिन शत्रु जी से मुलाकात हुई। तो उन दिनों कुछ दिल्ली जाते थे और ये सब, तो उन्होंने कहा यार मैंने तेरा प्ले देखा बहुत अच्छा था। मैंने कहा आप करेंगे प्ले? नहीं करूँगा, जरूर करूँगा। कब करना चाहोगे? कौन सी है स्क्रिप्ट सुनाओ। और उनको स्क्रिप्ट सुनाई और वो मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड प्ले था जो उन्होंने सुना और वो प्ले अच्छा है, आज तक चल रहा है वो भी। और उसमें राकेश बेदी और ये और लड़की एक है और संजय गोरडिया एज प्रोड्यूसर, वो एंट्री भी मारता है कुछ शुरू में। तो चार ही कैरेक्टर है, मैं उसमें रोल नहीं करता हूँ। वो प्ले भी हिट हुआ, आज तक चल रहा है। उसके बाद जीनत जी किसी शो पे आई थी, अमित जी के ना इनके शत्रु जी के, उन्होंने दो तीन बार अटेंड किया था प्ले। उन्होंने कहा आपका मेरे लिए स्क्रिप्ट है? मैंने कहा हाँ है। मैंने कहा वो देखिए बात यह है कि संजय गोरडिया से आप कमर्शियल बातें कर लीजिए, मैं आपको स्क्रिप्ट बाद में सुनाऊंगा। क्योंकि होता है ना कि बात कर लें फिर स्क्रिप्ट भी आप तक पहुंच गई, फिर उसके बाद मैं किसी और को सुनाऊंगा, आपको लगेगा आपका सब्जेक्ट किसी और को सुना दिया। उन्होंने कहा हाँ मैं कर लेती हूँ। उन्होंने बात जो भी बिटवीन प्रोड्यूसर और हो गया, उन्होंने हाँ कर दी। अब जब आया तो उन्होंने कहा आप रोल करेंगे, मैंने जया जी के साथ आपको रोल करते दोनों प्लेस में देखा है। मैंने कहा जी वहाँ जया जी की हाइट कम है, आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है। बोले आप 6 इंच के जूते पहन लो। वो मैंने वैसे जूते बनाए, उनके ऑपोजिट रोल किया, वो हो गया। इतने में एक प्ले था शीशों का मसीहा, फैज अहमद फैज की पोइट्री के ऊपर उनकी कहानी, लाइफ कहानी थी, तो उसको जोड़ा हुआ था और वो हमने प्ले खेला। शबाना जी ने हाँ कर दिया। मैंने पूछा जावेद साहब करेंगे? बोले तुम पूछो भाई, मैं नहीं बोलूँगी। मैंने उनको सुनाया, उन्होंने कहा

मैं करूंगा, पढ़ना है खाली ना, याद तो नहीं करने डाले, मैं पढ़ूंगा और पोएट लगूंगा मैं। तो उन्होंने भी ओके कर दिया। तो वो लेके हमने 5-6 शो इधर ही किए, लेकिन जो फिर वो उनके राइटर्स उस लेके वो चाहते थे कि वो रोल करें खुद। तो मैंने कहा भाई अब ये तो प्ले चल गया है, अब तो वो करते हैं, मैं उनको थोड़ा बोलूँगा तो आप छोड़ दीजिए प्ले, शवाना जी को ये थोड़ा करूँगा कि अब आपके साथ ये करेंगे। तो फिर मैं आपको स्क्रिप्ट नहीं दे सकता, समथिंग राइटर ने। ठीक है, शौकत भाभी ने अपनी आप बीती लिखी, तो टाटा एक्सपेरिमेंटल थिएटर में उन्होंने पहला चैप्टर पढ़ा उसका स्टेज पे, पढ़ा तालियां बज रही हैं, ये और बहुत अच्छा लिखा हुआ है, आप वो किताब पढ़िएगा। तो जैसे ही खत्म हुआ चैप्टर, मैंने कहा शवाना इस पे हम प्ले करेंगे, क्या बात करते हो? मैंने कहा आप उसमें रोल करेंगे यही वाला जो शौकत भाभी ने किया है, और अगर जावेद साहब करना चाहे कैफी साहब का रोल तो जावेद साहब को दे दे, आप दोनों का पेयर भी हो जाएगा सेम, आप लोगों ने दोनों साथ में किया हुआ है, तो कैसे तुमको लगता है कि ये सब्जेक्ट हो जाएगा अच्छा बनेगा? मैंने कहा उसमें बीज सारे हैं, मैंने आपका तुम्हारी अमृता भी देखा है, उसमें भी आप बैठ के दोनों पढ़ते थे फारूक और आप, शीशो का मसीहा भी किया है हमने, और ये भी है, बहुत अच्छा बनेगा। तो फिर एक काम करिए, जावेद साहब से कहिए लिखे। मैंने कहा जावेद साहब को आप कहिए। बोले मैं नहीं कहूँगी, मुझसे ना करेंगे तो फिर मैं क्या करूँगी? आप अपने ढंग से, आपने काम किया हुआ है ना उनके साथ, तो आप उनके उनकी स्क्रिप्टों फिल्में बना चुके हो, कहिए। तो फिर मैंने जावेद साहब से कहा कि आप ये स्क्रिप्ट लिखिए। तो जावेद साहब ने स्क्रिप्ट लिखी और रोल किया, और प्ले तब से लेकर आज तक चलता है। अभी जावेद साहब ने खुद बिजी हो गए, तो उन्होंने कहा रमेश जी अभी आप ना मुझे रोल के लिए मत बोलिए, क्या होता है मुझे आप लोगों के साथ डेटें मैच करनी पड़ती हैं शवाना की और वो, तो आप किसी और को, तो आप कंवलजीत सिंह करते हैं रोल, वो सेम रोल, और अभी हम टूर करते रहते हैं, अभी भी ऑफर आई हुई है, जाएंगे बाहर।

0: रमेश जी, बहुत बरस तक फिल्में डायरेक्शन किया आपने, टेलीविजन पर काम किया, और उसके बाद फिर एक बहुत लंबा अरसा है जहां आप वापस थिएटर की तरफ लौट रहे हैं, और मैं आपके प्लेस देखता रहा हूं। आप थिएटर को जीते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, वो एक जुनून है आपका। अपने सबसे लंबे समय से चले आ रहे प्लेस और इन दिनों जो कुछ नाटक आप कर रहे हैं उनके बारे में बताइए।
1: देखिए साहब, पहली बात तो यह है कि मैंने फिल्में करना बंद नहीं किया। मैंने लास्ट फिल्म बनाई है शत्रुघ्न सिन्हा जी के लिए, जिसमें रेखा जी और शत्रुघ्न सिन्हा हैं, उन्होंने प्रोड्यूस किया है, उनकी मिसेज और एक उनकी पार्टनर है कोई, दोनों ने मिलके, और फिल्म बहुत अच्छी बनी हुई है। अब वो कैसे रिलीज करेंगे वो अब देखते हैं, OTT पे करते हैं या क्या करना चाहते हैं। और उनके साथ नाटक भी मेरा चल रहा है, उसके भी शोज करते रहते हैं। तो इप्टा में जो नाटक मेरे हैं जो बहुत देर से चल रहे हैं, एक तो शतरंज के मोहरे
0: सबसे पुराना है।
1: पुराना है मतलब ये था कि मैं जब पहली बार शतरंज के मोहरे करने लगा था, उसमें मैं बच्चा था और चेहरे से लगता था कि 14-15 साल का है, और मुझे लव सीन करना होता था। 20 साल का रोल है श्याम का, उसमें कैरेक्टर का नाम श्याम है, तो मैं मुंह चुगाता था रोल करने के लिए कि मैं बड़ा लगूं, और मेरे सामने जो एक्ट्रेस होती थी वो अपना सुलवार या हिंदी में या कहीं और दूसरी जगह कोई नॉन एक्ट्रेस ऐसा रोल करती थी, तो मैं बड़ा लगना चाहिए। और उस वक्त जब मैंने पंजाबी में पहले प्ले किया, उस वक्त मनमोहन कृष्ण जी एक मेन काका जी का बुजुर्ग का रोल कर रहे थे, चाचा का, और हंगल साहब करते थे रोल आचार्य का उसमें, और मैं शाम जो लड़का है उसका करता था, और बाकी रात में नितिन सेठी उस वक्त के हीरो थे, वो करते थे डॉक्टर सतीश का रोल, अचला सचदेव उनकी मतलब मेरी बड़ी बहन का रोल करती थी। ये यहाँ से शुरू किया था। अब जो साहब मैंने वो प्ले का हमको शो मिल गया हैदराबाद में, ऐसा हुआ कि एक प्ले कर रहे थे आदर का ख्वाब, जिसमें बलराज सहनी साहब थे और गीता सिद्धार्थ, तो पिगमिलियन पे था प्ले। तो उन्होंने कहा हमको दो प्ले चाहिए, तो हमारे पास दूसरा प्ले कुछ था नहीं, तो हमने कहा ये जो पंजाबी में प्ले किया है इसको सब हिंदी में बोलना शुरू करो, तो देखते हैं कि कितना तक

आना चाहिए। वो बोलने लग गए, सब लोग हिंदी में सेम लाइन है, पंजाबी और हिंदी नजदीक नजदीक की है, सिंपल वैसे ही वर्ड रखे, क्लिष्ट हिंदी नहीं होगी, सिंपल हिंदी होगी, वो बन गया। जब एंड तक पहुंच गए फिर मैंने उसको फाइनल थोड़ा सा छोटा मोटा जो करेक्शन करनी थी कर ली। वो करके हम लोग जाके हैदराबाद में हमने शो खेला और तब से लेकर अब आज तक ये नाटक

0: तब से लेकर अब आज तक ये नाटक हिंदी में चल रहा है। अब मैं वो रोल मेरे मैंने बंद किया तो रमन कुमार करता था वो रोल, मैं कोई और रोल करने लग गया। रमन कुमार के बाद राकेश बेदी वो रोल करने लग गया, फिर राकेश बेदी बड़ा हो गया, वो 20 साल का नहीं लगता, बड़ा लगने लग गया, तो अब कोई और बच्चा नया लड़का करता है। और मैं अब वो मनमोहन कृष्ण का रोल करता हूँ कभी कभी, और मैं जब राकेश बेदी अवेलेबल होता है तो वो मनमोहन कृष्ण का रोल करता है, अगर वो नहीं अवेलेबल तो मैं करता हूँ।
1: वाह वाह,
0: तो वो प्ले आज तक चलता आ रहा है। दूसरा प्ले जो मैंने आपको पहले कहा कि ये प्ले जो आखिरी क्षमा जो कैफी साहब का लिखा हुआ है और जिसमें बलराज सहनी काम करते रहे, उसके बाद उस गालिब का रोल भरत कपूर करते रहे, अभी वो कमलजीत भरत कपूर का रोल करते हैं गालिब का रोल, और अभी हमने 56 साल की ट्रॉफियां बांटी है उसकी।
1: जी जी जी, काबुली वाला भी चल रहा है।
0: काबुली वाला अलग है, काबुली वाला का ऐसा था कि यही जब मैं शबाना के संग प्ले कर रहा था तो रिंकी भट्टाचार्य जी विमल राज की बेटी वो आई, परीक्षित सानी के संग आई थी, तो उन्होंने कहा कि रमेश तुम काबली वाला क्यों नहीं स्टेज पे खेलते। मैंने कहा काबली वाला एज इट इज तो नहीं खेला जा सकता, नाटक का वर्षन बनाना पड़ेगा, वो करके मैं फिल्म के ऊपर से ले लेता हूँ, आपके ओरिजिनल डायलॉग ओरिजिनल चीजें लेके एक स्क्रिप्ट बना के आपको सुना दूंगा। और परीक्षित सानी से कहा तुम रोल कर लो काबली वाला का, क्योंकि बलराज सानी ने रोल किया था। उन्होंने नहीं यार, मैं अभी अब हिम्मत नहीं है स्टेज पे काम करनी, वो टाइम अलग था, अब नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने आसिफ शेख से कहा कि भाई ये है तो आसिफ शेख करता है वो रोल काबली वाला का, और वो नहीं होता तो विकास रावत कभी कभार कर।
1: मैंने देखा है, क्यूट प्ले है।
0: हाँ, बहुत अच्छा है। तो लेकिन वो तो ओरिजिनल फिल्म से लिया हुआ है।

0: स्क्रिप्ट जो बनाई है फिल्म से लेके बनाई है और उसका हमने एक वर्सन स्टेज पे क्या हो सकता है उस तरह करके जमा लिया अपना और चलता है, लेकिन बहुत लंबा नहीं है, 40 मिनट का ही है प्ले। तो उसके साथ मैंने एक बार जाहिदा हैना करके एक पाकिस्तान की राइटर है, उन्होंने काबली वाला लौट आया इन्हीं करेक्टर को लेके लिखा था और वो उन्होंने एक आर्टिकल सा लिखा, प्ले नहीं लिखा बता। तो मैं एज इट इज जब मेरा 40 मिनट का जिसको 2 घंटे पूरा चाहिए, तो मैंने तन्वी आदमी के संग सेकंड पोर्शन पढ़ने का रख लिया। अभी आपने देखा काबली वाला जो एक्टरों के साथ अच्छे, ये सोलो पढ़ती है काबली वाला लौट आया, तो जिसको 2 घंटे का होता है तो तन्वी आदमी करती थी। तन्वी आदमी अवेलेबल नहीं हुई तो राजेश्वरी सचदेव ने एक आध बात कर लिया, फिर लुबना सिद्दीकी ने एक आध बात कर लिया। पढ़ना है भाई, तुम रीडिंग एक दो बार मेरे साथ कर लो और स्टेज पे पढ़ो, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। और ये उसके सारे बीज जो है काबली वाला के लेके उन्होंने लिखा कि काबली वाला जब उसकी बेटी पैदा, वो बच्ची जो बड़ी हो गई है, वो छोटी बच्ची बड़ी हो गया और वो डॉक्टर बन गई है और अफगानिस्तान में मरीज है आजकल और उनका इलाज करने वहां गई है। ऐसा लिखा, बहुत अच्छा लिखा हूँ। तो वो पोर्शन हमने काबली वाला हमारा चलता रहता है।
1: रमेश जी, बहुत ही विस्तार से अब बातें हुई हैं और बहुत दिलचस्प कहानियां आपने सुनाई अपनी जिंदगी की, आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए।
0: आपका शुक्रिया भाई, ये अंदर की सारी बातें आपने निकलवा दी मेरे, ये मैं खुद भूल चुका था, अभी कई बातें याद कर रहा हूँ, कुछ नाम याद नहीं आते हैं। अरे भाई उसका वो तो भी ये आपका ही वो था क्या, आपने आराम से सुना और इतनी देर तक सुना मुझे।
1: बहुत शुक्रिया सर।
0: शुक्रिया जनाब।

0: ये थी रंगमंच और फिल्मों के जानी माने निर्देशक रमेश तलवार से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। आज आपने पांचवा भाग सुना। संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: तारा में आज
2: उजाले।

0: दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमिडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको अर्ली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इट्स बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
2: मिलती हैं धाराएं 3, विचार, स्वर और संगीत।
3: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
2: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।

0: सालाद से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
2: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
4: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम रंग तरंग में। आइए सुनते हैं रंग तरंग कार्यक्रम का यह पहला गीत, जो कि है एक भक्ति गीत। इसे लिया गया है हे गोविंद हे गोपाल एल्बम से। चित्रा सिंह की आवाज है, रायदास ने इसे लिखा और जगजीत सिंह ने इसे संगीतबद्ध किया है।

कभी किसी की तारीफ की है? कर लीजिए। अगर तारीफ किसी शहर से हो तो कुछ ऐसी ही गजल बनती है। कार्यक्रम रंग तरंग में आइए सुनते हैं खूबसूरत एल्बम की है गजल, तलत अजीज की आवाज में, आनंद बख्शी के पुल और समीर के संगीत के साथ।

हम सुन रहे थे जगजीत सिंह चित्रा सिंह की आवाज में हम तो हैं परदेश में, यह गजल राही मासूम रजा ने इसे लिखा और जगजीत सिंह ने इसे संगीतबद्ध किया। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है रंग तरंग।

0: हम सुन रहे थे अ गिफ्ट ऑफ सॉन्ग्स एंड गजल्स, इस एल्बम से अनूप जलोटा की आवाज में उनके ही द्वारा संगीतबद्ध किए गए इस नगमे को, जिसे लिखा है मुनीर ने। आइए सुनते हैं एक संदेश।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चल रहा है रंग तरंग, द खजाना कॉन्सर्ट पे नाज़ मशानी की आवाज में मधुरानी की संगीत के साथ।

याद में तेरी इस खूबसूरत सी नज्म के बाद आइए सुनते हैं अगली नज्म, गजल उसने छेड़ी, इस एल्बम से चंदन दास की आवाज में, निदा फाजली के बोल और चंदन दास के संगीत के साथ।

लस गया हो।

हम सुन रहे थे अर्थ फिल्म से चित्रा सिंह की आवाज में, इफ्तिकार माम सिद्दीकी ने इसे लिखा और कुलदीप सिंह ने इसे संगीतबद्ध किया। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग।

हम सुन रहे थे ये नगमा पंकज उदास की आवाज में, जिसे संगीतबद्ध किया पंकज उदास ने ही। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग का अगला नगमा, जो कि होगा तलत अजीज की आवाज में।

हम सुन रहे थे नज्म आगाज द बिगनिंग सोनाली जलोटा इस एल्बम से सोनाली जलोटा की आवाज में फैयाज जयपुरी के बोल और रूप कुमार राठौर के संगीत के साथ कार्यक्रम रंग तरंग यहीं पर समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, बस थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
1: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका हर तरह के आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की दृढ़ नीति पर कायम रहना होगा।
2: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त न करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
0: अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से फोन पर बातचीत की। श्री ट्रंप ने स्वयं को प्रधानमंत्री मोदी का प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर 100% भरोसा कर सकता है। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रुपए और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा के स्कैन पुस्तकों को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखेगा। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में कल दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से पराजित किया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। जम्मू कश्मीर में घाटी की रसदार और गहरे लाल रंग की चेरी अब मुंबई के बाजारों तक पहुंचेगी। मौसम के पहले चेरी फल का विशेष पार्सल वाहन आज जम्मू से रवाना हुआ। लगभग 966 बक्सों में करीब 12 टन चेरी को मौसम के पहले पार्सल वाहन में लोड किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में।

आइए शुरुआत करते हैं यादों की महफिल का। ये प्यारा सा गीत मुकेश ने गाया है, राम अवतार त्यागी ने इसे लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीतबद्ध किया है और फिल्म है जिंदगी और तूफान।

0: हम सुन रहे थे दोस्ती फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
1: अरे सुनो आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा 3:03।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
2: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
4: देखो जी बहार आई गांवों में खिली।
2: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
5: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
2: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज। सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
6: तुम्हारी याद सताती है
2: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम सुना रहे हैं आपको कार्यक्रम यादों की महफिल। आज की यादों की महफिल हमने सजाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के गीतों के साथ। तो आइए सुनते हैं अगला गीत आए दिन बहार के फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों को। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर। आइए सुनते हैं अवधि लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग।
1: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashvani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
3: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
4: कार्यक्रम लोक रंग सुनने वाले सभी श्रोताओं को नेहा तिवारी का प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज है सोमवार और सोमवार के दिन हमारा जो लोक रंग कार्यक्रम होता है वो होता है आधारित आपकी फरमाइशों पर। तो आइए शुरू करते हैं आपकी फरमाइशों को पढ़ने का सिलसिला जो कि भेजी है आपने आज के कार्यक्रम के लिए। पहली फरमाइश हमारे पास आई है, वो आई है ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं राम शरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, बंजू रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। कार्यक्रम लोक रंग में अगली जो फरमाइश है वो आई है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से निर्मला नौकर, विशाल नौकर और पुंजा जैन नौकर की। बीएल धाकड़, भोला वाक्तारिया, प्रमीण वाक्तारिया, भीरूलाल वाक्तारिया धाकड़, रियांश वाक्तारिया और प्रतीक वाक्तारिया ने हमें लिख भेजा है उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से। और इसी प्यारे से लोकगीत के लिए फरमाइश आई है हमारे पास तक बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। लिखने वाले हमारे श्रोता है ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा। आप सभी ने सुनना चाहा है शीतला प्रसाद वर्मा और साथियों की आवाज में ये प्यारा सा मीठा सा गीत। तो लीजिए आपकी पसंद का गीत आपके रेडियो सेट पर।

कार्यक्रम चल रहा है लोक रंग और आपके साथ आपकी दोस्त है नेहा। और जो अगली फरमाइश है हमारे पास वो आई है जलालाबाद वेस्ट से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से हमें फरमाइश आई है मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत और सादिया की। शिव कुमार चौहान, संक्रांति, रितेश कुमार, राजेश्वरी, उत्कर्ष चौहान ने हमें लिख भेजा है बाबा कुटीर रायगढ़ से। और इसी प्यारे से लोकगीत के लिए अगली फरमाइश जो है धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से आई है। और लिखने वाले हमारे श्रोता है निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू। तो लीजिए आप सभी की फरमाइश पर पेश है ये प्यारा सा गीत जिसमें आवाजें हैं सुषमा गुप्ता और साथियों की। लीजिए सुनिए ये प्यारा सा देवी गीत।

0: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9596240 और 7800037222।
1: कार्यक्रम चल रहा है लोक रंग, जो कि आधारित है आज आपकी फरमाइशों पर, और आपकी ढेर सारी फरमाइशों के साथ है आपकी दोस्त नेहा आपके साथ। और अगली जो फरमाइश आई है हमारे पास वही है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल रंजीत कौर जयप्रकाश राहुल प्रियंका मन्नत गुरकीरत गुरशब्द सिंह राहुल की। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव ज्योति यादव ओजस्वी यादव ने भी इसी प्यारे से लोकगीत के लिए फरमाइश की है। और दत्तरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा पारस मणि वर्मा पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा ने भी हमें इसी लोकगीत के लिए फरमाइश भेजी है। कार्यक्रम लोकरंग में अगली जो फरमाइश है वो आई है मोताला महाराष्ट्र से, लिखने वाले हमारे श्रोता है विजय सुरलकर और रतन माला सुरलकर। महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी की भी नरगुड़ा छत्तीसगढ़ से सी प्यारे से लोकगीत के लिए फरमाइश आई है। और आपके साथ साथ लक्ष्मी देवी गोस्वामी जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी ने भी इसी प्यारे से लोकगीत के लिए फरमाइश भेजी है। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर रत्नेश द्विवेदी और साथियों की आवाज़ में ये प्यारा सा लोकगीत।

कार्यक्रम चल रहा है लोक रंग, आपकी फरमाइशों पर आधारित ये प्यारा सा कार्यक्रम, और आपकी प्यारी प्यारी फरमाइशों ने इस कार्यक्रम को बना दिया है और भी खास। और अगला जो संदेश है हमारे हाथ में वो आया है हमारे पास तक रायपुर छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं विनोद वंडलकर, वीड़ा वंडलकर, विविधा वंडलकर, प्रमोद कुमार साहू ने बोर्ड सरा नैला छत्तीसगढ़ से हमें अपनी फरमाइश भेजी है। और आपके साथ साथ बीमा वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू ने भी ये प्यारा सा संदेश भेजा है। ज्योति नगर नोखा राजस्थान से पुखराज वड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोवर्धन धरा, घनश्याम भार्गव, बाबू गौरी हसन सिक्का ने इसी प्यारे से लोकगीत के लिए फरमाइश भेजी है। और नई बस्ती गंज जुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी और मोहम्मद तैमूर हाशमी, मोहम्मद कलीम अंसारी ने भी इसी गीत के लिए फरमाइश भेजी है। तो आइए सुनते हैं गणेश सिंह और साथियों की आवाज़ में ये लोकगीत।

कार्यक्रम लोक रंग में अगली जो फरमाइश है वो आई है हमारे पास तक चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा की। अजीत कसाना ने हमें लिख भेजा लदावली जिला मुरादाबाद से। और नारायण लाल साहू का संदेश आया है हमारे पास तक राज नांदगांव छत्तीसगढ़ से। आपके साथ साथ कुलवंदीन देवी साहू, दीवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, यशोदा देवी साहू ने भी हमें ये प्यारा सा संदेश भेजा है। और चरडोगरी पिपरिया जिला कबीर धाम छत्तीसगढ़ से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी माया साहू ने भी हमें संदेश भेजा है। उमेश कुमार गौड़ ने बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से हमें संदेश भेजा है। और आपके साथ साथ रानी गौड़ का भी संदेश हमें आया है इस गीत के लिए। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम के अंत में रत्नेश द्विवेदी और साथियों की आवाज में ये प्यारा सा लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 FM एंड और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर। आइए सुनते हैं आपकी फेसबुक कमेंट्स पर आधारित कार्यक्रम कुछ तुमने कहा।

0: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर आकाशवाणी अयोध्या।
1: घर घर जन जन तक दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन।
2: जग घूमे थर जैसा न कोई।
0: ये है आपका अपना FM रेडियो चैनल 101.9 आकाशवाणी अयोध्या, जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
1: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं
3: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
0: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: सुनिए।
1: भारत की आवाज को वैश्विक स्तर पर पहुंचाती और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने महान आदर्शों पर चलती हुई आकाशवाणी आज 23 भाषाओं में सामाजिक आर्थिक विविधता और प्रसारण संगठन के पैमाने के संदर्भ में दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क बन चुकी है। 1923 में रेडियो क्लब की शुरुआत के बाद 23 जुलाई 1927 को मुंबई रेडियो स्टेशन के उद्घाटन के साथ भारत में रेडियो की औपचारिक शुरुआत हुई।

0: सन 1930 में रेडियो का राष्ट्रीयकरण हुआ और तब इसका नाम रखा गया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और 8 जून 1936 को इसका नाम रख दिया गया ऑल इंडिया रेडियो। 1956 में ऑल इंडिया रेडियो के अलावा आधिकारिक तौर पर इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी अपने 90वें वर्ष में पहुंच चुकी है, जिसका जश्न पूरा देश मना रहा है और जन जन में इस आकाशवाणी की आवाज गूंज रही है।
1: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
2: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
3: स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम कुछ तुमने कहा में, और आपके साथ मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त नेहा। तो आइए शुरू करते हैं आपके संदेशों को पढ़ने का सिलसिला जो कि आपने भेजे हैं आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज पर, और आपके ढेर सारे जो कमेंट्स हैं वो हम तक पहुंच चुके हैं। और जो पहली कमेंट है हमारे पास वो है उत्तम कुमार भगत की, आई है हमारे पास पाकुड़ झारखंड से। मोहम्मद फरमान ने हमें जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से कमेंट भेजी है। श्रोताओं आपसे एक खास गुजारिश भी है कि इस प्रोग्राम में आप अपनी एक ही कमेंट छोड़ें जिससे हमें पढ़ने में भी आसानी हो और आपके नाम जो है वो कार्यक्रम में शामिल भी हो सके।

राम शरण की कमेंट आई है हमारे पास तक, ग्राम बमना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से। और भागवत चौबे लाडला जी ने सागर लखनादौन मध्य प्रदेश से हमें संदेश भेजा है। अगला संदेश है जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल का, और विष्णु टेलर ने हमें लिख भेजा है दयानंद कॉलेज भवानीपेट सोलापुर महाराष्ट्र से। विक्रम मालवीय का अगला संदेश है जो कि आया है हमारे पास तक मालवा रोड कुलबालोद तहसील आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से, और रविंद्र सिंह छाबरा ने हमें टैगोर गार्डन नई दिल्ली से संदेश भेजा है। नारायण लाल साहू ने हमें लिख भेजा है जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से, और अरुण कुमार मालवीय का संदेश आया है बड़ी गैबी चौराहा वाराणसी से। जलालाबाद वेस्ट से हमें कमेंट आई है सुरेश गगनेजा की, और ओम प्रकाश राय ने हमें लिख भेजा है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से। मसरूर हसन की अगली कमेंट है जो कि आई है हमारे पास तक गांव कुम्हार हिड़ा सहारनपुर से, और सुनील पाठक ने हमें अनारकली बाजार जगराव से ये संदेश भेजा है। अगला प्यारा सा संदेश है सतीश अनेजा का जो कि आया है चंडीगढ़ से हमारे पास तक, और ब्रजेंद्र विश्वकर्मा ने हमें लिख भेजा है बने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। अनिल बी घोड़के ने हमें संदेश भेजा है अम्भई सिल्होड़ जिला छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से, और उत्तरा दिवाकर ने हमें लिख भेजा है पीपरपारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से। दिलशाद हुसैन की अगली कमेंट है जो कि आई है मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, और रवि कुमार राहुल ने हमें लिख भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से। तो इन सभी प्यारे प्यारे कमेंट्स के बीच आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत जिसे हमने लिया है फिल्म आराधना से। प्यारी सी आवाज है किशोर कुमार की, गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है एसडी बर्मन ने। तो आइए ये प्यारा सा गीत आप सभी के लिए।

कार्यक्रम चल रहा है कुछ तुमने कहा, और कुछ तुमने कहा कार्यक्रम आधारित होता है आपके फेसबुक कमेंट्स पे जो कि आपने भेजी होती है आकाशवाणी के फेसबुक पेज पर, और उन्हें पढ़ने के लिए हूँ मैं आपके साथ आपकी दोस्त नेहा। इंजीनियर फैसल इमाम ने हमें कमेंट भेजी है, हयात खालोनी अररिया बिहार से। राहुल मनवर ने हमें लिख भेजा है शाहू नगर यवतमाल से, और जाकिर मंसूरी की कमेंट आई है हमारे पास तक बाजार रोड मुंगीसापुर से। गजानन येले ने हमें संदेश भेजा है सिद्धार्थ नगर दरियापुर बाबली से, और आफ्ताब अंसारी ने हमें लिख भेजा है शेरवानी स्कूल गंजडुंडवारा उत्तर प्रदेश से। प्रवीण श्रीमाली का कमेंट आया है हमारे पास तक कंवर कॉलोनी बड़वाह जिला खरगोन एमपी से, और पुंजा जी नवंकर ने हमें लिख भेजा है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से। प्रमोद कुमार साहू की कमेंट आई है बोरसला नैला छत्तीसगढ़ से, और महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी ने हमें नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से कमेंट भेजी है। अगला जो संदेश है वो दिलावर खान का है, आया है हमारे पास तक रघुवीर नगर से, और कमलकांत गुप्ता ने पिपरिया से हमें संदेश भेजा है। के आर साहू की अगली कमेंट है जो कि देवरी भाटापारा से हमारे पास तक आई है, और दिनेश वर्मा ने हमें लिख भेजा है रिंगनी छत्तीसगढ़ से। विनोद कुमार यादव ने हमें कॉमेंट भेजी है फरका भागलपुर बिहार से, और उमा सिंह ने उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से हमें संदेश अपना भेजा है। विनोद वंडलकर की कमेंट है रायपुर छत्तीसगढ़ से आई है, और जगमोहन सिंह प्रजापति ने हमें लोहडडा बागपत से कमेंट भेजी है। अगला संदेश हमारे पास तक आया है दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से। लिखने वाले हमारे श्रोता है मोहम्मद यासीन अंजान, और राधा नामदेव ने हमें अपनी कॉमेंट भेजी है सहारनपुर से। राजेश कुमार वर्मा ने हमें लिख भेजा है राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, और नीलू मेघ ने हमें राजधानी रायपुर से अपना संदेश भेजा है। बबलेश पवार की अगली कमेंट है जो कि हमारे पास तक आई है गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से, और निसार सलमानी ने हमें धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से अपना संदेश भेजा है। और इन सभी संदेशों के बीच आप ही के पसंद का एक प्यारा सा गीत भी हमने चुनकर निकाला है, और जिसमें आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है ताजमहल। तो एंजॉय करिए ये प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम चल रहा है कुछ तुमने कहा, और आपके साथ आपकी दोस्त है नेहा आपके साथ, और ढेर सारी जो संदेश है मेरे हाथ में है, आइए शुरू करते हैं उनको पढ़ना। रमेश कंबोज ने हमें अपना संदेश भेजा है गांव मुराड़गढ़ जिला करनाल हरियाणा से, और नरेश मल्होत्रा निट्टू की कमेंट आई है हमारे पास तक खैल बाजार पानीपत से। शिव चौहान ने हमें लिख भेजा है बाबा कुटीर रायगढ़ से, और विजय सुलरकर ने हमें कमेंट भेजी है मोताला महाराष्ट्र से। रजाक मोहम्मद का अगला संदेश है जो कि हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से हमारे पास तक आया है, और संजय ढींगिया ने बागपत उत्तर प्रदेश से हमें लिख भेजा है। रियासत हुसैन सिद्दीकी की कमेंट जसपुर उत्तराखंड से हमारे पास तक आई है, और धीरज गुप्ता का संदेश हमारे पास तक आया है कस्बा उगैठी से। महेंद्र मरकम ने हमें लिख भेजा है डबरीपारा जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से, और शुभचंद्र बजाज की कमेंट आई है हमारे पास तक कालका से। बाल कृष्ण ने नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से हमें अपना संदेश भेजा है, और मोहम्मद सईद अब्बासी की कमेंट ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से हमारे पास तक आई है। पेज पर अगली कमेंट है महेंद्र मोदी की जो कि आई है रामगढ़ कैंट से, और बनवारी जयपाल ने हमें लिख भेजा है गाँव अरायन जिला श्री गंगानगर से। धर्मेंद्र छिपा ने हमें लिख भेजा है भोपालगढ़ राजस्थान से, और अगला जो संदेश है वो है नजमुल हुडा जावेद का, आपने हमें झारखंड से अपनी कमेंट भेजी है। लाल कुर्ती रुड़की कैंट से हमारे पास तक संदेश आया है राजेश वर्मा का, और सुभाष गुदरा

ने हमें फाजिल का पंजाब से कमेंट भेजी है। टीडी मल्होत्रा की कमेंट है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से, और राजकुमार रिवार ने हमें लिख भेजा है सादुल शहर राजस्थान से। ओम बगरिया की कमेंट है गांव बांडीवाला फाजिलका से, और प्रताप पांडे ने हमें कमेंट भेजी है कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से। हुकुम करमरकर की कमेंट आई है बेरनी मध्य प्रदेश से, और अशोक सिंह ने अपना संदेश हमें भेजा है धनवंतरी नगर जबलपुर मध्य प्रदेश से। बीपी गौतम की कमेंट आई है एटा रोड गजरुंडवारा उत्तर प्रदेश से, और अशोक वर्मा ने हमें अपनी कमेंट भेजी है जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से। दोस्तों अपने प्यारी प्यारी कमेंट्स के साथ साथ आप कार्यक्रमों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी हमें ज़रूर लिखकर भेजें, क्योंकि जो आपकी प्रतिक्रियाएं होती हैं यही हमारे लिए एक्स्ट्रा एनर्जी का काम करती हैं। तो कार्यक्रम आपको कैसे लगते हैं ये भी हमें ज़रूर बताएं, और अब कार्यक्रम में समय है एक प्यारे से गीत का, तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत फिल्म गंगा की सौगंध से। प्यारी सी आवाज़ है लता की, और गीत को लिखा है अनजान ने संगीत कल्याण जी आनंद जी का। लीजिए ये प्यारा सा गीत आपके रेडियो सेट पर।

0: कार्यक्रम में रुकते हैं एक छोटी सी अंतराल के लिए, पर कहीं बचाइएगा, आपके ढेर सारे संदेशों के साथ हम हाजिर होते हैं बस कुछ ही पलों में।
1: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हमसफर, आकाशवाणी अयोध्या।
2: घर घर जन जन तक, दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन।
3: जग घूमे थर जैसा ना कोई।
1: यह है आपका अपना एफएम रेडियो चैनल 101.9 आकाशवाणी अयोध्या, जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
2: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं
4: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
1: AYODHYA AKASHVANI

0: www.cani@gmail.com शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: सुनिए।
1: भारत की आवाज को वैश्विक स्तर पर पहुंचा दी और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने महान आदर्शों पर चलती हुई आकाशवाणी आज 23 भाषाओं में सामाजिक आर्थिक विविधता और प्रसारण संगठन के पैमाने के संदर्भ में दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क बन चुकी है। 1923 में रेडियो क्लब की शुरुआत के बाद 23 जुलाई 1927 को मुंबई रेडियो स्टेशन के उद्घाटन के साथ भारत में रेडियो की औपचारिक शुरुआत हुई।

0: सन 1930 में रेडियो का राष्ट्रीयकरण हुआ और तब इसका नाम रखा गया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और 8 जून 1936 को इसका नाम रख दिया गया ऑल इंडिया रेडियो। 1956 में ऑल इंडिया रेडियो के अलावा आधिकारिक तौर पर इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी अपने 90वें वर्ष में पहुंच चुकी है, जिसका जश्न पूरा देश मना रहा है और जन जन में इस आकाशवाणी की आवाज गूंज रही है।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम कुछ तुमने कहा में, और आपके साथ आपकी दोस्त है नेहा। और जो आपके संदेश हैं वो हमारे पास तक आ गए हैं। अगला जो संदेश है वो ग्राम लसूड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से हमारे पास तक आया है। लिखने वाले हमारे श्रोता है गोविंद वैष्णव। रश्मि पांड्या ने हमें संदेश अपना भेजा है राजकोट गुजरात से। अनिल वर्मा की कमेंट हमारे पास तक आई है सदर बाजार कुरावली से। रमनेंद्र भूषण पांडे ने हमें अपना संदेश भेजा है अयोध्या से। और मोहम्मद फारूक शेख की अगली कमेंट है जो कि हमारे पास तक आई है गणेशपुर गंजडुंडवारा एटा उत्तर प्रदेश से। मोहम्मद इंतजार ने हमें लिख भेजा है भोजपुर सहारनपुर से। और वलीउल्लाह अंसारी ने हमें अपनी कमेंट जो है वो भेजी है पुराना तालाब डुमराव से। बड़ा ही प्यारा सा संदेश भी आपने साथ ही साथ लिखकर भेजा है। फासले बढ़ते हैं तो गलत फहमियां भी बढ़ जाती हैं, फिर भी वह भी हमें सुनाई देता है जो कहा भी ना गया हो। बिल्कुल सही बात आपने कही कि जब हमारे दरमियान जो है वो दूरी बढ़ती है तो गलत फहमियां भी जो है वो बढ़ती जाती हैं, और जो बातें हुई भी नहीं होती हैं वो भी हम सोच लेते हैं, और ओवर थिंकिंग की वजह से हमारे जो रिश्ते होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी दूरियां ना बढ़ाएं, और अगर आपकी किसी अपने के बीच में आपसे दूरी है तो जल्द से जल्द उसे ख़त्म करने की कोशिश करें, क्योंकि बातचीत ही है जिससे हर समस्या का जो हल है वो निकाला जा सकता है। अगली कॉमेंट नंद कुमार ठाकुर की है जो हमारे पास तक आई है बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से। और विनोद मूर्त ने हमें लिख भेजा है उज्जैन बोरखेड़ा से। रिजवान खान ने अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से हमें संदेश भेजा है। और सुदर्शन शाह का संदेश पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से हमारे पास तक आया है। तुलसी मस्की ने हमें लिख भेजा है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से। और शंकर लाल जायसवाल की कमेंट जिला नांदेड़ के तला महाराष्ट्र से हमारे पास तक आई है।

तुलसीदास शुगमस्केन ने पंचकुला चंडीगढ़ से हमें कमेंट भेजी है और उदय भानपाल की कमेंट आई है हमारे पास तक। रजौ ने जिला महोबा बुंदेलखंड से। नरेंद्र सुतर ने हमें अपना संदेश भेजा है हनुमानगढ़ राजस्थान से और रामचंद्र मखीजा ने हमें लिख भेजा है छत्तीसगढ़ से। विनोद बरासा ने हमें अपनी कमेंट भेजी है गांव खोखरा वाली से और नंदकिशोर घटे ने हमें लिख भेजा है बीड शहर महाराष्ट्र से। बाबू भाई की कमेंट है आई है उदयपुर राजस्थान से हमारे पास तक। और लक्ष्मण सिंह राजपूत ने हमें लिख भेजा है छत्तीसगढ़ कोरबा से। रविंद्र दास ने किशनगंज बिहार से हमें संदेश भेजा है और सोहन जोशी की कमेंट हमारे पास तक आई है भाटापारा छत्तीसगढ़ से। अनोखे लाल ने कटरा चांदखा मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से हमें संदेश भेजा है और राजेंद्र नारंग ने हमें लिख भेजा है भटिंडा रोड मंडी डबवाली से। राघव बघेल ने हमें लाघान पंडरिया छत्तीसगढ़ से अपनी कमेंट भेजी है। विश्वनाथ साहू का जो संदेश है वो लक्षणपुर छत्तीसगढ़ से हमारे पास तक आया है। और आपके ये जो संदेश है यही कार्यक्रम को पूर्ण करते हैं और इन्हीं संदेशों के जरिए ये कार्यक्रम बनता है खास और ये और भी खास बनता है प्यारे प्यारे गीतों से। तो आप ही में से किसी श्रोता की पसंद का अगला गीत जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, इसे हमने लिया है फिल्म मैंने प्यार किया से। प्यारी सी आवाज़ है लता मंगेशकर की। गीत को लिखा है असद भोपाली ने और संगीत है राम लक्ष्मण का। तो लीजिए एंजॉय करिए ये प्यारा सा गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

कार्यक्रम चल रहा है कुछ तुमने कहा और आपके ढेर सारे संदेशों के साथ हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा। और अगला जो संदेश है वो वडिंग खेड़ा पंजाब से हमारे पास तक आया है। आर कुमार हमें ये संदेश लिखते हैं। रमेश चौहान का अगला संदेश है जो कि कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से हमारे पास तक आया है। मुकेश गोस्वामी ने हमें लिख भेजा है उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। अनिल जैन का अगला संदेश आया है मलियान सरधना मेरठ से। और बालकरण वर्मा ने हमें बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से संदेश भेजा है। प्रवीण जोशी की कमेंट आई है हमारे पास तक गुजरात गांधीग्राम से। और माखन वर्मा की कमेंट आई है अड़ार नांदगाल घाट छत्तीसगढ़ से। मोहम्मद यासीन ने हमें लिख भेजा है नई बस्ती गंज डुंडवारा से। और राजकुमार डोंडी की कमेंट हमारे पास तक आई है गांव फरासी जिला हिसार से। राष्ट्रपाल गजभाई ने हमें लिख भेजा है छत्तीसगढ़ डोंगर गाँव से। और शमशुल कमर राही ने हमें लिख भेजा है गंज डुंडवारा से। अशोक ढाले की कमेंट हमारे पास तक आई है कुंभार गली श्रीरामपुर से। और जगदीश धाकड़ ने हमें लिख भेजा है ग्राम हिंगड़ी से। चंद्रकांत साहू की अगली कमेंट है जो कि हमारे पास तक आई है इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से। और विनोद लखनपाल रामर की कमेंट हमारे पास तक आई है करनाल से। संतोष खड़से ने हमें लिख भेजा है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से। और साथ ही साथ बड़ा ही प्यारा सा आपने संदेश भी लिख भेजा है। कौन कहता है सिर्फ मौत पर मरता है इंसान। कौन कहता है सिर्फ मौत पर मरता है इंसान, मौत से पहले भी हजार दफा मरता है वो। आखिरी घड़ी जब मिट्टी में मिलाया जाता है उसे तो लोगों की नजरों में तब मर जाता है इंसान। मगर हर दिन जितनी बार मरता है वो किसी को क्या खबर कितना कब्र में जीता है वो। लोग तो लाश को मर जाना कहते हैं पर हर पल खुद में लाश रहता है इंसान। बड़ी गहरी और संवेदनशील बात आपने लिखकर भेजी है। अगला जो कमेंट है हमारे पास तक कुंवर कृपाल सिंह का आया है वो आया है जिला रतलाम मध्य प्रदेश से। और राजपाल ने हमें लिख भेजा है आदर्श नगर मालौत से। मोहम्मद रफीक की कमेंट आई है हमारे पास तक ताज मंजिल रकड़ बाजार खंडवा से। और फहीम मंसूरी ने हमें लिख भेजा है आपने अपना पता नहीं लिखा है तो आपसे निवेदन है कि अगली बार जब भी कमेंट करें तो अपना पता भी जरूर लिखकर भेजें। फाजिलका से रमन वर्मा की कमेंट हमारे पास तक आई है। और सदाशिव थोरात ने हमें लिख भेजा है आपने भी अपना पता नहीं लिखा है। श्रोताओं आपसे गुजारिश है कि जब भी अपना नाम लिखें अपनी पसंद का गीत लिखें तो साथ ही साथ अपना पता भी लिखकर जरूर हमें भेजें। अशोक बब्बर की कमेंट श्री गंगानगर राजस्थान से हमारे पास तक आई है। और साउथ एक्सटेंशन से गुरमीत सिंह मिता ने हमें कमेंट भेजी है। दीपेश वर्मा ने हमें कमेंट भेजी है ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से। और इरशाद अहमद ने मड़ियाहू जौनपुर से हमें कमेंट भेजी है। सदानंद मंदूरकर ने हमें लिख भेजा है डाबकी रोड अकोला से। और राज ताज अंसारी ने हमें अपनी कमेंट भेजी है आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से। शंभू दयाल की कमेंट है जो कि आई है हमारे पास तक गांव जाखोद से। और किशन सपकल ने हमें कमेंट भेजी है शास्त्री नगर बीट शहर से। और आप सभी की कमेंट्स के बीच लीजिए एक और प्यारा सा गीत आप सभी के लिए।

कार्यक्रम चल रहा है कुछ तुमने कहा और आपके साथ हैं आपके दोस्त। अगला जो संदेश आया है हमारे पास तक वो आया है गांव नथाना पंजाब से हरछिंदा छिंदा का। खिल्लू परवेज ने हमें लिख भेजा है हरदोई रोड लखनऊ उत्तर प्रदेश से और बी के हितेंद्र दास ने हमें असम से कमेंट भेजी है। मेका विर्क की कमेंट आई है हमारे पास तक गांधी चौक रोपर पंजाब से और हल्के जयपाल यादव ने हमें जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से कमेंट भेजी है। माधव नामदेव का संदेश आया है जबलपुर मध्य प्रदेश से और जीके परमार ने हमें लिख भेजा है गांधीनगर गुजरात से। अरविंद कुमार की अगली कमेंट है जो कि आई है हमारे पास तक प्रेमनगर से और प्रकाश बरगोनकर का जो संदेश है वो सुरवेड़ी औरंगाबाद से हमारे पास तक आया है। सीकर राजस्थान से दत्तर सिंह ने हमें संदेश भेजा है और रणधीर गुप्ता का जो संदेश है वो हमारे पास तक आया है ओखला संगम बिहार दिल्ली से। इसके अलबख्श की

कमेंट है, तेलंगाना निजामाबाद से हमारे पास तक आई है और राजू कुमार ने मुजफ्फरपुर बिहार से हमें लिख भेजा है। बी कमल की कमेंट आई है मजनू का टीला से और नरेंद्र नेतम ने हमें लिख भेजा है बगबुड़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से। अभिजीत गवंकर ने हमें अपना संदेश भेजा है मेहरनगर उमेरखंड खेड़ महाराष्ट्र से और संदीप कुमार का संदेश आया है हमारे पास तक।

रिपोर्ट से। और खिलेश फुलमाली ने अहमदपुर खैगांव खंडवा से हमें अपना संदेश भेजा है। ब्रिजेंद्र के जैजन ने भूला कॉलोनी घरौंदा जिला करनाल हरियाणा से अपना संदेश हमारे पास तक भेजा है। चंदौसी रोड चमनपुर उत्तर प्रदेश से मुकेश गौतम का संदेश हमारे पास तक आया है। और अजीत कसाना ने हमें लदावली मुरादाबाद से अपना संदेश भेजा है। विनय मोहन ने सेक्टर 18 जगाधारी जिला यमुनानगर हरियाणा से अपना संदेश भेजा है। और बिट्टू भाटिया का संदेश आया है सब्जी मंडी झज्जर से। हीरामणि वर्मा ने छत्तीसगढ़ से अपना संदेश भेजा है। नबी हसन अब्बासी का संदेश आया है मार हरा दरवाजा एटा से। और सुरेश राठौड़ ने हमें लिख भेजा है गांधीनगर गुजरात से। राजेंद्र गंगवार ने अपना संदेश भेजा है कस्बा कलोडिया नवाबगंज जिला बरेली से। और मुकेश गोस्वामी का संदेश हमारे पास तक आया है जो भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। आरसी कामड़े ने हमें लिख भेजा है जवाहर नगर दुर्ग से। और ज्ञान भूषण शर्मा की कमेंट हमारे पास तक आई है करनाल से। जय नारायण हागे की कमेंट आई है हमारे पास तक बुलढाड़ा से। और सुखविंदर सिंह जौड़ा कृष्णा पार्क दिल्ली से हमें संदेश भेजते हैं। पुखराज बोध गुजर ने हमें ज्योति नगर नोखा राजस्थान से अपना संदेश भेजा है। और गगनदीप थांडी ने हमें लिख भेजा है टोरोवाल नवा शहर पंजाब से। जॉन रिक्रोस्टो का संदेश आया है जनकपुरी सहारनपुर से। और सुरेंद्र खुराना ने हमें लिख भेजा है न्यू मुल्तान नगर दिल्ली से। बी कमल का संदेश आया है हमारे पास तक मजनू का टीला से। और सतीश राव वानखेड़े पाटिल ने हमें अपना संदेश भेजा है बेलगांव महाराष्ट्र से। फहीम मंसूरी का संदेश बांदा यूपी से हमारे पास तक आया है। और दुर्गा राम साहू ने हमें लिख भेजा है चरडोगरी पिपरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से। और इन्हीं संदेशों के बीच एक और प्यारा सा गीत लीजिए सुनिए फिल्म कहो ना प्यार है से।

कार्यक्रम चल रहा है कुछ तुमने कहा, और अगला जो संदेश है वो आया है हमारे पास बंडू लोहार पोपलघट का निवासा खुपटी महाराष्ट्र से। मोहम्मद हफीज ने हमें अपना संदेश भेजा है पंजाब से, और मुकेश कश्यप का संदेश हमारे पास तक आया है जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से। बालकरण वर्मा ने हमें लिख भेजा है छत्तीसगढ़ से, और अशोक वर्मा की कमेंट हमारे पास तक आई है जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से। मुकेश कश्यप की कमेंट आई है जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से, और आप सभी ने सुनना चाहा है ये प्यारा सा गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में।

0: अयोध्या केंद्र है 101.9 एफएम बैंड पर। आइए सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।
1: को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: क्या आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद, सेवाएं या संदेश पहुंचे अयोध्या के हर घर तक? तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह, जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या, धारा रोड, बेगमगंज, गड़ेया, अयोध्या। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 के बीच। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashvani@gmail.com, ayodhyaakashvani@gmail.com।
0: कार्यक्रम गीतांजलि सुनने वाले सभी श्रोताओं को नेहा तिवारी का प्यार भरा नमस्कार। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की शुरुआत में शंकर महादेवन के स्वर में ये प्यारा सा गीत।

0: रुकते एक छोटे संतराल के लिए, पर कहीं मत जाएगा, वापस आते हैं बस कुछ ही पलों में।
1: अब आपके शहर में भरोसेमंद इलाज।
2: कैंसर, हृदय, डायलिसिस, हड्डी और ईएनटी का इलाज आयुष्मान कार्ड द्वारा मुफ्त।
1: फ्री एम्बुलेंस की सुविधा।
2: झुनझुनवाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायबरेली रोड, अयोध्या। कॉल करें 9044-20-70-70।
0: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम गीतांजलि में। कार्यक्रम में अगला गीत सुनिए कैलाश खेर की आवाज में, एल्बम कैलाश से।

और इसी गीत के साथ कार्यक्रम गीतांजलि यही संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 एफएम बैंड और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र

एनटीए और सीबीआई से जवाब मांगा। कहा एजेंसियों ने पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा। असम में विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में लू चलने की संभावना। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम

0: महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जन सेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म और आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि ये खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा। एक रिपोर्ट।
2: न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में पुणे निवासी भौतिकी विषय के लेक्चरर मनीषा संजय हवलदार को 6 दिन के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। असम सरकार ने आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना और लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण करना अनिवार्य है। विधेयक में ये प्रावधान है कि ये असम में रहने वाली किसी भी अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होगा। विवाह के लिए विधेयक में पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है और बहुविवाह पर रोक लगाई गई है। कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए विधेयक में विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव है, जो जीवन साथियों के लिए भरण पोषण, विरासत और अन्य कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। राज्य के कैबिनेट मंत्री अतुल बोरा ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की ओर से सदन में समान नागरिक संहिता असम विधेयक 2026 पेश किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर देश को कमजोर करने का आरोप लगाया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि सरकार स्थिर और मजबूत है। उन्होंने कहा कि ऐसे वैश्विक संकट के बीच, जब कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं कमजोर पड़ गई हैं, देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस वैश्विक चुनौती का मजबूती से सामना कर रहा है। बीजू जनता दल बीजेडी के नेता और राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय ने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक को लिखे अपने इस्तीफे में देवाशीष सामंतराय ने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर उन्हें जानबूझकर नीचा दिखाया जा रहा था। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग

0: को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम रखना है। भारत इस गठबंधन के वर्तमान अध्यक्ष के तौर पर इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। वर्ष 2024 में अमेरिका के विल्मिंगटन में आयोजित पिछले क्वाड शिखर सम्मेलन में इस समूह के शीर्ष नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए कई बड़े कदमों की घोषणा की थी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज पश्चिम एशिया संकट के बीच ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि घरेलू अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। मुंबई में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबे के 37वीं वर्षगांठ समारोह के एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि डीजल और पेट्रोल के उत्पाद शुल्क में कटौती से राजस्व पर 1,00,000 करोड़ रुपए का असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सोने की अधिक कीमत बाहरी मोर्चे पर कुछ चुनौतियां उत्पन्न कर रही हैं। उन्होंने कहा कि देश के नीतिगत प्रतिक्रिया को घरेलू विकास को बनाए रखने के हिसाब से तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परोपकार संबंधी अपीलों के बाद एक संशयपूर्ण और निराशावादी माहौल बनाने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत डर फैलाने का जोखिम नहीं उठा सकता। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा भ्रामक है। इकाई ने कहा कि रक्षा मंत्री और सरकार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विकल्पों पर विचार करने से पहले कूटनीति को हर मौका देंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य से विश्व की ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। इस वर्ष की शुरुआत से ईरान पर अमेरिका और इसराइल के संयुक्त हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य बाधित हुआ है। विदेश मंत्री रूबियो भारतीय नेताओं के साथ बैठक करने के लिए इस समय भारत में हैं। वे नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 3 दिन का लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अगले 2 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। आज पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। इस बीच आज पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप के कुछ स्थानों पर आज बिजली चमकने और आंधी तूफान आने की संभावना है। भीषण गर्मी नौतपा की आज से शुरुआत हो गई है। ये अगले महीने की 2 तारीख तक जारी रहेगा। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
2: मध्य प्रदेश में आज से नौतपा शुरू हो गया है। ये सिलसिला 2 जून तक चलेगा। नौतपा यानी साल की वो 9 दिन जब सूरज की तपिश सबसे ज्यादा होती है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 44 जिलों में लू चलने की चेतावनी दी है। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में हालात सबसे गंभीर हैं। इसीलिए इन 5 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया है। मौसम विभाग का कहना है

0: कि 25 से 28 मई के बीच गर्मी और भी बढ़ेगी और 31 मई तक किसी भी तरह की राहत की उम्मीद नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
1: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 944 अंक की वृद्धि के साथ 76,360 जबकि निफ्टी 270 अंक बढ़कर 23,989 पर था। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता 2026 का शुभारंभ आज नॉर्वे के ओस्लो शहर में हो रहा है। टूर्नामेंट भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। 13 वर्ष के इतिहास में पहली बार ये प्रतियोगिता स्टावांगर के बजाय ओस्लो में आयोजित की गई है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के ओपन और महिला दोनों वर्गों में शामिल खिलाड़ियों में मैग्नस कार्लसन, डेगो केश और आर प्रज्ञानानंद जैसे विश्व के दिग्गज ग्रैंड मास्टर भी हैं। भारत ने जापान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा रनर्स एसोसिएशन IAU एशिया तथा ओशिनिया चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। भारत ने कुल 5 पदक जीते और पुरुषों की श्रेणी में दबदबा कायम रखा। अमर सिंह देवंदा ने स्वर्ण पदक जीता। गीनो एंटनी ने रजत पदक हासिल किया जबकि कांस्य पदक भी भारत के खाते में गया। महिलाओं की श्रेणी में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। तेंजिन डोलमा शीर्ष भारतीय खिलाड़ी रही और व्यक्तिगत रूप से चौथे स्थान पर रही। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ

0: हरि आई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
1: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
0: हरि आई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
1: फोन नंबर 9161877347।
2: मुझे ना लखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
3: अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा?
2: नहीं, मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए। मुझे वो दुकान भी मालूम है, उसने जहाँ से खरीदा था।
0: अच्छा, वेरी स्मार्ट।
4: क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान को सभी लोग जाने और ले जाएं वहाँ से सामान?
5: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
4: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी अयोध्या से,
1: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
6: ayodhyaakashwani@gmail.com।
7: शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
8: अंगना कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियन का लता सखी के प्यार भरा नमस्कार। और सखी, इस समय तो आप सभी आमे के बगिया में बैठी ठंडी ठंडी जोड़ जोड़ बयार और हवा ले थी हो, और आम छील छील के बढ़िया से बढ़िया नमक और मिर्ची मिलाए के खटिया पर बैठी आमे के मजा ले थी हो। अरे अरे सखी, हमरे मुँह में तो पानी आएगा। अच्छा सखी, बतावा कि आज कौन दिन वार है? सखी रहा देव रहा, हम ही बताए दे थे, आज विश्व फुटबॉल दिवस है। विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई का मनाया जाता है। यह दिन का पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा की तरफ से पूरा अधिकार के साथ घोषित किन गवा रहा। एक मुख्य उद्देश्य यह है कि फुटबॉल खेल के वैश्विक लोकप्रिय कूटनीत और एक माध्यम से शांति, विकास और सामाजिक समावेश का बढ़ावा देता है। यह दिन न केवल एक खूबसूरत खेल के इतिहास के जश्न मनावत है, बल्कि दुनिया भर में लोगों के जाति, धर्म और सीमा पर परे एकजुट करे का इनके शक्ति का भी सम्मानित करत है। फुटबॉल खेल सबसे अच्छा खेल है। यह खेल दुनिया के सबसे ज्यादा लोकप्रिय खेलन में माना जाता है। बच्चे और बड़े सब एका बड़े प्रेम से खेलत है। और बहनों, सबसे अच्छी बात यह है कि यह खेल स्वास्थ्य के बदे बहुत महत्वपूर्ण है। 90 मिनट के यह खेल में लगातार दौड़क परत है, तो जौन एरोबिक क्षमता मांसपेशियन में होते ना, वह ताकत देत है और हड्डी का मजबूत करे में मदद करत है। फुटबॉल खेल सेहत के बदे बेहतरीन व्यायाम है, जौन खिलाड़ियन के सहन शक्ति और हमें ताकत देत है। एकजुटता के मिसाल में यह खेल सीमा पर धर्म और जात से ऊपर उठ के लोगों का एक मंच पर लावत है। और तो और सखी, एक बात यह है कि शांति और सहयोग का बढ़ावा देता है, जैसे यह खेल में लड़के और बड़े भी खेल के इच्छुक रहते हैं। और देखो बनी, आज गंगा दशहरा है, तो गंगा दशहरा के अपने सखियन का बहुत बहुत शुभकामना। ये त्यौहार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष का 10वीं तिथि का मनावा जाता है। यह पर्व राजा भगीरथ के कठोर तप के परिणाम स्वरूप माँ गंगा के स्वर्ग से अपने पृथ्वी पर आवे खातिर बहुत तपस्या कीन रहा। यह दिन गंगा नदी में स्नान कहे से बहुत फल मिलत है, सब पाप नष्ट हो जाता है। गंगा जी के पूजन अर्चन धूप दीप करब में बहुत फल है, एक बड़ा महत्व है। यह पर्व के पर्व माँ सखिये एका बहुत ही धर्म और रीति रिवाज से पूजा कई के अच्छे से एका मनावत हैं। देखा सखी, हम सब ही बत कही करत रहना कि गंगा दशहरा पे तो सखी कुछ ऐसने ही आज अपने नैया माँ काव्य पाठ लेके आए हैं। निर्मल कोमल गंगा माँ पर्यावरण संरक्षण हमारी जिम्मेदारी, नशा करे नाश। और कवित्रियाँ हैं अपने बहनी पूनम सिंह, तो चलो इन्हें इनसे सुना जाए।

वेग प्रबल धरती पर कैसे आती, शिव जटाओं में पहले समा जाती। वहां से गोमुख तक तब आई, धरती पर लहर लहर लहराई। वहां से गोमुख तक तब आई, धरती पर लहर लहर लहराई। दूसरी कविता मेरी नवयुवकों में नशा। ये भटका हुआ किशोर है, ये भटका हुआ किशोर है, लगता मदिरा का जोर है। ये भटका हुआ किशोर है, लगता मदिरा का जोर है, बिखरे बिखरे बाल हैं, लड़खड़ाती सी चाल है, बिखरे बिखरे बाल हैं, लड़खड़ाती सी

बतलावो क्यों चुप हो मौन, बातें हैं बड़ी बड़ी आंखें कुछ चढ़ी चढ़ी, बातें हैं बड़ी बड़ी आंखें कुछ चढ़ी चढ़ी, रात बीती दो घड़ी सेज पर प्रिया पड़ी, नींद है उड़ी उड़ी चौखट पर माँ खड़ी, कि इंतजार है किशोर की स्वयं से हार।

आदत है गलत बेकार सी ये लत, आदत है गलत अवनति की ओर क्यों बढ़े, सोपान क्यों न उन्नति के गढ़े।

0: बचपन के चट्टू से लेकर चिता तक की लंबी कहानी, बचपन के चट्टू से लेकर चिता तक की लंबी कहानी, कर सकते इनकार नहीं तुम वृक्षों की अद्भुत कुर्बानी, कर सकते इनकार नहीं तुम वृक्षों की अद्भुत कुर्बानी। महत्व उतना ही जीवन में इनका, पल पल की सांसों का जितना, महत्व उतना ही जीवन में पल पल की सांसों का जितना, आओ लगाएं वृक्ष धरा पर लगा सके हम जितना, आओ लगाएं वृक्ष धरा पर लगा सके हम जितना। रक्तवाहिनियां हैं नदियां बीती जाने कितनी सदियां निरंतर चलती ही रहती व्यथा किसी से ना कहती। किसी ने शव कूड़े कचरे डाला किसी ने सूखी हुई ढेरों माला। सबको दुलराती ही रहती प्रतिपल आगे बढ़ती। पर जगह है मानो आज रखता नदियों को साज। स्वच्छता में सब है तत्पर, प्रदूषण है नश्वर नश्वर। हमें ओजोन परत बचाना है, कार्बन डाइऑक्साइड घटाना है। पिघल रहे ग्लेशियर सारे तापमान के नित नए नजारे। गर्मी गर्मी सब चिल्लाते वृक्ष क्यों तुम नहीं लगाते। बरगद पीपल नीम लगाओ ऑक्सीजन ढेरों पाओ।
1: देखिए काट पाट कितने बढ़िया रही। पूनम सिंह बहनी अपने बाणी के माध्यम से प्रकृति के पूरा चित्रण कह दी नहीं, लेकिन बहनी वही बात बत कही में सबके आगे चलवे करी एक संदेश के बाद।
2: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: सुनत हो सखी, सुनत हो कार्यक्रम मंगनामा होए वाला है का खास?
6: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुनत है, अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
5: हाँ, जहाँ ज्यादा सखी जुड़ सकती अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कई सकती फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर,
6: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मन पसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
7: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
1: देखो बनी अंगनेम जो सखी लोग बैठी है ना, वो बढ़िया से गीत गौनाई सुनवे यहाँ, और सब सखी एकदम उत्सुक है कि बढ़िया से कुछ बढ़िया से मनमन सायन होए। तो हमें देर काहे का हम बढ़िया से गीत लेके आए हैं। स्वर है पद्मा के डुआनी व सखियन के, बोल है हम तो चली नहीं हरवा।

देखा बनी अंगनैया में कितनी मनो हारे गीत भाई, सब एकदम प्रश्नचित हो गई और सबके मनवा एकदम तरो ताजा हो गवा। और देखा सकी आज है रास बिहारी बोस जयंती, तो रास बिहारी बोस जी की जयंती है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस जी की जयंती हर साल 25 मई का मनाई जाता है। ये अपनी पूरी जिंदगी अंग्रेज के खिलाफ संघर्ष में लगाए दी नहीं। इनके जन्म 25 मई 1886 का बंगाल के वर्धमान जिला सुबलदह गांव में भवा रहा। गदर आंदोलन में वे गदर क्रांति के प्रमुख रणनीतिकार में से एक रही नहीं। आजाद हिंद फौज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जापान बुलाए के आजाद हिंद फौज के कमान सौंपिन रहा। रास बिहारी बोस जी के मुख्य भूमिका रही। और बहनों इनके निधन 21 जनवरी 1945 का टोक्यो जापान में निधन भवा रहा। अपने जापानी क्रांतिकारी मित्र लोग

जीवन के साथ मिलके देश के स्वतंत्रता के बदे निरंतर प्रयासरत रहिन। राज बिहारी बोस जी जापान में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेन रहा। अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन के साथ साथ लेखक और पत्रकार के रूप में भी काम प्रारंभ किन रहा। ये न्यू एशिया नाम से जापानी भाषा भी सीखिन और 16 पुस्तक लिखिन रहा। ये टोक्यो में होटल खोल के भारतीयन का संगठित किन रहा और रामायण का जापानी भाषा में अनुवाद किन रहा। राज बिहारी बोस जी की जयंती के बाद देखो बनी बारी आवत है अपने अंग नैया माँ सब सखियन के बदे बढ़िया से गीत संगीत के, तो नेक काम में देरी काहे का, हम बढ़िया से गीत लेके आए हैं शारदा सिन्हा और सखियन की आवाज़ में। बोल है कोयल बिन बगिया न सोहे राजा।

0: देखा मैंने गौने कितने बढ़िया रहे, एकदम सब सखियां एकदम निहाल हो गई। और देखा सखी अब हमार सखी बगिया में धूप मजोन है छहा थी बैठी रहा थी, गौने मधुर मधुर सुना कर रही थी। लेकिन देखो बनी आज जो जानकारी हम लेके आए हैं अपने घरेलू जानकारी में, आम के पन्ना बनावे की विधि सामग्री आप हमारे सखी लोग नोट कर लिए। 500 ग्राम कच्चा आम, पुदीना के पत्ती एक कप ताज़ा बढ़िया हरी हरी, चीनी या गुड़ एक कप, भुना जीरा एक चम्मच, काला नमक एक चम्मच, सफ़ेद नमक एक चम्मच, काली मिर्च आधी चम्मच, अदरक के एक टुकड़ा घिसा कद्दूकस किन है, और ठंडा पानी 4 से 5 गिलास जितना आवश्यकता हो। एक विधि है, सबसे पहले आम का उबाल लें, बढ़िया से धुल के आम का उबाल लें, और ठंडा हो जाए तो गूदा बढ़िया से होकर निकाल के गुठली अलग कर दें, एमा थोड़ के पानी डाल के मिक्सी या सिल पर पीस लें। पुदीना पत्ती, चीनी, भुना जीरा, सफ़ेद नमक, काला नमक, काली मिर्च सब डाल के जब तक चलावें जब तक कि बढ़िया से घोल बन ना जाए। अब एका एक जग में निकाल के बढ़िया से आवश्यकता अनुसार पानी मिला के अच्छी तरह से चलावें, और खट्टा मीठा आम के पना तैयार है। खुद पिए और सबका पिलावें, गर्मी बहुत माई बहुत फायदेमंद है। और जब देखो बनी हमारे सखी लोग अगर तनिक सूझबूझ से काम करी हैं तो गर्मी के जो महीना है ना, एकदम उनका कोनो पे असर ना पड़े और चुस्त दुरुस्त रही हैं, अंगनैया माँ अपन कामकाज अच्छे तरीके से निपटाई हैं। लेकिन गर्मी का मौसम तो है ये है, घाम तेज होता है, यह मौसम में अपने सखियन का चाहिए कि अपने लड़का बच्चा के विशेष ध्यान दें। काहे से देखो ये जो मौसम चलता है ना छुट्टी के, लड़के घर पे रहते हैं, कभो कभार बाग बगीचा में निकल गए, बाहर निकल गए, तो उन पर ध्यान जरूर रखें चाहे पहले बहन का, जैसे उनका कोनो प्रकार के बीमारी ना हो। लेकिन बहने जो घड़ी है इशारा करते हैं कि घर चले के बढ़िया हो गए है। अगले कार्यक्रम में नीक नीक बात बत कही गीत संगीत के साथ फिर हुई मुलाकात, तब तक के लता सखी का दे अनुमति नमस्कार।
1: वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।

अभी आप सुन रहे थे बहनों का कार्यक्रम अंगना। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर। आइए सुनते हैं केंद्रीकृत विविध भारती सेवा के कार्यक्रमों को।

0: सहेली
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सखी सहेली में। आप सभी को विधि जैन
2: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: आरती जी स्वागत है आप सभी का।
2: बिल्कुल बिल्कुल स्वागत आपका भी है और आज हम दोनों पहली बार शायद
1: साथ में सखी सहेली कर रहे हैं।
2: जी बिल्कुल। और हम सभी अपने श्रोताओं को सभी सखियों को सभी सखाओं को नमस्कार कर देते हैं।
1: जी बिल्कुल, हमारी तरफ से बहुत प्यार भरा नमस्कार है। और आरती जी एक मैंने जो अभी एक धुन लगाई थी, आजकल पांव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे, ये धुन कहती है कि बस दौड़ते रहना है, खेलते रहना है, उड़ते रहना है और फुटबॉल को उड़ाते रहना है।
2: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रुकना नहीं है, बस खेलते जाना है।
1: जी
2: खेलना जो है वो फिटनेस के लिए भी जरूरी होता है और हमारी मानसिक जो विकास है, जो हमारे जो शांति है उसके लिए बहुत जरूरी होता है। और विधि इसी के साथ हम बता देते हैं आज हम क्या क्या लेके आए हैं सेगमेंट्स।
1: जी बिल्कुल,
2: तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले
1: बात करेंगे कथा सुधा की, जो कहानी है बड़ी प्यारी सी कहानी जिसके बारे में आप थोड़ी देर बाद बताने वाली हैं।
2: जी हाँ।
1: तो उसके बारे में हम सुनेंगे और उसके साथ ही आज हम बात करेंगे विश्व फुटबॉल दिवस के बारे में।
2: जी हाँ, फुटबॉल दिवस के बारे में बताएंगे और साथ ही हम बात करेंगे जब परिवार के साथ हम सफर पर निकलते हैं तो हमें क्या क्या तैयारी करके निकलना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे।
1: हाँ, सफर पर तैयारी करके निकले वरना सफर करना पड़ सकता है।
2: हाँ बिल्कुल। वो आपको अंग्रेजी वाला सफर करना पड़ेगा।
1: जी बिल्कुल, तो अंग्रेजी वाले सफर से बचना है तो सफर की तैयारी करके अवश्य निकले। और उसके साथ ही हम आज वो बहुत स्वादिष्ट व्यंजन का स्वाद चखने वाले हैं।
2: जी आज हम बिहार के व्यंजन की बात करेंगे जो है खाजा और रसिया।
1: जी तो खाजा तो हमने खाया है, रसिया हमने नहीं खाया है। तो
2: रसिया हम सुनते भी हैं, जो एक बिल्कुल गीत भी होते हैं, लेकिन ये खाने वाला रसिया है।
1: सुनने वाला रसिया कान में बड़ा मीठा होता है, तो शायद खाने वाला भी बड़ा
2: मीठा होता है।
1: तो हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत प्यार से आई हैं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद, आप ही मुझे बहुत बहुत बहुत अच्छी लग रही हैं। और साथ ही हमारे जो श्रोता हैं उसको हम उनको बता देते हैं कि हम आज उनके लिए जो लेके आए हैं वो है प्रायश्चित। कथा सुधा के अंतर्गत कहानी जो लाए हैं वो है प्रायश्चित, जो कि भगवती चरण वर्मा जी की कहानी है। तो क्यों ना पहले सुन लेते हैं।
1: चलिए चलते हैं उस कथा की तरफ जो है प्रायश्चित।
3: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। आज कथा सुधा में सुनते हैं भगवती चरण वर्मा की कहानी प्रायश्चित।

अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और अगर रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी, पति की प्यारी और सास की दुलारी नवविवाहिता। भंडार घर की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी, नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ। सास जी ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया, लेकिन ठहरी बालिका

0: कभी भंडार घर खुला हुआ है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। कबरी बिल्ली को मौका मिला घी दूध पर, अब वो जुट गई। रामू की बहू की जान आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे। रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते ऊंग गई और बचा हुआ घी कबरी के पेट में। रामू की बहू दूध ढककर मिसरानी को आटा देने गई और उधर दूध नदारद। अगर बात यहीं तक रह जाती तो भी बुरा ना था। कबरी रामू की बहू से कुछ ऐसा परज गई थी कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची। रामू जब आए तब तक कटोरी साफ चटी हुई। बाजार से बालाई आई, जब तक रामू की बहू ने पान लगाया बालाई गायब। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वो घर में रहेगी या फिर कबरी बिल्ली ही। मोर्चाबंदी हो गई, दोनों सतर्क। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया, उसमें दूध मलाई चूहे और भी बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विविध प्रकार के व्यंजन रखे गए। लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक ना डाली, इधर कबरी ने सरगर्मी दिखलाई। अभी तक तो वो रामू की बहू से डरती थी, पर अब वो साथ लग गई, लेकिन इतने फासले पर कि रामू की बहू उस पर हाथ न लगा सके। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू को घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की मीठी झिड़कियां और पतिदेव को मिलता था रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में औटाए गए। सोने का वर्क चिपकाया गया और खीर से भरकर कटोरा कमरे के एक ऐसे ऊंचे ताक पर रखा गया जहां बिल्ली न पहुंच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई। उधर बिल्ली कमरे में आई, ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा, सूंघा, माल अच्छा है, ताक की ऊंचाई अंदाजी। उधर रामू की बहू पान लगा रही थी। पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने के लिए चली गई और कबरी ने छलांग मारी। पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झंझनाहट की आवाज के साथ फर्श पर। आवाज रामू की बहू के कान में पहुंची। सास के सामने पान फेंक कर वो दौड़ी। क्या देखती है कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े, खीर फर्श पर और बिल्ली डट कर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत। रामू की बहू पर खून सवार हो गया। न रहे बांस न बजे बांसुरी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली। रात भर उसे नींद ना आई। किस दाव से कबरी पर वार किया जाए कि फिर जिंदा न बचे, यही पड़े पड़े सोचती रही। सुबह हुई और वो देखती है कि कबरी देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे देख रही है। रामू की बहू ने कुछ सोचा, इसके बाद मुस्कुराती हुई उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की देहरी पर रख कर चले गई। हाथ में पाटा लेकर वो लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ में आ गया, सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी न हिली, न डुली, न चीखी, न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। आवाज जो हुई तो मेहरी झाड़ू छोड़कर, मिसरानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटना स्थल पर उपस्थित हो गई। रामू की बहू सर झुकाए अपराधी की भांति बातें सुन रही है।
1: हैं? ये क्या हुआ? हाय राम, दैया रे दैया, बहू जी, हमका तो लागत है बिल्ली मर गई।
2: हैं?
1: लागत का है, सच्चो मर गई। हाय, हत्या का पाप बहू पे चढ़ गया। माँ जी,
2: ये तो गजब हुई गवा। बिल्ली की हत्या, आदमी की हत्या तो बराबर है ना। हम तो रसोई ना बनावेंगे अब, बल्कि हम तो रसोई में पैरों न धरेंगे जब तक बहू के सिर हत्या का पाप रहेगा। हाँ,
3: कहती तो ठीक हो तुम सब। अब जब तक बहू के सर से हत्या ना उतर जाए,

0: तक, तब तक ना कोई पानी पी सकता है ना खाना खा सकता है। अरे बहू बहू, ये क्या कर डाला है?
1: अब इब का हुई अम्मा जी। हाँ। कहो तो पंडित जी को बुला लें हम।
0: हाँ ठीक कहती हो। अरे हाँ जाओ, जल्दी से जाओ, जाओ पंडित जी को बुला लो।
2: बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर तांता बंद गया। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू सिर झुकाए बैठी। पंडित परम सुख को जब यह खबर मिली, उस समय वो पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही वे उठ पड़े।
3: सुनती हो भगवान? भाई भोजन न बनाना, लाला घासी राम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा।
2: पंडित परम सुख चौबे छोटे और मोटे से आदमी थे। लंबाई 4 फीट 10 इंच और तोंद का घेरा 58 इंच। चेहरा गोल मटोल, मूंछें बड़ी बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुंचती हुई। कहा जाता है कि मथुरा में जब मनसेरी खुराक वाले पंडितों को ढूंढा जाता था तो पंडित परम सुख जी को उस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता था। पंडित परम सुख पहुंचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी, सास जी, मिश्रानी, किस्नू की माँ, छन्नू की दादी और पंडित परम सुख। बाकी स्त्रियां बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थी।
0: अरे पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन नरक मिलता है बताइए जरा।
3: हाँ हाँ, पत्रा देखकर अभी बताता हूँ। ये हाँ, अब ऐसा है, बिल्ली की हत्या अकेले से तो नरक का नाम नहीं बतलाया जा सकता। वो मुहूर्त भी मालूम हो जब बिल्ली की हत्या हुई, तभी नरक का पता लग सकता है। क्यों मिश्रानी, ये हुआ कब?
4: अरे यही कोई 7 बज रहा होगा सवेरे का।
3: 7 बजे सुबह।
2: पंडित परम सुख ने पत्रे के पन्ने उल्टे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक कुछ सुकड़ी और स्वर गंभीर हो गया।
3: हरे कृष्ण, बहुत बुरा हुआ, बड़ा बुरा हुआ है रामू की माँ। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या, घोर कुंभीपाक नरक का विधान है। ये तो बहुत बुरा हुआ। हरे कृष्ण।
0: तो फिर पंडित जी अब क्या होगा, आप ही बताइए। हमारा दिल तो बैठा जा रहा है अब शगुन की आशंका से।
2: पंडित परम सुख मुस्कुराए, अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा,
3: रामू की मां, चिंता की कौन सी बात है। अब हम पुरोहित कौन दिन के लिए हैं? शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। हरे कृष्ण।
0: पंडित जी, इसीलिए तो आपको बुलवाया था ना, अब आगे बताइए कि क्या किया जाए।
3: हरे कृष्ण। अब देखिए, यही एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली न दे दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए, बस। हरे कृष्ण।
5: हाँ, और क्या, पंडित जी ठीक ही तो कहते हैं, बिल्ली अभी दान दे दी जाए और पाठ फिर हो जाए।
0: हाँ तो पंडित जी, कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए।
2: पंडित परम सुख मुस्कुराए, अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा,
3: बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए। अरे रामू की माँ, शास्त्रों में तो लिखा है कि बिल्ली के वजन भर सोने की बिल्ली बनवाई जाए, लेकिन अब कलयुग आ गया है। हरे कृष्ण। धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा ही नहीं रही किसी में। हरे कृष्ण। रामू की माँ, बिल्ली के तौल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली 20-21 शेर से कम की क्या होगी।

0: हाँ, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा के दान करवा दो और आगे तो अपनी अपनी श्रद्धा है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
1: अरे बाप रे बाप, 21 तोला सोना? पंडित जी ये तो बहुत है, तोला भर की बिल्ली से काम नहीं निकलेगा।
0: रामू की माँ, 1 तोला सोने की बिल्ली? अरे रुपए का लोभ बहू से बढ़ गया, बहू के सिर बड़ा पाप है, बड़ा पाप, समझ रही है? इसमें इतना लोभ ठीक नहीं है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
2: मोल तोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परम सुख ने कहा,
0: हरे कृष्ण हरे कृष्ण, उसमें क्या मुश्किल है? हम लोग किस दिन के लिए हैं? रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करूंगा, पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
1: और पंडित जी, पूजा का सामान कितना लगेगा?
0: अरे कम से कम में हम पूजा करा देंगे। दान के लिए करीब 10 मन गेहूं, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने से काम चल जाएगा।
1: अरे बाप रे बाप, इतना सामान! अरे पंडित जी, इसमें तो 100-150 रुपए खर्च हो जाएंगे। हाँ?
0: फिर इससे कम में तो काम न चलेगा। बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है रामू की माँ। खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को तो देख लो, ये तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़े ही है। और फिर जैसी जिसकी मर्यादा, प्रायश्चित में उसे वैसा खर्च भी करना पड़ता है। आप लोग कोई ऐसे वैसे थोड़े ही है। अरे 100-150 रुपया आप लोगों के हाथ का मैल है।
1: और नहीं तो का, दान पुण्य से ही पाप कटते हैं, दान पुण्य में किफायत ठीक नहीं।
2: पंडित परम सुख की बात से पंच प्रभावित हुए। रामू की मां ने अपने चारों ओर देखा, सभी पंच पंडित जी के साथ। पंडित परम सुख मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा,
0: रामू की मां, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभीपाक नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्चा है, सो उससे मुंह ना मोड़ो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
1: सही कहा पंडित जी, अब तो जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा।
0: रामू की माँ, ये तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें ये अखरता है तो ना करो, मैं चला।
1: अरे पंडित जी, अरे आपके पैर पकड़ती हूँ भाई, अब जमकर आसन जमाइए, बताइए और क्या हो, क्या करना है?
0: 21 दिन के पाठ के 21 रुपए।
1: अच्छा।
0: और 21 दिन तक दोनों बखत 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। सो इसकी चिंता ना करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूंगा और मेरे अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मण के भोजन का फल मिल जाएगा।
1: ऐसा?
0: हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
3: हाँ ये तो पंडित जी ठीक है कहते हैं, पंडित जी के तोन तो देखो।
0: अच्छा तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ, 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं, 2 घंटे में मैं बनवा कर लौटूंगा, तब तक सब पूजा का प्रबंध कर रखो। और देखो पूजा के लिए।
2: पंडित जी की बात खत्म भी ना हुई थी कि मेहरी हांफती हुई कमरे में घुस आई और सब लोग चौंक उठे।
4: अरे अम्मा जी।
1: हाँ?
4: ये तो
1: क्या हुआ, बोलो तो।
4: अरे हुआ का,
1: अरे
4: बता
1: का बताए
4: अम्मा जी, वो बिल्ली जिंदा थी, उठ के भाग गई।
0: क्या? बिल्ली भाग गई? हरे कृष्ण हरे कृष्ण।

0: अभी आपने सुनी भगवती चरण वर्मा की कहानी प्रायश्चित। पात्र परिचय इस प्रकार है: सूत्रधार जी श्याम, पंडित जी जयंत पात्रिकर, रामू की माँ रेणु चतुर्वेदी, मेहरी आकांक्षा सिंह, मिश्रानी ममता सिंह, छन्नू की दादी पूनम त्रिपाठी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
1: आरती जी, 11 तोला सोने की मिली
2: और वो भी भाग गई।

0: तो आरती स्वागत है फिर से सखी सहेली में। हाँ। और पंडित जी रूठ गए थे तो हमने उनको गाना सुना दिया, देखो रूठा ना करो, अब तक मान गए होंगे। अब बिल्ली तो नहीं मिली 11 तोला की, क्या कर सकते हैं। पर हाँ जी,
1: अब है फुटबॉल दिवस के बारे में कुछ बात करनी तो बनती है, क्योंकि आज है फुटबॉल दिवस। और फुटबॉल जो है विधि फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है और इस खेल की दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर बोलती है। और इसमें हम बता देते हैं कितने खिलाड़ी होते हैं
0: जी।
1: तो इसमें 11-11 खिलाड़ियों की दो टीमें होती हैं, जो एक गेंद को हाथ के उपयोग के बिना शरीर के अन्य हिस्सों से, जैसे कि आप सिर से मार सकते हैं, पैर से मार सकते हैं, छाती से मार सकते हैं, बस आप हाथ का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ही इसके रोचक मुकाबले होते हैं।
0: बिल्कुल, बहुत रोचक मुकाबले होते हैं। और खेलों के लिए किसी ने कहा भी है कि खेलों की दुनिया बड़ी निराली होती है, हार में भी यहाँ जीत की लाली होती है, जो मैदान में डटकर मुकाबला करता है असल में वही खिलाड़ी सबसे भारी होता है।
1: बहुत बढ़िया।
0: और ये जो भारी खिलाड़ी होता है वो हाथों का उपयोग नहीं करता,
1: बिल्कुल
0: के बाकी अंगों का प्रयोग कर रहा है। और फुटबॉल खेलने से शारीरिक फिटनेस भी बढ़ती है, संपूर्ण शारीरिक गतिविधि है जो पूरे शरीर की मांसपेशियों को सक्रिय करता है। तो अगर हम विश्व फुटबॉल दिवस की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 25 मई 1924 को पेरिस में, और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के दौरान पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया गया था।
1: बिल्कुल, और इस टूर्नामेंट ने विश्व जो वैश्विक स्तर पर फुटबॉल की लोकप्रियता को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जिसके उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थिति को चुना गया है। और फुटबॉल को वैश्विक स्तर पर संचालित करने वाली संस्था है फीफा, और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO

0: सहयोग से विश्व फुटबॉल सप्ताह 21 से 25 मई तक मनाते हैं, जिसका विषय रहता है सक्रिय हैं, सक्रिय रहिए। इसका उद्देश्य लोगों को शारीरिक रूप से सक्रिय और स्वस्थ रहने के लिए प्रोत्साहित करना होता है।
1: बिल्कुल ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहते हैं और बढ़िया बढ़िया खिलाते रहते हैं। आरती देखिए, खेलना जीवन में बहुत जरूरी है,
0: बहुत जरूरी है।
1: और फुटबॉल जो खेल है वो जब हम स्वयं भी खेलते हैं या हमारे सामने बच्चे खेल रहे होते हैं तो हम खुद देखते हैं कि उनका पूरा शरीर उसमें लगा हुआ होता है,
0: वो
1: पूरी मांसपेशियां उसमें काम कर रही होती हैं। और कई बार तो ये देखा गया है कि बच्चों की ऊंचाई भी यानी हाइट भी इससे बढ़ती है
0: और पूरी बॉडी का स्ट्रेंथ, पूरे बॉडी में मजबूती आती है क्योंकि वो, और दिमाग भी से सक्रिय होता है क्योंकि पूरा उनको ध्यान रखना होता है कैसे गोल करना है, कैसे निकालना है, कहां से निकालना है बॉल को। तो बहुत ही मजेदार ये खेल भी, देखने वाला भी एकदम देखता रह जाता है इसे।
1: हाँ, और हमारे श्रोता भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें इस विषय पे कह रहे हैं, और जिनमें से एक बात और मुझे, एक कविता और मुझे याद आती है, जब हम बचपन में थे और खेला करते थे तो बारिश की कीचड़ में पूरी तरह से सराबोर होकर चले आते थे।
0: इस खेल की कहिए तो सुंदरता ही यही है कि खूब कीचड़ में, मिट्टी में एकदम सराबोर होकर खेलने से।
1: बिल्कुल, हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, फुटबॉल खेलने में बहुत अधिक एनर्जी और स्टैमिना की आवश्यकता होती है। इसे दुनिया के सबसे थका देने वाले और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण खेलों में से एक माना जाता है। एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी एक मैच के दौरान लगभग 1000 से 1500 कैलोरी तक खर्च कर सकता है, मतलब बहुत सारे रसगुल्ले खाए जा सकते हैं इसके साथ।
0: बहुत बहुत आराम से खा सकते हैं क्योंकि आपको जो सोचें कि मोटापा चढ़ेगा तो वो हो ही नहीं सकता, इतना ज्यादा इसमें खेलने में
1: कैलोरीज यहाँ पे खत्म कर दी जाएंगी। जी बिल्कुल। तो आरती ऐसे ही इसके साथ में एक कविता और मुझे याद आती है कि खेल सिखाते हैं हौसला और उड़ान, मुश्किल में भी रखना खुद का ध्यान, जीत मिले तो विनम्र रहना, हार मिले तो बन जाना तूफान।
0: वाह, बहुत बढ़िया बात।
1: ये कविता जब मैं पढ़ रही थी ना तो इसका अर्थ मुझे समझ में ये आ रहा था कि कभी कभी हम ना जीत पर घमंड करने लगते हैं और हार पर दुख। यहाँ पर बिल्कुल उल्टा कहा है कि अगर जीत मिले तो विनम्र बनो, सर झुकाकर जीत स्वीकार करो और हार जाओ। कहते हैं
0: जिस पे ज्यादा फल लगे होते हैं वो झुक जाता है।
1: हाँ,
0: जिस पे कुछ नहीं लगा होता वही अकड़ के खड़ा रहता है।
1: जी बिल्कुल। तो ये जो विश्व फुटबॉल दिवस है ये बहुत बढ़िया खेल है और इस खेल को हमारे श्रोताओं में से एक श्रोता ने और टिप्पणी लिखी है, वो जरा हम पढ़ते हैं।
0: तो एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि विश्व फुटबॉल दिवस का महत्व और उद्देश्य सांस्कृतिक एकता, फुटबॉल को किसी भाषा या की आवश्यकता नहीं होती है, ये दुनिया भर के विभिन्न समुदायों और संस्कृतियों को आपस में जोड़ता है, शांति और कूटनीति को मान्यता देता है, लोगों को एक मंच पर लाता है जिससे कि लोगों में आपसी समझ और सहिष्णुता बढ़ती है, और साथ ही ये दिवस लैंगिक समानता को भी बढ़ावा देता है और महिलाओं को और लड़कियों को भी जो सशक्त बनाने का काम करता है, एक महत्वपूर्ण साधन होता है।
1: बहुत बढ़िया चीज है ना, देखिए बेटियां भी खेलती हैं, बेटे भी खेलते हैं, सब खेलते हैं और खेलते खेलते अपने आप को एकदम बढ़िया मजबूत बना लेते हैं और इस मजबूती को में स्वीकार किया जाना चाहिए। हम तो ये कहेंगे कि बच्चों को छोटी उम्र से ही फुटबॉल पकड़ा दो और वो खेलना शुरू कर दें।
0: बिल्कुल, वो मोबाइल से दूर रहेंगे, वो पकड़ेंगे भी नहीं मोबाइल अगर आपने एक बार इस खेल में उनको डाल दिया तो।
1: और छोटे छोटे बच्चे अगर फुटबॉल में पैर मारते रहेंगे तो शायद उनके पैरों की ताकत बढ़ेगी और उस ताकत के कारण उनके शरीर का पूरा विकास भी होगा, और फिर धीरे धीरे जब वो बढ़ेंगे तो उनको कूटनीति भी आने लगेगी कि कहां से बॉल निकाल देना है, अगले किस दोस्त को पास करना है, शायद इस सबसे उनकी मित्रता भी बढ़ती है।
0: सहयोग की भावना इसी को तो कहते हैं, एक जो जब हम बॉल को पास करते हैं दूसरे तक पहुंचाते हैं उस पर विश्वास रखे कि वो गोल कर देगा,
1: तो शायद यहीं से एक संगठन का विकास भी होता है।
0: बिल्कुल।
1: तो जब संगठन का विकास हो रहा है तो हम एक छोटा सा विराम लेते हैं, इसके बाद और बात करेंगे और गीत सुनेंगे।
0: जी।

0: बेस्ट उदाहरण है। एक फुटबॉल पूरी दुनिया को जोड़ देती है। जब मैच चल रहा होता है तो पूरी दुनिया की नजरें और धड़कनें सिर्फ एक ही फुटबॉल पर टिकी हुई होती हैं। ये तो सही बात है। टीवी के सामने सब जमे बैठे होते हैं, देख रहे होते हैं, सबके अपनी अपनी टीम होती है पसंद की, और किसी न किसी टीम के लिए सब दुआ कर रहे होते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। और एक जब वो जो खेल रहे होते हैं और वो बादलों की तरह आसमान में कभी उड़ते हैं, कभी नीचे जमीन से निकल जाते हैं, कभी नीचे से निकलते हैं, कभी बीच से निकलते हैं, पता नहीं क्या करके उस खेल को खेलते हैं, लेकिन ये खेल बहुत रोचक है।
0: बहुत, बहुत।
1: और जब उन बादलों के बारे में बात कर रहे हैं जो खेल रहे होते हैं, तो उन सब के लिए ये प्यारा सा गीत सुनवा देते हैं।

हाँ तो विधि, एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज है, कमेंट है। हाँ? तो हमारे जो श्रोता है वो कहते हैं कि फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है, फुटबॉल टीम वर्क का सबसे बेस्ट

0: तो अब बादल दीवाना हो चुका है और दीवाना बादल कह रहा है कि हमको घूमी घूमी जाना है, घूमने जाना है।
1: ठीक है, तो परिवार के साथ हम जब सफर पर निकलते हैं तो ये एक बेहद खूबसूरत और खुशनुमा अनुभव होता है। और परिवार के साथ किया गया सफर केवल एक यात्रा नहीं होती बल्कि यादों का खजाना बन जाता है, क्योंकि रोजमर्रा की भागदौड़ और जिम्मेदारियों के बीच जब पूरा परिवार एक साथ निकलता है तो रिश्तों में एक नई मिठास खुल जाती है।
0: बिल्कुल, और रिश्ते मिठास के साथ में जब साथ में निकलते हैं ना, तो आती रास्ते में वो हंसी मजाक चलती रहती है, कोई कुछ खेल रहा है, कोई कुछ साथ में बैठ के खा रहा है, उतनी सी जगह में बैठ के धीरे धीरे खाना निकाला जा रहा है, भोजन निकाला जा रहा है, दिया जा रहा है, मतलब वो छोटे छोटे पल कितना आनंद होता है ना। और साथ में कुछ समय के लिए ऐसा लगता है सारी चिंताएं

0: कहीं चली गई है और हम खुशियों के साथ अपना समय जी रहे हैं। छोटी मोटी परेशानियां जो बीच में आ रही है ना, अरे पैर मोड़ते नहीं बन रहा, अरे बैठते नहीं बन रहा, अरे थोड़ा सा सर रख जाओ, ये परेशानियां कहीं एहसास नहीं होने देती।
1: अच्छा लगता है कि ये भी वो पल है जिन्हें हमें सहेज लेना चाहिए। और जब हम साथ में खा रहे होते ना तो वो जो स्वाद है ना वो एक अलग होता है, जब हम साथ में बैठ के ट्रेन में या इस तरह से किसी सफर में खा रहे होते हैं, जबकि जब हम घर में वही चीज खा रहे होते हैं तो इतना पता नहीं चलता जब अकेले।
0: और आरती एक चीज और अच्छी लगती है कि अगर हम ट्रेन से चल रहे हैं मान लीजिए, तो थोड़ी दूर पे किसी की आलू पुड़ी का डब्बा खुलता है, किसी का चार खुलता है, सारी खुशी हमारे तक आ जाती है।
1: और जो लगातार निकलते रहते हैं लोग ना, ये ले लो वो ले लो, तो लगता है अच्छा हम भी ऐसे बोलने लग गए।
0: जी बिल्कुल। और उस सबके साथ बच्चों की जिद करना, उनको डांटना मनाना, सब कुछ बहुत खूबसूरत होता है। और इसमें कई बार ऐसा होता है जब हम अकेले ट्रिप पे जा रहे होते हैं तो हमें अपना ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन कभी कभी हम अपने दोस्त अपने परिवार के साथ जा रहे होते हैं तो उसमें हम पहले से प्लानिंग करते हैं, क्या क्या कपड़े जाएंगे, क्या क्या सामान जाएगा, तो वो प्लानिंग में क्या क्या प्लानिंग करनी चाहिए, ये बारे में तो चर्चा जरूर बनती है।
1: बिल्कुल, सबके हिसाब से हमें लेना चाहिए। और लेकिन ध्यान रखे जब अगर क्योंकि अगर कोई हमारे साथ में कोई बुजुर्ग जा रहा है तो हमें उसके हिसाब से सामान लेना होगा, कपड़े उनके हिसाब से, जो चीजें उनको जरूरत लगती है, उनकी दवाइयां सब कुछ उसी हिसाब से लेना होता है। जबकि बच्चे जा रहे हैं तो बच्चों के हिसाब से उनके सामान लेने होते हैं, तो जो भी जा रहा है हर परिवार के हर सदस्य को कोई परेशानी तो नहीं है, तो उस तरह से सामान लेने होते हैं। साथ ही दवाइयां ये जरूर आप पैक करके रखें, कम से कम जो छोटी मोटी चीजें होती हैं उनके लिए जो दवाइयां रहती हैं वो आप जरूर अपने साथ में लेकर चलें। बहुत
0: लेके चलने के पहले आरती हमको एक काम करना पड़ता है।
1: क्या
0: वो होता है? टिकट बुकिंग, होटल बुकिंग।
1: सबसे पहला काम
0: अगर वही सही नहीं किया तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आप जहाँ जा रहे हैं वो सब चीजें अच्छे से पता कर लें। और सामान्यतया जब हम परिवार के साथ घूमने जाते हैं आरती, तो हम क्या करते हैं कि बहुत दिन पहले ही, जिस दिन 2 महीने पहले अगर टिकट बुक होती है ना, तो 2 महीने पहले ही एक डायरी उठ जाती है और उस डायरी में जैसे 4 लोग जा रहे हैं तो 4 पेज बन जाते हैं। और सबके पेज पे सबका लिखना शुरू हो जाता है कि कौन किस रंग की कौन सी शर्ट लेके जाएगा, ये भी लिख दिया जाता है, ताकि आखिरी समय में ऐसा ना हो कि 2 दिन पहले वही शर्ट पहन ली जाए और फिर हम परेशान हो जाए।
1: बिल्कुल।
0: तो पहले से ही ये लिख लेना एक बहुत अच्छी आदत होती है श्रेणी, क्योंकि और एक और फायदा इसका क्या होता है, जब हम सामान्य लिख के ले जाते हैं और जब लौट के आते हैं तो उसमें चेक कर सकते हैं क्या कौन क्या छोड़ के आया है।
1: बिल्कुल, ये तो सबसे जरूरी चीज बताई है, बहुत अच्छी चीज है ये, ऐसा करना भी चाहिए। और हम इसी के साथ में एक कमेंट ले लेते हैं अपने श्रोता का, जो कहते हैं कि सफर पे जाने से पहले सबको अपनी जिम्मेदारी समझ लेनी चाहिए कि कौन सदस्य कौन सी बैग उठाएगा, जिसपे झगड़े होते कि हमें नहीं पकड़ना है, हमें नहीं पकड़ना है, और पैसे और टिकट्स किसके पास रहेंगे ये पहले डिसाइड कर लेना चाहिए। और गोल्ड और सिल्वर के कीमती गहने नहीं पहनने चाहिए, ये तो।
0: और अगर पहन भी रहे हैं तो आप उनको बहुत संभाल के रखिए, यानी आप उनको बाद में संभाल के रख सकें इस बात का आप ध्यान रखें। और इसके साथ ही जब परिवार के लिए निकल रहे हैं तो हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, परिवार के साथ सफर पर निकलना ना केवल एक बेहतरीन ब्रेक है बल्कि यह तो आपसी रिश्तों को मजबूत करना और नई यादें संजोने का एक बड़ा शानदार सा तरीका है। तो अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, और आपने कहा बड़े बुजुर्ग अगर साथ में ले जा रहे हैं तो उनका जो विशेष भोजन होता है, और अगर बच्चे साथ में ले जा रहे हैं तो उनके विशेष भोजन की, हम तो कहते हैं अगर 8 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं तो 12 दिन की व्यवस्था करनी चाहिए।
1: बिल्कुल, ये सही कहा।
0: जाने कब कहां कौन सी घड़ी में क्या आवश्यक पड़ जाए, और आपके साथ भोजन और जल यानी पानी, ये 2 चीजें
1: जरूर
0: होना चाहिए।
1: और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि जब परिवार के साथ सफर में निकलते हैं तो प्री प्लान करते हुए सभी की सुरक्षा, स्वास्थ्य और जरूरी आराम का ध्यान रखना जरूरी है। साथ में खान पान में भी ध्यान रखना जरूरी है। पूरे सदस्यों के अलावा मेरे जैसे जो वो अपना बता रहे हैं कि मेरे जैसे बड़े बुजुर्गों के लिए मेडिकल फर्स्ट एड बॉक्स भी रखना चाहिए। सफर से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज, आधार, पैन कार्ड और टिकट की हार्ड कॉपी के साथ डिजिटल कॉपी भी सुरक्षित रखिए। बाकी की सारी जानकारी तो आपसे मिलेगी, बोल रहे हैं जैसे कि इन्होंने बाकी सारी की जानकारी दे ही दी है कि बहुत जरूरी है आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास रखिए, उन्हें चाहे हार्ड कॉपी हो चाहे सॉफ्ट कॉपी हो।
0: जी बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, परिवार के साथ सफर पर निकलते

0: स्टेट बॉक्स भी रखना चाहिए। सफर से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज, आधार, पैन कार्ड और टिकट की हार्ड कॉपी के साथ डिजिटल कॉपी भी सुरक्षित रखिए। बाकी की सारी जानकारी तो आपसे मिलेगी, बोल रहे हैं जैसे कि इन्होंने बाकी सारी की जानकारी दे ही दी है कि बहुत जरूरी है आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास रखिए, उन्हें चाहे हार्ड कॉपी हो चाहे सॉफ्ट कॉपी हो।
1: जी बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, परिवार के साथ सफर पर निकलते समय सुरक्षा, आराम, मनोरंजन का विशेष ध्यान रखें। यात्रा से पहले कंफर्म टिकट और होटल बुकिंग, आपातकालीन दवाओं, फर्स्ट एड किट, पर्याप्त पानी, घर के बने स्नैक्स, इन्होंने बिल्कुल स्थायी रूप से लिखा है, घर का बना आहार जो है वो रखें, तथा सभी सदस्यों के आईडी कार्ड साथ रखना सुनिश्चित करें। परिवार के साथ सुरक्षित आनंददायक यात्रा के लिए प्रमुख बातों की सावधानी रखें। यात्रा के दौरान होने वाली आम समस्याएं जैसे उल्टी, दस्त, बुखार, पेट खराब, बुखार की दवा, ORS की दवा, मेडिकेटेड बैंडेज, दर्द निवारक पेन बाम जरूर रखनी चाहिए। इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहती हूँ आरती, कि जब आप पहाड़ी क्षेत्रों पर घूमने जा रहे हैं तो डॉक्टर से पूछ के कि पहाड़ी क्षेत्रों पर सामान्यतया गाड़ियां जब घूम घूम के जाती हैं तो मतली आती है, समस्या होती है, तो डॉक्टर से पूछ के उसके लिए भी कोई निदान आप अवश्य रख लें।
0: बिल्कुल।
1: और चॉकलेट टॉफी अवश्य रखें कि वो आप मुंह में डालें तो उससे आपको मतली या कई समस्याएं नहीं होंगी।
0: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि चाहे हम तीर्थ स्थान पर दर्शन के लिए जाएं या घूमने के लिए जाएं, परिवार संग सभी सदस्य साथ हो तो वो सफर सुरीला हो जाता है, और अगर सफर ट्रेन से हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। इसी महीने मैं स्वयं सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी और बच्चे अजमेर से द्वारकाधीश जी और द्वारका, नागेश्वर, ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ जी, टकोर, मतलब इन्होंने जहां जहां लिखा है तो ये सब दर्शनों के लिए गए, तो सब साथ में गए थे।
1: बिल्कुल सही। हमारे श्रोता लिख रहे थे कि हम अभी सपरिवार महाराष्ट्र घूमकर आए हैं, बस ढेर सारा नाश्ता, खाने का सामान, बड़ी कैन, पानी की बड़ी कैन, आवश्यक वस्तुएं, आधार कार्ड, लाइसेंस, गाड़ी के कागजात, ये सब जरूरी सामान रखे थे उन्होंने। बच्चे बड़ों के कपड़े रखे थे आवश्यकता अनुसार, जहां जा रहे थे वहां की सारी जानकारी पहले निकाल ली थी ताकि परेशानी ना हो।
0: बहुत अच्छा। अगर सबसे पहले तो ये करना चाहिए, जो आप जहां अगर आप जा रहे हैं तो पहले से आप प्लान कर लें, और उसके बाद अगर आप ये चीज कर सके तो पहले से ही जहां पे आपको रहना है उस जगह को आप बुक कर लीजिए, और साथ ही एक वाहन को भी, अगर आप अपने वाहन से नहीं जा रहे हैं तो साथ तो वहां पे आप किसी वाहन को भी चाहे रेंट पे ले सकते हैं किराए पे, उसको भी बुक कर लें, क्योंकि अगर आप इस ये सहूलियत रहेंगी ना तो आप बस ट्रेन से उतरे या जहां से भी आप जिससे भी जा रहे हैं तो आप फटाफट उस जगह पे जा सकते हैं, थोड़ा आराम कर सकते हैं। बिल्कुल आराम कर सकते हैं जाके, और साथ ही फ्रेश होकर फिर आप बाहर घूमने निकल सकते हैं क्योंकि आपके पास वाहन उपलब्ध रहेगा पहले से ही। तो बच्चे अगर साथ में, परिवार जा रहा है साथ में, तो ये बहुत सहूलियत करनी जरूरी होती है।
1: बिल्कुल सही आरती। और मैं इसमें चीजें और जोड़ना चाहूंगी, पहली चीज तो जहां आप जा रहे हैं वहां का मौसम और वहां के भोजन, इनका आनंद जरूर लीजिए। जैसा मौसम है उस मौसम का आनंद लीजिए और उसके अनुरूप ही अपना सामान रखिए। अब हम देश की यात्रा के साथ अगर विदेश की यात्रा की भी बात करें तो विदेश की यात्रा में एक चीज बहुत जरूरी हो जाती है, अति आवश्यक हो जाती है, आप सभी के पासपोर्ट।
0: बिल्कुल।
1: उन पासपोर्ट को किसी ऐसी जगह पर इतना संभाल कर रखें कि कोई चाहकर भी उन्हें ना चुरा पाए, क्योंकि पासपोर्ट ही वहां पर रहना और वहां से वापस आने का सबसे बड़ा साधन आपका होता है। तो विदेश यात्रा पर जाएं तो बाकी चीजों का ध्यान वैसे ही रखें जैसा देश में घूमने के लिए जा रहे हैं, पर पासपोर्ट के लिए विशेष कोई व्यवस्था करके अपने कपड़ों के अंदर कोई चैन लगाकर बनाकर या किसी ऐसी व्यवस्था के तहत रखें। सामान्यतया जब हम घूमने जाते हैं तो हम पासपोर्ट को अपने कपड़ों में किसी एक चैन का थैला बनवा के अंदर की तरफ ही रखते हैं ताकि वो किसी के हाथ ना लगे और वो सुरक्षित रहे।
0: बिल्कुल, बहुत जरूरी है
1: जी।
0: तो विधि एक गीत सुन ले।
1: बिल्कुल। और जब घूमने फिरने की बात चल रही है तो हम आपको लेके चलते हैं।

0: तो आरती, कैसे गगन के तले अगर जा रहे हो तो सुरक्षा रखना बहुत जरूरी है। तो जब सुरक्षा की बात आती है ना, तो मुझे मेरे दादाजी की वो एक बनियान याद आती है, जो मेरे पापा के पास भी एक दो थी, मेरे ससुर जी भी वो पहना करते थे। उसमें अंदर ही एक जेब होता था, और जब हम कहीं जाते थे तो वो हमें थोड़ा थोड़ा पैसा दे देते थे। यहाँ तक मैं ससुर जी के साथ जब जाती थी तो वो भी मुझे थोड़ा सा पैसा दे देते थे, ये अपने पर्स में रख लो, बाकी सारा पैसा वो उसमें अंदर रख लेते थे। और समय समय पे जब हम मांगते थे तो धीरे से कहीं किसी बाथरूम में जाते थे और निकाल के ले आते थे। तो मेरे सोने के गहने या कुछ हमने पहना है तो वो सब पापा की उसी जेब में, उसी खीसे में बोलते थे, रख जाता था। तो ये एक व्यवस्था की जा सकती है कि परिवार का एक व्यक्ति, पहले के लोग बहुत समझदार होते थे, और वो समझदारी अगर हम अपना लें तो हमारी कोई चीज चोरी हो ही नहीं सकती।
1: और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि परिवार के साथ यात्रा में मौज मस्ती के अलावा निश्चिंतता भी बढ़ जाती है। पूरे परिवार के साथ घूमने फिरने में जो मजा और निश्चिंतता होती है, क्योंकि परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी तरह की औपचारिकता नहीं करनी पड़ती है। परिवार का साथ हो तो खर्चे में भी राहत मिल जाती है। वहीं मन में ये भी भाव होता है कि वेकेशन के दौरान, छुट्टियों के दौरान अगर किसी चीज में एक्स्ट्रा खर्च आता है तो एक साथ मिलकर संभाल लेंगे। और इसके अलावा परिवार के साथ जीवन भर की यादें भी बस जाती है मन में।
0: कुछ चीजें और मैं सतर्कता की बोल रही हूँ, ये तो सतर्क सकारात्मक बात हमारे श्रोता कह रहे हैं। अनजान लोगों पर जल्दी से भरोसा नहीं करना, भीड़भाड़ वाली जगहों पर सतर्क रहना, बच्चों को अकेले कहीं नहीं जाने देना, और सभी सदस्य एक दूसरे के संपर्क में रहें। और कहीं कई जगहों पर ऐसा होता है, पहाड़ी होती है या नदी होती है, तो उन जगहों पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि आपको उस स्थान के बारे में नहीं पता है। तो विशेष ख्याल रखें, और अगर वाहन से यात्रा कर रहे हैं तो वहां के जो यातायात के नियम है उनका पालन करें। रात्रि में यात्रा करने से बचें, और रात्रि में सुनसान स्थानों से भी आप बहुत बचें। अगर ऐसी नई जगह पर जा रहे हैं तो सावधानी से सफर करो, सही योजना से,
1: ताकि आपका सफर अच्छा बना रहे। आप एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि जब परिवार के साथ सफर पर निकलें तो दिल में ढेर सारी खुशियां और बैग में सुरक्षा की पूरी तैयारी होनी चाहिए, और रास्ते में अंताक्षरी, घर का बना स्वाद और अपनों का साथ हर सफर को बेहद खूबसूरत और यादगार बना देता है।
0: आपने स्वाद की बात की ना, तो मुझे स्वाद से खाजा याद आ गया। मुझे तो मेरे श्रोताओं को खाजा के बारे में बताने का मन कर रहा है। बिल्कुल, ये मेरा भी पसंदीदा रहा है, ये जो खाजा है ना, ये मुझे भी बड़ा पसंद है, और इस खाजा को मैं दही के साथ खाती हूँ। अच्छा। बड़ा आनंद आता है,
1: सच में अच्छा लगता है, क्योंकि मीठा है ना, और मीठा के साथ किसी जब दही मिल जाता है ना तो बहुत बहुत
0: बहुत आनंद आता है। और ये जो खाजा है ना, इसे बनाना बड़ा आसान है। मैदा, चीनी और घी, और जहाँ शुद्ध घी डल जाता है वहीं मजा अलग ही आ जाता है। तो जब अपन हम जब खाजा बना रहे होते हैं तो परतदार और कुरकुरी मिठाई जो खाजा है वो बनती है, और इसे इसे तलना होता है। तो घी, जब जब मैदा होती है या आटा होता है जिसमें आप बना रहे हैं, उसमें घी डाल के उसे मोयन डालना बोलते हैं। तो आप मोयन डालते हैं, और हम लोग कहते थे मम्मी मौन हो गई थोड़ी देर के लिए। अच्छा। मोयन डालते समय मोयन डाला जाता है, और फिर परतों में बेल कर मोड़ा जाता है, और इसके बाद विशेष तरीके से उसे तला जाता है, और जब वो तल जाता है तो चाशनी में डुबो दिया जाता है। और अगर आप इसे चाशनी में ना डुबोए तो भी आप इसे खा सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगता है, और चाशनी में डुबो लें तब भी यह बहुत अच्छा लगता है। ये सिलाऊ नालंदा बिहार का ये पसंदीदा भोग है, और इसे भगवान को भोग या प्रसाद के रूप में भी चढ़ाया जाता है। और मीठा और नमकीन दोनों तरह का होता है, जो मैंने कहा मीठा वाला भी दही के साथ अच्छा लगता है, और नमकीन वाला तो यम यम दही के साथ बहुत आनंद आता है।
1: बिल्कुल, और साथ ही हम आपको बता दें, एक हमारे जो श्रोता है उन्होंने भेजा है रसिया जो होता है ना, उसकी रेसिपी भेजी है। तो वो बताते हैं कि गुड़ का पानी तैयार करें, इसके लिए आपको एक बर्तन में 2 कप पानी और गुड़ डालकर उबालना है, और जब तक कि गुड़ पूरी तरह से पानी में घुल ना जाए इसे छानकर अलग रख लीजिए। उसके बाद जब गुड़ घुल जाता है, उसके बाद एक पैन में प्रेशर कुकर में भीगे हुए चावल और गुड़ का पानी डालिए, और इसे मध्यम आंच पर पकाइए, तब तक कि जब तक कि चावल एकदम नरम नहीं हो जाता है और पानी पूरी तरह सूख नहीं जाता।

0: इलायची और मेवे इसमें मिला सकते हैं, और जब चावल पक जाएं तब इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स जो हैं और इलायची जो भी आपको पसंद है वो ड्राई फ्रूट्स डालिए और इलायची का पाउडर डालिए और बहुत अच्छी तरह से इसको मिला लीजिए। और इसके बाद आप गैस को बंद कर दीजिए और मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दीजिए और इसके बाद इसमें ठंडा या फिर सामान्य तापमान वाला दूध मिलाइए और अच्छी तरीके से इसको चला लीजिए। और अगर इसमें क्या कहते हैं ये स्वादिष्ट रसिया आपका तैयार है रसिया, और इसे गर्मा गर्म भी खा सकते हैं और इसे ठंडा करके भी परोस सकते हैं।
1: हाँ, ये फ्रिज में रख के निकालने के बाद इस गर्मी में कितना सही लगेगा,
0: बहुत अच्छा लगेगा,
1: इतना आइसक्रीम जैसा गले में सूदिंग सूदिंग,
0: बाहर की आइसक्रीम जो आप खाते ना बिल्कुल भूल जाएंगे इसको खाने के बाद।
1: बिल्कुल। और वैसे ये जो स्वादिष्ट व्यंजन या पकवान है ये हमारे स्वास्थ्य को देखकर बनाए जाते हैं राजस्थान के हिसाब से, तो हमने स्वाद वाले पकवानों की तो बात कर ली है और अब हम क्या एक गीत सुनवा सकते हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल, सुनते हैं गीत
1: जी।

0: तो आरती
1: अब हमारे श्रोताओं ने और भी कुछ बोला है कहा है जो आपको सावधानी बरतनी चाहिए वो ये है कि बच्चों के गले में आपका पूरा पता और मोबाइल नंबर और आई कार्ड आप उसमें लेके किसी कार्ड में ऐसा बना के उनके गले में डाल दीजिए बिल्कुल, जिससे कि अगर उनको कोई परेशानी या कहीं इधर वो खो जाते हैं या कोई इधर उधर हो जाते हैं वो तो आपको सहायता मिल जाएगी, जो भी उनको लेगा वो आप तक पहुंचा देगा।
2: बिल्कुल, हमारी एक और श्रोता लिखती है आरती और निधि, तो मैंने बताना चाहती हूँ मेरा नाम विधि है, विक्ट्री विधि। सो वो कहती है कि क्या क्यों कहूं, मुझे भी बाहर जाना है अकेले और मैं भी तुरंत पैन कार्ड इत्यादि पर्स में रख ली हूं, हंस रही हूं चूंकि तैयारी हो चुकी है, एक दिन हाथ में है फिर भी। ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही तैयारी करके चलना चाहिए और ऐसे ही आराम से घूमिए, बढ़िया बढ़िया खाइए और बढ़िया एंजॉय कीजिए, जिंदगी खुश रहने के लिए है। और सखी सहेली सुनते रहिए
1: सुनते रहिए।
2: तो आरती आज की सखी सहेली में बस इतना ही, समय जितना मिला उतने में हमने अच्छी बातें की, लोगों से मिलना हुआ, अब आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: नमस्कार। सखी सहेली की प्रस्तुत करता अनुश्री पाठक।
3: सखी सहेली।

सेहतनामा कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मुंबई की सुप्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर लीजा बनर्जी से, और आज के कार्यक्रम में जो विषय है वो है थायराइड, होम्योपैथी में इसका उपचार। तो डॉक्टर साहब, विविध भारती के स्टूडियोज में आपका सेहतनामा कार्यक्रम।

0: में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर लीजा बैनर्जी। धन्यवाद विविध भारती को कि मुझे आमंत्रित किया गया।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैसे विविध भारती का जिक्र आपने शुरू में ही किया, तो कितना पुराना नाता है डॉक्टर साहब विविध भारती से आपका?
1: सुर पहचानती हूँ तब से विविध भारती पहचानती हूँ, ये बोलना भी गलत नहीं होगा। मेरे घर पे आज भी इसका चलन है, हम बजाते हैं, सुनते हैं और ये रहेगा।
0: जी, मनोरंजन का एक बहुत ही बेहतरीन और नंबर वन माध्यम है आज के दौर में। अब हम अपने विषय पर आते हैं। आज का जो विषय प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम जिक्र कर रहे थे, थायराइड और होम्योपैथी में इसका उपचार, तो ये विषय रहेगा। दरअसल ये थायराइड जो बीमारी है, इसके बारे में कई भ्रामक स्थितियां पैदा हो जाती हैं। हर कोई दूसरा इंसान जब कुछ विपरीत अपने शरीर में लक्षण दिखाई देते हैं तो कोई भी व्यक्ति उसको सलाह देता है, कहीं थायराइड तो नहीं हो गया, इस वजह से कमजोर तो नहीं हो गए, इस वजह से मोटे तो नहीं हो रहे हो, तो ये थायराइड है क्या? इसको बड़े आसान से शब्दों में आप बताइए हमारे सुनने वालों को।
1: थायराइड एक्चुअली एक ग्रंथ ही है, मतलब ग्लैंड्स जो कि गले के सामने के भाग में पाई जाती है, स्थित है, और इसमें से सिक्रीट होती है थायरोक्सिन T3 एंड ट्राईआयोडोथायरोनिन T4।
0: जी,
1: T3 T4 ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण है विकास के लिए एंड मेटाबॉलिज्म, पाचन क्रिया।
0: जी,
1: इसका मेन फंक्शन या इसका मेन थायराइड की क्रिया ही होती है बच्चों में एवं बड़ों में विकास की, दिमागी शारीरिक दोनों विकास। मेटाबॉलिज्म मतलब पाचन क्रिया, जो आप रोजाना खाते हैं ये सारी चीजें पाचन होनी चाहिए। जब तक पाचन नहीं होगी, आपके शरीर को उनके कोशिकाओं को जो चीज मिलनी चाहिए वो मिलेंगी नहीं। इसमें थायराइड का एक बड़ा रोल होता है। और ये होता कैसे है? दिमाग में एंटीरियर पिट्यूटरी करके एक
0: ग्रंथी
1: होती है, वहां से TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये सिक्रीट किया जाता है। वो ब्रेन को बोलता है कि T3 T4 कम हो गए हैं भाई, इनको शुरू करो,
0: आदेश देता है।
1: हाँ, तो जैसे ही T3 T4 शुरू होते हैं ये ब्लड में जाते हैं, ब्लड से अपना जो क्रियाएं होती है वो करते हैं। एक लेवल पे आने के बाद वापस हाइपोथैलेमस कहता है कि बस हो गया, आप TSH तुम बंद हो जाओ ताकि T3 T4 अपने लेवल पे काम कर सके।
0: जी,
1: जब ये बैलेंस खराब हो जाता है तब होता है थायराइड। पढ़ना सुनना या गूगल सर्च सोशल मीडिया काफी आ गए है, बेटर है कि हम इनसे जितना हो सके दूर रहे, क्योंकि इंग्लिश में कहावत है फियर्स कम फ्रॉम ईयर्स, मतलब डर सुनने के माध्यम से आता है।
0: जी,
1: तो आप जितना गलत सुनोगे सही सुनोगे आपको स्वयं को नहीं पता है। तो जो एक्चुअली ये सारी चीजों में विशेषज्ञ है उनके पास जाइए।
0: अच्छा, ये कितना सच है डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि थायराइड वाकई में हो जाता है? ऐसे चिकित्सक तो आप बताएंगी ही, लेकिन कोई व्यक्ति अगर मोटा होता है और उसका मोटापा दूर ही नहीं होता, या कोई बहुत दुबला है और दुबला होता रहता है, तो वाकई में थायराइड ग्रंथि का कोई कमाल होता है इसमें?
1: नहीं, ये तो डिपेंड करता है आपका डाइट कैसा है, मतलब आप कितना खान पीने में ध्यान दे रहे हो, कितना एक्सरसाइज कर रहे हो। मैं सोचिए पूरे दिन भर एक जगह पे बैठी हूँ और मैं खा ही रही हूँ, तो ऑब्वियसली कोई भी इंसान मोटा ही होगा, इसमें थायराइड कुछ नहीं कर रहा।
0: अच्छा।
1: तो ऐसा नहीं है, डायबिटीज में भी इंसान पतला होता रहता है। तो वही मैंने बोला ना कि सुनने पे ये मत जाइए, क्योंकि अभी डॉक्टर्स को पता है कि ये डायबिटीज वाला है इसलिए पतला हो रहा है या ये थायराइड वाला है इसलिए पतला।
0: तो देखिए, कुल मिला के इस प्रश्न के उत्तर में आपने ये कहा है कि चिकित्सक से मिलिए और कंफर्म कीजिए, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि खुद ही तय ना कर लें किसी के कहने सुनने पर। और यहाँ पर ये तय करना होगा कि प्रोग्राम में बातचीत तो हमारी जारी हो चुकी है, लेकिन यहाँ वक्त है कि एक गाना सुन लिया जाए।
1: एक मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है, छू कर मेरे मन को किया तूने, इससे अगर शुरुआत की।
0: याराना फिल्म का गाना है, किशोर कुमार की आवाज में, सुनते हैं।

0: गीत तो वाकई मन को छू गया है, लेकिन अगला प्रश्न हमारे दिमाग में उभरता है कि थायराइड जो है क्या कार्य करता है?
1: आज के वातावरण में इतने दौड़ भाग जिंदगी में हम क्या करते हैं? खाने पीने को साइड में रखते हैं, नेचुरल कोई भी चीजों को साइड में रखते हैं। हमको कैंड फूड चाहिए, हमको जंक फूड चाहिए, हमको फटाफट फास्ट फूड चाहिए, मगर हमें गरम घर का खाना ये हम जल्दी नहीं लेते, हम अवॉइड कर जाते हैं। इसकी वजह से होता क्या है, शरीर को जो मिलना चाहिए, कोशिकाओं को जो मिलना चाहिए वो मिलते नहीं है। इसको थोड़ा बैलेंस करने के लिए अमुक विटामिन, तमुक कैल्शियम, तमुक आयरन, अमुक ये तमुक वो, ये करके करके हम जो खाते हमको लगता है कि हाँ अरे हमने खा लिया ना, मैंने रोज कैल्शियम के ये खाया, मैंने रोज वो किया है
0: सप्लीमेंट्स,
1: मगर ये सप्लीमेंट्स एक्चुअली बॉडी को मिल रहा है? मुझे नहीं लगता, और ये होता भी नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी, आपका शरीर एक ऐसे सिस्टम से बंधा हुआ है जहाँ पे आप जो नेचुरली चीजें खाते हो वो एब्जॉर्ब होती है। जो सप्लीमेंट्स, हाँ सप्लीमेंट्स कहीं ना कहीं जरूरी होते हैं, मगर हम आधे खाने को, आधे बैलेंस डाइट को सप्लीमेंट्स के साथ ऊपर नहीं डाल सकते, ये हम करते हैं।

0: और ये सप्लीमेंट्स जब हजम नहीं होती है तब शुरू होता है 10 प्रॉब्लम्स। और यहाँ पे एक बार कोई चीज एक डिसऑर्डर में चली गई, ऑर्डर से बाहर चली गई, ऑटोमेटिक पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ता है। और जैसे ही सिस्टम बिगड़ता है, ब्रेन अपना सिस्टम उसको ठीक करने के में लग जाता है, तब या तो TSH बढ़ जाता है, या तो T3 बढ़ जाता है, या तो T4 बढ़ जाता है। तो उसमें हमारा जो विकास है दिमागी या शारीरिक विकास, वो साइड में रह जाता है, क्योंकि बॉडी ज्यादा ध्यान दे रहा है कि इसमें गड़बड़ ना हो।
1: तो देखिए, आपने जो आहार की बात की कि कई बार हम जल्दबाजी में अपना रूटीन जो प्राकृतिक आहार है, जो नेचुरल हमारी डाइट है, उससे हट के सप्लीमेंट्स पर भी डिपेंड हो जाते हैं और मन से ही हो जाते हैं कई बार। तो ये बहुत ही गलत प्रक्रिया है और इसको रोकना है, थामना है। आपके पास भी कई मरीज ऐसे आते होंगे कि अचानक बहुत जब बढ़ जाती बीमारी तभी आते हैं।
0: हाँ, मेरे पास ज्यादातर तभी आते हैं जब एकदम बढ़ी हुई रहती है, मतलब 10 जगहों से बोला जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी आते हैं। मैंने आज तक कोई भी एक अच्छा केस देखा नहीं है जहाँ पे मैं खुश हो जाऊँ कि ये अभी रीसेंट है, कर सकते हैं। तो मेरा सुझाव ये एक और रहेगा लोगों को कि जब भी आपको लग रहा है कि कुछ अलग हो रहा है आपके शरीर में, कुछ नॉर्मल से बाहर हो रहा है, तो अपना इलाज खुद मत कीजिए। हो सके तो अच्छे होम्योपैथ के पास जाइए, क्योंकि होम्योपैथ को एक प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ कहा जाता है, जो कि हम आगे जब डिस्कस करेंगे ये मैं और क्लियर करती जाऊंगी।
1: जी जी, आपने कार्यों के बारे में बताया कि कार्य प्रणाली किस तरह से काम करती है, लेकिन हम इसके प्रकारों पर भी एक प्रकाश डालना चाहेंगे यहाँ पर। तो उसमें कई बार आप अपने हिसाब से बताएंगी, परीक्षण भी इसमें शामिल हैं, जैसे T3 T4 के परीक्षण आप करवाती हैं, तो किस परिस्थिति में होता है, तो ये हम चर्चा करेंगे एक गाना सुनने के बाद।
0: नमो नमो जी शंकरा, केदारनाथ से।
1: जी, केदारनाथ फिल्म का बहुत ही मशहूर गाना है।

0: डॉक्टर साहब गीत वाकई अच्छा सुनवा दिया आपने और बहुत ही माकूल था प्रोग्राम में इस समय, लेकिन प्रकारों की जहां तक बात है तो उसके बारे में आप विस्तार से अपने हिसाब से बताइए कि कितने प्रकार के इसमें थायराइड की ग्रंथियों का काम भी होता है और फिर निदान की बात आती है तो क्या क्या परीक्षण करने आवश्यक होते हैं मरीज के लिए।
1: थायराइड ये नाम हमने काफी टाइम सुना हुआ है बट एक्चुअल थायराइड होता क्या है ये इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है। और टाइप्स मतलब प्रकार, एक हाइपर थायराइडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म है काफी प्रकार, जैसे ग्रेव्स डिजीज हो गया, गोइटर हो गए, टॉक्सिक एडिनोमा हो गया, ठीक है, थायरॉयड कैंसर हो गया। बट मूलतः जो भारत में या बाकी देशों में भी जो ज्यादातर पाई जाती है वो ज्यादातर हाइपर थायरॉयडिज्म ही होते हैं। हाइपर थायरॉयडिज्म में होता ये है कि T3 T4 लेवल ज्यादा हो जाता है। अभी हमें पता कैसे चले?
0: हाँ, उसके लक्षण भी दिखाई देते होंगे बॉडी पे।
1: लक्षण तो दिखाई देते हैं मगर उसको कंफर्म करने के लिए इन्वेस्टिगेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इन्वेस्टिगेशंस का अलग एक महत्वपूर्ण बताया गया है
0: निदान।
1: इसमें आता है ब्लड, पहला जो थायराइड टेस्ट रहता है फर्स्ट ही होता है ब्लड टेस्ट, ब्लड सीरम T3 T4 TSH का
0: जी।
1: अब इसमें भी दो प्रकार होते हैं, एक है टोटल T3 T4, एक होता है फ्री T3 T4। TSH वैसा ही रहता है, टोटल T3 T4 होता है जो टोटल बॉडी में आपके संचालित होती। इसमें क्या हो जाता है TBG थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन अगर बॉडी में ज्यादा कम होती है तो T3 T4 भी ऊपर नीचे रहेगा।
0: अच्छा,
1: तो ये पहले के डॉक्टर्स किया करते थे मगर इससे भी ज्यादा एक्यूरेट फ्री T3 T4 है क्योंकि ये डिपेंड नहीं करती किसी भी अन्य रासायनिक पे।
0: अच्छा,
1: फ्री T3 फ्री T4 ये आपको एग्जैक्टली बता सकती है कि जो पेशेंट है इसका T3 या T4 फ्री कितना है, मतलब बॉडीज में जो अत्यधिक है वो कितना है, जो कि डायग्नोसिस में हेल्प करता है हमको पेशेंट को ठीक करना है, अंधेरे में तीर नहीं चलाना। इसके लिए इन्वेस्टिगेशन, मैं फिर कहती हूँ होम्योपैथी में भी इन्वेस्टिगेशन बहुत महत्वपूर्ण है। अब ब्लड के बाद आ गया अल्ट्रासोनोग्राफी।
0: अच्छा,
1: फिर आता है रेडियो एक्टिव,

0: स्कैनिंग, मगर ये सारे बाद में, मतलब जैसे थायराइड कैंसर हो गया, मल्टी नोड्यूलर ये हो गए, नोड्यूल्स हो गए, इसमें सारे ये अल्ट्रासाउंड या स्कैन्स ये सारे वहाँ पे इम्पोर्टेंट होते हैं. हमें जब पता करना है कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरथायराइड या हाइपोथायराइड, ब्लड टेस्ट इज द फर्स्ट थिंग. प्राथमिक निदान जो रहेगा वो ब्लड टेस्ट है.
1: अच्छा,
0: और ये अनिवार्य है.
1: लेकिन मान लीजिए T3 या T4 में से कोई पॉजिटिव आ गया, जैसे कि आपकी यूनिट के बाहर या कम,
0: हाँ, रेंज के बाहर, हाँ,
1: रेंज के बाहर, हाँ, तो आप क्या मानती हैं उसको?
0: नहीं, इस पे तीन चीज डिपेंड करता है. सिर्फ T3 T4 देख के नहीं होगा, TSH भी चाहिए.
1: अच्छा, तो उसमें अगर मान लीजिए है तो क्या रेंज रहती है और क्या उसके लक्षण दिखाई देते हैं?
0: T3 और T4 अगर हायर साइड में है और TSH रेंज से नीचे है
1: जी,
0: इसको हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं.
1: अच्छा,
0: हाँ, ठीक है. और जब T3 T4 लो है और TSH हाई है तो इसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं.
1: जी, जी, जी.
0: तो उस हिसाब से हमारे चिकित्सा जो है वो शुरू होने चाहिए.
1: हाँ, क्योंकि निदान में पता हो जाता है कि, हाँ, ये लेवल क्या है,
0: लेवल क्या है और पेशेंट कौन सा पेशेंट है, हाइपरथायरॉयडिज्म का पेशेंट है कि हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट, और शुरू होता है हमारा चिकित्सा.
1: जी जी, तो हम चिकित्सा की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले आपके प्रकारों में और भी जो बातचीत है उसको लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक वातावरण को संगीतमय बनाना होगा.
0: शुरू करते हैं, एक बहुत ही मेरा पसंदीदा गाना है, खोया खोया चांद,
1: काला बाजार.
0: काला बाजार
1: मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत सुनते हैं.

0: डॉक्टर साहब, गाना वाकई में बहुत ही पुराने दौर में हमें लिए गया और एक पुराने मंजर को हमारे सामने ला दिया गाने ने, तो हम यही कहेंगे कि होम्योपैथी भी एक बहुत पुरानी चिकित्सा है, आज की नहीं है। तो इसमें तो कई प्रकार के निदान के साथ साथ जब चिकित्सा में हम आगे बढ़ते हैं तो कन्फर्म हो जाते हैं कि नहीं, मरीज ठीक होगा ही। तो जब आपके पास जो प्रकार आप बता रही थी, इस तरह के मरीज ज्यादा आपको मिले या कम वाले मिले?
1: पेशेंट हमको कभी बोल के नहीं आता कि हम हाइपरथायराइड के हैं या हाइपोथायराइड। अपने हिसाब से पेशेंट्स को सुनिए, वो क्या बोल रहे हैं। उनका जो बोलना होता है वो आधे से ज्यादा आपको बता देगा कि क्या एग्जैक्टली चिकित्सा का तरीका जाना चाहिए। जैसे ज्यादातर जब पेशेंट्स ये जो हाइपरथायराइडिज्म में होते हैं, ये 6 महीने पहले से ही इनके लक्षण शुरू हो जाते हैं।
0: अच्छा।
1: मगर लक्षण कैसे होते हैं, कहीं खाज हो गई, कहीं खुजली हो गई, कहीं बाल गिरने का जो समस्या है एलोपेशिया,
0: जी जी,
1: विटिलिगो मतलब सफेद पैचेस, किसी को एंजाइना पेन हो रहा है, किसी का वेट एकदम कम हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, कहीं डायरिया बहुत ज्यादा है, मतलब लूज मोशन। अब जब ये सारे पेशेंट्स डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे समझ लीजिए मुझे चेस्ट में पेन हो रहा है, अब वो पेन अंजाइना का भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, सांस में तकलीफ हो रही है, पेशेंट जाता है कार्डियोलॉजिस्ट के पास। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि ये गलत है।
0: जी।
1: कहीं पे किसी को डर्मेटोलॉजी का प्रॉब्लम हो, त्वचा रोग, तो वो त्वचा विशेषज्ञ के पास जाएगा, तो वो देखेंगे कि हाँ चलो बाल गिर रहे हैं, सिर्फ उतने तक दवाई देके छोड़ देंगे। मगर यहाँ पे ही होम्योपैथ अपना खुद का एक अलग छाप छोड़ता है। जब एक पेशेंट मेरे पास आ रहा है और मुझे ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं, मुझे ये ऑलरेडी सोचना चाहिए, ये ऑलरेडी मेरे दिमाग में शुरू हो जाता है कि इसका जड़ क्या है,
0: किधर है।
1: एग्जैक्टली, रूट जो कहते हैं ना होम्योपैथी जड़ से निकालता है, क्या होता है, यही होता है। मुझे दिख रहा है मेरे सामने एक पेशेंट बैठा है, वो बोल रहा है कि मेरे बदन में खुजली है, मेरा वेट लॉस हो रहा है, मतलब वजन कम हो रहा है, मुझे भूख नहीं लग रहा है। लोगों को लगेगा कि अच्छा भाई इसको थोड़ा पेट का समस्या होगा, थोड़ा बाल का कुछ शिकायत होगा। नहीं, इसको अगर आप बैक ट्रैक करो, मतलब आप सोचते जाओ इसका जड़, तो कहीं ना कहीं आपको 10 चीजें रहेंगे, उसमें से आपका एक्सपीरियंस, आपका खुद का नॉलेज आपको बताएगा कि कहाँ जाना है, वो आपको दिशा देगा। तो ये होता है जड़। तब मुझे सोचना चाहिए कि थायराइड एक कॉज हो सकता है,
0: जी,
1: क्योंकि डायबिटीज में भी ये होते हैं, मगर थायराइड एक कॉज हो सकता है। इस प्रकार से अगर हम निदान करें उस पेशेंट का उस वक्त, काफी टाइम, ऑलमोस्ट मेरे केसेस में 80% तक ऐसे हो चुका है कि थायराइड इनिशियल स्टेजेस पे डिटेक्ट हो गया, तो या तो हम उसको स्लो डाउन कर ले, या तो एक्चुअली वो क्योर हो जाता है। हाँ, अगर लेटर स्टेज में जब पेशेंट्स आते हैं कि बकायदा हाइपर थायराइडिज्म के सिम्टम्स लेके, जो लक्षण है वो मैं बता दूंगी, तो ये लक्षण लेके तब तो उसको क्योर करना ही करना है।
0: जी।
1: मैं बोल रही हूँ कि 6 महीने पहले से जब लक्षण दिखाई देती है तब अगर ध्यान दिया तो ट्रीटमेंट या चिकित्सा है या उसका
0: आसान
1: जो
0: हो जाती है।
1: हाँ, क्योर है, वो जल्द हो जाएगा।
0: तो ये तो आपने बहुत ही गंभीर बात बताई है, लेकिन बहुत ही आसान से शब्दों में सुनने वालों को भी समझना होगा और जो इसके मरीज हैं वे भी ये जान सकते हैं कि कितना आसान है, लेकिन प्रारंभिक लक्षण दिखाई देते ही चिकित्सक से सलाह लें। और अब हम यहाँ पर बढ़ेंगे अगले गाने के साथ, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
1: एक बहुत ही पुराना गाना है, मन रे तू काहे न धीरे धरे,
0: चित्ररेखा फिल्म का गाना है ये।
1: हाँ।
0: और वाकई में धैर्य रखने की जरूरत है,
1: जरूरत है,
0: प्रोग्राम में तो इस गीत को अभी बजाना पड़ेगा।

0: वाकई एक बहुत ही संदेशात्मक नगमा जो आपने सुनवाया अपनी पसंद पर, मोहम्मद रफ़ी ने गाया और चित्रलेखा फिल्म के इस गाने को आत्मसात करते करते कई प्रश्न होम्योपैथी क्या क्या होता है वो सब मंजर सामने आने लगा। लेकिन थायराइड और होम्योपैथी में उपचार विषय पर हमारी चर्चा जारी है डॉक्टर लीजा बनर्जी के साथ। डॉक्टर साहब, इस गीत के बाद जो एक प्रश्न उभरता है वो ये है कि निदान के बारे में अभी और कुछ कहना चाहेंगी आप?
1: शुरुआत में ही आप किसी भी अच्छे होम्योपैथ के पास जाइए, तुरंत वो ठीक हो जाए। अब हमारे होम्योपैथी में तीन चीज बहुत इम्पोर्टेंट है।
0: क्या क्या है?
1: एक होता है जो चीफ सिम्टम्स है या प्रेजेंटिंग सिम्टम, मतलब तात्पुरता आप जब डॉक्टर के पास आए हो किस लक्षण के साथ आए हो। सेकंड होता है पास्ट हिस्ट्री, मतलब बचपन से लेके अभी तक आप क्या क्या बीमारी आपको हो चुकी है,
0: हिस्ट्री क्या है,
1: हिस्ट्री क्या है। इसमें आपको और एक इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगी कि आज के दिनों में हम ध्यान नहीं देते हैं, मगर कैसे होता है कि कोई भी चीज होम्योपैथ में कहा जाता है कि सप्रेस अगर हो गई तो वो जब बाहर निकलना ही निकलना है, जब बाहर निकलती है और बड़ा होके, मतलब और ज्यादा होके वो आपके शरीर पे घातक होता है। एग्जाम्पल, कभी अगर हमको भूख लगती है, पेट में दर्द होता है, हम बहुत टाइम तक वो भूख को मतलब नहीं, अभी खाने का टाइम नहीं आया, जो भी है, या कभी किसी के ऊपर गुस्सा आ गया, कहीं जा रहे, डर लगा, ये थोड़ा भी हमारा जब माइंड चेंज होता है या सोचने का प्रक्रिया हमारी चेंज हो जाती है तब रासायनिक क्रियाएं शुरू हो जाती है बॉडी में। कभी हमें ध्यान में आता है, कभी नहीं आता है। तो यही सारी चीजें जब हम सप्रेस करते, मतलब दबा देते हैं
0: जी,
1: तो वो आगे जाके बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाती है हमारे खुद के शरीर को या हम को। इसमें से आता है दो तरह के सप्रेशंस,
0: वो कैसे?
1: एक है मेंटल, मानसिक, और एक है फिजिकल
0: जी।
1: मेंटल में कैसे कैसे होता है कि अगर मुझे अमुक व्यक्ति पे गुस्सा आया, समझिए आप पे गुस्सा आ गया, मैं वो अंदर ही अंदर रख लूंगी कि नहीं जी, मैं तो तिवारी जी को नहीं बोल सकती, पड़े हैं, चलो वो गुस्सा मैंने सप्रेस कर लिया। इससे होता क्या है कि कभी देखा होगा कि हिंदी में एक कहावत है,

0: आग बबूला होना।
1: जी जी।
0: तो वो आग बबूला होना या हाथ वो जो लाल हो जाता है, कान लाल होती है गुस्से से थोड़ा, तो वो होता ये है ऑलरेडी केमिकल चेंजेस या रासायनिक क्रिया आपके बॉडी में शुरू हो गई है।
1: जी जी।
0: आपका ब्रेन आपको बोल रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, सावधान।
1: जी।
0: अब आपको कहीं किसी से डर लग रहा है या कहीं नए जगह पे जाने पे अलग सा एक
1: फोबिया,
0: हाँ धड़धड़ाहट होती है, सबको होती है। तब क्या होता है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, धड़धड़ सुनाई देती है दिल की। एक्चुअली होती है क्योंकि तब हमारा बॉडी उस हिसाब से काम करना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे किसी पे गुस्सा है तो मैं उसे मारूं या चिल्लाऊं, नहीं ऐसा नहीं होता। मानसिक चीजों में सप्रेस करना मतलब है अगर आपको कुछ चीजें बुरी लग रही है या जो भी है उसको एक अलग ढंग से प्रस्तुत कीजिए, नहीं तो सबसे अच्छा माध्यम मेरे हिसाब से ये है गाने, म्यूजिक इज अ बेस्ट थेरेपी फॉर एनीथिंग।
1: और ये भी हो सकता है कि उस माहौल से थोड़ा हट जाएं।
0: तब क्या होता है तब थ्री इडियट्स में जैसे हमने एक डायलॉग सुना होगा, हम बेवकूफ बनाते, ऑल इज वेल, वो हो जाता है, हम ब्रेन को बेवकूफ बना रहे कि भाई कुछ नहीं हुआ है,
1: सब ठीक है।
0: तो तात्पुरता ब्रेन जब नॉर्मल हो जाता है, वो केमिकल रिएक्शन सारे गड़बड़ जो हो रहे हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं, तब देखना आपका गुस्सा भी ठंडा हो रहा है, आपके बॉडी पे असर नहीं पड़ रहा है। ये हो गया मेंटल।
1: जी।
0: अब अगर हम शारीरिक बातों पे आए,
1: फिजिकल,
0: उसमें क्या होता है कि टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में रहते हैं, जैसे मैंने कहा कि जंक फूड ये वो अलाना
1: फलाना, सारी विषैली चीजें,
0: हाँ
1: तत्व जो है अंदर रहते हैं।
0: हाँ, तो ये सारी टॉक्सिक चीजें जब अंदर से बाहर आने की कोशिश करती है, याद रखिए नेचर प्रकृति हमेशा अपने आप को बचाना चाहती है। कोई चीज अगर क्रिएट हो रही है या बन रही है उसको जल्दी से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश नेचर कभी नहीं करता, प्रकृति कभी नहीं करती, शरीर भी वही है। तो जैसे ही कोई टॉक्सिक बॉडी के अंदर है विषैली चीजें, वो बाहर निकलेगी। कैसे निकलेगी, ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट है तो ऑर्गन्स को फर्स्ट हाथ नहीं देती नेचर। बाल हो गए, फेस हो गया, मतलब स्किन हो गया, ये दो ऐसी चीजें हैं कि अगर थोड़ा बहुत खराब भी हो गया तो आपके शरीर में या ऑर्गन्स में जो महत्वपूर्ण है आपके जीवन शैली में, वहां पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से जब हॉर्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं या टॉक्सिन्स बाहर निकालने होते हैं, फर्स्ट होता है स्किन, रिंग वर्म हो गया, एक्नी हो गया, सिंपल पिंपल हो गया,
1: रोम छिद्रों से निकल जाते
0: हैं। हाँ, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 10 क्रीम लगाओ, 50 लोशंस लगाओ, पहले उसको ठीक करो भले कुछ हो जाए। अब वापस नेचर ट्राई करता कि फिर उसको निकाले, फिर हम उसको अंदर डाल देते क्योंकि हमको बाहर से अच्छा दिखना है, अंदर कुछ भी हो जाए।
1: जी जी।
0: तो यहाँ पे हो जाता है क्या कि लिवर या कोई भी ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जैसे लिवर, किडनी, गुर्दा, मसल्स, ब्रेन, हार्ट, ये सारे एक प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो ये जब प्रॉब्लम में आ जाते हैं वो कहीं ना कहीं तो आपको इफेक्ट करने ही वाले हैं।
1: जी।
0: और वहां से शुरू होता है प्रॉब्लम्स की सारी प्रक्रिया है, जड़, जैसे मैंने बोला था होम्योपैथी का जड़। तो इसलिए पास हिस्ट्री, मैंने इसलिए इतना डिटेल्स में बोला कि ये होता है पास हिस्ट्री, ये भी हमें ध्यान रखना है। एंड लास्टली मोस्ट इम्पोर्टेंटली फैमिली हिस्ट्री,
1: इतिहास क्या है परिवार का।
0: अभी जैसे आम के बीच से आम ही होगा, केला होगा नहीं, केले के झाड़ में केले ही आएंगे,
1: हेरिडिटरी।
0: अभी जैसे अगर फैमिली में थायराइड का हिस्ट्री अगर है जो यंग गर्ल्स होती है, जो लड़कियां जो प्यूबर्टी में जाती है, उनके चांसेस भी ज्यादा रहते हैं कि आगे के दिनों में उनको भी थायराइड होने के चांसेस है। तब होम्योपैथ का काम ये होता है कि ये भी ध्यान में रखे, अगर है तो उसको ठीक करे, अगर नहीं है तो उसको होने ना दे, प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। ऐसे में काफी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो बोलते हैं कि अरे डॉक्टर साहब आपने दवाई दी थी मगर अमुक चीज तो ठीक है, मगर अरे इसको फेस पे पिंपल्स आ रहे हैं। मैं बोलती हूँ आने दो, क्योंकि टॉक्सिन्स निकल रहा है, जितने टॉक्सिन्स बॉडी से निकल जाए ऑर्गन्स उतना ही ठीक रहेगा। ऑप्टिमम लेवल मतलब जो एक्चुअल लेवल में रहना चाहिए, बैलेंस में रहना चाहिए, वो लेवल में रहेगा। और जैसे ही बैलेंस में आ जाता है ऑटोमेटिक पूरा सिस्टम बैलेंस में आता है।
1: तो फिलहाल तो हमें अपने प्रोग्राम को भी बैलेंस करना होगा, संतुलित रखना होगा। चर्चा को थोड़ा सा विराम देंगे और आपकी

0: बैजू बावरा फिल्म का यह नगमा वाकई आनंदित कर गया। और देखिए जिस तरह से गंगा की मौज में जो एक पवित्रता झलकती है, तो शरीर भी पूरी तरह से कुदरत का दिया हुआ एक पवित्र रचनात्मक पूरा व्यक्तित्व होता है। हम इसे बिगाड़ देते हैं विषैले तत्वों को आत्मसात करके, तो होम्योपैथी उससे भी बचाती है। और आहार के बारे में भी अब जानेंगे आपसे, लेकिन थोड़ा सा चिकित्सा का और आप विस्तार दे रही थी, वो क्या है?
1: अच्छा, अब आते हैं हम दवाइयों पे। हाँ, मेरा एक सुझाव रहेगा सभी से, कृपया कर खुद का इलाज खुद मत कीजिए, या दूसरों का भी सिर्फ पढ़ के गूगल पे सर्च करके सोशल मीडिया पे जाके मत कीजिए, इतना आसान नहीं है। मगर ये नाम सुनने को इजी, ये लक्षण जब पढ़ेंगे, अरे हाँ ये है ना, ये अमुक में है, अरे ये तो अमुक में है, दे देते हैं, इतना आसान नहीं होता। क्योंकि जैसे मैंने कहा था, पास हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री सब जानना जरूरी है, प्लस इन्वेस्टिगेशन का जो ये भी जानना जरूरी है। हर एक दवाई हर एक जगह पे काम नहीं करती, तो हम कैसे सिलेक्ट करते हैं दवाई?
0: सही बात,
1: दवाई तो वही है, लक्षण भी वही है, वेट लॉस होगा, वेट गेन होगा, यहाँ पे हाइपर थायराइडिज्म में स्वेटिंग मतलब
0: पसीना
1: बहुत ज्यादा आएगा, डायरिया होगा, हाइपो में उल्टा होगा। तो कैसे सिलेक्ट करते कि कहाँ पे किसको देना है?
0: लक्षण देख के
1: लक्षण में भी एक स्पेशल इंगित होती है, हर एक पेशेंट एक स्पेशल इंगित स्वयं देता है सुनने

0: की देरी है।
1: एक इंडिकेशन होता है,
0: एक इंडिकेशन, जैसे थायरॉक्सिन का पेशेंट है, एक आयोडीन का, हम मान के चलते हैं, ये अपने ऊपर ट्राई मत कीजिएगा, मैं बता रही हूँ एज एन एग्जाम्पल। थायरॉक्सिन का पेशेंट दिखने में कैसे होता है, गोल मटोल सा, बहुत स्वेट करता हो, थोड़ा भी कुछ काम किया तुरंत उसको पसीना आता है, तुरंत वो वीक हो जाता है, ठीक है।
1: थोड़ी मेहनत करने पे ही वो थक जाता है,
0: थक जाता है, बहुत जल्दी थक जाता है, ठीक है। मैंने जैसे पहले कहा था ब्लड टेस्ट इन्वेस्टिगेशन आ गया, अब होता है पेशेंट डायग्नोसिस, मुझे ये पेशेंट डायग्नोस करना पड़ेगा।
1: क्या बात है,
0: पेशेंट डायग्नोसिस होम्योपैथी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि अमुक पेशेंट अमुक मेडिसिन का है, तमुक पेशेंट तमुक मेडिसिन का है। तो ये कैसे पता चलेगा, पेशेंट के हिस्ट्रीज लेके और पेशेंट के प्रेजेंट सिम्टम्स लेके, और वो जिस तरीके का मानस

0: हिस्ट्रीज लेके और पेशेंट के प्रेजेंट सिम्टम्स लेके और वो जिस तरीके का मानसिक विचारधारा रखता हो. थायरोक्सिन का पेशेंट बहुत उग्र होगा, गुस्सेल. आयोडीन का पेशेंट उसी, अगर उससे देखा जाए, वो बेचारा सा
1: मायूस
0: सा बेचारा, हर एक चीज पे थोड़ी थोड़ी चीजों पे मेरा कुछ नहीं हो सकता. ये सारी चीजें उसमें होती. अब यहाँ पे आता है, जब मुझे पेशेंट डायग्नोसिस करना पड़ता है, मैंने थायरोक्सिन को आयोडीन और आयोडीन को थायरोक्सिन अगर दे दिया तो मेरे काम बिगड़े, मगर पेशेंट सफरर है. तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन या स्वयं को दवाई देना प्लीज बंद कर दीजिए.
1: डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक प्रश्न और उभरता है. हम कई बार देखते हैं बहुत ही मोटा सा व्यक्ति है, बहुत उसको पंचकर्म की क्रिया दे दी गई है, नेचुरोपैथ ये वो, लेकिन वो मोटा ही रहता है. और वो जब भी पूछते हैं तो थायराइड का प्रॉब्लम है. तो एक तो ये बात, तो ये थायराइड में मोटा होना या एकदम अत्यंत दुबला या क्रिश हो जाना, ये क्यूरेबल है?
0: है, क्योंकि जैसे ही आप थायराइड क्यों है, कारण क्या है, ये जैसे ही आप ठीक कर रहे हो, ऑटोमेटिक वो अपने नॉर्मल में आ रहा है, नॉर्मलसी जिसको कहते हैं, मतलब
1: सामान्य अवस्था में.
0: सामान्य अवस्था. डिजीज होता क्या है, डिस ईज, जब आपका ईज या आपका कंफर्टेबल लेवल जब खराब होता है, ईजनेस खराब होता है, उसको डिस ईज कहा जाता है. तो जैसे ही वो जड़ से ठीक होने लगता है, जब उसके ऑलरेडी जो गड़बड़ चल रही है वो ब्रेन में चले, माइंड में चले, कहीं पे भी चले
1: जी,
0: ये जैसे ही ठीक किया जाता है, वैसे ही ऑब्वियसली उसका जो सामान्य रूप से पूरी तरह से वो ठीक होके अपना सामान्य जीवन यापन कर सकता है.
1: जी जी. और अब देखें कि इसमें कई बार आहार भी काम करता है, जो इस तरह की थायराइड की आने वाली आगामी जो बीमारियां हैं उससे बचाव भी होता है उसका. तो आप क्या कहेंगे कि डाइट और प्रिवेंशन के बारे में क्या कहना?
0: कोई भी पैथी अगर कहे कि मैंने ही सब कर लिया, एकदम गलत. क्योंकि सिर्फ पैथी, सिर्फ दवाइयाँ कुछ नहीं करती, कर ही नहीं सकती. इसमें डाइट का, मतलब आहार का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता ही है. सिर्फ डाइट अगर बोलूँ तो गलत होगा. साथ में होते हैं एक्सरसाइज, मतलब व्यायाम. व्यायाम मतलब ये नहीं कि आप जिम में जाओ, अमुक वेट्स लो, तमुक करो, कोई जरूरत नहीं है. आप रोजाना 5-7 किलोमीटर चलो. सीजनल फ्रूट,
1: कोई भी मौसमी एक जो मौसमी फल है खाना चाहिए,
0: खाना हो या फल हो ये खाइए. और पानी, हाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगी, लोग पानी जब बोलते हैं तो बोलते हैं ज्यादा पानी पियो, ज्यादा पानी पियो, शरीर ठीक रहेगा. बिल्कुल नहीं. 2.5-3 लीटर काफी है आपके बॉडी के लिए. इससे जब ज्यादा पानी पियोगे, एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी, आप की खुद की कैपेसिटी अगर होगी, मेरी खुद की कैपेसिटी है 2 किलो चीज उठाने की, मुझे 3 किलो दे दिया जाए मैं उठा लूंगी, मुझे 10 किलो दे दिया जाए क्या मैं उठा पाऊंगी?
1: बहुत प्रेशर पड़ेगा.
0: यही प्रेशर हमारे इंटेस्टाइन्स, किडनीज पे स्पेशली पड़ता है जब हम ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की कोशिश करते हैं. किडनीज सिर्फ फिल्ट्रेशन का काम नहीं करता, T3 किडनीज लिवर से भी प्रोड्यूस होती है.
1: ओहो.
0: Yes. इसलिए मैंने ये यहाँ पे जिक्र किया. और जब किडनीज अगर काम नहीं कर रही है तो 10 चीजें होंगी ही होंगी, T3 पे भी असर पड़ेगा.
1: तो ये सावधानी बहुत जरूरी है रखना. और आपका जो टोटल इन ऑल कहना ये है कि वो कॉमनली कहा जाता है कि ज्यादा पानी पिए, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार
0: उतना ही.
1: लेकिन आहार में ये बात तो मानती है, आज की जो लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली है, उसमें जंक फूड वगैरह भी इसमें.
0: सबसे पहला चीज जो लोगों को बंद करना चाहिए वो है अजीनोमोटो,
1: जो बड़ी खतरनाक में ज्यादा इस्तेमाल होता है. बिल्कुल सही बताया.
0: अजीनोमोटो बंद कर दीजिए, फास्ट फूड्स कम कर दीजिए,
1: और कुछ नहीं तो सामान्य खाना खाइए.
0: हाँ, कम कर दीजिए. मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि बंद कर दीजिए, एक्चुअली बंद करनी चाहिए. अगर नहीं हो रहा है कम कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप कम करेंगे ऑटोमेटिक आपका शरीर पॉजिटिव दिशा में जाएगा. और मेरा सुझाव एक रहेगा लोगों से, जितना हो सके अपने माइंड को थोड़ा नियंत्रण पे रखिए. मतलब थोड़ा सैक्रिफाइस अगर हम करना शुरू हो जाए,
1: कंट्रोल
0: करना शुरू हो जाए. सैक्रिफाइस मतलब अपना स्वार्थ थोड़ा सा हटके देख लेना. जैसे ही आपका मन शांत रहेगा, आपकी सोच अच्छी होगी, शरीर ऑटोमेटिकली उसी दिशा में उस हिसाब से अच्छा ही चलेगा,
1: क्योंकि उसी हिसाब से उसको आदेश प्राप्त होंगे.

0: हम जैसे बोलते हैं कि ब्रेन ने वो आदेश दिया, मैंने जैसे पहले कहा कि ब्रेन को आदेश मिलता है कि TSH चालू करो बंद करो, एक्चुअली ब्रेन देता है क्या? मन देता है। मन को आप ब्रेन के अंदर रिलेट मत करना, वो अलग चीज होती है।
1: हमारे जो कार्यक्रम का मन इस समय कह रहा है कि आदेश दे रहा है दरअसल कि एक गाना अच्छा सा हो जाए,
0: एक अच्छा सा गाना चलते चलते मैं हूँ।

हो झुम झुम झुम झुम झुमरो पकड़ घूम बन के घुमरो साथ में हम सफर न कोई कारवां भोला भाला सीधा साधा लेकिन दिल

ஊடுடே.

0: डॉक्टर साहब, बहुत ही झूमता मचलता बहलाता कदमों को थिरकाता नगमा आपने सुनवाया जुबरू फिल्म से और किशोर कुमार की आवाज में। देखिए, समापन की ओर बिल्कुल नजदीक है हमारा प्रोग्राम। चलते चलते आज के हमारे विषय पर हमारे सुनने वालों को आप क्या मैसेज, संदेश या सलाह देना चाहेंगी?
1: एक है कि पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, दूसरों के लिए नहीं तो खुद के लिए, खुद के शरीर के लिए। दूसरों के लिए भी अच्छा सोचिए, खुद के लिए भी अच्छा सोचिए। आप जितना अच्छा सोचोगे, आपके शरीर की जो रासायनिक क्रिया है उतनी ही पॉजिटिव आएगी। और इससे होगा क्या, हमारे आने वाले जेनरेशंस को हम एक बहुत अच्छा एनवायरमेंट या एक अच्छा जगह दे पाए जहाँ पे वो पनप सके। मेरे जो गुरु है, जिन्होंने आज मुझे सिखाया है कि होम्योपैथी का मतलब क्या, कैसे सेवा की जा सकती है, कैसे ठीक करके हम, ये एक अलग ही खुशी मिलती है पेशेंट को ठीक करने की। ये जो खुशी मिलने का जो राह है

0: वो मेरे गुरु ने मुझे दिखाए है. मेरे गुरु और कोई नहीं, मेरे डैड है, डॉक्टर एस बैनर्जी. एक बहुत बड़ा सपोर्ट है. और एक बार फिर विविध भारती को तहे दिल से शुक्रिया करूंगी मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए.
1: बहुत बहुत धन्यवाद. तो दोस्तों, ये थी मुलाकात मुंबई की सुप्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर लीजा बनर्जी के साथ. आज के प्रोग्राम में चर्चा का विषय था थायराइड होम्योपैथी में उपचार. इस विषय पर यह कार्यक्रम आपने सुना और उम्मीद है आप प्रतिक्रिया देंगे तो हमें पता चलेगा प्रोग्राम आपको कैसा लगा. चलते चलते आपको बताना चाहेंगे, आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा. और अब दीजिए आज के सेहतनामा कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत. नमस्कार.

विविध भारती के कार्यक्रम अब हम आपको सुनवाएंगे शाम 7:30 से। यह है आकाशवाणी का अयोध्या FM 101.9 MHz और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। आज सांध्यकालीन कार्यक्रमों के साथ रहेगा आपका बरसों पुराना आपका ही रेडियो मीत अमरजीत रात 11:10 तक, जो आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करता है, स्वागत करता है और मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार जहां तक पहुंच रही है आकाशवाणी अयोध्या FM की आवाज। शाम के 5 बजने वाले हैं, लीजिए सुनिए। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार वितरण का सजीव प्रसारण, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आपको बस कुछ ही देर में सुनवाएंगे।

0: यह आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अब हम आपको राष्ट्रपति भवन लिए चलते हैं, जहां से आप भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं महेंद्र सिंह लालस और लालिमा अनेजा। आइए राष्ट्रपति भवन चलें।
1: नमस्कार, राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप से मैं महेंद्र सिंह लालस अपने साथी कमेंटेटर लालिमा अनेजा डैंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज यहां 66 विभूतियों को पद्म अलंकरण प्रदान करेंगी, जिनमें 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री शामिल हैं। नागरिक अलंकरण समारोहों का ये पहला चरण है और दूसरे चरण में शेष रहे पद्म अलंकरण प्रदान किए जाएंगे। अभी हमारे बीच माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, लोकसभा अध्यक्ष, माननीय गृह मंत्री जी, ये तमाम अतिथि आ चुके हैं और कुछ क्षणों में यहाँ पर पधारेंगी। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू,
2: नमस्कार एंड अ वार्म वेलकम टू पार्ट 1 ऑफ

0: National and Distinguished Service and Padma Shri. And Padma Bhushan is for Distinguished Service of High Order. And Padma Shri is for Distinguished Service in any field. Friends, the awards are announced on Republic Day every year.
1: इस वक्त राष्ट्रपति जी का यहाँ पर इंतजार. हम ये बता दें कि राष्ट्रपति भवन का ये ऐतिहासिक गणतंत्र मंडप, जहाँ पर 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट ने शपथ ली थी, ठीक यहाँ पर राष्ट्रपति जी के आसन के ठीक पीछे 5वीं शताब्दी की मथुरा की ऐतिहासिक बुद्ध की प्रतिमा, जो कि गंधार शैली में बनी है, और ठीक बीच में यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर शैंडिलियर, और इसके ठीक ऊपर सांची के स्तूप से प्रेरित गुंबद, और 12 बहुत ही सुंदर जैसलमेरी पत्थर के बने स्तंभ. और अब पधार रही हैं माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र मंडप में.

0: राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान प्रस्तुत किया था महार रेजिमेंट सेंटर सागर के बैंड ने। सुबेदार पीवी गुरुंग इसका कर रहे थे।
1: माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो पद्म पुरस्कार 2026 के अलंकरण समारोह की कार्रवाई आरंभ की जाए।
0: राष्ट्रपति जी ने कार्यक्रम शुरू करने की स्वीकृति दी। उन्होंने सुनहरे रंग की फिरोजी रंग के बॉर्डर वाली साड़ी पहनी है और मंच पर आसीन। अब कुछ ही पलों में प्रस्तुतिकरण शुरू होने वाला है।
1: श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय, उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
0: सबसे पहले महान अभिनेता हीमन के नाम से मशहूर, जिन्होंने 6 दशक तक कैरियर रखा है, 300 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है। 86 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी पद्म विभूषण प्राप्त करने जाती हुई।
2: श्री धर्मेंद्र सर्व्ड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द 14th लोकसभा रिप्रेजेंटिंग द बीकानेर कॉन्स्टिट्यूएंसी इन राजस्थान फ्रॉम 2004 to 2009। And he was known for his emotional bond with his constituents.
1: Dr. Shrimati N. Rajam, Kala Violin.
0: 87 वर्षीय डॉक्टर श्रीमती एन राजम भारतीय शास्त्रीय संगीत की पहचान है और वायलिन के क्षेत्र में एक अनूठा नाम है। आप एर्नाकुलम में जन्मी थी और पंडित ओंकारनाथ ठाकुर से आपने वायलिन की शिक्षा प्राप्त की।
2: Beyond her illustrious performing career, Dr. Rajam served with distinction as a professor in the Faculty of Performing Arts at the Banaras Hindu University for nearly 4 decades and rose to become the head of department and subsequently dean of faculty, earning the prestigious title of Emeritus Professor by BHU.
1: Padma Bhushan, Shatavdhani Dr. R. Ganesh, Kala Avdhan.
0: अवधान के विशेषज्ञ 64 वर्षीय शतावधानी डॉक्टर आर गणेश कलम और कागज की किसी भी सहायता से उसकी सहायता के बिना छंद लिखते हैं और इन्होंने 1300 से ज्यादा अष्टावधान और 5 शतावधान लिखे हैं और 70 से ज्यादा पुस्तकें भी।
2: डॉक्टर आर गणेश इज आल्सो अ प्रोलिफिक ऑथर हैविंग मोर देन 70 बुक्स टू हिज क्रेडिट।
1: भगत सिंह कोश्यारी लोक कार्य।
0: भगत सिंह कोश्यारी, जिन्हें भगत दा के नाम से जाना जाता है, आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे, 74 वर्षीय और लोक सेवा का अनूठा काम किया है, राष्ट्रवादी नेता है।
2: श्री कोश्यारी स्टार्टेड टीचिंग एट सरस्वती शिशु मंदिर कासगंज उत्तर प्रदेश वेयर ही वर्क्स टू इंपार्ट भारतीय वैल्यूज अलोंग विद मॉडर्न एजुकेशन टू यंग चिल्ड्रन।
1: श्री उदय सुरेश कुमार कोटक, व्यापार एवं उद्योग।
0: 67 वर्षीय कोटक, आपने कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड से शुरुआत की और आज कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड जैसा एक बड़ा आयोजन इन्होंने किया है।
2: श्री कोटक हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिफाइनिंग एंड डेवलपिंग इंडिया'स बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर ओवर 4 decades एंड ही लीड्स सेवरल की बॉडीज सर्विंग एज को चेयरमैन ऑफ द इंडो यूके फाइनेंशियल पार्टनरशिप।
1: कुमार मल्होत्रा मरणोपरांत लोक कार्य, उनके पुत्र श्री अजय कुमार मल्होत्रा।
0: बीती 30 सितंबर 2025 को श्री मल्होत्रा का निधन जरूर हो गया था, लेकिन आप एक खेल प्रशासक थे और एक राजनीतिज्ञ और अकादमिक भी थे। उनके बिहाफ पर अजय कुमार मल्होत्रा पद्म भूषण प्राप्त करते।
2: Pioneer in sports, Professor Malhotra served over 40 years as the president of Archery Association of India.
1: Ramaswamy Palliswamy, चिकित्सा गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी।
0: 77 वर्षीय डॉक्टर पलनी स्वामी देश के प्रतिष्ठित गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं। आपने

0: 2007 में पद्मश्री सम्मान भी प्राप्त किया था।
1: He also served as president of the Society for Gastrointestinal Endoscopy of India, where he initiated a task force to form guidelines.
2: श्री पीयूष पांडे मरणोपरांत कला विज्ञापन, उनकी पत्नी श्रीमती नीता जोशी।
0: पीयूष पांडे कौन नहीं जानता उन्हें, विज्ञापन की दुनिया में एक अनूठा नाम। 70 वर्ष की उम्र में 24 अक्टूबर 2025 को इनका निधन हो गया। नीता जोशी उनके बिहाफ पर ये पुरस्कार प्राप्त करती है।
1: श्री पांडे वाज नेम्ड एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एडवर्टाइजिंग मैन इन इंडिया बाय द इकोनॉमिक टाइम्स।
2: श्री विश्वबंधु मरणोपरांत कला लोक नृत्य, उनकी पत्नी श्रीमती इंदु देवी।
0: विश्वबंधु जी लोक कला के एक बड़े अनूठे हस्ताक्षर थे और बिहार में लोक कलाओं की, खास तौर पर लोक नृत्यों की बहुत सेवा की। 95 वर्ष की उम्र में आपका निधन जरूर हो गया, लेकिन राष्ट्र आज कर रहा है उनका सम्मान पद्मश्री देकर मरणोपरांत।
1: श्री विश्वबंधु वाज़ द फाउंडर ऑफ सुरंगन, वन ऑफ बिहार्स मोस्ट रिस्पेक्टेड कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, एंड रिमेन सो ओवर 6 डेकेड्स।
2: श्री भरत सिंह भारती कला लोक गायन।
0: भरत सिंह भारती 90 वर्ष की उम्र में भी आप सांस्कृतिक विरासत और खास तौर पर भोजपुरी गायन और भोजपुरी लोक शैलियों का अभी भी संरक्षण कर रहे हैं। आपने गुलाबी रंग का जैकेट पहना हुआ है, सबका अभिवादन करते हुए और राष्ट्रपति जी के सामने जाते हुए गुरुजी का इन्हें संबोधन दिया जाता है।
1: Shri Bharat Singh Bharati represented India at the Sagar Festival in Mauritius in 1987, where his album Purabiyatan was released. He has also guided a new generation of artists as a judge and mentor.
2: Shri Tagaram Bhil Kala Algoza Badan.
0: Jaisalmer ki Tagaram Bhil अलगोजा बजाते हैं, कितना सुंदर साज जो कि शीशम और कैर की सूखी लकड़ी से बना होता है। इन्होंने जैसलमेरी पट्टू पहना है और ऊपर जैसलमेरी साफा चुंदड़ी का।
1: श्री तगाराम इज द रेसिपिएंट ऑफ न्यूमरस अवार्ड्स एंड ऑनर्स एंड एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स। ही हैज रिसीव्ड अ महरावाल गिरधर अवार्ड इन 2013 बाय महरावाल गिरधर ट्रस्ट जैसलमेर एंड मेनी मेनी अदर अवार्ड्स।
2: हरमनप्रीत कौर भुल्लर खेल क्रिकेट।
0: कौन नहीं जानता हरमनप्रीत कौर को, जिन्होंने राष्ट्र के लिए विश्व कप की ट्रॉफी उठाई थी। 37 वर्षीय हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान, सुनहरे रंग का परिधान पहना हुआ राष्ट्रपति जी के सामने जाकर अपना पद्मश्री स्वीकार करती हुई।
1: Her achievements have not only strengthened India's presence in international cricket, but have also contributed significantly to the growth of
2: Shri Ratilal Mohanlal Borisagar, Sahitya Evam Shiksha.
0: 88 साल के हैं रतिलाल मोहनलाल बोरीसागर और गुजरात में कितने ही बच्चों के चेहरों पर इन्होंने मुस्कान पैदा की है, क्योंकि ये कॉमिक्स और हास्य लेखन के लिए मशहूर हैं।
1: Yes, he has received many awards and honors, and after 36 years, his students have established a foundation in 2011 for literary and educational activities. He's also written a biography, Raman Bhai Nilkant.
2: Shri Kumar Bose कला तबला।
0: कुमार बोस तबले में एक बहुत बड़ा नाम है। आप 4 अप्रैल 1954 को जन्मे थे और पिता विश्वनाथ बोस से सीखा, लेकिन बाद में ये पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज के भी शागिर्द रहे।
1: श्री बोस's quiet dignity, ethical integrity and unwavering commitment to classical values have earned him top grade status in All India Radio, the Sangeet Natak Academy Puraskar and Pandit Dinanath Mangeshkar Award, along with immense respect within the artistic community.
2: Shri Janardan Bapurao Bothe, Samaj Seva.
0: मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता हैं बोथे जी, 77 साल के हैं और पूज्य राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज द्वारा स्थापित पवित्र गुरुकुंज आश्रम में आप सेवा दे रहे हैं।
1: श्री बोधे कंपनी राष्ट्र संत श्री तुकड़ोजी महाराज ऑन सिग्निफिकेंट विजन्स

0: visits across India, including Goa, Rashtrapati Bhavan, major Kumbh Melas, Sadhu Sammelans, and the founding meeting of Sanskar of the Vishwa Hindu Parishad in Mumbai. He has also served as full-time personal secretary
1: Swami Brahmadev Samaj Seva.
2: Swami Brahmadev, 82 साल के हैं आप, श्रद्धेय हैं, राजस्थान के श्री गंगानगर से आते हैं और आपने राष्ट्र के कई अंचलों में आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी दिया है और समाज की सेवा भी की है.
0: And during spiritual practice while completing bachelor degree at college in Amritsar, which was adjacent to a blind school, being compassionate with blind children, he decided to dedicate his life for upliftment of specially abled children. Swami Brahmadev.
2: Kesariya rang ka aapne saafa pehna hai aur kesariya hi paridhan hai. Rashtrapati ji ke samne unhe abhivadan karte hue ye sang Padma Shri se sammanit hota hua.
1: श्री प्रोसेनजीत चैटर्जी, कला फिल्म अभिनय.
2: प्रोसेनजीत चैटर्जी इन्हें बुम्बा दा नाम से ज्यादा जानते हैं और भारतीय सिनेमा की एक अनूठी पहचान इन्होंने बनाई है. खास तौर पर बंगाली सिनेमा में आपने बहुत काम किया है और दूसरे के लिए आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला है.
0: इन द डिजिटल एरा श्री चैटर्जी सक्सेसफुली रीइन्वेंटेड हिमसेल्फ थ्रू हिंदी स्ट्रीमिंग प्रोजेक्ट्स लाइक ट्रिपली, स्कूप एंड खाकी.
1: श्रीमती देवकी अम्मा जी, समाज सेवा.
2: वन उत्पादक हैं आप, 82 साल की हैं लेकिन रुकी नहीं है, वन दादी नाम से जानी जाती है. 3000 से ज्यादा पेड़ों और स्वदेशी औषधियों और दुर्लभ पौधों की प्रजातियों को बचाने का काम आपने किया है और केरल के अल्लपुआ से आती हैं.
0: श्रीमती देवकी अम्मा relied on traditional knowledge and close observation of soil and climate conditions for growing plant saplings and used mulching, organic manuring from home cattle, careful retention of leaf litter and thoughtful water management. She was also conferred the Nari Shakti Puraskar in 2018.
1: Dr. Ramchand Godbole evam Shrimati Sunita Godbole, Chikitsa.
2: डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले और उनके साथ सुनीता गोडबोले, आप एक
1: डॉक्टर
2: सामाजिक कार्यकर्ता हैं, 66 साल के हैं और आदिवासी समुदायों के लिए खास तौर पर छत्तीसगढ़ में आपने बहुत काम किया है.
0: In 1990, soon after their marriage, Dr. Godbole and his wife, Shrimati Sunita Godbole, decided to move to Bastar to serve tribal communities medically.
1: Shrimati Sunita Godbole.
2: ये भी कितना गौरव का क्षण है. उनके साथ आ रही हैं सुनीता गोडबोले. एक साथ दोनों को पद्मश्री मिलता हुआ. आपने भी समाज के लिए बहुत कार्य किया है और खास तौर पर अपने पति डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले के साथ महाराष्ट्र में 12 साल और छत्तीसगढ़ में 30 सालों से आपने सेवा की है.
1: श्री तेची गोबिंद, समाज सेवा.
2: अरुणाचल प्रदेश से आते हैं और वास्तुकार और सामाजिक कार्यकर्ता हैं. आपने बहुत ही कार्य किए वहाँ पर और पारंपरिक अरुणाचली परिधान पहनकर, जिसमें सिर पर पंख भी है हॉर्नबिल का, नमस्कार करते हुए तेची गोबिंद, 62 वर्षीय, पद्मश्री प्राप्त करते हुए.
0: श्री गोबिंद ऑर्गेनाइज्ड एंड लेड द सीमांत दर्शन यात्रा इन 2010 एंड 2021 विजिटिंग रिमोट विलेजेस बॉर्डरिंग चाइना, म्यांमार एंड भूटान. He also led a team of delegations to meet the Vice President to report on the security needs.
1: Dr. H.V. Hande, Chikitsa.
2: 99 साल के हैं आप और ध्यान रखिए 99 वर्षों से इस शख्स ने भारत की सेवा की है. मशहूर चिकित्सक हैं और साथ में राजनीतिज्ञ भी हैं, लेकिन इन सब के अलावा डॉक्टर हंडे ने संपूर्ण कंब रामायण, जो कि तमिल में है मूल रूप से, उसका अंग्रेजी गद्य में अनुवाद भी किया है. राष्ट्रपति जी की एडीसी उनका हाथ पकड़ कर ले जाते हुए उन्होंने हल्के हरे रंग का जैकेट पहना है और राष्ट्रपति जी का अभिवादन करते हुए आगे अपना पद्मश्री प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे जाते हुए.
0: While Dr. Hande was the health minister of Tamil Nadu between 1980 and 1986, he brought the state into the first slot consecutively for 3 years in reducing infant mortality rate and maternal mortality.

0: in drastically reducing the incidence of leprosy and other communicable diseases. Thereafter, he received the prestigious Dr. B.C. Roy Award.
1: Shri Ghafruddin Mevati Jogi, Kala, Bhapang Vadan.
2: राजस्थान में अलवर से गफरुद्दीन जी आते हैं. इन्होंने राजस्थानी साफा पहना है, नमस्कार करते हुए जाते हुए जोगी परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं और भपंग बजाते हैं, जिसे महादेव का वाद्य कहते हैं, और खास तौर पर महाभारत और कृष्ण लीला अली बख्शी परंपरा जैसी कथाओं का वाचन करते हैं.
0: When through his sustained artistic practice, Shri Ghafruddin has contributed significantly to the preservation of nearly 20 endangered folk musical instruments and oral narrative traditions. His work has supported academic research including PhD level studies.
1: Shri Mir Hazi Qasim, Kala Dholak.
2: 75 साल के मीर हाजी कासम इन्हें हाजी रामकडू नाम से बुलाते हैं. आप जूनागढ़ के एक महान और मशहूर लोक संगीतकार हैं. 75 वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन इन्होंने पूरा जीवन गुजरात के पारंपरिक संगीत को समर्पित किया है और खास तौर पर बहुत अच्छी ढोलक बजाते हैं.
0: Kasim has been instrumental in carrying Gujarati folk music to global audiences, performing across countries such as the USA, UK, South Africa, Canada, UAE, Oman, and several others. He has also received many state-level honors, including the Gujarat Gaurav Puraskar, Gujarat Rajya Sangeet Natak Academy Award, Gujarat Lokala Rashtriya
1: Puraskar. Shri Raghuveer Khedkar, Kala Theatre.
2: रघुवीर खेड़कर को महाराष्ट्र के लोग अच्छी तरह जानते हैं. आप एक मशहूर तमाशा कलाकार हैं और तमाशा की एक मंडली भी चलाते हैं और लोक कला और खास तौर पर मराठी लोक कला को संरक्षित करने के लिए कटिबद्ध हैं.
0: During the COVID-19 pandemic, when public performances halted and many artists faced hunger and unemployment, Shri Khedkar stood up as a staunch advocate. He led appeals for financial support and leveraged solace and solidarity for folk artists.
1: Shri R. Krishnan Kitna, Manno Prant, Kala Kurumba Tribal Painting, Unki Patni Srimati Sushila Krishnan.
2: आर कृष्ण किटना, जिनका 20 मार्च 2025 को निधन हो गया था. आप तमिलनाडु से आते हैं और बचपन से ही चित्रकारी करते आए थे और दीवारों पर इन्होंने बहुत चित्र बनाए. सुशीला कृष्णन, उनकी पत्नी, पद्मश्री प्राप्त करती हुई.
0: श्री आर कृष्णन किटना इज नोन फॉर यूजिंग नेचुरल पिगमेंट्स इन हिज आर्ट फॉर्म एंड हिज स्किल्स एज अ स्टोरी टेलर. ही इज आल्सो
1: प्रोफेसर डॉक्टर लार्स क्रिश्चियन कोच, कला म्यूजिकोलॉजी.
2: एथनोम्यूजिकोलॉजिस्ट हैं आप, बंगाल से प्रेम करते हैं और खास तौर पर गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के साथ इनका एक आत्मिक संबंध है. बॉन में टैगोर इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ाई की और शांति निकेतन पश्चिम बंगाल से भी जुड़े रहे.
0: प्रोफेसर कोच इज डायरेक्टर ऑफ द स्टेट एथनोग्राफिक कलेक्शंस इन द स्टेट आर्ट कलेक्शंस सैक्सोनिया इन ड्रेसडन जर्मनी सिंस अक्टूबर 2025.
1: प्रोफेसर मामीडाला जगदीश कुमार, साहित्य एवं शिक्षा.
2: 66 वर्षीय जगदीश कुमार, आपने एनसीईआरटी में बहुत काम किया है, सुप्रसिद्ध शिक्षाविद है और राष्ट्र की जो शिक्षा नीति है उसमें भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है.
0: वेल प्रोफेसर मामीडाला जगदीश कुमार फ्रेम्ड एंड ऑपरेशनलाइज्ड मॉडल्स अंडर एनएपी 2020 एंड द 4-year अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम विद फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर एंड द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स.
1: श्री प्रवीण कुमार, खेल एथलेटिक्स दिव्यांग.
2: और अब बारी इस 23 वर्षीय खिलाड़ी की. T44 ऊंची कूद में विश्व में आप नंबर वन हैं और पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पैरा एथलीट हैं प्रवीण कुमार.
0: श्री प्रवीण कुमार वेंट ऑन टू क्लेम गोल्ड एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड ग्रैंड प्री विद अ लीप ऑफ 2.05 मीटर्स सेटिंग एन एशियन रिकॉर्ड. एट टोक्यो पैरालंपिक्स ही वन अ सिल्वर मेडल.
1: श्री के विजय कुमार, सिविल सेवा.
2: विजय कुमार जी सीआरपीएफ के पूर्व महानिदेशक रहे हैं और संकटपूर्ण मिशनों में आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
0: एज कमिश्नर ऑफ चेन्नई, श्री के विजय कुमार रिफॉर्म्ड क्राइम कंट्रोल प्रैक्टिसेस, क्रैक डाउन ऑन ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स एंड एनहांस्ड पब्लिक सेफ्टी एंड रिड्यूस्ड रोड फैटलिटीज बाय 40%.

0: National DG Law and Order,
1: Shri Rang
0: Public Safety
1: Deva Lar, Dada Lar, Krishi.
2: Deva Lar, Kisani Kheti Karte Hain. और ग्रामीण विकास और स्थायी कृषि और सामाजिक कार्यों में बहुत योगदान दिया है। परभणी जिले के मालसोना गांव में आप जन्म हैं, 79 वर्ष के हैं।
0: श्री रंग देवा नार इन्वेंटेड न्यू टेक्नोलॉजी इन कॉटन कल्टीवेशन व्हिच वाज यूज्ड बाय फार्मर्स इन ऑल कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। ही हैड डन रिसर्च वर्क इन जवार एंड तूर एज वेल।
1: श्री अंके गौड़ा एम, समाज सेवा।
2: 77 साल के अंके गौड़ा अब माननीय राष्ट्रपति जी से अपना पद्मश्री प्राप्त करने के लिए जाते हुए आपने अपना पूरा जीवन पुस्तकों के संरक्षण, संग्रह और उसे लोगों तक पहुंचाने में दे दिया है।
0: श्री अंके गौड़ा जी हैज पर्सनली कलेक्टेड मोर देन 20 लाख बुक्स ओवर द लास्ट 50 इयर्स यूजिंग हिज एंटायर पर्सनल अर्निंग्स फॉर दिस पर्पस एंड हिज कलेक्शन इंक्लूड्स बुक्स इन Kannada, English, Hindi, Tamil, Telugu and several other Indian languages and diverse subjects such as literature, history, art, culture and philosophy.
1: Professor Dr. Saroj Mandal, Chikitsa, Cardiology.
2: 69 वर्षीय Dr. Mandal, International Cardiologist. आपने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश की खूब सेवा की है।
0: Professor Dr. Mandal has served over 6 lakh patients in OPD over 35 years and independently performed and supervised 50,000 coronary angiograms and 50,000 angioplasties.
1: Professor Buddha Rashmi Mani, Puratattva Vigyan.
2: Bharatiya Puratattva Vigyan ke ek mahatvapurna hastakshar Professor Buddha Rashmi Mani, Rashtriya Sangrahalaya ke महानिदेशक भी आप रहे हैं और कहां कहां उत्खनन इन्होंने नहीं किया हमारी सभ्यता के अवशेष खोजने में।
0: While working in the Archaeological Survey of India, Professor Mani conserved about 150 centrally protected monuments in Maharashtra, Goa, Delhi and Jammu and Kashmir and discovered 200 archaeological sites and he directed 20 expeditions.
1: Shri Nilesh Vinod Chandra Mandlewala, Samaj Seva.
2: ऑर्गन मैन के रूप में जाने जाते हैं और डोनेट लाइफ संस्थान के रूप में इन्होंने बहुत कार्य किया है, खास तौर पर गुजरात और भारत में शव अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाई है।
0: श्री मांडलेवाला, he has a long term vision that by 2047 no citizen should lose life because of the non availability of organs. For that he has traveled extensively across India.
1: डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र, साहित्य एवं शिक्षा।
2: लुप्त प्राय जनजातीय आवाज़ों को आधुनिक शिक्षा शास्त्र में आपने शामिल किया है और आवाज़ों को संरक्षण करने में 4 दशक से अधिक का समय दिया है डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र ने।
0: Internationally, Dr. Mishra has advised Nepal's MLE policy, lectured at China's CAS, Hanyang University, South Korea, Thailand's Mahidol University and Russia's Academy of Sciences.
1: Shrimati Tripti Mukherjee, Kala, कंथा एम्ब्रॉयडरी।
2: कंथा ऐसी कढ़ाई है जो पूरे विश्व में भारत की पहचान है और उसे आगे बढ़ाने में, उसे नए स्वरूप देने में तृप्ति मुखर्जी का बहुत योगदान रहा है।
0: श्रीमती मुखर्जी इज द रेसिपिएंट ऑफ न्यूमरस अवार्ड्स सच एज द नेशनल अवार्ड सर्टिफिकेट इन 2010 एंड शिल्प गुरु अवार्ड इन 2016 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। शी इज आल्सो बीन एक्नॉलेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल by conferring on her the Bangashri Award.
1: Hari Madhav Mukhopadhyay, Kala Theatre, unke putra Shri Krishnendu Mukhopadhyay.
2: आप मशहूर थिएटर निर्देशक, नाटककार और अभिनेता थे। 85 वर्ष की उम्र में 17 मार्च 2025 को आपका निधन हो गया। उनकी विहाव पर पद्मश्री प्राप्त करने जाती हुई कृष्णेंदु उपाध्याय मुखोपाध्याय।
0: श्री
1: सत्य नारायण नंदलाल नवाल, व्यापार एवं उद्योग।
2: 74 वर्षीय नवाल सोलर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। आज इन्हें सम्मानित किया जा रहा है पद्मश्री से।
0: Under Shri Nawal's leadership, Solar became the first Indian company to design, develop and manufacture fully weaponized variants of the Nagastra loiter munition.

0: श्री के पजानी वेल खेल सिलंबम
1: सिलंबम 5000 साल पुरानी भारतीय मार्शल आर्ट है और युद्ध शस्त्र आधारित पद्धति है। इसे आगे बढ़ा रहे हैं के पजानी वेल।
2: Well, Shri Pajanivel was conferred the Academy Puraskar Award of Sangeet Natak Academy presented by the Honorable President of India in 2023. And he also founded the Mamallan Silambam and Folk Arts Development Club in Pondicherry. He has also trained youths who were interested in Silambam.
0: Shri Dharmik Lal Chunilal Pandya, Kala Man Akhyan.
1: 94 वर्ष के हैं आप धार्मिक लाल चुनीलाल पंड्या और गुजरात की प्राचीन मान भट्ट मान आख्यान परंपरा के सर्वश्रेष्ठ उस्ताद हैं। आपने पगड़ी पहनी है और व्हील चेयर पर जाते राष्ट्रपति जी खुद अपने आसपास आकर श्री पंड्या का सम्मान।
2: In addition to preserving classical repertoire, Shri Pandya has composed new akhyans on contemporary social themes like water conservation.
0: Shri Kailash Chandra Pant, Sahitya Evam Shiksha.
1: प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक हैं कैलाश चंद्र पंत, मध्य प्रदेश से आते हैं और शुरू से ही पत्रकारिता और खास तौर पर निष्पक्ष पत्रकारिता में आपने अपना अनूठा नाम बनाया।
2: In 1977, Shri Kailash Chandra Pant launched weekly Jan Dharam from November 1988 as Secretary of Madhya Pradesh Rashtra Bhasha Prachar Samiti. He revitalized Hindi Bhavan and upgraded the quarterly literary magazine, Akshar.
1: Rashtrapati ji swayam ek seedhi utar ke niche aati hui aur Pant ji jo ki 90 saal ke hain unka samman karti hui aur ye kartal dhwani is baat ka prateek ki rashtra ऐसे सेवकों का ऋणी है।
2: His work earned him the विश्व हिंदी सम्मान।
0: श्री गरी मेला बाल कृष्ण प्रसाद मरणोपरांत कला गायन, उनके पुत्र श्री गरी मेला अनिला कुमार।
1: अनिला कुमार उनके ब्याह पर लेगी ये पुरस्कार। गली मेला बाल कृष्ण प्रसाद 78 वर्ष की उम्र में ये देह तो छोड़ गए लेकिन अपने महत्वपूर्ण कार्यों को राष्ट्र के लिए सौंप गए। प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय और भक्ति संगीत गायक थे आप।
2: Over a career spanning six decades, Shri Prasad presented more than 6,000 concerts across India and internationally.
0: Professor Dr. Rajendra Prasad, चिकित्सा ट्यूबरकुलोसिस।
1: 76 वर्षीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक सुप्रसिद्ध चेस्ट फिजिशियन है और क्षय रोग और खासतौर पर क्षय रोगियों की देखभाल और उनकी चिकित्सा में आपने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है।
2: प्रोफेसर डॉक्टर प्रसाद वाज द फर्स्ट इन इंडिया टू एस्टैब्लिश द एसोसिएशन ऑफ बीडी स्मोकिंग एंड द यूज ऑफ बायोमास फ्यूल स्मोक विद क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज ट्यूबरकुलोसिस एंड लंग कैंसर। He has worked on 35 research projects and supervised 185 MD, MS and DM.
0: Dr. Gunduru Venkat Rao, Chikitsa Gastroenterology.
1: अब एक और चिकित्सक का सम्मान होता हुआ 66 वर्षीय वेंकट राव एक प्रमुख सर्जरी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं और आपने अपनी सर्जरी के जरिए कई लोगों की जान बचाई है।
2: Well, he has performed more than 12,000 complex gastrointestinal surgeries and nearly 16,000 advanced endoscopic procedures. He has also held several important
0: Deepika Reddy, Kala Nritya.
1: 60 वर्षीय दीपिका रेड्डी एक मशहूर कलाकार है, कोरियोग्राफर भी हैं और समर्पित गुरु और एक सांस्कृतिक राजदूत भी है। शास्त्रीय नर्तकों की तीन पीढ़ियों से आप ताल्लुक रखती हैं।
2: श्रीमती रेड्डी वाज द फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन ऑफ तेलंगाना संगीत नाटक अकादमी गवर्निंग काउंसिल मेंबर संगीत नाटक अकादमी दिल्ली एंड हैज रिसीव्ड प्रेस्टिजियस अवार्ड्स लाइक संगीत नाटक अकादमी अवार्ड एंड मेनी मोर।
0: डॉक्टर पलकोंडा विजय आनंद रेड्डी चिकित्सा ऑन्कोलॉजी।
1: अगले चिकित्सक पद्मश्री प्राप्त करने जा रहे हैं डॉक्टर पलकोंडा विजय आनंद रेड्डी। 67 साल के हैं और आप मशहूर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। इनकी यात्रा क्लिनिकल उत्कृष्टता से कहीं आगे जानी जाती है और हैदराबाद में आपने बहुत कार्य किया है।
2: Well, Dr. Reddy has delivered over 921 CME lectures, authored 112 plus publications and organized numerous international conferences to bring cutting-edge technology

0: to Indian practitioners. His advocacy efforts
1: Shri
0: have
1: Hari Charan Shaikia Kala Satriya Nitya.
2: Satriya असम की एक सुप्रसिद्ध कला और हरिचरण शैकिया जी जो कि 94 वर्ष के हैं व्हीलचेयर पर जाते हुए आपने इस कला का न सिर्फ संरक्षण किया है बल्कि इसे लोगों तक भी पहुंचाया है और बहुत सारे लोगों को सत्रिय कला का प्रशिक्षण भी दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, उनको नमस्कार करते हुए आगे जाते हुए राष्ट्रपति जी आकर उन्हें पद्मश्री प्रदान करती हैं।
0: श्री हरिचरण सैकिया परफॉर्म सत्रिया डांस बिफोर इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड सेकंड प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आल्सो ही परफॉर्म द बलगीत विद मणिराम गायन मोक्तर एट ऑल इंडिया रेडियो इन 1948।
1: प्रोफेसर वेम्पटि कुटुंब शास्त्री
2: 86 साल के शास्त्री जी
1: साहित्य एवं शिक्षा
2: विद्वानों में से हैं। आपने अद्वैत वेदांत दर्शन और संस्कृत काव्य शास्त्र में बहुत सारे कार्य किए हैं। नमस्कार करते हुए, अभिवादन करते हुए अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का और अब मुड़कर अभिवादन करते हुए राष्ट्रपति जी का पद्मश्री प्राप्त करने जाते हैं।
0: प्रोफेसर वेम्पटि कुटुंब शास्त्री has authored and edited 15 books and more than 50 research papers. He has also guided numerous doctoral scholars and delivered hundreds of lectures.
1: Professor Shafi Shauk, Sahitya evam Shiksha.
2: 100 से ज्यादा किताबें आपने लिखी हैं और कश्मीर से आते हैं और कश्मीरी, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू सब भाषाओं में आपने खूब लिखा है प्रोफेसर शफी शौक।
0: His translations include his series of books under the title The Best of Kashmiri Literature. He has also written scripts for numerous TV serials and films.
1: श्री बलदेव सिंह खेल हॉकी कोच।
2: बलदेव सिंह जी ने बहुत सारे हॉकी खिलाड़ी इस राष्ट्र को दिए हैं। एक अनुभवी कोच है और आज इन्हें मिलता हुआ पद्मश्री और ये तालियां इस बात का प्रमाण कि उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है।
0: श्री बलदेव सिंह जी इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड फॉर डेवलपिंग द शहबाद मारकंडा हॉकी नर्सरी टू वन ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रोडक्टिव सेंटर्स फॉर हॉकी टैलेंट।
1: श्री युमनाम यात्रा सिंह मरणोपरांत कला नट संकीर्तन, उनके पुत्र श्री युमनाम बिशन भोर सिंह।
2: आप मणिपुर के पारंपरिक वैष्णव नृत्य और संगीत के प्रतिष्ठित प्रतिपादक थे और बीते वर्ष 11 अक्टूबर को हमारे बीच नहीं रहे, सम्मानित होते हुए युमनाम यात्रा सिंह मरणोपरांत।
0: His contributions to Nata Sankirtan are timeless. His efforts played a significant role in UNESCO's recognition of Sankirtan as an intangible cultural heritage in 2013.
1: Dr. Ashok Kumar Singh, Vigyan evam Engineering.
2: Ashok ji ne भारत में बासमती चावल की खेती का कायाकल्प करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है और इस कंट्रीब्यूशन के लिए आज राष्ट्र उन्हें सम्मान दे रहा है पद्मश्री का।
0: डॉक्टर सिंह हैज गाइडेड 34 पीएचडी एंड 5 एमएससी स्टूडेंट्स मेकिंग सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशंस टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मेंटरिंग न्यूमरस यंग प्रोफेशनल्स।
1: श्रीमती शिव शंकरी साहित्य एवं शिक्षा।
2: अब बारी श्रीमती शिव शंकरी जी की। आप 1942 में जन्मी हैं और चेन्नई में इन्होंने बहुत कार्य किया और ख़ास तौर पर लेखन में सभी भाषाओं में, ख़ास तौर तमिल में बहुत सारा इन्होंने लिखा है। 30 से ज़्यादा उपन्यास, 40 से ज़्यादा लघु उपन्यास, 100 से ज़्यादा लघु कथाएँ, 16 यात्रा वृत्तांत बहुत लिखा है इन्होंने।
0: Shrimati Shiv Shankari completed her Bachelor of Science degree as a university rank holder, reflecting her early academic excellence. She was also selected as the Woman of the Year 2000 by the International Women's Association. She was also one of the four writers who were recorded in her own voice for the archives of the U.S. Library of Congress.
1: Dr. R. Sridhar, Community Radio.
2: श्रीधर जी आकाशवाणी के उप महानिदेशक रहे और विज्ञान का एक लंबा सीरियल इन्होंने बनाया जो किसी भी देश में बना हुआ सबसे ज़्यादा बड़ा सीरियल था, विज्ञान सीरियल।

0: Sridhar is in association with the National Council for Science and Technology Communication, Department of Science and Technology, developed the longest radio science serial for children titled The Human Evolution, Manav Ka Vikas, broadcast in 18 Indian languages simultaneously through 200 radio stations. He has also played a central role in launching Gyan Darshan Group of Channels, the first 24-hour educational television channel.
1: Professor Shyam Sundar, Chikitsa Kala Azar.
2: Aap Kashi Hindu Vishwavidyalay ke Institute of Medical Sciences mein medicine ke manak professor hain. Sankramak rogo khas taur par visceral leishmaniasis Kala Azar mein aapne bahut karya kiya hai.
0: Professor Sundar is ranked at the top in the world in the field of leishmaniasis and Kala Azar from the year 2013 to date. He has published extensively in academic journals including NEJM and
1: Dr.
0: The Lancet, etc.
1: Dr. S. G. Sushil Amma, Samaj Seva.
2: 24 May 1949 ko aap Karnatak mein janmi hain aur pratishthit samajik karyakarta aur khaas taur par apne seva ashram ke zariye बहुत समाज सेवा का आपने कार्य किया है. 5 दशक कोई कम समय नहीं होता लालिमा जी, 5 दशक से ज़्यादा इन्होंने समाज सेवा की है और अब हाथ पकड़कर आगे जाती हुई और सफ़ेद साड़ी इन्होंने पहनी है और झुककर अभिवादन करती हुई माननीय गृहमंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का और अब माननीय राष्ट्रपति जी का अभिवादन करती हुई.
0: Dr. Sushil Amma has also implemented extensive rural development and women empowerment programs across Karnataka, including adult literacy campaigns, formation of self-help groups and Mahila Mandals, and vocational and entrepreneurship training, microcredit initiatives, and panchayat leadership development. She has also worked closely with tribal communities through sustainable agriculture and livelihood projects.
1: श्री एन स्वामीनाथन, कला भक्ति संगीत.
2: तंजावूर से आते हैं और तमिल संगीत के क्षेत्र के प्रतिष्ठित कलाकार हैं और आपने तमिल भाषा में भगवान शिव के भजनों का पारंपरिक एक प्रामाणिक भजन संग्रह भी निकाला है.
0: He became a master of the art and served as Othuvar in many temples of Tamil Nadu and later worked at Tiruthani Lord Murugan Temple for nearly 26 years. He has served as a teacher in VS Trust, a charitable trust to Lord Nataraja Temple in Chidambaram.
1: Dr. Keval Krishna Thakral, Chikitsa Ayurveda.
2: Dr. Thakral, Ayurvedic Padhati ke Shalya Chikitsak hain aur Bharat mein Kshar Sutra Chikitsa ke madhyam se कई रोगों के उपचार और खासकर ब्रोंकियल अस्थमा के उपचार के लिए इन्होंने एक लघु शल्य प्रक्रिया कर्म वेदन भी आगे बढ़ाई है.
0: डॉक्टर केवल कृष्ण ठकराल मूव्ड टू सैन फ्रांसिस्को यूएसए इन 1976 एज अ रिसर्च सर्जन. ही हैज बीन इनवाइटेड टू ओवर 80 सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस टू शेयर हिज नॉलेज एंड हिज प्रोफाइल हैज बीन पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस आल्सो.
1: डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी मरणोपरांत विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, उनके पुत्र श्री रमन कुमार त्रिवेदी.
2: ज्यादा दिन नहीं हुए, 12 मई को ही आपका निधन हो गया था. डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी एक कृषि वैज्ञानिक थे और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रह चुके हैं. पुरस्कार प्राप्त करते हुए इनके पुत्र रमन कुमार त्रिवेदी.
0: Dr. Trivedi, since the last 5 years, on the principle of Think Global, Act Local, initiated a program to increase the productivity of maize.
1: Shri Arvind Vaidya, Kala Theatre.
2: वरिष्ठ कलाकार हैं और 6 दशकों से ज्यादा समय से आपने गुजराती रंगमंच, हिंदी टेलीविजन और फिल्मों के क्षेत्र में काम किया है.
0: Shri Vaidya
2: काले रंग का जोधपुरी सूट पहना हुआ है.
0: Shri Vaidya founded the Natya Sampada, his own production company, through which he produced, directed and acted in more than 75 full-length plays. Each work carried the quiet weight of dedication, gathering recognition along the way. In 1993, Mumbai beckoned him and opened a wider horizon. He's multilingual and
1: Professor
0: very adaptable.
1: Juzar Vasi, Vigyan Evam Engineering.
2: Professor Juzar Vasi, IIT बॉम्बे में प्रोफेसर एमेरिटस हैं और आपने माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर और सोलर फोटोवोल्टिक

0: के क्षेत्रों में बहुत कार्य किया है.
1: प्रोफेसर वासी थ्रू आउट हिज करियर इन बोथ सेमीकंडक्टर्स एंड सोलर फोटोवोल्टेक्स ही स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेटिव एंड इंक्लूसिव रिसर्च which he thought was necessary, especially on major national missions. He has published about 200 papers in leading journals.
2: Dr. Narayan Vyas, Puratattva Vigyan.

0: in National Screening and Evaluation Committee. He was awarded the prestigious Dr. Vishnu Sridhar Vakankar Award from the government of Madhya Pradesh in 2019.
1: Gambhir Singh Yonzan, Sahitya Evam Shiksha.
2: Gambhir Singh Ji, Darjeeling पहाड़ियों के एक प्रतिष्ठित वनस्पति शास्त्री शिक्षाविद पर्यावरणविद और संस्थान के निर्माता हैं और खास तौर पर वनस्पति विज्ञान में आपने बहुत कार्य किया है.
0: Professor Yonzon's contribution to educational and intellectual advancement of Darjeeling Hill region are pioneering and far-reaching. A passionate advocate of scientific temper and environmental awareness, he led a six-year conservation movement that was a huge success.
1: Shri Halley War, Samaj Seva.
2: अब बारी हेली वॉर जी की. आप पर्यावरणविद और खासी लोगों के स्वदेशी ज्ञान के लिए एक प्रतिष्ठित नाम है.
0: श्री वॉर हैज स्पेंट मोर देन 50 इयर्स नर्चरिंग एंड बिल्डिंग द आइकॉनिक लिविंग रूट ब्रिजेस ऑफ द ईस्ट खासी हिल्स. सिंस द एज ऑफ 10 ही हैज मेटिकुलसली गाइडेड द एरियल रूट्स ऑफ द फिकस इलास्टिका ट्री टू क्रिएट ड्यूरेबल लिविंग स्ट्रक्चर्स. His most celebrated work, the Omkar Living Root Bridge, stands as a testament to his patience and profound understanding of natural ecosystems.
2: और अब सचिव महोदय आते हुए, चूंकि ये अंतिम सम्मान था आज का, और
3: माननीय राष्ट्रपति महोदय आपकी आज्ञा हो तो समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए. धन्यवाद.

0: see everybody's standing.
1: राष्ट्रपति जी इस वक्त धीरे धीरे दरबार इस गणतंत्र मंडप से प्रस्थान करती हुई सबका अभिवादन करती हुई उनके ठीक पीछे उपराष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी अभिवादन करते हुए ठीक पीछे अमित शाह जी और मनसुख मांडविया जी ये तमाम और अब आ रहे हैं ओम बिरला जी पीछे श्री वेंकैया नायडू जी तमाम गणमान्य अतिथि धीरे धीरे सबका अभिवादन करते हुए गणतंत्र मंडप से बाहर जाते हुए
0: There is a palpable excitement in the hall, which was jam-packed with the awardees and their relatives who had come to receive the prestigious Padma Awards. It is indeed a moment of pride.
2: So please pay your attention, please. I request all the award winners to move towards your right side.
1: Second part of this ceremony. आकाशवाणी से उसका आंखों देखा हाल भी सुनना ना भूले तकनीकी टीम के सदस्य थे अशोक कुमार मिश्र कमल सिंह और हेमराज मीणा ओबी इंचार्ज हमारे साथ तुषार पराशर और इस कार्यक्रम के प्रोड्यूसर प्रमोद कुमार मैं महेंद्र सिंह लालस अपनी साथी कमेंटेटर लालिमा अनेजा डैंग के साथ अब आपको ले चलता हूं आकाशवाणी के स्टूडियो वापस नमस्कार
3: ये आकाशवाणी का
4: अभी आपने राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार वितरण का सजीव प्रसारण सुना ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आपको सुनवा रहे थे

रखो पर्यावरण का मान, पशु पक्षी और पेड़ हैं धरती की जान। वन्य जीव जंतु और अनमोल प्राकृतिक संसाधन जो इस पृथ्वी पर हम सबको जीवित रखने में मदद कर रहे हैं, आइए हम इनको बचाने का संकल्प लें। धरती को हरा भरा, सुंदर और स्वच्छ बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे लगाएं, पानी, बिजली और प्राकृतिक गैसों का कम से कम उपयोग करें। पर्यावरण को जहरीले धुएं, रसायनों, प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक पॉलिथीन और हर तरह के प्रदूषण से मुक्त रखें, ताकि ये धरती इसी तरह से मानव सभ्यता की रक्षक बनी रहे। ये आकाशवाणी का अयोध्या एफएम है 101.9 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। आइए सुनते हैं देश गान।

0: समवेत स्वरों में अभी आपने ये देशगान सुना। हम आकाशवाणी अयोध्या एफएम से बोल रहे हैं 101.9 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। शाम के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर के बाद आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में और 6:05 से अंग्रेजी में समाचार होंगे। कुछ पल इंतजार कीजिए।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कार सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉ एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद घरेलू विकास को सुरक्षित रखने के लिए भारत की नीतिगत प्रतिक्रिया को सावधानीपूर्वक संतुलित किया गया है। सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयीय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
2: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले 4 दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले 4 दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है। श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय खाड़ी क्षेत्र में बड़ी संख्या में मौजूद अपने नाविक समुदायों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को मनोरंजन और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े संस्थानों में बाल श्रम और ज्यादा सख्त रोक लगाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार को 18 साल से कम उम्र के बच्चों

0: को ऑर्केस्ट्रा, डांस बार, मसाज पार्लर, स्पा और सैलून में काम करने या परफॉर्म करने पर रोक लगाने के निर्देश दिए जाने की मांग की है। शीर्ष न्यायालय ने इस स्थिति को गंभीर मुद्दा बताते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को निर्देश दिया कि वह ऐसे संस्थानों में काम करने वाले बच्चों को बचाने और उनके पुनर्वास के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करें। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय खेल प्राधिकरण अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा समूह की अध्यक्ष डॉ. शिल्पी साहू के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने बताया कि उन्होंने आधारभूत शिक्षा को मजबूत करने, शिक्षा को अधिक कौशल उन्मुख बनाने और भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर चर्चा की। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में तुहिन सिन्हा की पुस्तक नक्सल आतंक पर विजय का विमोचन किया। इस अवसर पर श्री शेखावत ने नक्सली हिंसा के विरुद्ध लंबे संघर्ष पर प्रकाश डाला और इसे समाप्त करने में सुरक्षा बलों और सरकार की सराहना की। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता आज से नॉर्वे के ओस्लो में शुरू हो रही है। टूर्नामेंट भारतीय समयानुसार 8:30 से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। President Draupadi Murmu today conferred Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at the first civil investiture ceremony held at the Rashtrapati Bhavan. Of them, 2 were conferred with Padma Vibhushan, 6 with Padma Bhushan, and 58 personalities were conferred with Padma Shri. Noted film actor Dharmendra Singh Deol has been honoured with Padma Vibhushan posthumously for his contribution in the field of art. The actor's wife and Lok Sabha MP Hema Malini received the award. The legendary Indian violin maestro Dr. N. Rajam was also honoured with the Padma Vibhushan. In the category of Padma Bhushan, former Uttarakhand Chief Minister and Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari was awarded Padma Bhushan for his services in the field of public affairs. Besides, Shatavdhani Dr. R. Ganesh received the award in the field of art. Industrialist Uday Suresh Kumar Kotak received the Padma Bhushan for his contribution to trade and industry, while Dr. Kalipati Ramasamy Palaniswamy received the award in recognition of his outstanding contribution to the field of medicine. Those eminent personalities who have been honoured with Padma Shri include Indian women's cricket team captain Harmanpreet Kaur Bhullar for her contribution in the field of sports and Taga Ram Bheel for his contribution in the field of arts. During the ceremony, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Union Ministers Amit Shah, Gajendra Singh Shekhawat and H.G. Kumaraswamy, among others, were also present on the occasion. For the year 2026, the President has approved conferment of 131 Padma Awards, including 5 Padma Vibhushan, 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri Awards. The remaining Padma Awardees will be conferred in the second round of the ceremony to be held later. The government is making all efforts to ensure smooth supply of petroleum products within the country. Addressing the inter-ministerial briefing in New Delhi today on the recent developments in West Asia, Joint Secretary in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma, said the refinery production of LPG in the country has been increased to 50,000 tons per day. The Joint Secretary said that over 8 lakh PNG connections have been gasified since March, adding that infrastructure has been created for 2,87,000 in connections. Additional Secretary of the Department of Fertilizers, Aparna Sharma, said that the overall stock position of fertilizers in the country remains comfortable. The Supreme Court has issued notice to the Union Government on a PIL seeking stricter prohibition of child labour in entertainment and hospitality linked

जवानी दीवानी फिल्म से किशोर कुमार और साथियों की आवाज में आपने ये गाना सुना, आनंद बख्शी का लिखा हुआ। 1972 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और इसका संगीत तैयार किया आर डी बर्मन ने। और अब आ रहा है इसी गाने के जवाब में अगला गाना, किशोर कुमार की आवाज में, लेकिन इनका साथ इस बार सपना मुखर्जी का भी मिल रहा है इस गाने में, वो भी इस गाने को गाएंगी। और इंदीवर का लिखा गाना, कल्याण जी आनंद जी की बनाई धुन पर, बहुत ही मस्त धुन है और दिल को छू लेने वाली, दिल में उतर जाने वाली ये म्यूजिक। जवाब फिल्म से ये गाना किशोर कुमार और सपना मुखर्जी की आवाज में। तो जब अमरजीत है आपके साथ तो फिक्र की क्या है बात, सुनिए।

मैंने बहुत दिनों के बाद यहाँ से प्ले किया है। पहले हम बहुत ही प्ले करते थे, मेरे दिल के बहुत ही करीब है ये गाना। और आज आप आकाशवाणी का जो फेसबुक पेज है ना, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो लगाई हुई है। अगर आपके दिल में कोई बात है, कुछ लिखना चाहते हैं, कमेंट्स देना चाहते हैं प्रोग्राम के बारे में, तो आप वहां पर लिख सकते हैं, सीधे मुझ तक पहुंच जाएगा स्टूडियो में। तो आप सब हंसते गाते मुस्कुराते रहें, सेहतमंद रहें, बस ऐसे ही सुनते रहें आकाशवाणी अयोध्या FM को। अपना और अपनों का सबका बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। शाम सुहानी प्रोग्राम से लेते हैं अब हम इजाज़त।

0: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
2: बॉलीवुड के फिल्मी गानों का ये था प्रोग्राम शाम सुहानी आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। 6:20 होने वाले हैं। थोड़ी देर के बाद आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे। समाचारों का कुछ पल इंतजार कीजिए।

0: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः नवदिल्ल्यां राष्ट्रपति भवने पद्म पुरस्कारान् प्रददाति। प्रशासनेन उक्तं यत् सर्वकारः देशे पेट्रोलियम उत्पादानां सुगमतया आपूर्तिं सुनिश्चेतुं प्रयतमानः अस्ति। सर्वोच्च न्यायालयेन नीट परीक्षा पत्र लीक प्रकरणे केन्द्रस्य एनटीए सीबीआई इत्युभाभ्यां प्रतिक्रिया याचिता। अपि च भारत ऋतु विभागेन आगामिषु त्रिषु दिनेषु दिल्ल्यां उष्णतरङ्गस्य स्थित्यै पीतवर्णीया सञ्चेतना प्रदत्तास्ति। अथ वार्ताः विस्तरेण। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अद्य राष्ट्रपति भवने आयोजिते कार्यक्रमे पद्म पुरस्कारान् प्रदत्तवती। पद्म पुरस्काराः देशस्य सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारेषु अन्यतमाः सन्ति, यस्मिन् पद्मविभूषणः, पद्मभूषणः, पद्मश्रीः च अन्तर्भवन्ति। अद्य 26,000 वर्षे प्रथम नागरिक निवेश समारोहे राष्ट्रपतिना कलाक्षेत्रे अभूतपूर्व योगदानाय मरणोपरान्तं चलचित्र अभिनेतारं धर्मेन्द्र सिंह देओलं, वायलिन वादकं डॉ एन राजम वर्यं च पद्म विभूषण पुरस्कारौ, 6 पद्म भूषण पुरस्काराः, 58 पद्मश्री पुरस्कारैः सह 66 पुरस्काराः प्रदत्ताः। अवशिष्टाः पद्म पुरस्काराः पश्चात् नागरिक निवेश समारोहस्य द्वितीये चरणे प्रदीयन्ते। अस्मिन् वर्षे सर्वकारेण आहत्य 130 पद्म पुरस्काराणां घोषणा कृता अस्ति। सर्वकारः देशे पेट्रोलियम उत्पादानां सुगमतया आपूर्तिं सुनिश्चेतुं प्रयतमानः अस्ति। पश्चिमेशियायाः वर्तमानस्थित्याम् अद्य नवदिल्ल्याम् अन्तर्मन्त्रालयीय संवादं सम्बोधयन्ति पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मन्त्रालयस्य संयुक्त सचिवा डॉ सुजाता शर्मा इत्येषा अवदत् यत् देशे एलपीजी इत्यस्य शोधनागारस्य उत्पादनं प्रतिदिनं 50,000 टन परिमितं यावत् अस्ति।
1: रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले 4 दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले 4 दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।

0: निवासस्थाने अपि च श्रीनगरस्य लालबाजार क्षेत्रे बालिकानां धार्मिक विद्यालये जमीयत उल बनात इत्यत्र अपि अन्वेषणं जातम्। अवधेयं यत् अद्य प्रातः काले अन्वेषणं समारब्धम्। क्वाड विदेश मन्त्रिमण्डलस्य उपवेशनं श्वः नवदिल्ल्यां भविष्यति। ऑस्ट्रेलिया देशस्य विदेशमंत्री पेनी वोंगः, जापान देशस्य विदेशमंत्री तोशिमित्सु मोटेगी, अमेरिका देशस्य विदेश सचिवः मार्को रूबियो च अस्यां सभायाम् उपस्थिताः भविष्यन्ति। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अस्य सम्मेलनस्य अध्यक्षः भविष्यति। विदेशमन्त्रालयः अवदत् यत् नेतारः प्राधान्येषु क्षेत्रेषु क्वाड सहयोगस्य प्रगति विषये विचारान् विनिमयं करिष्यन्ति। वर्तमान उपक्रमाणां प्रगतिम् अपि च परस्पर चिन्ता विषयकान् अन्यान् अन्ताराष्ट्रिय विषयान् समीक्षितुं शक्नुवन्ति। भारत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जापान देशैः युक्तः क्वाड शङ्खः भारत प्रशान्त प्रदेशे शान्त्यै सुरक्षायै स्थिरतायै च प्रमुखः समूहः उद्भूतः अस्ति। भारतं संघटनस्य वर्तमानस्य अध्यक्षस्य रूपेण अस्याः सभायाः आतिथ्यं करोति। भारत ऋतुविभागेन आगामिषु त्रिषु दिनेषु दिल्ल्याम् उष्णतरङ्गस्य स्थित्यै पीतवर्णीया सञ्चेतना प्रदत्ता अस्ति। विभागस्यानुसारं राष्ट्रिय राजधान्यां दिवसस्य तापमानं 44-46 डिग्री सेल्सियस पर्यन्तं भवितुम् अपेक्षा अस्ति। आगामि दिनद्वयोः हरियाणायां चण्डीगढ़े, पंजाबे, बिहारे, छत्तीसगढ़े, मध्यप्रदेशे, तटीय आन्ध्रप्रदेशे, पूर्वी राजस्थाने, झारखण्डे, ओडिशायां, तेलंगानायां, पश्चिम उत्तर प्रदेशे च उष्णतरंगस्य स्थितिः यथावदेव भविष्यति इति वार्ताः।
1: आप सुन रहे हैं न्यूज ऑन एआईआर पर इस समय आकाशवाणी अयोध्या को और एफएम 101.9 मेगाहर्ट्ज पर भी आप हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं। लोकगीतों का कार्यक्रम गूंजे स्वरगांव के इस पहले कमर्शियल ब्रेक के बाद।
2: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 95-59-24-42-04 और 78-00-37-22-22।
3: रतन सोलर एजेंसी परशुरामपुर बस्ती पीएम सूर्य घर योजना में आवेदन करें और सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल में बचत करें। मोबाइल 98-39-56-31-29 व 96-82-075-221।
4: भैया महंगाई हो

राजेंद्र यादव और उनके साथियों से अभी आपने ये लोकगीत सुना और इन्होंने तो आटे का भाव 16 रुपए किलो बताया लेकिन आजकल 35 से 40 रुपए किलो आटा मिल रहा है। आइए सुने अगला लोकगीत। उर्वशी सक्सेना की आवाज में आइए सुने ये गीत।

अभी जो लोकगीत आपने सुना राजेंद्र यादव की आवाज में, वो लोकगीत आकाशवाणी पर रिकॉर्ड किया गया था 2012 में। कितना अरसा हो गया जी हाँ, फर्क तो पड़ ही जाएगा।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
4: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। सर पे

इन्हीं लोकगीतों के साथ आज का गूंजे स्वरगांव के कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी अयोध्या एफएम की स्टूडियो वॉच में शाम के ठीक 6:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: मलेरिया वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: मुझे नौ लखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
2: अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा?
1: नहीं, मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए। मुझे वो दुकान भी मालूम है, उसने जहाँ से खरीदा था।
3: अच्छा, वेरी स्मार्ट।
4: क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान को सभी लोग जाने और ले जाएं वहाँ से सामान?
5: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
4: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी अयोध्या से,
0: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
6: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
7: समय सोता पंच के बहुत बहुत स्वागत है आज के कृषि जगत कार्यक्रम में। सबसे पहले तो भाई पंचन का बतावा चाहिए कि समय कहा था कि अपने हर क्षण के इस्तेमाल बहुत ही अपने सबका संजीदगी से करे के चाहिए, और वह के लिए ज़रूरी कहा है भैया कि अपन सजगवाही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब जैसे देखो अपने समय हर काम कीन जात है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, लेकिन वहमन सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो यह तरह की स्थिति ना उत्पन्न होए, तो यह के लिए अपने सबका विशेष ख्याल रखे की आवश्यकता होती है कि जैसे अपन तालाब है या पोखर है ओके भी उचित रख रखाव और जल संरक्षण और जैलीय जो जीव हैं उनके सुरक्षा भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब तालाब की बात आई तो तालाब के रख रखाव के बदे अगर हम देखी तो तमाम मेर के यह तरह के बात है जिका अपने सभी अगर ध्यान रखा जाए तो उसे अपने सबका लाभ मिल सकत है और अपने जो तालाब के जीव हैं और चीज़ है वह सुरक्षित रहे। सबसे पहली बात तो है भाई साफ सफाई के व्यवस्था। अगर साफ सफाई रहे तो तालाब के सतह से समय

समय पर जौन कचरा है, सड़े हुए पत्ते हैं, जौन घास तैरत है यानी जलकुंभी है, ओका अपने सबका समय समय पे निकाले के जरूरत है। काई है, शैवाल है, इनके सबके भी तालाब के पानी से निकाले के बदे बारीक जौन जाली है वह के प्रयोग करब जरूरी है। पानी के गुणवत्ता का बनाए रखे के लिए यह का दूषित होए से बचावे के बदे

0: दूषित होए से बचावे के बदे भी अपने सबके प्रयास हमेशा रहे के चाहिए। यह के बदे अपशिष्ट जल और गंदे नाला का पानी अपने सबका अपने तालाब में ना ही जाए दे के चाहिए। गर्मी देखो भैया बाढ़त है, गर्मी के मौसम में तालाब में थोड़ा सा ज्यादा अपने सबका ध्यान रखे के कि जल स्तर कम ना हो पावे, है ना। कहे का देखो भाई पानी का है, जब गर्मी होता है तो अपने आप कुछ कम हो लागत है। यह के लिए बारिश के पानी का अपने सभी का सही तरीके से संरक्षित करे के जरूरत है और तालाब में इकट्ठा करे के प्रयास भी करे के चाहिए। ये सब छोट छोट बात के अगर अपने सभी ध्यान रखा जाए तो निश्चित है बात अपने सबका पते के है लाभ मिले। जैव विविधता संरक्षण के बदे भी अपने सबका कुछ बात ध्यान रखना जरूरी है कि यदि तालाब में मछली पाले के काम होता है तो पानी में उचित ऑक्सीजन के स्तर का भी बनाए रखे के चाहिए। तालाब में हानिकारक रसायन के प्रयोग से बचे के चाहिए। कहे का देखो भैया मछली भी बहुत नाजुक होते हैं, उनके सबका अगर कोनो मेर के विषमता मिली तो तमाम मेर के नुकसान हो सकत है। तटबंधों के मरम्मत के बदे तालाब के किनारा जोन है उसका मजबूत रखे के चाहिए ताकि मिट्टी के कटाव से अपने समय बचा जा सके और बारिश में होए वाले भी तमाम मेर के नुकसान से बचा जा सके। आपन तालाब न केवल पर्यावरणीय मूल्य प्रदान करते हैं बल्कि समाज का व्यवहारिक लाभ भी देते हैं। तालाब का एक सबसे महत्वपूर्ण लाभ ग्रीन हाउस गैस के अवशोषण में उनकी क्षमता होती है। अधिकांश प्राकृतिक झील तालाब ग्रीन हाउस के गैस का स्रोत है और यह के लिए अपने सबका ध्यान रखे के कि इनके घुले हुए यौगिक के प्रवाह में योगदान इनके मिलत है तो यह का भी थोड़ा सा समझे के चाहिए। तालाब में पानी के आपूर्ति और एक स्व संचालित चक्र भी होता है जो उनकी पौधा का बिना पानी दिए जीवित रखता है। यह के अलावा तालाब के पानी के उपयोग बगीचा में व अन्य पौधे के पानी दे के लिए भी कीन जाते हैं। तो इतना सारा अगर अपने सबके लाभ है अपने तालाब के तो ओके भाई रख रखाव में भी अपने सबका थोड़ा सा अपने व्यवहार में अपने कार्य में और उसके प्रति जौन भी कार्य है वो मन थोड़ा सा सजगवाही करे पड़े। एक बात और करे पड़े भैया देखो कि हमेशा जौन भी काम करो वो काम कहना कि खूब मन लगाए के करो। अब जैसे देखो अपन खेती होता है, आज जमाना बदला नई तकनीकी आई, ड्रोन से भी अपने सब है खेती की जात है और ड्रोन के साथे साथे अगर कोशिश करो भैया तो ड्रोन अपने भैया लोगन के साथे तमाम जो किसान पंच महिला बहनी लोग हैं उनके सबका भी अगर देखा जाए भैया तो यह चीज कहे भाई अब शिक्षा दिन जात बाटे वह सब आगे बढ़त हैं तो ड्रोन दीदी जौन है सबीना खातून उनसे मंजू मौर्या के बत कही भाई है कैसे वह काम करते हैं। चलो ये बात का सुना जाए।
1: बहनो देखो हम सब अपने पंचायती माँ मेरी मेरी के प्रगतिशील किसान भैया लोगन का बुलावा करी थी अपने पंचन का जानकारी देवे बदे मेरी मेरे के किसान महिला बहनन का बुलवावा करी थी अपनी पंचायती में। तो भाई देखो मेरे के खेती हुए, बढ़िया खेती हुए और हमार बहन लोग और किसान भैया लोग उसे पूरा लाभ लिए, यही सब बात इनका ध्यान में रखत भे। आज अपनी पंचायती में मौजूद हैं सबीना खातून जो उनकी ड्रोन दीदी भी रही हैं ग्राम व पोस्ट संडवा मवई अयोध्या से। सबसे पहले तो सबीना खातून दीदी आपका पंचायती में स्वागत है। स्वागत के साथ है हम आपसे जानब जैसे कि आज हमारे विषय भी है कि प्राकृतिक खेती पर, तो आप प्राकृतिक खेती भी मौके पर करत हैं ऐसा सुने में आवत है
2: जी।
1: तो भाई देखो सबसे पहले आप हमारे किसान पंचन का बताओ चले कि प्राकृतिक खेती हुए का
2: जी। तो सभी को नमस्ते। मेरा प्राकृतिक खेती यानी पूरी तरह से प्राकृति द्वारा जो उपलब्ध संसाधन है उसी का ही हम उसमें उपयोग करते हैं और खासकर इसकी विशेषता है कि ये गौ आधारित खेती होती है।
1: अच्छा।
2: हाँ, क्योंकि इसमें पशु का उपयोग जरूरी है क्योंकि पशु के जो हमारी गाय होती है उसके मल मूत्र से ही हम जो इनके खाद और उर्वरक तैयार करते हैं उनसे जो है काफी खेती को लाभ होता है। जैसे हम इसमें रासायनिक खाद तो कोई डालते नहीं है, प्राकृतिक के सिवा ना तो कोई बाहरी इनपुट इसमें डालते हैं, तो इसमें जितना भी होता है प्रकृति द्वारा होता है। तो इसमें हम गाय के मूत्र का उपयोग करते हैं, उसके गोबर का उपयोग करते हैं, इसलिए पशु का होना प्राकृतिक खेती में बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल खेती की इंजा जैसन की आपका कहा का मतलब कि रासायनिक खाद और उर्वरक के जरूरत हमन नहीं पड़ते, ये प्राकृतिक खेती करे बदे हमरे पंचन का। तो ऐसने मा हमरे पंचन का

0: ऐसे कौनी मेरे से अपने खेती में का चीज उपयोग करे के परे जहिया खेती बढ़िया हुई।
1: तो जैसे अगर बहुत बड़ी चीज नहीं है, अगर हम देखें तो जो हमारे पूर्वज करते चले आ रहे थे, जिसको हमने देखा कि हमारे दादा बाबा पहले जो है या देखा या सुना उनके द्वारा कि बैल से ही खेत की जुताई होती थी और गोबर जो है हर सीजन में, जो अभी ये सीजन जो चल रहा है धान लगेंगे इससे पहले, तो सारे लोग अपने घूर उठा करके जो है पास जो बन जाती थी गोबर वाली उसको अपने खेत में डाल देते थे और उसके बाद वो सड़ जाती है तो वो कंपोस्ट बन जाती है, जिससे क्या होता है खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है और खेत भी हमारे शुद्ध रहते हैं और साथ ही साथ हमारे खेतों में जो पैदावार की क्षमता है वो बढ़ जाती है, क्योंकि प्राकृतिक कीट भी बढ़ते हैं इससे, जैसे केचुआ हम किसानों का मित्र है तो उसको भी उसमें खाने के भी संसाधन प्राप्त हो जाते हैं तो केचुआ भी पैदा हो जाता है, तो ये सारे लाभ हमारे गाय से मिलते हैं। इसके साथ साथ जैसे जब हम अपने खेतों को तैयार करना शुरू करते हैं तो आज के समय में मैं बता दूं, मैं तकनीकी और जो हमारी पारंपरिक खेती थी उसको एक में शामिल करके प्राकृतिक की खेती को हमने तैयार किया अपने खेतों पे। अब खेत की तैयारी हो रही है, बैल से हमने जुताई किया और जुताई करने के बाद अब उसमें खाद यही जो गोबर वाली है डाल दी गई है, अब इसको डाल देंगे थोड़े दिन पड़ी रहेगी, पानी भरेंगे वो सड़ जाएगी और फिर जुताई कर देंगे वो उसी में मिल जाएगी, तो खेत की ताकत बढ़ जाएगी।
0: बिल्कुल, आपका कहने का मतलब कोनो मेरे का रासायनिक खाद डालने की जरूरत अपने खेती में नहीं है, वही का प्राकृतिक खेती के मुताबिक हम सभी जाने थी। लेकिन हम आपसे ये जानब कि कौनी मेरे वासे हमार पंचायत का कह सकत है।
1: जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका दीदी, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि हमारे यहाँ जो किसान हैं पूरी उनकी अर्थव्यवस्था कृषि पर ही आधारित है। अगर जैसे देखा जाए कि अभी हम जिनकी आदत पड़ गई 500 mg टेबलेट खाने की, उसको सीधे 100 mg खिलाई जाए तो वो दवा फायदा नहीं करेगी, तो उसी तरह अब हमारे खेतों की भी आदत पड़ गई है बड़े बड़े पेस्टिसाइड केमिकल्स और उर्वरक यूरिया डाया पोटास, तो वो एक नशेड़ी मिट्टी बन गई है, हमारे खेत भी नशेड़ी हो गए। अब नशा की आदत छुड़ाने के लिए धीरे धीरे हमको इसको अपने प्राकृतिक में ले जाना है तो करीब 3 वर्ष लग जाएंगे इसको उस स्टेज में पहुंचने में।
0: बिल्कुल,
1: तो ये बहुत जरूरी है और किसान भाई देखेंगे कि अभी जैसे पहले साल उन्होंने प्राकृतिक खेती कर ली तो पैदावार घटना स्वाभाविक है कि जहाँ पे हम इतनी महंगी खादें डाल रहे थे वहाँ एकदम से ना दें तो क्या होगा, पैदावार उस खेत की घटेगी, तो किसान कहता है कि हमारा इससे फायदा नहीं है।
0: लेकिन वो का लावे बदे 2-3 साल तक जो है ई चक्र हमारे पंचन का अपनावे का पड़े, तब वो अपन माटी जोन जाए के वही मेर के बनी पाए, शुद्ध हो पाए, जो एमन जहर भरा है वो खत्म हुए, तब धीरे धीरे खत्म हुए। सबीना जी, प्राकृतिक खेती कहे से हम किसान पंच का फायदा का है?
1: फायदा देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि हमारा स्वास्थ्य, दुनिया में स्वास्थ्य से बढ़कर कोई धन नहीं है और स्वास्थ्य नहीं है तो पैसा चाहे जितना बड़ा हो चाहे जितनी व्यवस्थाएं हमारे पास हो कोई काम की नहीं है। तो स्वास्थ्य खुद के स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के स्वास्थ्य के लिए, मृदा के स्वास्थ्य के लिए ये प्राकृतिक खेती अत्यंत जरूरी है, क्योंकि आप देखते होंगे जैसे अगर हम जंगल का उदाहरण दें तो वहाँ बहुत से पेड़ पौधे लगे हैं, हमारे गाँव में भी देखो अपने आप लौकी तरोई कद्दू के पेड़ उगाते हैं, छप्परों पे चढ़ जाते हैं और अच्छे फल देते हैं। क्या हम उसमें बाहर से खाद डालने जाते हैं?
0: बिल्कुल नहीं,
1: नहीं डालने जाते, तो इसका मतलब हमारी प्रकृति में वो सारी चीजें हैं जो हमारे पौधे को जरूरत है, तो हमारी प्रकृति से ही हम उसको सब कुछ देने का प्रयास करें जिससे हमारा स्वास्थ्य भी बचा रहे, पर्यावरण का भी स्वास्थ्य बचा रहे और मृदा का भी स्वास्थ्य बचा रहे।
0: कुल मिला के हर मेरवा से हम सभी स्वस्थ और ठीक ठाक रही।
1: हाँ।
0: आपका क्या मतलब? लेकिन सबीना जी, एक देख रेख अगर करे के बात आवत है ना
1: जी,
0: ये मेरे के खेती के, तो का ये अन्य खेती के अपेक्षा जो हमारे पंचे करत हैं वो से का दूसरी मेरवा से करे के परत है?
1: हाँ बिल्कुल, थोड़ा डिफरेंट है। अब भाई प्रेस्टिसाइज है कि अब कीड़े उनको मारना है तो क्या हुआ, पीठ पे लाए कीटनाशक छिड़क दिए बस काम खत्म हो गया, उनसे उनको नुकसान फायदा क्या है इससे नहीं मतलब है किसान को हमारे आज के वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें। और दूसरा क्या हुआ कि खरपतवार मिटाना है तो सीधे लाए खरपतवार नाशी उसमें डाले और काम खत्म, चलते बने अपने रास्ते, लेकिन इसमें क्या है कि एक एक खर खुरपी से बैठकर निकालना पड़ेगा, मेहनत का काम है। तो जब मेहनत करेंगे तो हमारा शरीर भी तो मेहनत करेगा,
0: बिल्कुल,
1: तो स्वस्थ होगा। और मिट्टी से जैसे ही हमारे पैर टच होंगे तो जो मिट्टी

0: की पावर उर्वरा शक्ति के साथ साथ जो उसकी ऊर्जा होती है हमारे शरीर में डायरेक्ट प्रवेश करती है
1: जी।
0: तो इसका भी फायदा है। दूसरा क्या है कि उसकी देख रेख के लिए, अब जैसे बीज शोधन सबसे जरूरी है इसमें, अगर किसी भी फसल को हम लगा रहे हैं तो बीज शोधन हम करेंगे तो जिसको हम कहते हैं बीजा अमृत बनाते हैं गौमूत्र
1: अच्छा।
0: से हाँ
1: ओमन हम सब जो दवाई लाके बीज शोधन करी थी यमन ठीक वही मेरे से बीजा अमृत के
0: बीजा अमृत का उपयोग करके या प्राकृतिक तरीके से ट्राइकोडर्मा बनाया जाता है उसका उपयोग करना है।
1: कैसे
0: बीज का शोधन करना है उसमें भी जो है गोबर और गौमूत्र और इसके साथ साथ ट्राइकोडर्मा के लिए जो थोड़े से फंगिसाइड आते हैं जिनकी वजह से वो पनपता है बनता है फिर जा करके हमारा ट्राइकोडर्मा तैयार होता है। तो उस ट्राइकोडर्मा को हम बाहर से खरीद के ले आते हैं और उसमें थोड़ा सा मिला देते हैं जिससे हमारा प्राकृतिक रूप से ट्राइकोडर्मा तैयार हो जाता है। और उसके बाद बीज शोधन के बाद फिर आती है देख रेख। तो उसको हम देख रेख के लिए कि उसको कैसे उसमें उर्वरा शक्ति बढ़ाए उसके लिए हम जीवामृत का उपयोग करते हैं।
1: अच्छा तो जीवामृत कैसे बनाएं?
0: तो घन जीवामृत बनाने के लिए गोबर होना चाहिए, गौमूत्र होना चाहिए, गुड़ होना चाहिए, बेसन होना चाहिए, बेसन यानी चने का आटा होना चाहिए और बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी होनी चाहिए।
1: अच्छा।
0: हाँ जिसमें सही से जीवाश्म उत्पन्न हो और उसको मिला करके रख देना है कुछ दिन के लिए। फिर उसको जो है अच्छे से घोल बना के छायादार जगह पे ठंडे में रखना है। फिर वो घोल छान करके अपने खेतों में उसको फसलों में डालना
1: है। बिल्कुल सही बताएं कि जैसे हम सभी मेर मेर के दवाई लाके अपने खेतों में डाली थी ठीक वही मेर से यह प्राकृतिक खेती माँ जीवामृत बीजामृत और जैसे कीटनाशक का मारक है तो नीमास्त्र ब्रह्मास्त्र
0: ब्रह्मास्त्र
1: ये सब चीज के उपयोग करेगा और ये कहूं अंत से हमारे पंचन का लाभ करना है। अपन गोरु बछरू पाली वनहीन से नहीं जो गाय है वही से अपने सबका
0: क्योंकि
1: सब चीज मौजूद
0: बिल्कुल सब प्रकृति में उपस्थित है उसी से हमको सारी चीजों को ले लेना है। अब नीमास्त्र बनाने का बड़ा सिंपल तरीका है और सबसे अच्छा पानी को लो और उबालो कस के खोला लो और उसके बाद उसको ठंडा करो और पेड़ों में डाल दो सारे फंगीसाइड कीड़े जितने वो मर जाएंगे।
1: कोनो मेर के दवाई के इस्तेमाल करके
0: और मठास्त्र सबके घरे मठा रहा सब किसान है पशु आधारित खेती है तो सबके घर में है टानिक का काम मठा करता है जड़ों में डालिए उस पे पेड़ों पे छिड़काव कर दीजिए 8-10 दिन का रखा मठा हो जाए बढ़िया पौधे स्वस्थ रहेंगे हमारे।
1: अच्छा मान लो सबीना जी देखी थी कि कोनो कोनो पेड़ है वो सूखा लागत है पाती खराब हो जाते कीट पतंगा लग जाते हैं तो मैंने मठा का उपयोग कर दिया छोड़ दिया जड़ी में डाल दिए तो का जो उन्हें ऐसे कीटाणु मर जाएंगे फिर?
0: हाँ बिल्कुल मर जाएंगे।
1: अच्छा
0: हाँ और इससे पोषक पौधे को पोषक तत्व भी मिलेगा अच्छे से।
1: अच्छा कितना बढ़िया आप बात बताएं का सरकार के वारी से कौन ये योगदान है प्राकृतिक खेती बदे अगर है तो हमारे पंचन का भी बताओ।
0: जी बिल्कुल वर्तमान सरकार जो है हमारी इसके क्रम में बहुत ही अग्रसर है प्राकृतिक खेती की ओर और वो हमारे जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं कृषक उनको अपनी तरफ से अनुदान भी देती है। रबी में 2000 देती है खरीफ में 2000 देती है इसलिए कि वो जो इसके इनपुट हमने बताए हैं उनको वो खरीद करके उसमें उपयोग कर सके और जब प्रोत्साहन मिलेगा तो ज्यादा नहीं तो हमारा किसान अपने खाने के लिए जरूर प्राकृतिक खेती करेगा। तो इस तरह से सरकार प्रोत्साहन के रूप में ये धनराशि देती है ताकि हमारे किसान अपना स्वास्थ्य मिट्टी का स्वास्थ्य और पर्यावरण का स्वास्थ्य बनाए और देश में अपनी भूमिका निभाएं।
1: बिल्कुल चलत चलत आप हमारे किसान पंचन का संदेश देना चाहते हैं?
0: जी सबसे खूबसूरत संदेश है कि आप सभी लोग प्राकृतिक खेती की ओर आए उसकी सुरक्षा के लिए आप फूल को भी इसमें मिश्रित कर लें और बाड़ लगाने के लिए कांटेदार जो हमारे पौधे होते हैं जैसे करौंदा है नींबू है इनको मेड़बंदी कर दें इससे हमको बाहरी पशुओं से भी सुरक्षा रहेगी। तो आम के आम गुठलियों के दाम। तो हम भाई बहन जितने भी कृषक भाई हैं और चाहें तो अपने देश हित में अपने स्वास्थ्य हित में प्राकृतिक खेती को अपनाएं और अपने आप को स्वस्थ बनाएं आर्थिक रूप से मजबूत बनाएं।
1: वाह का बात कहें सबीना खातून जी आप ग्राम व पोस्ट संडवा मवई अयोध्या से रहीन आप एक प्रगतिशील महिला कृषक रहीन आपसे बातचीत करके इतना अच्छा लगा लेकिन हमारे पंचन का भी हम जहाँ तक जाने थी कि निक लाग जरूर हुए आप आए हमारे पंचन का इतनी बढ़िया जानकारी दीन एक बदे आपका आकाशवाणी परिवार के वारी से और पंचायती की वारी से बहुत बहुत धन्यवाद।
2: देखा भैया कितना नीकी मेज से अपने प्रगतिशील महिला कृषक से जो उन बत कही रही प्राकृतिक खेती पर सबीना खातून जी से मंजू मौर्या के निश्चित है कि आप सबके लिए भी लाभप्रद रही हुई सुने हुए गुनो और उका अमल मिलाओ। लेकिन कार्यक्रम में आगे बढ़े से पहले कुछ जरूरी संदेश है चलो उका सुना जाए।
3: सुनत है सखी सुनत है कार्यक्रम अंगनामा होए वाला है का खास?
4: अरे हाँ हाँ सखी बिल्कुल सुनत है अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
3: हाँ

0: जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ। कई सकत हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
1: और व्हाट्सएप नंबर 8303921911 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
2: लोक सुरमाला आपकी पसंद।

0: का टेलीलॉके ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: देखो ये तो रहा भैया जरूरी संदेश, लेकिन एक बात और हम संदेश के रूप में कहा चाहे कि अपने सब खेती किसानी कीन जात है तो एक बात का हमेशा ध्यान रखो कि वहमन मन लगाए के करो। आज के समय में सरकार भी यही कहा था कि स्वरोजगार अपने सभी अपनावा जाए, नौकरी के पीछे ना भागा जाए और साथ ही साथ कोशिश की जाए कि अपने गांव गिराव में रह के जौन कुछ काम कीन जा सके थे उका कीन जाए। तो ये तो बात हम कही थे, लेकिन छबिलाल पाल और उनके साथी भैया भी कुछ यही विषय पे चतवावा चाहते हैं। चलो सुन लीन जाए बात उनके।

0: करवे ना नौकरी हम बनवे किसान हुआ, लेकिन एक बात है भाई, किसान बने के बदे अपने सबकी कोशिश ये बात की हो के चाहिए कि थोड़ा सा भाई बाजार में कौन मेर के गल्ला मंडी के भाव है, सब्जी के भाव का है, यहू की जानकारी हो जरूरी है। और वह के लिए प्रतिदिन अपने सभे आप सबके बीच में नवीन गल्ला मंडी जनपद अयोध्या से बाजार भाव लेके आवा जाते हैं। आज के जौन भाव रहा बतावत चली कि चावल का मन 3050 रुपये प्रति क्विंटल के पास है, गेहूं दड़ा 2585 रुपये प्रति क्विंटल के पास है, मक्का पीली 2400 रुपये प्रति क्विंटल के पास है, उड़द दाल काली 9200 रुपये प्रति क्विंटल के पास है, चना देसी 6400 रुपये प्रति क्विंटल के पास है, मसूर रही 7100 रुपये प्रति क्विंटल। ये तो रहा गल्ला मंडी के भाव, और यही के साथ साथ सब्जी के भाव कुछ अहमेर रहा। आलू सफेद 725 रुपये प्रति क्विंटल, प्याज लाल 1200 रुपये प्रति क्विंटल, टमाटर 1470 रुपये प्रति क्विंटल, लहसुन 6990 रुपये प्रति क्विंटल, तरोई रही 2080 रुपये प्रति क्विंटल, खीरा 1570 रुपये प्रति क्विंटल, बैंगन 2200 रुपये प्रति क्विंटल, हरी मिर्च 3400 रुपये प्रति क्विंटल, कद्दू 1400 रुपये प्रति क्विंटल, अदरक 6680 रुपये प्रति क्विंटल, शिमला मिर्च 2800 रुपये प्रति क्विंटल, भिंडी 1800 रुपये प्रति क्विंटल, लौकी 1600 रुपये प्रति क्विंटल, करेला 1585 रुपये प्रति क्विंटल, केला पका 2720 रुपये प्रति क्विंटल, नींबू 7500 रुपये प्रति क्विंटल, पपीता रहा 2700 रुपये प्रति क्विंटल, सेब 11500 रुपये प्रति क्विंटल, अनार 7600 रुपये प्रति क्विंटल, गुड़बट्टी 5080 रुपये प्रति क्विंटल और चीनी रही 4135 रुपये प्रति क्विंटल। यही के साथ साथ मौसम के हाल भी बतावत चली। मौसम विज्ञान विभाग से जोन मिला बाटे, अधिकतम तापमान रहा 40 डिग्री सेंटीग्रेड जोन सामान्य से 0.5 ज्यादा रहा, न्यूनतम रहा 26.5 जोन सामान्य से 2 ज्यादा रहा, अधिकतम आर्द्रता माने नमी रही 80% तक और न्यूनतम रही 36%, हवा की गति 6.2 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से दक्षिणी पूर्वी चली है। आगामी 24 घंटा में पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। अधिकांश स्थान पर लू चले के और हवा सामान्य गति से पश्चिम चले के तथा औसत तापमान में सामान्य से 2-3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने की भी संभावना है। तो ये बात रही भाई मौसम के बाजार भाव के, लेकिन कल अपने पंचे का कुछ सुन सकते हैं बतावत चली। कल है अपन कृषक महिला कार्यक्रम, जेमन गृह वाटिका लगाएं हरियाली बढ़ाएं, यह विषय पर चर्चा हुई। और साथ ही साथ भैया अपने सबका आम और कटहल के जौन मूल्य संवर्धित उत्पाद है एक के बारे में ममता कुमारी जी से बात बत कही भई है, ओका सुना जाए। लेकिन कार्यक्रम के समय होते एक निश्चित और आपसे बात बत कही के भी समय होते निश्चित, फिर कुछ नई जानकारी के साथ नए तरीके से फिर मिला जाए तब हुई बातचीत। लेकिन अब यह कार्यक्रम में अनुमति चाहिए थे और कोशिश करो भैया कि हमेशा आगे बढ़े की कोशिश करो, है ना, जीवन में यह तरह की बात करो कि जैसे आप सबका लाभ होए, है ना। तो भाई हम वह के लिए आपके साथ ही है, तो अब अनुमति चाहिए थी, यही साथ प्रकाश कर दे अनुमति। जय हिंद।
1: हरियाई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
2: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
1: हरियाई सेंटर जनाना हॉस्पिटल रोड रिकाबगंज फैजाबाद,
2: फोन नंबर 9118 877 347।

अभी हमारे किसान भाई बहनों ने अपना दैनिक कार्यक्रम सुना कृषि जगत आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। आप हमारे कार्यक्रम FM 101.9 MHz और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर भी सुन रहे हैं। आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में पहले सुन लीजिए कार्यक्रम रूपरेखा में। विविध भारती की राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम शाम 7:30 और रात 10:30 से आपको हम सुनवाएंगे। गीत गुंजन कार्यक्रम 8:15 से, महफिले गजल प्रोग्राम पेश करेंगे 9:15 से और हेलो अयोध्या प्रोग्राम 9:30 से लेकर 10:30 तक। और अब कल मंगलवार 26 मई के कार्यक्रमों के बारे में सुन लीजिए। कल प्रातः 7:15 से कार्यक्रम रूपरेखा में दिनभर प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी। 7:30 से भक्ति संगीत का अमृत कलश कार्यक्रम होगा। 8:15 से गैर फिल्मी गीत और गजलों का सुर संगम प्रोग्राम सुनिएगा। 8:30 पर आप सुनेंगे प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम। आज की बात का टॉपिक उसमें रहेगा परहित सरिस धर्म नहीं भाई। इसके बाद प्रोफेसर सुचिता पांडे की वार्ता सुनिएगा मध्य पूर्व की अशांति पर भारत पर वैश्विक प्रभाव। इसके बाद समाचार पत्रों से सेगमेंट में अयोध्या मंडल की लोकल खबरें दी जाएंगी और फिल्मी गाने सुनवाए जाएंगे। आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम जो व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित है ये प्रोग्राम आप सुनेंगे सुबह 9:00। 9:30 से लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो अयोध्या में अपनी पसंद के फिल्मी गाने सुनिएगा 7376-8040-90 नंबर मिलाकर। सुबह 10:00 से NCERT और CIT का प्रायोजित उमंग कार्यक्रम होगा। विविध भारती के कार्यक्रम 10:30 से मुंबई से रिले होंगे 12:30 तक। दिन 12:30 से अवधि और भोजपुरी लोकगीतों का लोक रंग कार्यक्रम आप सुनते हैं। दिन 1:00 से आकाशवाणी अयोध्या फेसबुक पेज के श्रोताओं को कुछ तुमने कहा प्रोग्राम के इंतजार रहता है तो ये प्रोग्राम सुनिएगा, जिसके लिए श्रोताओं के फरमाइशी गीतों के कमेंट्स दिन 11:30 तक प्राप्त हो जाते हैं। कल दिन में 2:00 गैर फिल्मी गीत और गजलों का गीतांजलि प्रोग्राम होगा। 2:15 से दोपहर समाचार दिल्ली से होंगे। 2:30 से नारी जगत कार्यक्रम का टॉपिक रहेगा फैशन है जरूरी लेकिन फुहड़ता से बचना है। इसके बाद हेयर ट्रांसप्लांट की प्रमुख बातों को बताएंगी त्वचा विशेषज्ञ डॉक्टर पल्लवी श्रीवास्तव, बातचीत करेंगी वंदना सिंह। इसी कार्यक्रम में सौंदर्य टिप्स के अलावा फिल्मी गीत भी सुनवाया जाएगा। दोपहर बाद 3:00 से लेकर 5:00 तक केंद्रीकृत विविध भारती सेवा के कार्यक्रम मुंबई से होंगे। युववाणी में शाम 5:00 कल चर्चा का टॉपिक ई सुश्रुत योजना जो एक अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली है इसके बारे में बताया जाएगा। दूसरा टॉपिक मिशन लाइफ पानी की बचत भारतीय इतिहास सेगमेंट में भारत में रेडियो और आकाशवाणी का सफर। इसके बाद चक्रव्यूह के साथ सवाल भी आपसे किए जाएंगे और साथ ही हीट वेव की बात और फिल्मी सॉन्ग होगा। लोक संगीत कार्यक्रम 5:30 से 6:10 से, शाम सुहानी प्रोग्राम गूंजे स्वर गांव के कार्यक्रम 6:30 से, किसानवाणी में कल 7:45 यानी 6:45 पर चर्चा रहेगी ग्रह वाटिका लगाएं हरियाली बढ़ाएं। इसके बाद आम और कटहल के मूल संबंधित उत्पाद के बारे में बताएंगी ममता कुमारी। इसके अलावा बाजार भाव मौसम की जानकारी और लोकगीत सुनवाया जाएगा। विविध भारती के कार्यक्रम 7:30 से और 10:30 से और गीत गुंजन प्रोग्राम 8:15 से, 9:15 से महफिले गजल प्रोग्राम होगा, 9:30 से लाइव फोन इन प्रोग्राम फरमाइशी फिल्मी गानों का हेलो अयोध्या होगा और 10:00 लखनऊ केंद्र से आप खेल दर्पण कार्यक्रम सुनेंगे। अभी आप कार्यक्रम रूपरेखा सुन रहे थे। हम आकाशवाणी अयोध्या FM से बोल रहे हैं 101.9 MHz और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। 7:18 हो चुके हैं पर सबसे कुछ ही देर के बाद ठीक 7:20 पर आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। समाचारों का कुछ पल इंतजार कीजिए।

0: जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: बड़ी बहू ये तुम्हारी ना,
4: इतनी भी क्या जल्दी थी।
3: अरे और छोटी ये तुम्हारी ना,
5: और ये
6: मेरी गुड़िया की ना।
7: पर दादी आपके नाम?
8: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
3: शुभ शुभ बोलो क्या
8: आरबीआई कहता है।
9: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
10: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
11: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश की 7 विभूतियों समेत 66 लोगों को प्रदान किए पद्म पुरस्कार। वाराणसी की डॉक्टर एन राजम को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समेत 6 अन्य लोग पद्मश्री से अलंकृत। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आगरा पहुंचकर किया ताजमहल का दीदार, स्मारक की सुंदरता को जमकर सराहा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए 5 भाजपा प्रत्याशियों का ऐलान, लखनऊ से अवनीश कुमार सिंह उम्मीदवार। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी और हीटवेव का प्रकोप जारी, मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में लू का सिलसिला जारी रहने का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में 66 विभूतियों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान किए। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहे। आज के समारोह में उत्तर प्रदेश की डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जबकि अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रदेश के 6 अन्य लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। एक रिपोर्ट।
12: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों आज 66 लोगों को पद्म पुरस्कारों से अलंकृत किया गया। उत्तर प्रदेश से आज 7 विभूतियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। इनमें कला के क्षेत्र में डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
13: डॉक्टर श्रीमती एन राजम, कला वायलिन।
12: डॉक्टर केवल कृष्ण ककराल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर श्याम सुंदर को चिकित्सा, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह को विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, प्रोफेसर बुद्ध रश्मि मणि को पुरातत्व विज्ञान और प्रवीण कुमार को खेल के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
13: श्री प्रवीण कुमार, खेल एथलेटिक्स दिव्यांग।
12: शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
11: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज आगरा पहुंचकर ताजमहल का दीदार किया। उनके साथ उनकी पत्नी और उच्च प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रहा। आगरा पहुंचने पर उनका स्वागत जिलाधिकारी मनीष बंसल और पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने किया। एक रिपोर्ट।
14: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने करीब 40 मिनट तक ताजमहल का दीदार किया। ताजमहल भ्रमण के दौरान उन्होंने पत्नी के साथ डायना बेंच पर फोटो सेशन कराया, साथ ही गाइड से ताजमहल के इतिहास, निर्माण और पच्चीकारी के बारे में विस्तृत जानकारी ली। इस मौके पर उन्होंने स्मारक की खूबसूरती की जमकर प्रशंसा की। श्री रूबियो ने विजिटर बुक पर इस इमारत की खूबसूरती देखने का अवसर दिए जाने पर आभार जताया। सज्जन सागर, आकाशवाणी समाचार, आगरा।
11: पेट्रोल की कीमतों में आज 2 रुपए 61 पैसे और डीजल में 2 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी।

0: बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में यह पिछले दो सप्ताह में चौथी वृद्धि है। अब लखनऊ में पेट्रोल की कीमत 101.89 रूपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल 95.36 रूपये प्रति लीटर मिलेगा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 11 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। उम्मीदवारों की सूची में मेरठ शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से श्रीचंद शर्मा को प्रत्याशी घोषित किया गया है। वहीं बरेली मुरादाबाद शिक्षक सीट पर डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लों को प्रत्याशी बनाया गया है। लखनऊ में स्नातक सीट पर अवनीश कुमार सिंह, जबकि शिक्षक सीट पर उमेश द्विवेदी को मैदान में उतारा गया है। आगरा की स्नातक सीट पर डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह पार्टी प्रत्याशी होंगे। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। गंगा दशहरा के अवसर पर प्रदेश के सभी प्रमुख मंदिरों और पावन नदियों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। फर्रुखाबाद में भी गंगा दशहरा के पावन पर्व पर श्रद्धालु गंगा तट पर पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। जिला प्रशासन ने गंगा तट को 4 सेक्टर में बांटा है। गंगा नदी में 50 नाव और करीब 50 गोताखोरों की भी तैनाती की गई है। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में भी आसपास के जिलों और राज्यों से लोग गंगा स्नान करने पहुंच रहे हैं। प्रयागराज में सभी प्रमुख घाटों पर भोर से ही भक्त गंगा में स्नान कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: संगम नगरी प्रयागराज में गंगा दशहरे के पावन पर्व पर श्रद्धालु त्रिवेणी संगम सहित रामघाट, दारागंज और वीआईपी घाट पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस पवित्र पर्व पर गंगा स्नान करने के लिए कल रात से ही आसपास के जनपदों और राज्यों से भी श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। भक्तों ने गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर प्रार्थना, दान और भेंट अर्पित कर समृद्ध और खुशहाली की कामना की। भारी भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के लिए घाटों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रवीण मिश्र, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर स्थापित राम परिवार की स्थापना की पहली वर्षगांठ पर कल विशेष अनुष्ठान होंगे। इस अवसर पर भगवान राम के संपूर्ण परिवार को नए वस्त्र धारण कराने के साथ 56 भोग लगाए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
2: पिछले वर्ष गंगा दशहरा के मौके पर शेषावतार व परकोटे में बने 6 मंदिरों की स्थापना हुई थी, जिसकी कल पहली वर्षगांठ मनाई जाएगी। इस मौके पर राम मंदिर यज्ञशाला में विशेष धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किया जाएगा। साथ ही भगवान राम के संपूर्ण परिवार को नए वस्त्र पहनाए जाएंगे और 56 भोग लगाए जाएंगे। इस अवसर पर वाल्मीकि रामायण का पारायण भी होगा। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: प्रदेश भर में भीषण गर्मी और हीट वेव का प्रकोप जारी है। बीते 24 घंटों में बांदा 46.8 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ प्रदेश के सबसे गर्म जनपद के रूप में दर्ज किया गया। वहीं झांसी, प्रयागराज, जालौन, उरई, आगरा और हमीरपुर में पारा 45 डिग्री के पार रहा। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अमरोहा में मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार ने हीटवेव से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की है, साथ ही अस्पतालों में पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित किए हैं।
3: जिले के सभी अस्पतालों में बेड आरक्षित करने के साथ साथ दवाइयों का इंतजाम किया गया है। ORS घोल को सभी आशा वर्कर के माध्यम से गांव-गांव पहुंचाया जा रहा है, और यदि किसी को किसी सहायता की आवश्यकता पड़ती है उसके लिए तत्काल इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं।
0: तेज गर्मी के मद्देनजर वाराणसी में जिला प्रशासन ने हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि जनपद में अर्बन हीट एक्शन प्लान को सक्रिय कर दिया गया है, ताकि बढ़ते तापमान के प्रभाव को कम किया जा सके।
4: 42-43 डिग्री से ज्यादा जो है वो टेम्परेचर चल रहा है, उसके दृष्टिगत जो अर्बन हीट एक्शन प्लान है उसको एक्टिवेट कर दिया गया है। विद्यालयों में भी छुट्टियां कर दी गई हैं, जो चौक चौराहे हैं जहां पे ट्रैफिक लाइट है, जहां पे ट्रैफिक में लोगों को मोटरसाइकिलों पे वेट करना पड़ता है, वहां पे भी शेड के लिए ऊपर से कवर किया गया है। वो अलग अलग जगहों पे कोल्ड रूम्स बनाए गए हैं। जो CHC PHC डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहां पे कोई हीट स्ट्रोक का अगर पेशेंट आता है तो इमीडिएटली उसके लिए रिस्पॉन्ड किया जा सके, इसके लिए वहां ट्रेनिंग्स दी गई है।
0: मौसम विभाग ने

कल भी प्रदेश भर में लू को लेकर चेतावनी जारी की है। हालांकि हाथरस, मथुरा, मैनपुरी समेत पश्चिमी संभाग के जनपदों में आज रात बिजली गिरने और तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई है। नौतपा की शुरुआत के साथ श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान श्री विश्वेश्वर का आज फलों के रस से विशेष अभिषेक किया गया। बाबा विश्वनाथ का अभिषेक गुलाब, लीची और आम के रस से संपन्न हुआ। मंदिर प्रशासन के अनुसार नौतपा के सभी 9 दिनों तक प्रतिदिन अलग अलग प्रकार के फलों के रस से भगवान का अभिषेक किया जाएगा। मंदिर प्रशासन ने बताया कि इस विशेष अनुष्ठान का उद्देश्य भीषण गर्मी के दौरान भगवान विश्वनाथ को शीतलता अर्पित करना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश की 7 विभूतियों समेत 66 लोगों को प्रदान किए पद्म पुरस्कार। वाराणसी की डॉक्टर एन राजम को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समेत 6 अन्य लोग पद्मश्री से अलंकृत। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आगरा पहुंचकर किया ताजमहल का दीदार, स्मारक की सुंदरता को जमकर सराहा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए 5 भाजपा प्रत्याशियों का ऐलान, लखनऊ से अवनीश कुमार सिंह उम्मीदवार। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी और हीटवेव का प्रकोप जारी, मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में लू का सिलसिला जारी रहने का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।

महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार तुम ईश्वर में कभी भी विश्वास नहीं कर सकते जब तक स्वयं में विश्वास न कर लो।

यह आकाशवाणी का अयोध्या FM है 101.9 MHz और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर 7:31 हुए हैं। अब से लेकर 8:15 तक आप सुनेंगे विविध भारती के राष्ट्रीय कार्यक्रम मुंबई

जयमाला कार्यक्रम में आप सभी फौजी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। लीजिए अब सुनिए बॉबी फिल्म का गीत लता मंगेशकर और शैलेंद्र की आवाजों में। बोल लिखे हैं विट्ठल भाई पटेल ने, संगीत तैयार किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: जब सुनिए सड़क फिल्म में अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू को बोल है समीर के।

अभी आपने संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण का संगीतबद्ध किया सड़क फिल्म का गीत सुना। इसी के साथ ही जयमाला कार्यक्रम यही समाप्त होता है।

0: गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत

0: सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

0: смртью кисла. स्मृतियों के स्वर इस कार्यक्रम में श्रोताओं आज लीजिए सुनिए आकाशवाणी के भूतपूर्व कार्यक्रम अधिशासी श्री लवेश कुमार परमार से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मंदाकिनी जोशी। स्मृतियों के स्वर इस श्रृंखला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आकाशवाणी के 90 वर्ष इस उपलक्ष में दोस्तों हम बहुत सारे लोगों से बातचीत कर रहे हैं जिनकी दुनिया में रेडियो था, या यूं कहें कि रेडियो ही उनकी दुनिया थी, या उन्होंने अपनी पूरी जो दुनिया है, अपना जो पूरा समय है वो रेडियो को ही दे दिया। तो आज भी हमारे ठीक सामने एक ऐसी ही शख्सियत बैठी है जिनसे हम बातचीत करने जा रहे हैं, जिन्होंने बरसों बरस रेडियो में काम किया और अपने आप को यूं कहें कि खपा दिया रेडियो की दुनिया में। आप हैं सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश परमार साहब। सर, आपका विविध भारती के इस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार मंदाकिनी जी, आपको और सुनने वाले सभी साथियों को जो दूर दूर तक हमारी बात सुन रहे हैं
1: जी,
2: उन सबको मैं नमन करता हूँ और बड़ों को तो मैं पांव धो करता हूँ
1: जी,
2: और दूसरों जो मेरे साथी हैं उनको बहुत प्यार और बच्चों को स्नेह ही स्नेह।
1: तो आपने तो इतने वर्षों तक काम किया है, डिजिटल युग भी आ गया है और निजी FM चैनल्स भी आ गए हैं, आकाशवाणी अभी तक प्रासंगिक बना हुआ है, मानते हैं आप?
2: हाँ,
1: तो प्रासंगिक ही रहेगा,
2: हमेशा हमेशा बना रहेगा। हमारे गायकवाड़ साहब करके एक डीजी साहब, वो हमेशा ही कहते थे आकाशवाणी कभी मरेगा नहीं बेटे, ये हमेशा जिंदा रहेगा, चाहे दूसरे चैनल हो चाहे नहीं हो, उसकी आकाशवाणी की प्रभुता के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम बस अपनी निष्ठा के साथ जुनून के साथ काम करते रहो, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी
1: जी।
2: ये उनका माँ मंत्र था और ये मंत्र मैंने घोड़ घोड़ के पिया, कारण कि मेहनत करना मेरा काम था और मेहनत ही सब कुछ है। मेहनत के कारण आज तक मैं यहाँ बॉम्बे जैसे छोटे से गांव में रहता था, मैं बीकानेर जैसे स्थिति में, और सूरतगढ़ तो उससे भी छोटा था
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो वहां से यहाँ तक आना और फिर बच्चों का पूरा ध्यान रखना और बच्चों के ध्यान के साथ साथ उनको आगे भी बढ़ाना है। आज बच्चे विदेशों तक चले गए हमारे, क्यों चले गए? क्योंकि आकाशवाणी की बदौलत, आज इस आकाशवाणी की बदौलत हमारा परिवार आगे बढ़ा है और हमारा परिवार दिन दुनी रात चौगुनी इसी कदर से बढ़ता रहे और साथ साथ में आकाशवाणी की जो गरिमा है वो हमेशा बरकरार रहे। इसके बरकरार रहने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, हमें जान भी दे सकते
1: हैं। बिल्कुल, वो तो आपके कार्य बताते हैं कि आप किस हद तक आकाशवाणी से प्रेम करते हैं। आप जब आकाशवाणी की दुनिया में आए, इतने साल आपने काम किया है, कोई ऐसा लम्हा आपको याद है जब आपको आपके कार्यों की बहुत भूरी भूरी प्रशंसा मिली हो?

0: या कहना चाहिए आलोचना मिली हो या भला बुरा सुनना पड़ा हो अपने उच्चस्थ अधिकारियों के द्वारा या श्रोताओं के द्वारा, ऐसा कोई पल याद है आपको
1: बहुत
0: जो हम श्रोताओं से साझा करें?
1: खट्टे मीठे पल बहुत याद है। जब मैं राजस्थान में था और जोधपुर में मेरी पोस्टिंग थी तो जोधपुर में चौधरी भाई करके प्रोग्राम का मेरा करेक्टर था
0: जी,
1: और चौधरी भाई के नाम से मेरे को आवाज से लोग पहचान लेते थे कि आदमी, अरे आवाज तो कहीं सुना भाई। मैं पूछता कहाँ सुना भाई, अरे चौधरी भाई वो तो रेडियो में आते हैं भाई, तुम चौधरी भाई कैसे हो गए, तुम तो वो तो नहीं हो। हाँ भाई नहीं हूँ भाई, माफ करना मेरे को। ऐसा कहकर मैं बात को टाल देता, मतलब जब देखता था करेक्टर जो हमारा है कितना फेमस हो चुका है। सही बात है ना, और इसी करेक्टर के मार्फत मैं अपनी बातों को उनके सामने रख देता था कि ये समस्या है, इस समस्या का ऐसा समाधान होगा और इस समस्या को अपन

0: समस्या है, इस समस्या का ऐसा समाधान होगा, और इस समस्या को अपन समाधान के रूप में ले, न कि उनको समस्याओं को समस्याओं के रूप में ले। सही बात है ना?
1: मतलब जो आपका एक कैरेक्टर था चौधरी करके, आपने उसके माध्यम से लोगों के सामने एक नई सकारात्मक बातें रखी जिंदगी से।
0: मैडम, उस कार्यक्रम के माध्यम से मैंने कुछ तो ऐसे प्रोग्राम्स किए जो कंपटीशन के प्रोग्राम थे
1: जी,
0: उसमें कुछ प्रश्न पूछे जाते थे और सरकारी तंत्र से जुड़ा मैं और शिक्षा के पद से भी जुड़ा, और वहां पर मैंने बहुत अच्छा काम किया। इसके लिए मुझे वहां पर विशेष तौर से बीकानेर में तो मुझे ऐसे काम करने के कारण प्रशंसा पत्र भी दिया गया,
1: सम्मान भी मिला,
0: सम्मान भी मिला,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: प्रशासन के द्वारा,
1: बिल्कुल।
0: और ऐसे सम्मान तो मैडम हम लोगों को सबको मिलते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है ये, सबको मिलते हैं, अच्छा लगता है मैडम।
1: कार्य का सम्मान है, आपके कार्य का सम्मान है,
0: तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मेरे साथी लोग जो थे उस समय में, जैसे प्रदीप है वगैरह है, आप भी थे उस समय, आप लोग जो जुनून था आप लोगों में, आप देखो जुनून की जैसे आप यहाँ तक आ गए
1: जी।
0: ये जुनून होता है काम करने का,
1: इसको
0: जुनून होगा वो आगे बढ़ेगा मैडम, जुनून नहीं होगा वो ही पड़ा रहेगा।
1: बिल्कुल सही कहा आपने,
0: इसलिए आदमी को आगे बढ़ना है, और हम जो मौका मिला ना मैडम, इसको सेवा करनी है, सेवा सेवा की भावना प्रथम होनी चाहिए
1: जी, बिल्कुल।
0: तो वो सेवा करने वाले आदमी आगे बढ़ सकता है।
1: अगर मैं एक बात कहूं, मैंने चूंकि आप जैसे अधिकारियों के साथ काम किया, और बहुत ऐसे अधिकारी हमें भी मिले जो जुनून की हद तक काम करते थे, डांटते भी थे और बताते भी थे कि कार्यक्रमों को कैसे किया जाता है, और उससे बहुत कुछ सीखा, उनकी डांट से सबक सीखा कि किस तरह से कार्यक्रमों में गलती नहीं होनी चाहिए। सर, आपसे इतनी लंबी बातचीत हमने कर ली है, और इस बातचीत के साथ साथ आपकी पसंद का गीत हम जानना चाहते हैं।
0: जया भादुड़ी जी और शायद अमिताभ बच्चन जी दोनों फिल्म के अंदर काम कर रहे थे,
1: मिली
0: हाँ शायद वही फिल्म
1: जी।
0: और उसके अंदर जब कैंसर हो जाता है उनको, जया भादुड़ी को, और अंत के अंदर जो वो गाना एक आता है, मैंने कहा
1: फूलों से हंसो तो वो खिलखिला के हंस,
0: अरे जिंदगी में हंसते रहो मैं तो यही कहता हूँ, बी हैप्पी इन योर लाइफ
1: जी, बिल्कुल। आई सुनते हैं ये गीत।

0: लाखों लोगों के बीच में, वो गुड अर्थ अगर किसी पंगु जो पांव चल नहीं पा रहा है और जो यहाँ आपके पंडाल तक नहीं आ पा रहा है और वो घर पे सुन ले तो क्या हर्ज है आपको, नुकसान है कोई? नहीं बेटा कोई नुकसान नहीं, जल्दी तो अपना इक्विपमेंट लेके रिकॉर्डिंग करता हूँ मैं, और पहले सबसे पहले रिकॉर्डिंग मेरी शुरू किया
1: जी, जी।
0: आप बीकानेर के अंदर उदयराम सर दोहरे की बात बता रहा
1: हूँ,
0: और उस समय अपने सीनियर अनाउंसर उदय प्रमोद शर्मा जी साथ में थे,
1: प्रमोद शर्मा
0: हाँ वो साथ में थे, वो आज भी कहते हैं कि मैंने आपको वो इंटरव्यू लेते सुना है और आपकी बात तो बड़ी प्रभु बस ऐसा कहते थे। मैंने कहा नहीं मेरी कुछ नहीं है, मैंने तो सीखा है आप लोगों से, और मैं हमेशा मैडम हर एक से सीखता हूँ, यहाँ तक कि के गार्ड होता जो अपना गेट पे रहते थे ना उनसे ही बातचीत करके सीखता
1: जी,
0: था मैं।
1: जी, जी।
0: और सीखने में क्या हर्ज है?
1: ये आपका बड़प्पन रहा, ये आपकी महानता रही कि नहीं? सरल हृदय जो इंसान है वो कभी अपने पद को नहीं लेकर रहता, सभी की इज्जत करने के साथ ही वो आगे बढ़ता है और इसी तरह से उसको सफलता भी मिलती है।
0: ऐसी
1: तो परमार साहब हम अब चलते चलाते एक सवाल और आपसे पूछना चाहते हैं कि आकाशवाणी ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य दिए हैं, बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, अपनी सेवाओं से बहुत महत्वपूर्ण बदलाव भी हमने देखे हैं आकाशवाणी की दुनिया में, जैसे कि डिजिटल रेडियो आ गया है, न्यूज ऑन AIR ऐप आ गया है जहां से पूरे विदेशों में गांवों में हम रेडियो को सुन सकते हैं, सोशल मीडिया है, यूट्यूब की उपस्थिति हो गई है, FM के साथ साथ पॉडकास्ट सेवाएं भी आ गई हैं। ये जो इतने सारे बदलाव अब रेडियो के साथ साथ हम देख रहे हैं, इनके साथ में परिवर्तन, आप इसको कैसे देखते हैं?
0: देखिए जब मैं एक बार टाटा हॉस्पिटल गया तो टाटा हॉस्पिटल में गुप्ता साहब थे उनसे मिलने के लिए गया तो उनके स्टेनो के पास बैठा, रेडियो कौन सुनता परमार साहब आजकल? अच्छा एक बात सुनो, आपको रेडियो के ऐप मालूम है कुछ? अरे आप न्यूज कब कब सुन सकते हैं मालूम है आपको? मैं कहा अमिताभ बच्चन साहब क्या कहते थे मालूम है कि अगर आप जरा सा भी न्यूज एक सुन ले बराबर ध्यान से तो मेरा जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को तुम पास कर सकते हो भाई, क्योंकि जीके की जो बातें हैं जनरल नॉलेज की जो बातें हैं वो पूरी पूरी समाचारों में आती है, और हमारा समाचार जगत का मैंने एक उसको ऐप दिया और उसके ऐप उसे डाउनलोड किया और मैंने कहा जैसे सुनिए आप, सुना है उसको मैंने, अरे मेरे को तो मालूम ही नहीं था, आप बुरे इसलिए तो करते हैं हमारे लोगों की कि भाई मुझे मालूम नहीं था, उस ऐप के अंदर कोई भी न्यूज को कभी भी सुन सकते हैं, कल की न्यूज को आज सुन सकते हैं, सवेरे की न्यूज को एक घंटे बाद सुन सकते हैं, आप बताइए इससे बड़ा और किस चैनल के अंदर है मुझे बताइए, कोई भी चैनल ऐसा नहीं दिखता।
1: और 24 घंटे समाचार चलते हैं आप किसी विविध भाषाओं में आप,
0: और मैडम इसके साथ साथ में मैं बता रहा हूँ ना कि जिस मुख्य समाचार को आप दोबारा सुनना चाहते हैं वो आप नहीं सुन सकते कहीं पे भी, हमारे यहाँ पे वो दोबारा सुन सकते हैं आप, वो उस ऐप के अंदर पूरी चीजें, ये ऐप की बातें हैं, डिजिटल की बातें हैं, तो ये सब बातें तभी संभव होगी जबकि हम लोग उसमें इंटरेस्ट लें, और आप लोग जो भी आज काम कर रहे हैं डिजिटल सेवा के तहत वो लोगों को बताएं, भरपूर बताएं कि देखिए ऐसे ऐसे हमारे कार्यक्रम हैं, इस कार्यक्रम में ऐसे ऐसे ऐप्स हैं और इस ऐप्स को हम इस तरीके से आप लोगों को बता सकते हैं और आप इनको सुने
1: जी।
0: और बड़े बड़े अधिकारी बने, और बड़े बड़े अधिकारी बन के देश की सेवा करें, बस मेरा एक ही एक निवेदन है
1: जी।
0: एक बच्चा हमारे फैमिली का जैसे एक हमारे करुणाम जी थे शायद बीकानेर के ना, उनका बच्चा जो IAS बना ना, इतनी खुशी हुई मुझको, इतनी खुशी हुई कि आज हमारे एक ड्यूटी ऑफिसर के और बाद में अधिकारी भी बन गए है ना,
1: डीआर मीणा जी।
0: हाँ तो अधिकारी भी बन गए, तो अधिकारी बनने के बाद में वो चीजें मुझे मालूम पड़ी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हमारे परिवार के जो बच्चे आगे पढ़े आगे गए तो वो किस कारण से गए? वो इस आकाशवाणी की बदौलत गए, मैं आपसे सही कहता हूँ, आकाशवाणी के माध्यम से जो चीजें हम लोगों ने सीखी वो हमारे को जानते थे कि इनको पापा को जो जुनून है ना, पागलपन से बड़ा जुनून है
1: जी बिल्कुल,
0: ये बात
1: और वही जुनून आज आपको हमारे सामने ले आया। आज विविध भारती के स्टूडियो में आप आए, आपने अपनी अनमोल बातें हमारे साथ साझा की और अपना अमूल्य वक्त हमें दिया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं परमार साहब।
0: मैं आपका और सुनने वाले सभी साथियों का बहुत हृदय से नमन करता हूँ उन सबको और अभिनंदन करता हूँ, और ये हमेशा कहता हूँ कि आप लोग जुड़े रहिए हमसे, आपको नित नई बातें आपको मिलेगी, क्या खेती में, क्या आप समाचारों में, और क्या आपने जीवन में उन बातों को उतार लीजिए, आपका जीवन ऐसा निर्मल बन जाएगा, घमंड आपके पास में नहीं रहेगा, मैं आपको बताता हूँ। और बिना घमंड का आदमी कितना बड़ा होता है आपको मालूम है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और दोस्तों, स्मृतियों के स्वर इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ स्टूडियो में थे सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी आदरणीय लवेश परमार साहब। हमने उनसे बातचीत की आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में। और बस आज इतना ही इस कार्यक्रम

0: की।
1: मैं यहाँ पर एक स्वामी जी की बात अक्सर मेरे को याद आती है, स्वामी राम सुखदास जी महाराज की। वो अपने उनके जो प्रवचन होते थे बीकानेर में, जोधपुर में, जयपुर में, लाखों लोग आते थे, लाखों लोग। और मैडम आपके सुनकर आपको खुशी होगी और सब भाइयों को भी खुशी होगी इस बात की कि वो कभी इंटरव्यू नहीं देते थे किसी को भी।
0: जी जी।
1: और इंटरव्यू नहीं देने का कारण ये था, सारे व्यक्तिगत अपने नाम से सब लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, अपने आप को बढ़ाते हैं। तो मैंने कहा उनसे निवेदन किया जाके, मैं स्वामी जी महाराज एक चीज बताइए, आपकी अच्छी बात जो गीता की है, अब कर्म निवादी का रास्ते तो हम सभी जानते हैं, एक लटर लटर शब्द हो गया हमारे लिए, परंतु इसका गुड़ अर्थ क्या हुआ? ये गुड़ अर्थ जो आपने बताया आज

0: मंदाकिनी जोशी को दें अब इजाजत। नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे आकाशवाणी के भूतपूर्व कार्यक्रम अधिशासी श्री लवेश कुमार परमार से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग रीमा जोशी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अब आज का स्मृतियों के स्वर कार्यक्रम समाप्त होता है।
2: स्मृतियों के स्वर।

दोस्तों, हवा महल कार्यक्रम में आज हम आपको सुरेंद्र गुलाटी के लिखे नाटक यादों की परछाइयां का पहला भाग सुनवा रहे हैं। निर्देशन दीनानाथ का है।

0: विक्रम,
1: ऐसे ही मैंने सोचा पूछ लूं, आज शाम को तो आ रहे हो ना?
0: कहाँ?
1: क्यों भाई, आज कमला के यहाँ?
0: कमला के यहाँ? वहाँ क्या है भाई?
1: आज कमला के यहाँ रिसेप्शन है ना?
0: मुझे नहीं मालूम, मेरे पास तो कोई इनविटेशन आया नहीं। व्हाट्स द ओकेजन?
1: अरे उसका भाई इंग्लैंड से मेम ब्याह कर लाया है, तुम्हें नहीं मालूम? अजीब बात है।
0: होगा भाई, मुझे नहीं मालूम।
1: चलो मैंने बता दिया, काफी है, अब आ जाओ। बहुत से पुराने यार दोस्त मिलेंगे, खूब हंगामा रहेगा। 6:30 बजे के बाद किसी वक्त भी।
0: मुश्किल है यार।
1: फॉर्मल इनविटेशन के बिना जाना शान के खिलाफ है क्या?
0: क्या बात करते हो यार, कमला के यहाँ पार्टी हो तो फॉर्मेलिटी कैसी?
1: मुझे यकीन है उसने तुम्हें इनविटेशन कार्ड जरूर भेजा होगा, हो सकता है डाक में कहीं रह गया।
0: नहीं नहीं, ये बात नहीं, इनविटेशन की ऐसी कोई बात नहीं। यूं भी कमला से मिले कितनी देर हो गई है मुझे, कम से कम 6 महीने तो हो गए होंगे, हो सकता है साल ही गुजर चुका हो। मैं खुद कई बार सोच चुका हूँ कि चल के उसे मिलाऊं, लेकिन बस वक्त ही नहीं मिलता यार। देखो ना, 6 बज भी चुके हैं और मैं अभी तक ऑफिस में ही बैठा हूँ।
1: लेकिन वहाँ तो 6:30 बजे के बाद पहुँचना है यार।
0: मैं जरूर आ जाता शाम, अगर तुम मुझे सुबह फोन कर देते। अब शाम को मुझे एक और पार्टी में जाना है, वहाँ भी बस शक्ल दिखा के भागूंगा। 8 बजे एयरपोर्ट पहुँचना है मुझे, हेड ऑफिस से मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर आ रहे हैं, उनको रिसीव करना है, फिर जाने उनके साथ कितनी देर लग जाए। आई एम रियली वेरी सॉरी।
1: देख लो वक्त मिले तो आ जाना।
0: भाई मुश्किल ही है, फिर भी कोशिश करूंगा, मगर प्लीज कमला से कुछ ना कहना।
1: नहीं नहीं,
0: थैंक्स फॉर कॉलिंग,
1: बाय बाय।
0: बाय बाय। क्या लिखा था?
2: कॉपी ऑफ विच इज
0: बीइंग एनक्लोज्ड हियर विद फॉर योर रेडी रेफरेंस, थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, एटसेट्रा एटसेट्रा।
2: नेक्स्ट सर?
0: नहीं बस, बाकी ये खत कल सुबह आकर करेंगे। थैंक यू, बस जाकर उनको जल्द से टाइप कर लाऊं, मुझे जाना है।
2: यस सर, इन ए मिनट।
0: सुनो, आज की डाक से मेरा कोई पर्सनल खत तो नहीं आया?
2: नो सर, डाक तो मैंने सब आपको दे दी थी। मैं दोबारा चेक कर लेती हूँ, शायद मेरी
0: नहीं, नहीं नहीं नहीं होगा, मैं कोई खास खत एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। चलो देख लो शाम की डाक में शायद।
2: यस सर।
0: विक्रम? यस सर, जी हाँ जी हाँ, मैं ठीक वक्त पर पहुंच जाऊंगा। जी हाँ जी हाँ, आई शैल एक्सप्लेन टू हिम सर। यस सर, वेरी वेल सर। कागज और बैग मेरी गाड़ी में रख दो।
3: यस सर।
2: आई एम सॉरी सर, आपका कोई पर्सनल लेटर नहीं है।
0: ओह इट्स ऑल राइट, खत टाइप हो गया?
2: यस सर।
0: ये लो, बाकी ये खत ऐसे ही यहीं छोड़ दो, सुबह डिक्टेट करवा दूंगा।
2: राइट सर।
0: राइट
2: सर। सर आप अपना पेन भूल गए थे।
0: ओह थैंक यू, मैं ग्रीन पार्क की तरफ जा रहा हूँ, तुम्हें रास्ते में छोड़ दूँ?
2: नो थैंक यू सर, मुझे अभी थोड़ा काम और करना है।
0: अच्छी बात है।
2: गुड नाइट सर।
0: गुड नाइट।

0: आज कमला के यहाँ रिसेप्शन है भाई। अरे उसका भाई इंग्लैंड से मेम ब्याह कर लाया है, तुम्हें नहीं मालूम? अजीब बात है, तुम्हें नहीं मालूम? अजीब बात है, तुम्हें नहीं मालूम? अजीब बात है।
1: विक्रम, तुम इस वक्त यहाँ कैसे आन पहुँचे?
2: क्यों कमला, मैं यहाँ नहीं पहुँच सकता था क्या?
1: लेकिन मेरा आज यहाँ आने का बिल्कुल इरादा नहीं।
2: तो फिर तुम यहाँ कैसे आई?
1: कॉलेज से घर पहुँची तो बहुत सुना सुना सा लगा, सोचा एक आध ऐसे तैयार कर लूँ। कॉफी निकाल कर बैठी तो अचानक याद आया कल विनीता का बर्थडे है। तुम जानो ये मॉडर्न लड़कियाँ बर्थडे पर प्रेजेंट नहीं दिया जाए तो अनकल्चर की डिग्री दे डालती।
2: तो तुम विनीता के लिए प्रेजेंट खरीदने निकली?
1: ढूंढने निकली थी प्रेजेंट, मिल गए तो अब मिल ही गए हो तो कॉफी के लिए तो पूछ लो।
2: हाँ हाँ चलो, कहाँ चले?
1: सुना है ग्रीन लाइट की कॉफी के साथ साथ म्यूजिक मुफ्त मिलता है।
2: जी नहीं, म्यूजिक की कीमत वो कॉफी में ही लगा लेते हैं।
1: बड़े कंजूस होते जा रहे हो। हाँ भाई, मैं तुम्हारी वो तो नहीं हूँ ना। अच्छा चलो, कॉफी के पैसे अपने अपने।
2: तुम्हें डायलॉग सुनने का बहुत शौक है क्या? तुम चाहती हो मैं रोज रोज दिल पे हाथ रखकर आंखों में आंखें डालकर तुम्हारी आंखों की तारीफ करूं?
1: तारीफ तो तुम क्या करोगे, बस कदर ही कर लो, हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। फिर चलें ग्रीन लाइट?
2: चलो ना, लेकिन पहले अपना प्रेजेंट तो खरीद लो, दुकानें बंद हो जाएंगी।
1: प्रेजेंट खरीदने का आइडिया मैंने फिलहाल ड्रॉप कर दिया।
2: पैसे कम पड़ गए होंगे।
1: आज ही पॉकेट मनी की दूसरी इंस्टॉलमेंट मिली है।
2: फिर तो ग्रीन लाइट का पूरा बिल तुम्हें ही देना पड़ेगा।
1: तुम्हें शर्म नहीं आएगी?
2: बिल्कुल नहीं, तुमसे भला मुझे क्या शर्म आएगी?
1: मुझसे नहीं, वेटर से तो आएगी।
2: वहाँ तो बिल मैं ही पे करूंगा, तुम पैसे मुझे पहले से ही पकड़ा देना।
1: बड़े ठीक हो।
2: देख लो, तुम कॉलेज से सीधी घर चली गई, ये भी ना सोचा कि मैं कहाँ मारा मारा फिरूंगा। फिर भी तुम्हें ढूंढ लिया?
1: जी हाँ, पूरे 10 मिनट गेट पर इंतजार किया था जाने से पहले।
2: 10 मिनट क्या बहुत होते हैं?
1: कभी कभी ऐसा लगता है जैसे 10 बरस बीत गए हो। फिर तुमने ये नहीं सोचा कि मुझे घर पहुंचकर सुना सुना क्यों लग रहा था? इतनी सटल बातें अगर तुम समझ सकते होते तो अपना बेड़ा न पार होता। चलो हमारे
2: कमला, आज का प्रैक्टिकल बहुत लंबा था, लेकिन खत्म करते ही तुम्हें ढूंढने निकल खड़ा हुआ।
1: घर गए थे?
2: ना ना ना ना, मेरे दिल ने कहा तुम घर पर नहीं होगी, बल्कि जरूर कनॉट प्लेस में शॉपिंग करती हुई मिलोगी।
1: दिल ना हुआ, रडार हो गया।
2: जब मिलने की ख्वाहिश हो तो दिल की आवाज रडार से भी बढ़ के काम करती है। देख लो, तुम कहीं भी रहो, कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, मुझे कुदरती तौर पर खुद ब खुद मालूम हो जाता है कि तुम कहाँ हो। तुम्हारी सांसों की लहरें मेरे कदमों को खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खींच लाती हैं।
1: सुनो, ये आजकल के मॉडर्न राइटर्स ने कोई नई तरह के डायलॉग नहीं लिखे?
2: खुद ही तुम कहती हो कि मैं।
1: अब चलकर कॉफी पिलाओ, कितनी देर हो गई है। माँ ने कहा था अंधेरा होने से पहले घर लौट।
2: मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर इन माओं को अपनी बेटियों की इतनी फिक्र क्यों खाए रहती है। अगर बाहर से लौटते लौटते अंधेरा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा?
1: तुम्हारी तरह के भूतों का खतरा रहता है ना, न मिले तो सूना सूना लगता है, मिल जाए तो ऐसा जादू करते हैं कि घर बार फूल जाता है। फिर माँ बेचारी क्या करे, बेटी तो जाने उनके लिए पराया धन है, जिसे उसके मालिक के हवाले किए बिना उनको चैन नहीं पड़ता।
2: तुम किसकी अमानत हो?
1: तो ही नहीं मालूम।
2: तुम बता दो।
1: मुझे भी नहीं मालूम।
2: ये कैसे हो सकता है?
1: कहा ना, नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं मालूम। कहा तुम्हारा ग्रीन लाइट?
2: वो रहा।
1: चलो चलकर कॉफी पिए।
2: तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया।
1: कहा ना, नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं मालूम।
2: तुम्हारी मर्जी।
1: सुनो, इनके यहाँ वो गाना है।
2: कौन सा?
1: छोड़ो, तुम्हें गाना सुनकर भी क्या समझ आएगी।
2: बस छोड़ गई मैदान।
1: क्या मतलब?
2: एक सवाल का सीधा जवाब देते हुए घबरा क्यों गई?
1: Shut up.
3: गुड इवनिंग अंकल।
4: ओ गुड इवनिंग विक्रम, आओ आओ।
3: हेलो आंटी।
5: अच्छे हो विक्की?
3: आप दोनों को कविता के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो आंटी।
4: अरे भाई, ये बधाई

0: भाई वधाई तो खुद उसी को जाकर दो। बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही है।
1: किवी बहुत नाराज है तुमसे। सब लोग तो कभी के आ चुके हैं और तुम इतना लेट आए हो। वो बिल्कुल ऑफ मूड बैठी है।
2: आप फिक्र न कीजिए आंटी, देखिए अभी जाकर उसका मूड बिल्कुल ठीक किए देता हूँ। अरे कहाँ है सब लोग?
1: पिछले लॉन में है, डाइनिंग रूम में से होकर निकल जाओ। मैं चलो।
2: नहीं आंटी, आप बैठे रहिए, आप फिक्र न कीजिए, मैं सब अभी ठीक किए देता हूँ।
0: He is a smart boy.
1: बहुत। देखो ना, सिर्फ 4 साल हुए हैं सर्विस करते हुए और अपनी कार खरीद ली है। अपनी फर्म की लोकल ब्रांच में नंबर 2 है। 2 साल तक नंबर 1 हो जाएगा। किवी बता रही थी सब मिलाकर 1400 मिलते हैं और साल 2 साल बाद तो।
0: अरे भाई, मैं उसकी नेचर की बात कर रहा हूँ।
1: हाँ, अच्छा है। हाथ में प्रेजेंट का डिब्बा बहुत बड़ा था, ग्रे स्टोर का लेबल लगा हुआ था।
0: मैंने गौर नहीं किया।
1: ये तो ग्रे स्टोर वाले तो बहुत ही चोर हैं। हर चीज के दुगने तिगने दाम लगाते हैं। मगर ये जरूर है, जो वैरायटी इनके यहाँ मिलती है ना। आप अखबार पढ़ रहे हैं क्या?
0: देख रहा हूँ।
1: कीवी से लकी गर्ल।

यादों की परछाइयां, सुरेंद्र गुलाटी के लिखे इस नाटक का अभी आपने पहला भाग सुना। निर्देशक दीनानाथ। इस नाटक का दूसरा भाग सुनिएगा कल इसी समय हवा महल कार्यक्रम में।

0: विविध भारती के प्रोग्राम अभी आप सुन रहे थे और अब विविध भारती के प्रोग्राम हम आपको सुनवाएंगे रात 10:30 से, और ये टाइम है आकाशवाणी अयोध्या FM पर बॉलीवुड के फिल्मी गानों का गीत गुंजन, बस कुछ ही देर में।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: रतन सोलर एजेंसी परशुरामपुर बस्ती, PM सूर्य घर योजना।

0: योजना में आवेदन करें और सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल में बचत करें। मोबाइल 9839561329 व 9682705221।
1: तो कैसे हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, बढ़िया है ना, मजे में हैं, सेहतमंद हैं, हंसते गाते मुस्कुराते हैं और दुआओं में आपने जब मुझे याद किया तो मैं पहुंच गया आपके पास 101.9 मेगाहर्ट्ज पर हवाओं की तरंगों पर सवार होकर आकाशवाणी अयोध्या एफएम से। और दूर और दराज के श्रोता देश और विदेश में भी सुन रहे हैं अब इंटरनेट के जरिए प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी अयोध्या एफएम को। प्रोग्राम है गीत गुंजन आपके रेडियो मित्र अमरजीत के साथ, जो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार कहता है और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता है। तो चलिए आज बात करते पहले गर्मी की ही, क्योंकि आज से जो है नौतपा भी शुरू हो चुका है। बताएंगे नौतपा क्या होता है, आप सबको मालूम ही होगा। सीवियर हीट वेव्स जारी है और पूरे उत्तर भारत में 43 से 46 डिग्री टेम्परेचर बना हुआ है। अपने यूपी स्टेट के बांदा में तो कुछ दिन पहले 48.2 डिग्री तक पहुंच गया था तापमान दिन का, और ये टेम्परेचर रात में भी रह रहा है। आजकल रातें भी काफ़ी गर्म हो रही हैं, 40 से 45 डिग्री का तापमान के पार। अब ये ग्लोबल वार्मिंग जो हम लोग 40 से 45 डिग्री सहन कर लेते थे, अब 45 से 50 डिग्री के लिए भी हम सबको तैयार रहने को ये ग्लोबल वार्मिंग कह रही है। जी हाँ, आने वाले टाइम में दिन ब दिन तापमान बढ़ता ही जाएगा। आज से नौतपा भी शुरू हो गया जो 2 जून तक रहेगा। बहुत ज़रूरी होने पर ही घर से निकलें। शहरों में कूलिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं, नगर निगम की ओर से शेल्टर भी लगाए गए हैं वहाँ पर सड़कों के किनारे, जिसमें एसी और पंखे लगे हुए हैं, पानी की व्यवस्था भी की गई है। तो आप अगर घर से बाहर काम के लिए निकल रहे हैं और गर्मी आपको लग रही है तो आप इन जगहों का इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में सूती हल्के रंग के कपड़े पहने, तेल मसाला कम यूज करें, सिर को ढक कर निकले, पानी पीते रहें और अपने साथ साथ जीव जंतुओं और पंछियों का भी ध्यान रखें। उनके लिए भी दाना पानी भोजन और छांव का इंतजाम करें, क्योंकि हमने आपके लिए इंतजाम किया एक ठंडा ठंडा गाना। अगर गर्मी पड़ रही है तो कुछ गाने ऐसे सुने जाएं जो दिल को भी सुकून दें और मन को भी सुकून दें और आपकी सेहत को भी अच्छा रखें। तो पहला गाना आज ऐसे ही हो जाए, वो गाना है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म हाथी मेरे साथी से, जो 1971 में आई थी।

काली घटा। और अब बात करते हैं 25 मई यानी आज के दिन क्या हुआ इतिहास में। जी हाँ, हिस्ट्री ऑफ डे। 25 मई का दिन भारतीय और विश्व इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए याद किया जाता है। ये तारीख साहित्य, युद्ध, विज्ञान और सामाजिक जागरूकता जैसे विभिन्न क्षेत्रों में घटित ऐतिहासिक पन्नों को अपने भीतर समेटे हुए है। सन 1669 में 25 मई को औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों और विद्यालयों को गिराने का आदेश दिया था। सिख कौम ने भी धर्म की रक्षा के लिए औरंगजेब से जंग लड़ी। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने छोटे बेटों सहित खुद को कुर्बान कर दिया था। 1995 में वैज्ञानिकों ने पहली बार किसी जीवित जीव का डीएनए डिकोड किया। आज ही के दिन सन 1886 में भारतीय क्रांतिकारी नेता रास बिहारी बोस का जन्म 25 मई 1886 को हुआ। यह गदर विद्रोह और बाद में भारतीय राष्ट्रीय सेना के मुख्य आयोजकों में से एक थे। अंत में रास बिहारी बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी। 25 मई का एक और महत्व है कि आज ये स्मृति दिवस भी है। आइए हम सब अपने देश की सेवा में शहीद हुए लोगों को याद करें आज के दिन। उनकी बहादुरी और देश के प्रति समर्पण ने ही हमें आज स्वतंत्र और सुरक्षित रखा हुआ है अपने देश में। अमन त्रिखा की आवाज में ये गीत आ गया, जय जवान जय किसान फिल्म से। देश के वीरों को तो याद करना है ना, और करना भी चाहिए हमेशा। बॉर्डर पर देखिए, दिन रात 24 घंटे हमारे फौजी भाई डटे हुए हैं। उनको ना तो गर्मी लगती है, न जाड़ा लगता है, न बरसात। हर सीजन में वो जो है हम सब के लिए बॉर्डर पर तैनात रहते हैं। तो हम लोगों भी तो कुछ फर्ज बनता है ना, ड्यूटी बनती है। उनके हौसलों को, जज्बों को हम इसी तरह से जगाए रखें।

वाकई मेरे देश का कोई जवाब नहीं। जी हाँ, इतना बढ़िया गाना इस फिल्म में लिखा किशन पालीवाल ने, मेरी ओर से उनको बहुत बहुत थैंक्स है, धन्यवाद है। पूरे गाने में पूरे देश को एक सूत्र में पिरो दिया, ये है अपने देश की खूबसूरती। और अब जी आज फिल्मी फ्राइडे में केवल हम स्टार ऑफ द वीक की बात करेंगे, क्योंकि आज फिल्मी फ्राइडे है नहीं, तो रिलीज की बातें किसी और दिन करेंगे।

जी हाँ, गीत गुंजन में अब बारी है स्टॉप द वीक की। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता सुनील दत्त की अदायगी में ऐसा जादू था, जैसे ही वो स्क्रीन पर आते दर्शक मंत्रमुग्ध हो जाते। उनकी डायलॉग डिलीवरी का अंदाज इतना असर छोड़ता था कि लोगों की आंखें स्क्रीन से हट ही नहीं पाती थी। दिलीप कुमार जैसे संजीदा और दिग्गज अभिनेताओं के सामने सुनील दत्त ने अपनी एक अलग ही पहचान बना ली थी। सुनील दत्त की अभिनेता बनने की इच्छा बंबई आने से पहले ही थी, लेकिन नौकरी मिली सिलोन रेडियो में, जहां अनाउंसर बनने के बाद उनकी आवाज के लोग दीवाने हो गए। जी हां, रेडियो सिलोन 1955 में बनी रेलवे स्टेशन सुनील दत्त की पहली फिल्म थी, लेकिन असली नाम और शोहरत उन्हें फिल्म मदर इंडिया ने दिया।

1957 में ये फिल्म रिलीज हुई। मदर इंडिया ने उन्हें बढ़िया पहचान दिलाई नरगिस के साथ। सुनील दत्त को मदर इंडिया ने स्टार बनाया और डाकुओं पर बनी फिल्मों में सुपरस्टार बना दिया। जी हाँ, वो हिंदी सिनेमा के इकलौते ऐसे हीरो रहे जिन्होंने 20 फिल्मों में डाकू के रोल निभाए। फिल्म मुझे जीने दो के लिए उन्हें 1964 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। इसके अलावा फिल्म खानदान के लिए भी सुनील दत्त को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। आज मैं सुनील दत्त की इतनी बातें कर उनको क्यों याद कर रहा हूं? एक आरजे या एक कलाकार अपने साथी कलाकारों को याद ना करें, ये कैसे हो सकता है? जी हाँ, आज ही के दिन 25 मई 2005 में सुनील दत्त जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। आकाशवाणी की पूरी टीम उनकी पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि देती है और नम आंखों से याद करते हुए ये गीत उनकी फिल्म का सुनवाती है।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: बात कर ली जाए गीत गुंजन प्रोग्राम में स्पोर्ट्स की। आईपीएल प्लेऑफ का शेड्यूल क्लियर हो गया है। रियान पराग की अगुवाई वाली राजस्थान रॉयल्स बीते रविवार प्लेऑफ में एंट्री करने वाली चौथी टीम बन गई। 30 रन से मुंबई को उसने हरा दिया, जिसने 206 रन का टारगेट दिया था। बेंगलुरु, गुजरात और हैदराबाद 18-18 पॉइंट्स लेकर पहले ही प्लेऑफ में पहुंच चुकी थी। टॉप टू में डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी और गुजरात के बीच क्वालिफायर एक खेला जाएगा। यह मुकाबला

कल धर्मशाला में खेला जाएगा। आरसीबी और जीटी में से जो भी जीतेगा उसे सीधे फाइनल में जगह मिलेगी। हालांकि हारने वाली टीम को एक मौका खेलने का और मिलेगा। ऐसे में राजस्थान और हैदराबाद की एलिमिनेटर मुकाबले में भिड़ंत होगी। ये मैच 27 मई को न्यू चंडीगढ़ स्टेडियम में खेला जाएगा। एलिमिनेटर में हारने वाली टीम का सफर टूर्नामेंट में समाप्त हो जाएगा। वहीं विजेता की क्वालिफायर वन में शिकस्त झेलने वाली टीम से टक्कर होगी। क्वालिफायर टू का 29 मई यानी शुक्रवार को न्यू चंडीगढ़ में आयोजन होगा। इस मैच में जिसे भी जीत नसीब होगी उसकी फाइनल में एंट्री हो जाएगी। खिताबी मुकाबला 31 मई रविवार को अहमदाबाद स्टेडियम में होगा। प्लेऑफ के सभी मैच शाम 7:30 बजे से ही आप देख सकेंगे। अच्छा जी, मुंबई पर राजस्थान की जीत के साथ 14 मैचों में 16 अंक हो गए, जिसकी वजह से पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की उम्मीदें खत्म हो गईं। पंजाब किंग्स जिसने शुरू के 6 मैच जीतकर इस सीजन काफी टाइम तक टॉप पर रही, लेकिन उसके बाद जो हुआ किसी ने सोचा ना था। लगातार 6 मैच हारने और अंतिम जीतने के बाद प्लेऑफ में पंजाब की टीम जी हाँ पहुंच नहीं पाई, लेकिन पंजाब किंग्स के दलेर खिलाड़ियों ने अपनी बैटिंग और बॉलिंग से क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया। श्रेयस अय्यर ने शानदार कप्तानी की और मिडिल ऑर्डर में टीम की बल्लेबाजी की रीढ़ बने रहे। लखनऊ के खिलाफ करो या मरो के मुकाबले में उन्होंने नाबाद 101 रन की तूफानी शतकीय पारी खेली और छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया। प्रभु सिमरन ने इस सीजन में 500 से भी ज्यादा रन बनाए। आईपीएल इतिहास में अनकैप्ड खिलाड़ी के तौर पर लगातार शानदार प्रदर्शन करने का रिकॉर्ड बनाया। ओपनिंग में आकर उन्होंने टीम को कई तूफानी शुरुआतें दी। इन दोनों के अलावा युवा बल्लेबाज प्रियांश आर्य और ऑलराउंडर कूपर कोहली ने भी शुरुआती मैचों में कई धमाकेदार पारियां खेलकर अपनी छाप छोड़ी। गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल ने भी महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। और यहां पर गाना चटकने वाला है आपके पास, चटकने क्या पहुंचने वाला है, पहुंच गया। मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की आवाज में ये गाना सुदेश भोसले की आवाज के साथ भी आपके पास पहुंच रहा है, करण अर्जुन फिल्म से।

जाते जाते क्या बात करने वाले हैं आपसे, आइए बताएं आपको अपने शहर के बारे में। फैज बख्श, जिनके नाम पर फैजाबाद का नाम रखा गया था, सुदाउद्दौला के दरबार में ये एक दरबारी थे, रामायण के साकेत के समान है, जो समाप्ता राम के पिता राजा दशरथ की निजी जागीर थी। ऐसा माना जाता है कि अवध के नवाब के दरबारी फैज बख्श की मृत्यु के बाद पहले अयोध्या का नाम साकेत भी था, उसे साकेत बदलकर फिर फैजाबाद कर दिया गया था। अयोध्या का पुराना नाम साकेत है, जो विभिन्न संस्कृत ग्रंथों बौद्ध साहित्य में वर्णित एक प्राचीन नगर है। समय के साथ इसे अयोध्या के नाम से जाना जाने लगा, जिसका संस्कृत में अर्थ है अजेय नगर, जहां पर कभी कोई युद्ध ना हुआ हो। और लेकिन यह गाना तो होगा ना आकाशवाणी अयोध्या एफएम पर, आपके रेडियो मीत अमरजीत के प्रोग्राम गीत गुंजन में। आइए सुने कौन सा गाना है वो। उदित नारायण और महालक्ष्मी की आवाज में यह गाना, देशद्रोही फिल्म से। नाम तो देशद्रोही है, लेकिन गाना सुनेंगे तो दिल को छू जाएगा।

तो आकाशवाणी के फेसबुक पेज पर जो वीडियो लगी हुई थी आज के प्रोग्राम की, उसमें बहुत से हमारे श्रोताओं ने दूर दूर से जो है अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं और पसंद किया है, और इसके लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आज पता नहीं, मैंने ठंडा पानी तो नहीं पिया था और हो सकता है कि स्टूडियो में कूलिंग ज़्यादा हो रही हो तो मेरा गला साथ नहीं दे रहा था, फिर भी मैंने आपके लिए प्रोग्राम किया और मुझे ऐसा लगा कि बोलने में मुझे कठिनाई कहीं हो रही थी। तो आप सब हंसते गाते मुस्कुराते रहें, सेहतमंद रहें, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इसी तरह से हम पहुँचते रहेंगे आपके पास गीत गुंजन प्रोग्राम लेकर। अब दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा।

बॉलीवुड के फिल्मी गानों के साथ। आपने ये प्रोग्राम सुना गीत गुंजन आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। गला बहुत ही ड्राई हो रहा है, आवाज नहीं निकल रही मुंह से। चलिए बस समाचारों का टाइम हो रहा है, दिल्ली से समाचार आपको सुनवाते हैं, उसके बाद 9 बजे अंग्रेजी में समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादक डॉ एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और एसडीआरएफ की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया। और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धेरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया।
1: पद्म विभूषण श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
0: वायलिन वादक डॉ एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
1: पद्म विभूषण डॉक्टर श्रीमती एन राजम कला वायलिन।
0: पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। एक रिपोर्ट।
2: पद्म भूषण श्रेणी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सार्वजनिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, जबकि भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा को मरणोपरांत लोकसभा श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा शतपथधानी डॉक्टर आर गणेश को कला क्षेत्र में और विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे को मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला। उद्योगपति उदय सुरेश कुमार कोटक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं डॉक्टर कलीपति रामास्वामी स्वामी को चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार मिला। पद्मश्री से सम्मानित होने वालों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर बुल्लर, तागाराम भील, रतिलाल मोहनलाल, भूरी सागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कार को मंजूरी दी है। शेष पद्म पुरस्कार विजेताओं को बाद में आयोजित होने वाले समारोह के दूसरे चरण में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आनंद कुमार के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के अतिरिक्त उर्वरक की कीमतें अप्रत्याशित स्तर

0: पर पहुंच गई हैं।
1: हाई इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस एंड
2: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F फ्यूल, फर्टिलाइजर

0: E3F फ्यूल फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
1: फ्यूल फर्टिलाइजर एंड फॉरेन एक्सचेंज।
2: सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही।
3: रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
2: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है।
4: Several key agreements were signed.
5: यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली है, विशेष रूप से एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित करने और देश के पेट्रोलियम भंडार को सुदृढ़ करने में इन समझौतों की अहम भूमिका रहेगी। इसके साथ ही निवेश से जुड़े समझौते भी किए गए। इससे संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों का प्रभाव बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के लिए एक रूपरेखा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।
2: उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है।
6: अगेंस्ट दी असेसमेंट ऑफ
0: इस वर्ष के लिए निर्धारित 390.54 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित लक्ष्य की तुलना में वर्तमान में उपलब्ध भंडार 200.12 लाख मीट्रिक टन है। ये कुल अनुमान का 51% से अधिक है, जो सामान्यतः रहने वाले 33% के स्तर से काफी अधिक माना जा रहा है। देश में अब तक लगभग 95 लाख मीट्रिक टन का घरेलू उत्पादन हुआ है, जबकि करीब 22.60 लाख मीट्रिक टन आयातित सामग्री भी देश में पहुंच चुकी है।
7: लाइक मेट्रिक टन्स ऑफ इंपोर्ट्स हैव रीच्ड आवर शोर्स।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टॉल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। एफकैट 1 ऑफ 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या fcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार में तकनीकी खराबी के बाद सेना और राज्य आपदा मोचन बल बचाव अभियान चला रहे हैं। बेस स्टेशन और पहले चरण के बीच सेवाएं आज अचानक बंद हो गई और कई पर्यटक फंस गए। सेना ने कहा कि बुटापथरी बटालियन के जवानों ने मार्ग पर 3 सहायता दल तैनात किए हैं और दुर्गम इलाके में बचाव कार्य में सहायता के लिए एक ऑल टेरेन व्हीकल भी लगाया है। सेना के अनुसार तकनीकी खराबी के कारण कुल 65 केबल कारें प्रभावित हुई हैं। बचाव दल अब तक 46 केबल कारों में 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल चुके हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को निकालने के लिए बचाव दल जुटे हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देश भर के सभी

मुख्यमंत्रियों, उप राज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। एक रिपोर्ट।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री मोटेगी तोशिमित्सु से बातचीत की। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। जापान के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए दो दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। ईरान के शीर्ष वार्ताकार अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण वार्ता के लिए दोहा पहुंच गए हैं। संभावित समझौते को लेकर आशा का माहौल है। वार्ता होर्मुज जल डमरू मध्य ईरान के उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार सहित प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित होगी। एक रिपोर्ट।
3: ईरान और अमेरिका के बीच जारी कूटनीतिक वार्ता में एक नया मोड़ सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने कतर में लगभग 12 अरब डॉलर की अपनी जब्त संपत्तियों को तत्काल जारी करने की मांग की है। माना जा रहा है कि यही मुद्दा दोनों देशों के बीच संभावित समझौते की दिशा में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मध्यस्थों के जरिए हुई वार्ताओं में कई मुद्दों पर प्रगति हुई है, लेकिन अब भी दोनों पक्षों के बीच कई बड़े मतभेद बने हुए हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत से जुड़ी नई शर्तें सामने रखी हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग में अक्षय ने येलामन अमानगेल्डी को 4-2 से हराया। वहीं 97 किलोग्राम वर्ग में विक्की ने शेरजोत पोयोनोव को 7-5 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन अशतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादिका डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और SDRF की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला।

0: severe heat wave conditions over Haryana, Delhi, Punjab, Uttar Pradesh and Rajasthan during next 2 to 3 days. And in wrestling, Indian grapplers Vicky and Akshay Dhere clinched gold in men's freestyle category at Asian Under 23 Championships in Vietnam. That's all in the news at 9. Good night.
1: ये आकाशवाणी का अयोध्या एफएम है 101.9 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर। रात के 9:15 हो चुके हैं और अब शुरू होता है महफिल गजल प्रोग्राम। इस पहले कमर्शियल ब्रेक के बाद

0: वो अपने चेहरे में स्वभावताब रखते हैं, इसलिए तो वो रुख पे नकाब रखते हैं। गुलाम अली की गाई इस गजल के बाद हम आपको अगली गजल स्वाति नाटेकर की आवाज में सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: रतन सोलर एजेंसी परशुरामपुर बस्ती पीएम सूर्य घर योजना में आवेदन करें और सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल में बचत करें। मोबाइल 9839561329 व 9682705221।
0: आज किसी ने बातों बातों में जब उनका नाम लिया, आज किसी ने बातों बातों में जब उनका नाम लिया, दिल ने जैसे ठोकर खाई, दर्द ने बढ़कर थाम लिया।

0: स्वाति नाटेकर की गाई इस गजल के साथ ही आज का महफिल गजल प्रोग्राम अब खत्म होता है। यह है आकाशवाणी अयोध्या एफएम 101.9 और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। आइए शुरू करते हैं आज का हेलो अयोध्या प्रोग्राम।
1: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय, 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 95-59-24-42-04 और 78-00-37-22-22।
2: अब आपके शहर में भरोसेमंद इलाज,
3: कैंसर, हृदय, डायलिसिस, हड्डी और ENT का इलाज आयुष्मान कार्ड द्वारा मुफ्त,
2: फ्री एम्बुलेंस की सुविधा,
3: झुनझुनवाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायबरेली रोड, अयोध्या। कॉल करें 90-44-20-70-70।

0: कुछ आपकी कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी और साथ में होंगे आप ही के पसंद के फिल्मी गाने। इस लाइव फोन इन प्रोग्राम में अभी कॉल कीजिए 7376804090 पर और कनेक्ट हो जाएं एजे अमरजीत सिंह के साथ। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है और मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। ये अलबेला सजीला और दिलचस्प प्रोग्राम आपके अपने एफएम 101.9 और स्मार्टफोन पर आ चुका है। अवध की सुरीली धड़कन आकाशवाणी अयोध्या। आइए शुरू करते हैं फिल्मी गीतों और आपकी प्यारी बातों का ये सुहाना सफर। तो मेरे प्यारे सुनने वालों, आपका भी इस प्रोग्राम में बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है और मेरी ओर यानी कि आपके रेडियो मित अमरजीत की ओर से प्यार भरा नमस्कार जहां तक पहुंच रही है आकाशवाणी अयोध्या की आवाज। कंट्रोल रूम से आज हमारे साथ इंजीनियर हैं इस प्रोग्राम में अरविंद कुमार। और अब देखें 7376 80 40 90 नंबर को मिला किसने लिया है। जी आइए, आपका प्रोग्राम में स्वागत है, नाम बताइए।
1: इस गर्मी में थोड़ी सी ठंडक का एहसास हुआ जब आपके आवाज का हमारे कानों में आगाज हुआ।
0: अच्छा, और तो नाम क्या है आपका?
1: गर्मी बहुत है ना सर।
0: हाँ, गर्मी तो
1: भी मंसूरी बोले, हसीना भी मंसूरी बोले सर, पालराना का इंदौर से।
0: आज बहुत दिनों के बाद आपने आकाशवाणी अयोध्या को याद किया, क्या हो गया?
1: जी कुछ नहीं, ऐसा ही थोड़ा देर से लगाया सर।
0: अच्छा अच्छा, और क्या काम होता है वहाँ पर?
1: जूट का काम करते हैं सर, सिलाई का।
0: अच्छा अच्छा, तो साथ साथ में जब रेडियो बजता है तो काम करने में और भी ज्यादा आनंद आने लगता है, क्यों? है ना
1: सर, जैसे जितनी सांस चलती ना इतना ही रेडियो जलता है हमारे साथ।
0: अच्छा ये बताइए, आप गाती भी बड़ा बढ़िया है, आपने गाना सीखा कहाँ से? बचपन से गा रही है क्या?
1: नहीं नहीं, सीखा कहीं भी नहीं सीखा, ना ज्यादा मैं पढ़ी लिखी भी नहीं सर, मैं जो सच है ना वही बोलती।
0: लेकिन गाती आप बहुत ही अच्छा है। तो आज ये गाना कौन सा सुनेंगे और कौन सा गाना सुना के बताएंगी आज हमको?
1: फिल्म का नाम है सर 10 नंबरी और गाने के बोल है लता जी की आवाज में। मुझे दर्द रहता है, दिल में दर्द रहता है, मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती, सारा दिन तड़पती हूँ, सारी रात जगती हूँ, जन क्या हुआ मुझको, कोई दे दवा मुझको। ये सुना दीजिए सर।
0: जी हसीना जी, आपको ये गाना सुनवा रहे हैं, कुछ और भी कहना है आपको, किसी को याद करना है तो याद कर लीजिए।
1: नहीं सर, श्रोताओं के लिए।
0: चलिए शुक्रिया, इंदौर में आपका गाना पहुंच रहा है। शुक्रिया।

0: और अब देखें किसकी कॉल यहाँ पर लग चुकी। जी हाँ, हेलो अयोध्या में जी, नाम बताइए, आप भी आ जाइए प्रोग्राम में। शिव प्रसाद जी।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: अब बताइए ना, बोलिए, हमसे बातें करिए भाई।
1: हाँ?
0: हमसे बातें नहीं करेंगे क्या?
1: क्यों नहीं करेंगे सर?
0: तो आप चुप हो गए, आप बोले ही नहीं, वहाँ से बताइए, कॉल लगाई आपने, क्या चाहते हैं?
1: हाँ जी, बात दूसरे वजह से, तो इसलिए आपसे बात नहीं हो पाई।
0: अच्छा, कोई और आ गया था क्या?
1: हाँ जी।
0: लेकिन जब रेडियो में कॉल लगे ना, तो आप केवल मोबाइल से चिपके रहिए, किसी और को आने मत दीजिए वहाँ पे, नहीं तो फिर आपकी कॉल ड्रॉप हो जाएगी।
1: हाँ,
0: तो बस्ती में करते क्या हैं शिव प्रसाद जी?
1: हम सिलाई काम करते हैं।
0: अच्छा जी, सिलाई का काम करते रहिए। और गर्मी आजकल बहुत ज्यादा हो रही है, पंखा का चला के करते हैं कि बिना पंखे के करते हैं?
1: ना ना, बिना पंखे के नहीं चलते हैं। जी, पंखे में रहो तो फिर भी जो है पसीने पसीने हो जाता है।
0: हाँ, दो चार दिन में गर्मी और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। आज से तो 9 तपा भी शुरू हो गया, 9 दिन बहुत ही गर्मी रहेगी, है ना?
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: तो चलिए, हम आपको गाना सुनवाते हैं ताल फिल्म से, जो आपने पसंद किया। कॉल के लिए आपका शुक्रिया।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: हेलो, अयोध्या प्रोग्राम का सफर जी ही शुरू हो चुका है और दो कॉलर से बात भी हो चुकी है। अब देखें तीसरे नंबर पर कौन सा कॉलर मेरे पास पहुंचने वाला है। जी बताइए अपना नाम।
4: मेरा नाम उमेश यादव।
3: उमेश जी, कहां पर ये रहकर प्रोग्राम सुन रहे हैं इस वक्त?
4: जी मैं सरफी वन चौराहा अयोध्या से बोल रहा हूं।
3: चलिए, बढ़िया, अयोध्या धाम से बोल रहे हैं। और करते क्या वहाँ पर?
4: सर मैं सरकार भारतीय खाद्य निगम में कार्यरत हूँ सर।
3: अच्छा जी, और जब टाइम मिलता

0: हैं तो आप रेडियो भी सुनते हैं, मन बहलाते हैं अपना।
1: जी
0: जी, जरूरी भी है।
1: 1970 ईस्वी लगभग से मैं उत्तर रेडियो सुनता हूँ।
0: अच्छा, 1970 से सुन रहे हैं, बचपन से ही? अच्छा
1: जी, एकदम 8-9 साल के तो उसी समय से रेडियो सुनते हैं सर।
0: जी जी जी जी, देखिए रेडियो एक ऐसी चीज है ना जो बहुत कुछ देती है आपको, समाचार भी है, कहानियां भी है।
1: और समाचार तो सर डेली सुनते हैं, ऐसे हम पेपर पढ़ने बहुत हैं अखबार, लेकिन समाचार सुनते हैं, अखबार दोनों पढ़ते हैं।
0: जी जी जी जी, अब देखिए एक नया शुरू हुआ समाचार लखनऊ केंद्र से आता है, विश्व दर्पण, उसमें विदेश की सारी खबरें होती है 10 मिनट तक, सुबह 10:10 से। तो आज गाना किस फिल्म का आपको सुनवाया, आपने बताया जॉनी मेरा नाम
1: जी,
0: इसमें कौन सा गाना है?
1: पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले।
0: बहुत ही बढ़िया गाना चुना आपने। जी सर,
1: एक चीज बताऊं सर?
0: जी बताइए
1: सर, 1970 के दशक का सर कोई भी गाना अगर एक लाइन आप बता दीजिए तो मैं तुरंत बता दूंगा किस फिल्म के गाना है, इसके कौन कलाकार है, कौन गायक है, कौन गायिका है, कौन संगीतकार है, सारा मैं बता दूंगा।
0: इतना तो हमको पता लगाना पड़ेगा कि 70-80 के कौन कौन से गाने। वैसे हमें चरस फिल्म का भी गाना बहुत अच्छा लगता है, चरस फिल्म में बताइए कोई एक गाना।
1: चरस का तो चरसे का पता लगा दीजिए कोई।
0: आज ये सुन लीजिए है ना, क्योंकि कंप्यूटर में गाना निकालने बैठ जाएंगे तो फिर टाइम बहुत लगेगा है ना।
1: जी
0: चलिए, कॉल के शुक्रिया आपका, गाना सुनिए।
1: बताइए
0: बताना नहीं है, गाना सुनिए आप।

0: और अब 7376804090 ये नंबर मिला किसने लिया है जी? बताइए अपना नाम वहाँ से। नमस्कार जी, रूप सिंह शाह के बताया
1: जी।
0: तो करते क्या वहाँ कासगंज एटा में?
1: खेतीबाड़ी करता हूँ सर जी।
0: तो खेतीबाड़ी करने, आजकल तो बहुत गर्मी होती है, सुबह चले जाते होंगे खेतों पर?
1: सुबह 6 बजे से समथिंग 10 बजे तक काम करते हैं, फिर उधर 5 बजे से 7 बजे
0: बस
1: तक।
0: बस वही अच्छा रहता है, वही अच्छा रहता है। देखिए पहले हम लोग जो है 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर को सह रहे थे, लेकिन आने वाले जमाने में जो है ये टेम्परेचर कूद के 45 से 50 पहुंचने वाला है।
1: अभी भी 45-40 के समथिंग हाँ, में है।
0: अभी मैंने बताया था गीत गुंजन प्रोग्राम में कुछ दिन पहले बांदा में 48 के ऊपर भी टेम्परेचर चला गया था, 48.2 हो गया था वहाँ पे।
1: जी

0: तो आज गाना आपको दलाल फिल्म से कौन सा सुनवाएं?
1: तैरे हुए पानी में,
0: कंकर नमार। चलिए, शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। गाना आपके पास हम पहुंचा रहे हैं, ठीक है?
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: ये जो टेलीफोन लाइन है वो खाली रहती ही नहीं है, लगातार आपकी कॉल्स आती रहती हैं और किसी न किसी का तो यहाँ पर बाजी लगी जाती है, नंबर उनका लगी जाता है। जी बताइए कौन अब मेरे साथ आ गया इस प्रोग्राम में?
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर,
0: आपका स्वागत है। नाम बता दीजिए, बस्ती से कौन है?
1: चंद्रशेखर
0: मिश्रा जी, आपकी आवाज़ थोड़ी रुक रुक के आ रही है, साफ भी नहीं आ रही है। बताइए गाना कौन सा सुनेंगे आज?
1: हम आवाज सुनिए।
0: हाँ, आपके इंस्ट्रूमेंट में आवाज़, या तो आप हैंड फ्री करके हमें सुन रहे होंगे तो हम आपकी पसंद का गाना लगा रहे हैं। दो बदन फिल्म का गाना आपने पसंद किया है, ठीक है। हाँ, तो अगली बार जब आप कॉल करेंगे ना तो वहाँ पर थोड़ा शोर कम रखिएगा और अब स्पीकर पे जो है, मोबाइल के स्पीकर पे हमें मत सुनिए, कान में सुनिए, ठीक है। शुक्रिया कॉल के लिए।

0: और अब आशिकी 2 फिल्म का गाना किसी को पसंद आ गया है। हेलो अयोध्या प्रोग्राम में, आइए देखें कौन है वो। जी कहां से आपने ये गाना पसंद किया, नाम बताइए अपना।
1: जी सर, राम अवतार अग्रहारी नाम है।
0: राम अवतार अग्रहारी करते क्या है वहाँ पर?
1: जी सर, कपड़े की दुकान हमारी।
0: अच्छा, कपड़े की दुकान है, तो सिलाई की है कि वैसे बेचते हैं कपड़ा?
1: नहीं सर, रेडीमेड की।
0: अच्छा, रेडीमेड की दुकान है आपकी, ठीक है।

0: रेडीमेड की।
1: अच्छा, रेडीमेड की दुकान है आपकी, ठीक है। तो गाना किस फिल्म का सुनना चाहते हैं आज इस प्रोग्राम में?
0: जी सर, आशिकी टू का।
1: हाँ, ये तो मैंने बता ही दिया था अभी। तो इसमें गाना है कौन सा जो आप सुनना चाहते हैं?
0: जो सर आपको अच्छा लगे।
1: चलिए, और आज आपने आकाशवाणी अयोध्या को याद कर लिया, कितने दिनों से सुन रहे हैं ये आकाशवाणी अयोध्या को?
0: सर हम आकाशवाणी अयोध्या को बहुत दिनों से सुन रहे हैं, मान लीजिए बचपन से सुन रहे हैं।
1: तो अच्छा लगता है सब कुछ यहाँ से, कुछ कमी तो नहीं है?
0: जी सर, बहुत अच्छा लगता है।
1: अब पुराने दिनों का कोई प्रोग्राम आपको याद है जो अभी नहीं हो रहा है, बताइए।
0: सर हेलो फरमाइश टू तब से चल ही रहा है।
1: नहीं नहीं, हम पूछ रहे हैं, सुनिए मेरी बात, मेरे पहली बात मेरी सुनिए। ऐसा कौन सा कार्यक्रम है जो आप पहले सुनते थे और अब नहीं सुन रहे हैं, ये बताइए।
0: ऐसा तो कोई कार्यक्रम नहीं है सर।
1: आपको याद ही नहीं है इसका मतलब? है ना,
0: हेलो फरमाइश टू अंकल बचपन।
1: पहले बहुत से कार्यक्रम होते थे, जवानों के लिए कार्यक्रम होता था, और फिल्मी फ्राइडे प्रोग्राम होता था, एक ही फिल्म से प्रोग्राम होता था, टॉपिक वाला प्रोग्राम होता था, एक ही रंग के गाने सुनवाए जाते थे। चलिए, आज आपको हम ये गाना सुनवा रहे, बातें और भी बहुत से श्रोता करने को जो है इंतजार कर रहे हैं अपना। कॉल के लिए शुक्रिया आपका, सुनिए गाना।

0: और अब मेरे पास बहुत ही करीब से कॉल आ गई है, जहाँ पर आकाशवाणी केंद्र है, बस उसी के आसपास का ये मोहल्ला है बेगमगंज और उसके आगे रेतिया। तो रेतिया से कौन है मेरे पास, ये नाम बताइए अपना फिर से।
1: परमेश्वर प्रसाद।
0: अच्छा, आपने बताया ऑफ माइक कि आप नौकरी भी करते थे, अब रिटायर्ड है क्या?
1: जी जी जी।
0: कौन सी नौकरी करते थे, क्या करते थे आप?
1: फोर्थ क्लास के लेखा अधिकारी पास, विकास भवन में ग्रामीण विभाग।
0: जी जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो आज आकाशवाणी अयोध्या की याद कैसे आ गई?
1: हम डेली लगाते हैं। अच्छा। 3-4 बार और शाम को 5 बजे और 12-12:30 बजे सुनते रहते हैं आपसे।
0: सारा टाइम आपको पता है कि किस किस दिन किस समय ये प्रोग्राम आता है कि नहीं?
1: जी।
0: तो
1: रिटायर होने के बाद कभी ऑफिस जाते हैं डेली?
0: हाँ वो तो है, देखिए वहाँ जाने पे मन कुछ और हो जाता है, बढ़िया हो जाता है मन, है कि नहीं?
1: जी, आप ठीक ठाक हैं?
0: हम बढ़िया हैं, देखिए आपसे बातें कर रहे हैं, कभी आके मिल भी लीजिए हमको, तो हम आपको मिल भी लेंगे, आप बगल में रहते हैं।
1: ठीक है, ठीक है।
0: तो आज नहीं, गाना तो बता दीजिए कौन सा सुनवाए आपको।
1: मदर इंडिया के नगरी नगरी द्वारे द्वारे।
0: वाह जी वाह, बहुत ही बढ़िया गाना। और आज सुनील दत्त साहब की पुण्यतिथि भी है, आज ही के दिन वो हमसे जुदा हो गए थे, तो उन्होंने भी इस फिल्म में काम किया था नरगिस के साथ।
1: जी,
0: शुक्रिया जी,
1: जी।
0: परमेश्वर प्रसाद जी, गाना सुनिए अपना।

0: गर्मी का कहर बढ़ रहा है और इसके साथ ही खतरा बढ़ रहा है लू का। लेकिन घबराए नहीं, बस थोड़ी सी सावधानी बरतें।
1: जब भी बाहर निकलें, कुछ खा पी कर निकलें, साथ में पानी की बोतल जरूर रखें।
0: और हाँ, हल्के रंग के सूती कपड़े पहने, सिर को गमछे, टोपी या दुपट्टे से ढककर ही बाहर कदम रखें।
1: चक्कर आए, सिर में तेज दर्द हो या बहुत कमजोरी लगे तो इसे मामूली थकान न समझें, ये लू के लक्षण हो सकते हैं।
0: तुरंत छायादार जगह पर जाएं, ORS या नींबू पानी का घोल पिएं और नजदीकी डॉक्टर से सलाह लें।
1: याद रखिए, आपकी सतर्कता ही आपको इस तपती गर्मी से सुरक्षित रख सकती है।
0: खुद भी बचें और दूसरों को भी जागरूक करें।
2: इस प्रोग्राम में हर किसी की तमन्ना रहती है कि उनकी भी बारी लग जाए इस प्रोग्राम में। बहुत से लोग न जाने कहां कहां से कॉल इस वक्त लगा रहे होते हैं, लेकिन कुछ ही लोगों की कॉल यहां पर लग पाती है। आइए देखें किसकी कॉल यहां पर पहुंच चुकी। जी, आपका स्वागत है, नाम बता दीजिए। थोड़ी सी आवाज रेडियो की कम रखी है, या आपने स्पीकर तो नहीं खोल रखा मोबाइल का? हाँ, तो बताइए अपना नाम सबको। उमेश मिल्कीपुर से बोल रहे हैं, और क्या हाल चाल है वहाँ पे? बढ़िया है। तो आप दिन में भी प्रोग्राम सुनते हैं कि नहीं आकाशवाणी अयोध्या के? देखिए, आपके इलाके का नेटवर्क भी डाउन है, थोड़ा सा आवाज रुक रही है आपकी। क्या क्या करते हैं वहाँ पर, खेती करते हैं, क्या करते हैं
3: आप? दुकान करते
2: हैं। अच्छा, दुकान करते हैं। क्या बेचते हैं दुकान पर? अच्छा अच्छा, बिस्कुट नमकीन बेचते हैं, बढ़िया है। तो आपने पसंद किया कारवां फिल्म का गाना, हम आपको गाना सुनवा दे रहे हैं, क्योंकि आपकी आवाज़ रुक रुक के आ रही है, इसलिए ज़्यादा बातें साफ हो नहीं पा रही हैं आपसे।

0: और अब आ गया कौन मेरे पास? जी हाँ, अविनाश जी आ गए हैं त्रिपुरा से। आपका स्वागत है जी। नाम बताइए। नाम तो मैंने बता दिया शायद, ये सब लोग जान गए हैं।
1: जी, बिल्कुल आपने बता दिया है, तो मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अविनाश जी बोल रहा हूँ।
0: जी, और क्या हाल चाल है? बढ़िया है आप?
1: जी जी, बहुत बढ़िया है। और खास करके देखिए, जब आप आते हैं तो एक बाहर सा लग जाता है कॉल, इतने मतलब कि आपके कैसे में आते रहते हैं, मतलब कि पूरी तरह से हम सभी जुड़ जाते हैं कि आज अमरजीत सर भी आए हैं तो हमें कॉल लगाना ही है।
0: हाँ, तो देखिए, जिस तरह से आपका मन नहीं मानता है ना, वैसे बहुतों का मन नहीं मानता आज के दिन जब हम आते हैं।
1: जी जी जी जी, और खास करके आपके कार्यक्रम में एक फायदा हम लोगों को ये होता है ना कि मान लीजिए कि हम कॉल लगाने के चक्कर में अगर कार्यक्रम ना भी सुने तो बाद में जब आप कार्यक्रम अपना डालते हैं यूट्यूब में तो हम वहाँ से भी जाकर सुन सकते हैं।
0: जी जी जी, मैं सारी रिकॉर्डिंग्स अपने प्रोग्राम की वहाँ पे डाल देता हूँ, मैं भी सुनूँ और आप भी सुनते रहे। तो
1: जी जी,
0: आज
1: ये बहुत अच्छा
0: गाना कौन सा लेकर आए हैं यहाँ पर आज?
1: आज मैं गाना लेके आई हूँ आपका पसंद का है, क्योंकि मैं जब भी कॉल लगाता हूँ या सुनता हूँ तो वो गाना आपके बैकग्राउंड में बजता रहता है। वो है डर मूवी का जादू तेरी नजर, उदित नारायण जी की आवाज में और पूनम जी है कानपुर से। और
0: जी, पूनम जी की भी कॉल काफी दिन से आकाशवाणी अयोध्या में नहीं आई, पहले लगातार उनकी कॉल से यहाँ आ रही थी।
1: जी जी, वो भी ट्राई कर रहे हैं, विजय पांडे भी ट्राई कर रहे हैं, राकेश जी निशा भी ट्राई कर रहे हैं, हम सबको जानकारी दे दी कि आज आ रहे हैं तो।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज सबके पास पहुँच गई, देखते हैं यहाँ पे किसकी आवाज मेरे पास पहुँचती है। ठीक है, शुक्रिया।

0: 10:05 हो गए हैं, बस 25 मिनट और है इस प्रोग्राम में। आइए देखें मेरे पास आ कौन गया। हेलो अयोध्या प्रोग्राम, ये नाम बताइए अपना।
1: हेलो नमस्ते सर, मैं माही पांडे गोंडा से बात कर रही हूँ।
0: माही पांडे गोंडा से बात कर रही हैं और आपकी आवाज तो बड़ी मीठी लग रही है मुझको। आप क्या गुड़ खाती हैं ज्यादा क्या?
1: सर नहीं, मतलब ज्यादा नहीं खाती हूँ।
0: हाँ लोग कहते
1: हैं बहुत कम खाती हूँ, ज्यादा खाती हूँ।
0: इसी तरह से

0: मुझको भी लोग पूछते हैं कि आप ऐसी कौन सी मीठी चीज खाते हैं जिससे आप इतना बढ़िया बोलते हैं। मैं भी यही कहता हूँ कि मैं कुछ मीठा नहीं खाता हूँ। तो ये आपकी जो बातें होती है ना श्रोताओं से, तो उनकी मिठास मेरी जुबान में घुल जाती है। बस बस वही। तो आज कॉल आपने गोंडा से लगाई है। गोंडा में क्या कुछ है और वहाँ पे देखने लायक कोई चीज है वहाँ पर?
1: यस सर, हमारे गोंडा में तो बहुत अच्छी अच्छी जगह है घूमने के लिए। बहुत अच्छी अच्छी मंदिर है यहाँ पे।
0: तो आपके घर के आसपास कोई रेल पटरी तो नहीं गुजरती है? दूर है
1: क्या सर?
0: रेल की पटरी तो नहीं आपके घर के पास से? ट्रेन तो नहीं जाती कोई?
1: नो सर, मेरे घर के पास ट्रेन तो नहीं जाती, पर मेरे घर के पास जंगल बहुत है।
0: हाँ, जंगल से सतर्क रहा कीजिए क्योंकि वहाँ पे जानवर भी बहुत आते हैं। सियार यहाँ भी कभी कभी आ जाते हैं।
1: जानवर आते हैं पर हम लोगों को कोई नुकसान नहीं देते हैं।
0: हाँ ये बात तो है। देखिए अब तो आकाशवाणी के सामने
1: बहुत समझदार
0: है। अभी आकाशवाणी के सामने जो 14 कोसी परिक्रमा मार्ग है ना, तो वहाँ भी पूरी आबादी हो गई है, घर बन रहे हैं। नहीं तो शाम को यहाँ भी सियार आके बोलने लगते थे 10 बजे के बाद।
1: सर हमारे यहाँ तो डेली बोलते हैं।
0: चलिए तो आज गाना कौन?
1: जो हिरन होता नहीं है वो भी मेरे घर पे आता है, बहुत अच्छा लगता है उसको देखने।
0: हाँ, हिरन तो बहुत ही जो है देखने में अच्छा लगता है, शर्मीला होता है बहुत वो ना।
1: यस सर।
0: तो आज गाना माही को कौन सा सुनवाए?
1: छुप जाता है।
0: हाँ मैंने कहा ना शर्मीला होता है हिरन बहुत। तो अब गाना कौन सा सुनवाए आपको आज? गाना तो बहुत ही बढ़िया आपने पसंद किया।
1: आपके लिए मैंने चूज़ किया है।
0: चलिए शुक्रिया। तो ये आकाशवाणी
1: आपसे बात करने के लिए ना सर मैं बहुत ही परेशान थी।
0: देखिए
1: लगाते लगाते अब जाके लग गई।
0: बहुत से लोग जो है वो बात करने के लिए आतुर रहते हैं। पिछली बार देखिए कॉल किसी की लगी थी तो उनका गाना भी नहीं चला, तो उन्होंने ये कहा कि गाना मुझे नहीं सुनना, केवल हमसे बात कर लीजिए बस। अनु रावत थी मेरे ख्याल से, उनकी कॉल लगी थी। चलिए शुक्रिया माही, गाना आपका पहुंच रहा है गोंडा में। बाय बाय।

0: तो बस धीरे धीरे वक्त अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है और हमारे श्रोता भी लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। अब कौन पहुँचा जी, कहाँ से बताइए अपना नाम।
1: हाँ, जिला बलरामपुर से सर बोल रहे हैं, इश्तियाक अहमद।
0: इश्तियाक अहमद जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल।

0: हाल इस प्रोग्राम में, और आज गाना कौन सा लेकर आए हैं?
1: दिल अपना पीर पराई।
0: पुराने गाने ही ज्यादा सुनते हैं कि नए गाने भी कभी कभी सुनते हैं आप
1: कि
0: नहीं?
1: अब हम ऐसा है कि लगभग हमारा उम्र 56 साल का है
0: जी।
1: हाँ, तो हम पुराने ही ज्यादा सुनते हैं ना।
0: जो पुराने गानों में दम है वो नए गानों में उतना दम नहीं है। नए गाने एक महीने में आदमी भूल जाता है।
1: तो जब से आप आए जब ही हम लगा रहे हैं, पसंद नहीं रहता। आपके आने पे ज्यादा बिजी हो जाता है।
0: हो सकता है कि हर आदमी चाहता है कि हमसे बात हो जाए, हमसे बात हो जाए। तो आप तो लगी थे, आप पहुंच गए।
1: जब आप आते हैं स्टूडियो में तो ज्यादा बिजी हो जाता है, पता नहीं क्यों।
0: इसीलिए मेरी कोशिश भी ये रहती है कि ज्यादा से ज्यादा आपकी कॉल्स हम यहाँ अटेंड करें, आपसे बातें करें, है ना?
1: तो ठीक है सर, ठीक
0: है। तो आज गाना आपको हम सुनवा रहे हैं, दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म से टाइटल वाला, ठीक है?
1: हाँ हाँ ठीक है।
0: शुक्रिया, नमस्कार।

0: बहुत ही बेहतरीन गाना पसंद किया इश्ताक अहमद साहब ने बलरामपुर से। और अब मेरे पास जी किसकी कॉल लग गई है, नाम बताइए अपना।
1: हेलो, सतीश चंद अमानीगंज गुरुद्वारा से।
0: अमानीगंज गुरुद्वारा अयोध्या धाम से आप कौन बोल रहे हैं?
1: सतीश चंद्र
0: जी, आपकी भी कॉल लगातार यहाँ लगती रहती है। और किसी दिन तो आपकी कॉल यहाँ लगने के बाद भी ड्रॉप हो गई थी, किस दिन हुई थी?
1: संडे को लगी थी, कल ड्रॉप हो गई।
0: अच्छा, और क्या करते हैं वहाँ पर आप?
1: मैं साइकिल काम करता हूँ, बच्चों की गाड़ी जो इलेक्ट्रॉनिक वाली होती है उसी को बनाते हैं हम।
0: जी, तो बढ़िया काम करते हैं। और किराए पे भी साइकिल देते हैं, एक जमाने में लोग किराए पे साइकिल देते थे चलाने के लिए।
1: नहीं, पहले देते थे लेकिन अब बंद हो गया ना।
0: जी, एक घंटे का एक रुपया लेते थे उस समय।
1: हाँ जी,
0: क्योंकि हम लोग का जमाना था उस समय 70-80 के दशक में, है ना।
1: जी।
0: तो आज गाना कौन सा सुनवा दें आपको?
1: आशा फिल्म का।
0: चलिए, आशा फिल्म का गाना कंप्यूटर साहब ने लगा दिया आपके लिए, सुनिए गाना। कॉल के लिए शुक्रिया आपका।
1: ऐसा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।
0: जी, सतीश चंद्र जी, गाना पहुंच गया आपके पास।

0: लेकिन हम किसी को रूठने नहीं देते इस प्रोग्राम में। जिसकी भी कॉल लगती है उसको लेकर आते हैं, क्योंकि कॉल इतनी आसानी से लगती भी नहीं है किसी की। कि किसकी कॉल लग गई यहाँ इस प्रोग्राम में, बताइए नाम। हेलो, आप प्रोग्राम में आ चुके हैं, नाम बताइए अपना।
1: सर मैं प्रहलाद बोल रहा हूँ, पूरे जोशी वल्लीपुर जिला सुल्तानपुर।
0: अच्छा, तो ये सुल्तानपुर जो शहर है उससे गांव कितना दूर है आपका?
1: सर सुल्तानपुर से करीबन हमारा 35 से 40 किलोमीटर करीबन पड़ता है।
0: अच्छा, इतना दूर है वहाँ से 35-40 किलोमीटर?
1: हाँ सर, वो बल्ली राय है ना, हमारी तहसील पड़ती है।
0: तो ये बल्लीपुर किस साइड पर है? ये रायबरेली रोड पर है कि इधर कहीं किसी और जगह, इलाहाबाद रोड?
1: नहीं
0: पर है?
1: सर ये हलियापुर वाला जो रोड है, रोड गया है ना दहली बाजार, आप सुने हो तो?
0: अच्छा अच्छा,
1: बौराहवा वाले रोड पे।
0: अच्छा अच्छा, तो आकाशवाणी अयोध्या वहाँ पर आपको दिन में ट्रांजिस्टर पर सुनाई पड़ता है, मोबाइल एफएम पर नहीं?
1: सर एफएम ऐप पे मैं सुन रहा हूँ, तो उसे जो ना क्लियर सुनाई देता है।
0: वो तो सब जगह सुनाई पड़ता है, क्योंकि जो हवाओं की तरंगे हैं ना वो 60-70 किलोमीटर ही जाती हैं। तो ये बताइए, सुल्तानपुर में आपके शहर में भी आकाशवाणी का एफएम खुला हुआ है, तो वहाँ के प्रोग्राम आपको मिलते होंगे बढ़िया?
1: सर वैसे हमारी जो रुचि है ना, शुरू से मैं सुनता आ रहा हूँ फैजाबाद, तो हमें इसके मुकाबले जो ना है, हमें तो है। कोई रेडियो उतना सही लगता नहीं है।
0: क्योंकि जो सुल्तानपुर आपका, जो सुल्तानपुर आपका आकाशवाणी खुला हुआ है ना, वो विविध भारती के प्रोग्राम दिन भर प्रसारित करता है वहाँ पर, सुबह 6 से रात 11:10 तक।
1: जी सर।
0: तो अगर आपके सुल्तानपुर से हम लोग के केंद्र भी रिले होने लगे तो आपको अच्छा लगेगा कि नहीं?
1: सर बहुत अच्छा लगेगा।
0: हाँ, तब आपको लोग और क्लियर सुनने को मिलेगा ना?
1: जी सर।
0: चलिए, तो आज गाना कौन सा सुनवाएं आपको?
1: सर मैं नाम लेना चाहता हूँ, हमारे
0: ले लीजिए,
1: मामा जी हैं फैजाबाद में रहते हैं, मन्ने लाल यादव, वीरेंद्र यादव, संतोष यादव।
0: तो ये सब फैजाबाद में किस मोहल्ले में रहते हैं?
1: सर मेरे बड़े मामा रहते हैं और ये सुल्तानपुर रोड के पास आसपास रहते हैं।
0: अच्छा अच्छा, उधर उस साइड है यूनिवर्सिटी की ओर, ठीक है। तो गाना आपने पसंद किया मेरे पास, फिल्म का नाम आपने बताया ऑफ माइक राजा हिंदुस्तानी का, ठीक है?
1: जी सर, जी सर।
0: तो इसी फिल्म से हम आपको गाना सुनवा रहे हैं, कॉल के लिए शुक्रिया, सुल्तानपुर से आपने कॉल की,
1: धन्यवाद सर, थैंक यू।

0: मुहर्रम, मेरे पास कोई नन्हे श्रोता आने वाले हैं, देखे कौन है और कहाँ से है। जी बताइए अपना नाम कौन है।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते जी, अपना नाम तो बता दीजिए।
1: श्रद्धा।
0: श्रद्धा, कहाँ से कॉल लगाई आपने?
1: मौसवाला
0: से। और मिला के किसने दिया कॉल आपको? आपने खुद लगाई कि किसी ने मिला के दिया नंबर?
1: पापा।
0: तो पापा से बात कराइए, कहाँ है वो?
2: जी नमस्ते।
0: नमस्ते जी, मुझे लग रहा है, याद आ रहा है, एक बार आपसे बात हो चुकी है मेरी।
2: जी।
0: चंदन नाम बताया था आपने बेटे का।
2: जी। वो बच्चा आपकी रिकॉर्डिंग सुन के और रोज शाम को लगवाता है, रोज शाम को, लेकिन आप रोज शाम को आते नहीं है।
0: हाँ, ये तो है।
2: लगती भी नहीं है इतना आसानी से।
0: वही तो। तो वो चंदन क्या कर रहा है इस वक्त, बात कराइए उससे।
2: भोजन वोजन करके बस आपकी मीटिंग में लगे।
0: अच्छा अच्छा, बात कराइए। हाँ चंदन जी, क्या हाल चाल? नमस्ते जी, बड़े हो जाओ, खुश रहो, खूब पढ़े लिखो। और आज हमारा प्रोग्राम सुन रहे थे, रिकॉर्डिंग भी आप सुनते हैं क्या?
1: गाना फौजी वाला।
0: हाँ, गाना हम आपको जो है देशभक्ति वाला ही सुनवाएंगे। और खाना ना खा लिया ना आपने? चलिए तो सब मिलकर सुनिए चंदन, श्रद्धा और जगदंबिका दुबे की पसंद पर गाना। कॉल के लिए शुक्रिया आप सबका।

0: अब प्रोग्राम में टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है और जल्दी से कॉल अटेंड करते हैं यहाँ पर। जी बताइए अपना नाम, कहाँ से आपकी कॉल लग गई?
1: सर जी गुड इवनिंग, मैं पूनम कानपुर से। सर कैसे हैं?
0: बस बढ़िया है। गुड इवनिंग पूनम जी, और कानपुर घाटमपुर से आपने कॉल लगाई ना?
1: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो इतनी देर लग गई आपको, कब से लगा रही थी कॉल आप?
1: जी हाँ, घाटमपुर से कॉल लगा रही हूँ, जब से आपका कार्यक्रम शुरू हुआ है ना, जब से मैं कॉल लगा रही हूँ।
0: अब जाके आपकी बारी आई जाएगी बिल्कुल एंड में।
1: लेकिन लाइन है कि ना मिल ही नहीं रही सर, इतना
0: वो तो देखिए
1: आप क्या जादू डाल देते हैं।
0: जादू हम कुछ नहीं डालते हैं, नंबर एक कहते हैं ना, एक अनार सौ बीमार वाला हिसाब किताब है यहाँ पर।
1: जी हाँ बिल्कुल, और एक अनार और बिल्कुल अकेले आप हैं और इतने सारे शौचालय, बताइए
0: जी जी बस
1: कैसे लाइन मिलेगी।
0: बस ऊपर वाले की कृपा है, क्योंकि हम नहीं बोलते, ऊपर वाला बुलवाता है मुझको।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए यही एक लिसनर और आर्टिस्ट का प्यार होता है
0: जी,
1: क्योंकि एक दूसरे को मिलता है, जैसे कि आपको इतने लिसनर आ रहे हैं, इतने लिसनर फोन करते हैं, इतने लिसनर आपको प्रेम करते हैं, प्रेम भाव से आप सभी से बातें करते हैं
0: जी। हाँ।
1: अच्छा लगता है।
0: तो हम लोग को यही लगता है कि जैसे हमारी फैमिली में ही बैठकर हम सबसे बातें कर रहे हैं, है कि नहीं?
1: जी हाँ बिल्कुल सर, हमारा रेडियो एक परिवार है
0: जी,
1: और हम सब जुड़ते हैं, तो सच में ऐसा लगता है कि हमें एक नया परिवार मिला है।
0: तो आपकी पसंद पर लोहा फिल्म से हम गाना सुनवा रहे हैं, एक बहुत ही बढ़िया गाना है ये, तेरी हस्ती है क्या तू मिटाएगा क्या, इस तरह से कुछ गाना है ये।
1: और सर आपकी जो प्रस्तुति है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है, और जो आप आते हैं बहुत मुश्किल हो जाता है कॉल लगाना।
0: चलिए तो, कुछ और भी कहना है तो क्या डालिए, क्योंकि बस गाना चलाने का वक्त मेरे पास बचा है बस।
1: जी हाँ जी, ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच, कार्यक्रम में आपने कॉल रिसीव किया, बहुत बहुत शुक्रिया सर।
0: चलिए सुनिए गाना।

मेरे प्यारे सुनने वालों, आपका रेडियो मीत अमरजीत बस यही कहता है, आप हंसते गाते मुस्कुराते रहें, सेहतमंद रहें, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फिर मिलेंगे आपको किसी और दिन इसी प्रोग्राम हेलो अयोध्या में। कंट्रोल रूम से आज हमारे साथ थे अरविंद कुमार। तो हमें दीजिए इजाजत हेलो अयोध्या प्रोग्राम से। आप सब अपना और अपनों का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा।

लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो अयोध्या में अभी हमारे श्रोता अपनी पसंद के गाने सुन रहे थे और हमसे बात भी कर रहे थे। यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। FM 101.9 MHz पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है और हमारे कार्यक्रम आप प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर भी सुन रहे हैं। अब से लेकर 11 बजे तक आइए सुने विविध भारती के राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम मुंबई से, जहां से इस वक्त ढलती जाए रात प्रोग्राम में पुराने गाने सुनवाए जा रहे हैं।

विविध भारती के कार्यक्रम अब हम आपको सुनवाएंगे सुबह 6:05 से। यह आकाशवाणी का अयोध्या एफएम है। रात के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी देर के बाद आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में और 11:05 से आप अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे। समाचारों का थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म भूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने यह पुरस्कार

0: ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पद्म पुरस्कार से सम्मानित सभी विशिष्ट हस्तियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों को समाज के जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले लोगों को सम्मानित करने का माध्यम बनाया है। गृहमंत्री अगले कुछ दिनों में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे और सुरक्षा से संबंधित बैठकें करेंगे। सूत्रों ने बताया कि वे आज देर रात राजस्थान के बीकानेर पहुंचेंगे और कल सुबह बीएसएफ की सांचू सीमा चौकी का दौरा करेंगे, जहां वे सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
1: High international crude prices and
2: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
1: Fertilizer and foreign exchange.
0: इस बीच नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया। श्री प्रधान ने देशभर के सभी उपराज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी से बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। श्री जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। नेपाल में मौसम विभाग ने तराई क्षेत्रों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी तराई और लुम्बिनी क्षेत्र में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। नेपालगंज में भेरी अस्पताल में गर्मी से जुड़ी बीमारियों से करीब 100 मरीज रोज पहुंच रहे हैं। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की आशंका है। वियतनाम के दानांग में एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। President Draupadi Murmu today conferred Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at the civil investiture ceremony held at Rashtrapati Bhavan. Of them, 2 were conferred with Padma Vibhushan, 6 with Padma Bhushan and 58 personalities were conferred with Padma Shri. Noted film actor Dharmendra Singh Deol has been honored with the Padma Vibhushan posthumously for his contribution in the field of art. the actor's wife and Lok Sabha MP.